والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا لمن

वो मुजरिमों से पूछेंगे, तुम्हें क्या चीज दोजख में ले गई? वो कहेंगे, हम नमाज पढ़ने वालों में से न थे और मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे और हक के खिलाफ बातें बनाने वालों के साथ मिलकर हम भी बातें बनाने लगते थे और रोजे जजा को झूठ करार देते थे, यहां तक कि हमें इस यकीनी चीज से साबिका पेश आ गया। उस वक्त सिफारिश करने वालों की कोई सिफारिश उनके किसी काम ना आएगी। आखिर इन लोगों को क्या हो गया है कि ये इस नसीहत से मुंह मोड़ रहे हैं? गोया ये जंगली गधे हैं जो शेर से डर कर भाग पड़े हैं, बल्कि इनमें से तो हर एक ये चाहता है कि उसके नाम खुले खत भेजे जाएं। हरगिज नहीं, असल बात यह है कि ये आखिरत का खौफ नहीं रखते। हरगिज नहीं, ये तो एक नसीहत है। अब जिसका जी चाहे उससे सबक हासिल कर ले, और ये कोई सबक हासिल नहीं करेंगे इल्ला ये कि अल्लाह ही ऐसा चाहे। वो इसका हकदार है कि उससे तकवा किया जाए, और वो इसका अहल है कि तकवा करने वालों को बख्श दे।

0: कि माँ एक ऐसा रिश्ता है जिसका कोई बदल नहीं। माँ दुनिया के सब रिश्तों में से अफजल और पाकीजा रिश्ता है। अल्लाह सुब्हानहु तआला की इताअत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी के बाद सबसे ऊंचा मकाम माँ का है। माँ की कदर उस आदमी से पूछिए जिसकी माँ नहीं। माँ अल्लाह सुब्हानहु तआला की सबसे बड़ी नेमत है। हम सबको चाहिए कि अपनी माँ की इज्जत करें और उसका कहना माने, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद माँ से ज्यादा ऊंचा मर्तबा अल्लाह सुब्हानहु तआला ने किसी को नहीं दिया।
1: पैगाम ऑन FM 107।
2: FM 107 पर रेडियो कतर की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। समीन, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछें तो मैं तो उनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। इसलिए उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पा लें। सामीन, मौलाना इदरीस अबकर साहब दुआगो हैं अल्लाह ताला के हुजूर। आइए हम भी इन दुआओं में शरीक हो जाएं। ऐ अल्लाह, तू हमारी सब दुआएं कबूल फरमा ले।

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। आज हम एक नहायत ही दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे, मेंटल हेल्थ क्या है, यानी दिमागी सेहत का हमारी याददाश्त के साथ कितना गहरा ताल्लुक है। क्या आपने कभी कमरे में कुछ लेने के लिए जाना हो और भूल गए हो कि लेने के लिए क्या आए थे, या मोबाइल कहीं रख कर याद ही न रहा हो। एक स्टूडेंट एग्जाम के वक्त रात को जाग कर सिर्फ स्टडी ही करता था, सुबह सब भूल जाता था। जब तक उसने ये देखा कि उसने अच्छी नींद लेना शुरू की और बैलेंस डाइट लेनी शुरू की, छोटी छोटी जो रिवीजंस की उनकी आदत डाली, तो फिर उसकी याददाश्त, उसकी मेमोरी बेहतर होती चली गई। अब ब्रेन या दिमाग को कंट्रोल रूम कहा जाता है। ये याददाश्त हमारी कंसंट्रेशन यानी तवज्जो, जज्बात और एक्टिविटी सबको कंट्रोल करता है। अब ये सवाल कि हमारी जो मेमोरी है, ये हमारी याददाश्त है, वो कमज़ोर क्यों हो जाती है, उसमें नींद की कमी बहुत अहम है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन, छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेना, उससे भी हमारी याददाश्त जो है वो मुतासर होती है। और जो गैर मुतवाजन ग़िज़ा है, जिसमें आयरन, वाइटमिन B12, ओमेगा 3 की कमी हो, तो फिर हम ये महसूस करते हैं कि हमारी जो मेमोरी है वो कुछ कम होती जा रही है। या ये कि जो एक्टिविटी है या एक्सरसाइज है, या फिर ये कि आप वॉक नहीं कर रहे, इस तरह की कोई भी सरगर्मी आपके रूटीन में नहीं है, तो उससे भी हमारी याददाश्त मुतासिर होती है। और एक ऐसी वजह जो कि हम उसे कम नहीं कर सकते, जैसे कि हमारी बढ़ती हुई उम्र है, तो उसके साथ याददाश्त जो है कम होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हमारे ब्रेन का और हमारे जो हिस्सा है उसका बहुत अहम ताल्लुक है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अगर हम अपनी ग़िज़ा में शामिल करें तो फिर हमारी याददाश्त बेहतर होती चली जाती है, हमारी जो ब्रेन हेल्थ है वो भी बेहतर होती चली जाती है। यानी अगर हम अपनी खुराक में वॉलनट्स, एलमंड्स, फिश, ग्रीन वेजिटेबल्स शामिल कर दें, तो वो हमारे ब्रेन को ताकत देती हैं। इसी तरह जंक फूड और बहुत ज़्यादा शुगर वाली जो चीज़ें हैं या जो आप खाने खाते हैं, तो वो हमारे ब्रेन को सुस्त कर देती हैं, और उससे फिर हमारी याददाश्त मुतासिर होती है। बहुत सारी रिसर्चेस की जाती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक रोज़ाना अगर वॉक की जाए, कोई हल्की एक्सरसाइज की जाए, तो वो हमारे जहन को ज़्यादा बेहतर बनाती चली जाती है, क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होती है, तो उससे फिर याददाश्त बेहतर होती है। नींद के दौरान हमारा ब्रेन दिन भर की मालूमात को फाइल करके महफूज करता है, यानी नींद की क्वालिटी बेहतर होनी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें करना यह है कि रोज़ाना आप 30 मिनट की वॉक करें या लाइट एक्सरसाइज करें, और इसी तरह से कोई ना कोई आप जो पज़ल्स हैं या क्रॉस जो वर्ड्स हैं वो आप ज़रूर खेलिए। ज़्यादा पानी पीजिए ताकि हमारा जो ब्रेन है वो हाइड्रेट रहे। सोने और जागने का जो वक्त है वो भी मुकर्रर कीजिए। इसी तरह आप एलमंड्स और जो वॉलनट्स हैं उनको रोज़ाना की खुराक में शामिल कर लीजिए। अब हम ये सोचें, या हमारे जो लिसनर सुन रहे हैं, कि हम रोज़ाना जो है वो नाश्ता जो है वो करते हैं, किस टाइम पर करते हैं। याद रखें कि जो ब्रेकफास्ट है, जो नाश्ता है, हमारे जहन की बैटरी है, जो से चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अभी हम आप सब अपने ब्रेन को टेस्ट करें कि 5 चीज़ों के नाम सोच लीजिए जो आपने कल खाई थी, और अगर आपको याद आ जाए तो फिर आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। तो आइए अभी सब मिलकर एक गहरी सांस लें, 5 सेकंड रुकिए और छोड़ दीजिए। ये छोटा सा अमल है, छोटी सी एक्टिविटी है, मगर हमारे ब्रेन को ताज़ा कर देता है। तो ये है कि हमारी जो जहन की या हमारे दिमाग की जो सेहत है, उसका ताल्लुक सिर्फ पढ़ाई या याददाश्त से नहीं है, बल्कि पूरी ज़िंदगी की एक क्वालिटी से है। इसलिए अच्छी ग़िज़ा, मुनासिब नींद, वर्जिश और फिर ज़हनी सुकून, ये दिमाग के लिए, हमारे ब्रेन के लिए गोल्डन फार्मूला है। तो फिर करना क्या है, याद ही रखना है कि सेहतमंद जहन के लिए रोशन ख्यालात, बेहतर याददाश्त, खुशहाल जिंदगी। और अपने जहन को भी वही, अपने दिमाग को भी वही अहमियत दीजिए जो दिल और जिस्म को देते हैं। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
3: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: Kabhi bhi aur kahin bhi, aap sun sakte hain. FM 107.
5: FM 107.
3: Log into our website, urduradio.qa, or download the app QMC now.

प्यारे बच्चों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ, जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो।

किस बात का कोई तो हल निकालना चाहिए ताकि वो एक बार फिर दोबारा पेट भर के खा सके। फैल्कन ने एक चालाक मंसूबा बनाया। वो झील में रहने वाली मछलियों के पास गया और कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तुम्हें एक बहुत ही अहम बात बताने आया हूँ। किसान जल्द ही इस झील को खाली कर देंगे और यहाँ खेती बाड़ी शुरू हो जाएगी। तुम सबका इस झील में रहना बहुत खतरनाक है, लेकिन फिक्र ना करो, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी झील में लेकर जा सकता हूँ जहाँ तुम सब बहुत महफूज रहोगे। मछलियों ने जब ये बात सुनी तो वो फौरन खौफजदा हो गईं। अगर वाकई ऐसा हो रहा है तो हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। मछलियों ने फौरन फैल्कन की बातों पर यकीन कर लिया था। फैल्कन ने मछलियों को ये बताया था कि वो उन्हें एक बड़ी और महफूज झील में ले जाएगा जहाँ वो हमेशा खुश खुरम रहेंगी। मछलियों ने फैल्कन पर भरोसा किया और उसके साथ जाने को तैयार हो गईं। वो नहीं जानती थीं कि फैल्कन का असल मकसद कुछ और ही था। मगर इस झील में एक और रिहायशी भी था, एक चालाक और जहीन केकड़ा। केकड़ा हमेशा मछलियों की हिफाजत करता रहता था और वो इस फैल्कन की बातों को बहुत गौर से सुन रहा था। केकड़े ने फौरन समझ लिया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। उसने सोचा, फैल्कन ने मछलियों को एक और झील की तरफ ले जाने का वादा किया है, मगर इसकी हकीकत मैं समझ गया हूँ। असल में ये मछलियों का शिकार करना चाहता है और मुझे इसका कुछ तोड़ निकालना होगा। केकड़ा फौरन फैल्कन के पास गया और कहने लगा, अच्छा फैल्कन भाई, मुझे भी इस नई झील में जाना है, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। फैल्कन ने केकड़े को बड़ी गौर से देखा और फिर कहा, केकड़े, तुम भी चलोगे क्या? तुम तो मछलियों से थोड़े से मुख्तलिफ से हो। चलो, मगर कोई बात नहीं, तुम्हें भी ले जा सकता हूँ। फैल्कन ने सोचा कि केकड़ा उसके लिए कोई नया खाना होगा और उसे साथ ले जाने में कोई नुकसान नहीं होगा। फैल्कन ने मछलियों और केकड़े को अपनी पीठ पर बिठा लिया और उन्हें लेकर रवाना हो गया। फैल्कन ने पहले ही सोच रखा था कि वो मछलियों को मार डालेगा, लेकिन केकड़े की ऑब्जर्वेशन बहुत तेज थी। फैल्कन मछलियों को एक ऐसी जगह लेकर जा रहा था जहाँ केकड़े की नजर पुरानी मछलियों की हड्डियों और बकायात पर पड़ी। उसने फौरन समझ लिया कि आखिरकार इस फैल्कन का मकसद क्या है। केकड़ा सोचने लगा, फैल्कन हमें कहाँ ले जा रहा है? ये जगह तो खतरनाक लग रही है। उसने फौरन अपने पंजों को खोला और फैल्कन को काटना शुरू कर दिया। फैल्कन हड़बड़ाया और कुछ समझ नहीं सका, मगर केकड़ा बहुत तेज था। उसने अपने मजबूत पंजों से फैल्कन के गले को पकड़ लिया और अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। फैल्कन ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन केकड़े की ताकत और चालाकी के सामने वो बेबस हो गया। आखिरकार फैल्कन का सांस रुकने लगा और वो बेहोश होकर पानी में गिर पड़ा। केकड़ा फौरन झील की तरफ वापस आया और जो कुछ भी हुआ था मछलियों को सब सच सच बता दिया। मेरे दोस्तों, फैल्कन तुम्हें एक खतरनाक जगह लेकर जा रहा था ताकि वो तुम्हें खा सके, लेकिन मैंने इसकी चालाकी को समझा और उसका मुकाबला किया। फिक्र मत करो, अब तुम सब महफूज हो। मछलियों ने केकड़े का शुक्र अदा किया और कहा, हमने तुम पर भरोसा किया और तुम्हारी जहानत ने हमें बचा लिया। शुक्रिया केकड़े भाई। केकड़ा मुस्कुराकर बोला, याद रखना, कभी भी किसी पर मुकम्मल भरोसा ना करना और हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। तो दोस्तों, ये याद रखें कि जहानत और चालाकी हमारा सबसे बड़ा हथियार होती हैं। मुश्किल हालात में हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, क्योंकि मुसीबत के वक्त आपको आपका तेज दिमाग ही बचा सकता है।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है। किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासर होती है। इकॉनमी के बुनियादी तसव्वुरात और वैल्यूज से मुतालिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समाप्त कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं नाज़िया फ़ेवानो 7 से एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एक बड़ी कमाल की इकोनॉमिक टर्म पर और ये टर्म है एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी, ओके। सो एक्सटर्नैलिटी का मतलब है वो असरात या इफेक्ट्स जो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के नतीजे में दूसरों पर असर डालते हैं, लेकिन इन्हें मार्केट मैकेनिज्म्स जैसे प्राइसेस या ट्रांजैक्शन के जरिए अकाउंट नहीं किया जाता। जी हाँ, एक्सटर्नैलिटीज दो तरीके की होती हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज वो है जहाँ किसी एक्टिविटी का पॉजिटिव असर होता है और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज वो है जहाँ एक्टिविटी के नेगेटिव असर होते हैं। और इसके कई पहलू भी हैं जिन पर नजर डालना बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है क्या? जब किसी एक्टिविटी के नतीजे में दूसरे को फायदा होता है जिसे वो खुद नहीं चाहता या एक्सपेक्ट नहीं करता, तो इसे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कहते हैं। ये सोसाइटी या इकोनॉमी के लिए काफी अच्छी है। वहीं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, ये उन असरात को दिखाती है जो किसी एक्टिविटी से होते हैं जो दूसरे लोगों के लिए नुकसान का सबब बनते हैं। ये अक्सर यूजर्स या प्रोड्यूसर्स के लिए नहीं होते, लेकिन ये उन लोगों पर असर डालते हैं जो इस एक्टिविटी के मुकाबले में होते हैं। ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए हार्मफुल भी होती है। एक्सटर्नैलिटीज का इस्तेमाल इकोनॉमिक्स में इन्हें समझने और इन्हें हैंडल करने के लिए किया जाता है। इसका आसानी से समझना और सीखना जरूरी है। मैं कह सकती हूँ कि ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं। जब एक्सटर्नैलिटीज होती हैं तो मार्केट आउटकम्स एफिशिएंट नहीं होते, क्योंकि प्राइसेस वो सब कुछ रिफ्लेक्ट

नहीं करती जो कॉस्ट या बेनिफिट्स का असल मकसद होता है। पर देखा जाए तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है एक्सटर्नैलिटीज का, और इसका इम्पैक्ट सीधा मार्केट फेलियर पर होता है। जब पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज प्रेजेंट होती हैं, तो ये मार्केट फेलियर का सबब बनती हैं। इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज का एलोकेशन एफिशिएंट नहीं होता, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक सकता है। वहीं दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू है सोशल वेलफेयर। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज जैसे पोल्यूशन हेल्थ पर बुरा असर डालते हैं, जिससे लोगों के वेलफेयर पर बुरा असर पड़ता है और इस पोल्यूशन का वो शिकार हो जाते हैं। वहीं गवर्नमेंट को किस तरह की पॉलिसीज को इशू करना है, हैंडल करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी पॉलिसी इम्प्लीकेशंस को भी कंसिडर करना जरूरी है। रेगुलेटरीज मेजर्स, टैक्सेस, सब्सिडीज के जरिए गवर्नमेंट एक्सटर्नैलिटीज को कंट्रोल कर सकती है। इसका मकसद इकोनॉमिक एफिशिएंसी को प्रमोट करना है। चलिए कुछ एग्जांपल देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी पोल्यूशन। फैक्ट्री के प्रोडक्शन से निकलने वाला पोल्यूशन एक क्लासिक एग्जांपल है। जब कोई फैक्ट्री एयर या वाटर को पोल्यूशन से भर देते हैं, तो इससे उन लोगों को नुकसान होता है जो ना फैक्ट्रीज के वर्कर्स हैं, उन्हें तो होता ही होता है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी नुकसान होता है। उन्हें इस प्रोसेस से कोई फायदा नहीं होता। ये लोग रेस्पिरेटरी डिजीजेस या फिर पानी की कमी का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए ये पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंट पर बुरा असर डालते हैं। गवर्नमेंट्स अक्सर इस पर टैक्स लगाते हैं या फिर स्टैंडर्ड्स बनाते हैं ताकि इस एक्सटर्नैलिटी को मैनेज किया जा सके। वहीं पर नेगेटिव की तो बात हो गई कि किस तरह से फैक्ट्री का धुआं जो है वो लोगों की हेल्थ को मुतासिर कर रहा है। वहीं दूसरा एक और पॉजिटिव है, वो है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। इस पे भी बात कर लेते हैं, इसे भी मैं आपको समझाती हूँ। देखो, वैक्सीन लगवाने से सिर्फ वैक्सीन वालों को ही फायदा नहीं होता, बल्कि उससे उन लोगों की भी हेल्थ बेहतर होती है जो वैक्सीन लगवा रहे हैं। इसका असर जो है वो बड़ा ही कॉमन है और पॉजिटिव है, क्योंकि इससे किसी भी कंटेजियस डिजीज के फैलने का खतरा कम होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट सब्सिडाइज वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा सके, और ये कहलाती है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, समझे। वही नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी और ट्रैफिक कंजेशन की भी बात करते हैं। जब कोई इंसान गाड़ी चलाता है और वो कंजेशन का सबब बनता है, तो इससे दूसरे लोगों के सफर और टाइम और उनकी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। ये ट्रैफिक जैम्स जो हैं वो प्रोडक्टिविटी को भी अफेक्ट करते हैं, क्योंकि लोग बेकार में वक्त जाया करते हैं। इस तरह के जैम को या कंजेशन को कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के इनिशिएटिव्स को शुरू करती है। जैसे अगर आप में से कुछ लोग, अगर आपका दिल्ली से ताल्लुक है, मेरा मतलब है दिल्ली से ताल्लुक है, तो आपको पता ही होगा कि एक टाइम में गवर्नमेंट ने जो था ऑड और इवन नंबर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। हाँ, ये इस तरह के एक्सटर्नैलिटीज के असरात को कम करने के लिए ही किया था, क्योंकि लोगों का मानना है कि वो एक अच्छा खासा टाइम जो है वो ट्रैफिक में ही गुजार रहे हैं। मतलब आते जाते इतना टाइम उनका लग रहा है कि उनकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं किल हो रही है, जिसके बाद गवर्नमेंट वॉज कम्पेल्ड टू टेक दिस काइंड ऑफ डिसीजन, जो कुछ वक्त तक चला भी फिर अपना वापस आ गए। अच्छा, एक और भी है, आपको एग्जाम्पल देती हूँ। दोस्तों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से फराहम की गई एजुकेशन सिर्फ स्टूडेंट्स तक नहीं रुकती, बल्कि पूरी कम्युनिटी को फायदा होता है। जब लोग एजुकेटेड होते हैं तो यहाँ पर सोसाइटी की प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और सोशल स्टेबिलिटी बढ़ती है। गवर्नमेंट अक्सर एजुकेशन को सब्सिडाइज करते हैं ताकि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले और सब के सब पढ़ सकें। ये भी पॉजिटिव है, जो कि बड़ा अच्छा है। वैसे इसके सॉल्यूशंस भी हैं। कुछ एक्सटर्नैलिटीज के सॉल्यूशंस पर भी बात करते हैं, और सबसे पहला सॉल्यूशन इज गवर्नमेंट रेगुलेशंस। जी हाँ, गवर्नमेंट एक्सटर्नैलिटीज को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेशंस इम्पोज कर सकती है, जैसे स्टैंडर्ड्स फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एक्सेट्रा, और करती भी है। वहीं पर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज पर टैक्सेस इम्पोज करके, जैसे कार्बन टैक्स, और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी पर सब्सिडीज देकर इसके असरात को मैनेज करती है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज के एक अहम हिस्सा बनते हैं, जिन्हें टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता है। वहीं पर कुछ मार्केट बेस्ड सॉल्यूशंस भी

अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। भारत के महाराष्ट्र स्टेट के पुणे शहर में एक यतीम खाना श्रीवास्तवा ऑर्फनेज के बाहर एक डस्टबिन के अंदर एक नन्ही सी जान मिली। ये बात है 13 अगस्त 1979 की, और उस मासूम को उसके अपनों ने पैदा होते ही कूड़े के ढेर में फेंक दिया। यतीम खाने के मैनेजर ने उस प्यारी सी लड़की का नाम लैला रखा। उसी दौरान एक अमेरिकन कपल हेरेन और स्यू इंडिया आए थे एक लड़के को गोद लेने। उनके पास पहले एक बेटी थी, अब वो एक बेटा चाहते थे। लेकिन जब स्यू की नजर छोटी सी लैला की चमकदार भूरी आंखों और मासूम चेहरे पर पड़ी तो उनका दिल उसके लिए बेचैन हो गया। स्यू ने फैसला कर लिया कि वो लैला को ही गोद लेना चाहती है। कानूनी कार्रवाई के बाद ये फैमिली लैला को अपने साथ अमेरिका ले गए। स्यू ने उस बच्ची का नाम बदलकर लीज रखा। कुछ साल बाद ये फैमिली हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में बस गए। लिज के वालिद ने उन्हें क्रिकेट सिखाई। पहले वो सिर्फ पार्क में खेला करती थी, फिर गलियों में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने लगी। क्रिकेट के लिए इस लड़की का जुनून बेमिसाल था। इस सफर के दौरान उन्होंने अपनी तालीम भी मुकम्मल की। लिज मेहनत करती रही, मौके मिलते रहे, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाज उनके बल्ले की आवाज बनी, और फिर उनका रिकॉर्ड सब कुछ बताने लगा। अगर क्रिकेट की बात करूं और क्रिकेट के करियर की बात करूं तो लिज का सफर 1997 में पहली बार उन्होंने न्यू साउथ वेल्स के लिए खेला, और चार साल बाद यानी 2001 में ऑस्ट्रेलिया के लिए पहला ODI इंटरनेशनल, ठीक दो साल बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए पहला टेस्ट मैच, और फिर अगेन दो साल के बाद T20 मैच में भी उन्होंने हिस्सा लिया। अगर कैरियर स्टैट्स के बारे में बात करूं तो 8 टेस्ट मैचेस में लिज ने 416 रन स्कोर किए और 23 विकेट्स अपने झोली में डाली, और 125 ODI इंटरनेशनल्स में उनका रन

था 2728 और साथ साथ 146 विकेट सो ओवरऑल शी वाज अ वेरी वेरी गुड ऑलराउंडर और T20 में भी उन्होंने हिस्सा लिए हैं और जो यू नो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस को उसी लेवल तक ही शोड दैट ही वाज ट्रूली अ क्रिकेटर मेड फॉर ऑल थ्री फॉर्मेट्स 54 T20 मैचेस में 769 रन्स और 60 विकेट्स लिज स्थालेकर पहली खातून क्रिकेटर बनी जो ओडीआई में 1000 रन्स और 100 विकेट्स लेने वाली ऑलराउंडर थी जब आईसीसी ने अपनी रैंकिंग सिस्टम शुरू की तब लिज दुनिया की नंबर वन ऑलराउंडर बनी ऑस्ट्रेलिया की कप्तान तो बनी और 4 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया जिसमें ओडीआई और T20 फॉर्मेट शामिल है मजे की बात है 2013 में ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता और सबको चौंका कर लिज ने अगले ही दिन इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने इस वुमेन क्रिकेटर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया एक यतीम लड़की जो डस्टबिन में छोड़ी गई थी आज दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई है ये थी लिज स्थालेकर की कहानी एक लेजेंड एक इंस्पिरेशन और एक मिसाल Stay tuned for more inspiring sports stories on FM 107.

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। सामने किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस हलके में आप सबको तलहा अशरफुज़्ज़मान की जानिब से सलाम व तहियात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो शायद हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा तो है, लेकिन हम इस पर कभी संजीदगी से गौर नहीं करते। सामने किराम, हम में बास तो ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी मकसद के मुताबिक गुजार रहे हैं, लेकिन अक्सरियत की हालत ये है कि वो सिर्फ दूसरों को खुश करने, दूसरों की तवक्कात पूरी करने या दूसरों को मुतासर करने में अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व कर देते हैं। नफ्सियात की ज़बान में इसे पीपल प्लीजिंग कहा जाता है, और इस्लामी तरबियत की ज़बान में इसका इलाज इखलास, हिकमत और तवाज़ुन के ज़रिए किया जाता है। इस सिलसिले में एक नहायत गहरी बात कही गई है कि अगर आपकी ज़िंदगी का अपना कोई मकसद नहीं तो आप पूरी ज़िंदगी दूसरों के मकासद पूरे करने में गुजार देंगे। अगर इंसान के पास अपनी ज़िंदगी का वाज़ह विजन न हो तो वो दूसरों के मंसूबों का हिस्सा बन जाता है। अगर ख़ानदान में आपके अपने उसूल न हो तो आप दूसरों की तवक्कात के मुताबिक जीना शुरू कर देते हैं। अगर आपके पास अपनी तरजीहात न हो तो आपका वक्त, आपकी सलाहियत, आपकी तवानाई और हत्ता कि आपके जज्बात भी दूसरों के इस्तेमाल में आ जाते हैं। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी का मकसद वाज़ह करे। अल्लाह फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

मतलब ये बना कि इंसान का सबसे बड़ा मकसद अल्लाह की इबादत और उसकी रजा हासिल करना है। जब ये मकसद वाजे हो जाए तो फिर इंसान हर ताल्लुक, हर कुर्बानी, हर मोहब्बत और हर खिदमत को उसी मीज़ान में परखता है। समय क्रम एक अहम पहलू पर गौर कीजिए कि हमारी ज़िंदगी में कुर्बानी भी है, वक्त भी है, मोहब्बत भी है, खिदमत भी है, लेकिन सबसे बढ़कर सबसे अहम सवाल ये है कि ये सब किसके लिए। इस बात में कोई शक नहीं कि हर शख्स हमारी कुर्बानी का मुस्तहिक नहीं होता, हर ताल्लुक हमारी पूरी ज़िंदगी का मुतालबा नहीं करता, हर इंसान को खुश करना मुमकिन भी नहीं और ज़रूरी भी नहीं। इस्लाम ने हमें इसहार सिखाया मगर ख़ुद को मिटा देना नहीं सिखाया, रहम सिखाया मगर जुल्म बर्दाश्त करते रहना नहीं सिखाया, आफू सिखाया है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस्लाह के बगैर हर गलती को नज़रअंदाज कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। आज के दौर में एक नई बीमारी पैदा हो गई है जिसे हम कह सकते हैं वैलिडेशन सिंड्रोम, यानी हर वक्त दूसरों से अपनी कदर मनवाने की ख्वाहिश। कोई महंगे ब्रांड सिर्फ इसलिए पहनता है कि लोग मुतासर हों, कोई हर जुमले में चंद इंग्लिश वर्ड्स इसलिए इस्तेमाल करता है कि लोग उसे स्मार्ट समझें, कोई अपनी जाहिरी शक्ल बदलने में लगा है ताकि लोग तारीफ करें, कोई आला डिग्री लोगों से ये सुनने के लिए हासिल करता है कि वाह कितने कामयाब हैं। समय निकराम ये सब अगर अल्लाह की रजा से खाली हो जाए तो इंसान एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जाता है जिसकी कोई इंतहा नहीं, क्योंकि लोगों को खुश करने की कोई हद नहीं होती। आज एक शख्स खुश होगा कल दूसरा नाराज, आज तारीफ मिलेगी कल तंकीद होगी। अगर इंसान अपनी खुशी लोगों की राय से वाबस्ता कर ले तो वो कभी सुकून नहीं पा सकता। कुरान हमें बार बार एक उसूल सिखाता है कि असल इज्जत अल्लाह के हाथ में है, असल इज्जत अल्लाह के साथ देने में है। मन काना युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीअ। इस आयत का खुलासा यही है कि अगर इज्जत चाहिए तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह जैसे कहते हैं वैसे करो, अगर मकाम चाहिए तो अल्लाह की नज़दीकी हासिल करो, अगर कदर चाहिए तो अल्लाह की रजा में तलाश करो। अब सवाल ये है, इसे हम एक खूबसूरत नुक्ता भी कह सकते हैं, इंसान के पास सबसे कीमती सरमाया क्या है? माल नहीं, शोहरत नहीं, वक्त? हाँ, वक्त, टाइम इज़ लाइफ, वक्त ही ज़िंदगी है। जिस पर आप अपना वक्त खर्च करते हैं हकीकत में आप अपनी ज़िंदगी उसी पर खर्च कर रहे होते हैं, लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वक्त का हिसाब करें। क्या हमारा बेहतरीन वक्त हमारे वालिदैन को मिल रहा है? क्या हमारे बच्चों को हमारी बेहतरीन तवज्जो मिलती है? या फिर हम अपनी सारी मुस्कराहटें, सारी तवानाई और सारी मोहब्बत बाहर तकसीम करके घर को सिर्फ थकन ही थकन वापस लेकर आते हैं? समझ कर हम ये आज के माशरे का एक बड़ा अलमिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने अहले खाना के लिए बेहतरीन हो। जिस हदीस में बहुत बड़ा मेयार दिया गया। हालांकि अगर आज आप देखें तो बाज़ लोग दफ्तर में बहुत खुश अखलाक होते हैं, दोस्तों में इंतहाई मकबूल होते हैं, लेकिन घर वापस आते ही खामोश, चिड़चिड़े और सख्त मिजाज बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी तमाम जज्बाती तवानाई बाहर खर्च कर चुके होते हैं, घर को वो सिर्फ और सिर्फ आराम की जगह समझते हैं, खिदमत की जगह नहीं।

वो पूरी तवज्जो से उस लम्हे का लुत्फ लेने के बजाय ये देख रहा होता है कि सामने वाला कब हाथ छुड़ाने की कोशिश करेगा। तो उंगली में मामूली सी हरकत महसूस हुई और फौरन हाथ छोड़ दिया, कहीं वो मुझे रद्द न कर दे। यानी इंसान पहले ही मुमकिन रद्द अमल से बचने लगता है। ये कैफियत इस बात की निशानी है कि हमारे जज्बात मोहब्बत के बावजूद भूखे हैं। एक देहाती से पूछा गया, तुम्हारे ज्यादा करीब कौन है, तुम्हारा भाई या तुम्हारा दोस्त? उसने जवाब दिया, मेरा भाई, बशर्ते कि वो मेरा दोस्त भी हो। यानी खूनी रिश्ता इंसान को करीब तो जरूर करता है, लेकिन कल्बी दोस्ती इस कुर्बत को खूबसूरत बनाती है। अगर लोगों से पूछा जाए कि आप अपने वालिद के साथ सफर करना पसंद करेंगे या दोस्त के साथ, अक्सर ये कहेंगे भाई दोस्त के साथ। पूछा जाए मोहब्बत किससे ज्यादा है, जवाब होगा वालिद से। फिर दोस्त के साथ सफर ज्यादा आरामदेह क्यों महसूस होता है? इसलिए कि मोहब्बत मौजूद है मगर ताल्लुक सही अंदाज से तामीर नहीं हुआ। इंसान वालिद से मोहब्बत करता है लेकिन उनके साथ खुद को आज़ाद महसूस नहीं करता। वो जानता है कि मेरे वालिद हैं मगर ये एहसास नहीं कि मैं उनके सामने अपना दिल भी खोल सकता हूँ। बाज़ ख़ानदानों में मसाइल का इलाज नहीं किया जाता, बस उन्हें छुपा दिया जाता है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे कोई कालीन उठाकर सारा कोड़ा नीचे डाल दे, फिर कालीन बिछा कर कहे कमरा साफ हो गया। अरे भाई कमरा तो साफ नहीं हुआ, गंदगी सिर्फ नजरों से ओझल हुई है। इसी तरह बहुत से रिश्तों में नाराजी, शिकायत, महरूमी और दिल आजारी खत्म नहीं होती, बस खामोशी के कालीन के नीचे दबा दी जाती है। मसला गायब नहीं होता, छुप जाता है। ऐसे ताल्लुकात में इंसान मशवरा नहीं कर सकता, तंकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरे के जाविया नजर को सुन नहीं सकता और नहीं फितरी अंदाज में रह सकता है। वो अपने ख्वाब नहीं बताता, अपने मंसूबे नहीं बताता, अपनी परेशानी बयान नहीं करता किसी को, बल्कि हर लफ्ज बोलने से पहले सोचता है, अरे ये बात मेरे खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं होगी, बाद में मुझे ताना तो नहीं दिया जाएगा, मेरी कमजोरी का मजाक तो नहीं बनाया जाएगा। समय इकराम, जहाँ इस तरह का खौफ हो वहाँ कुर्बत बाकी नहीं रहती। अब सवाल ये है कि ताल्लुक को गहरा कैसे किया जाए? ताल्लुकात की पहली सतह हकायक की सतह है। मसलन किसी किताबी नुमाइश में एक अजनबी के साथ बैठे हों तो गुफ्तगू मौसम, जगह, किताबों या इंतजाम से शुरू होगी, ये मालूमात और हकायक की सतह है। लेकिन ताल्लुक को एक कदम आगे ले जाना हो तो इंसान राय की सतह पर आता है। आप सवाल करते हैं, आपके ख्याल में इस साल की नुमाइश गुज़श्ता साल से बेहतर है? अब सामने वाला सिर्फ मालूमात नहीं बता रहा बल्कि अपनी सोच का एक हिस्सा आपके सामने रख रहा है। अगर आप उसकी राय को तवज्जो से सुने, उसके नुक्ता नज़र को समझें और फौरी तौर पर रद्द न करें तो ताल्लुक गहरा होने लगता है। लेकिन जैसे ही हर राय को गलत साबित करने की कोशिश की जाए, ताल्लुक दोबारा सतही हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता। अपने वालिदैन, शरीक हयात, बहन भाइयों और बच्चों से ताल्लुक गहरा करने का एक मौसर जरिया ये है कि उनसे राय ली जाए। मशवरा दिल जीतने का एक खामोश फन है। जब आप किसी से मशवरा लेते हैं तो आप गैर महसूस अंदाज में उसे कई पैगाम देते हैं, यानी गोया कि मैं आप पर एतमाद करता हूँ, आप मेरे करीब हैं, आपकी अकल और तजुर्बा मेरे लिए अहम है, आप मेरे लिए महफूज इंसान हैं। तो ये गोया के मशवरा महज कोई रस्मी अमल नहीं, ताल्लुक को इज्जत देने का जरिया है। कभी आप किसी अफसर या मुदीर के पास कोई दरख्वास्त लेकर जाते हैं और वो कवायद के तहत इनकार कर देता है। कभी कभार आप फौरन गुफ्तगु ख़त्म करने के बजाय ये कह देते हैं कि सर कवायद को एक तरफ रख कर ज़ाती तौर पर आप मुझे क्या मशवरा देंगे, मेरी जगह होते तो क्या करते। मुमकिन है इसे एक सवाल से उसका लहजा बदल जाए, वो अपनी नशिस्त दुरुस्त करे, रस्मी अंदाज से निकल कर इंसानी अंदाज में बात करने लगे। क्यों? क्योंकि आपने उसे महज एक मनसब नहीं बल्कि साहिब राय इंसान के तौर पर मुखातब किया है। तो ज़रूरी है कि अपने वालिद से मशवरा कीजिए, वालिदा से राय लीजिए, खा आखिरकार आप वो राय इख्तियार न भी करें। मशवरे का फ़ायदा फैसले में नहीं बल्कि शराकत का एहसास भी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इबहाम ये शैतान की खेती है, रिश्तों में बेखबरी, पोशीदगी और गैर ज़रूरी इबहाम ये ख़तरनाक होता है। आपको मालूम ही नहीं कि दूसरा कहाँ है, किस कैफियत में है, किन मुश्किलात से गुजर रहा है, माली हालात क्या हैं, किस से राबते में है, क्या सोच रहा है। फिर इंसान खाली जगहों को अपने अंदाज़ों से पुर करता है और जहाँ हकायक ना हो वहाँ बदगुमानी आसानी से जगह बना लेती है। इसलिए कहा जाता है कि रिश्तों में इबहाम शैतान की खेती है। वाज़े बातचीत, मुनासिब मालूमात और दिल की कैफियत

0: FM 107. Time check. राइट दोस्तों, टाइम फॉर द टाइम चेक. और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 6:01. सच्ची बोलूं तो इतनी तड़प, इतनी बेचैनी, ऐसा लगा कि थोड़ी देर के लिए मेरा सच में दिल ही ना रुक जाए. ये कैफियत क्या कभी आपके साथ हुई है?
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ, सिर्फ एफएम 107 पर. दिल से देसी.
0: वेलकम बैक गाइस, सलाम आदाब, अ वेरी गुड मॉर्निंग. क्या हाल चाल है? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग खैरियत से होंगे. मैं हूं नाजी आपके साथ पूरे 3 घंटे आपके साथ. इसी शो में हमें और आपको टिककर रहना है, यानी 6 से 9 समर मॉर्निंग्स में. और मैं जो कहने जा रही हूं ना, वो मैं आज आपको बताऊंगी कि बात भाई कुछ इस तरह से है कि मैं इतनी तड़प, इतनी बेचैनी के साथ भाई साहब को ढूंढ रही थी. आई मीन टू से सल्लू भाई को नहीं, हाँ मैं अपने, मतलब जो मेरे भाई हैं, मेरा कहने का मतलब है फोन महाराज, उन्हें मैंने सुबह सुबह ढूंढा और उनके लिए ही इंट्रो था. पता है सुबह सुबह उठने के बाद पूरे 10 मिनट तक फोन भाई साहब को मैंने तड़प तड़प के घर में शिद्दत से ढूंढा कि आप हैं कहाँ, आप हैं कहाँ. और मुझे एहसास हुआ कि जैसे हमेशा मैं आगे कहती हूँ ना कि अपनी मॉर्निंग्स की शुरुआत यू नो हंस के कीजिए, मुस्कुरा के कीजिए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए. मुझे समझ में आ गया भाई, मॉर्निंग की अच्छी शुरुआत तभी हो सकती है जब आपके हाथ आपका फोन लग जाए. अगर ना मिले तो क्या कैफियत होती है ये मैं ही बता सकती हूँ. यानी सबसे पहली मुलाकात आपकी किसी से हो, घर में ना हो, बाहर आके किसी से हो ना हो, फर्स्ट मुलाकात तो भैया फोन से होनी ही चाहिए. ऑडियो से तो खैर मेरी तो ये कैफियत थी कि मुझे फोन नहीं मिल रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आज का दिन मेरा कैसे जाएगा, क्या मैं अपना शो भी कर पाऊंगी, क्या मैं ऑफिस भी पहुंच पाऊंगी टाइम पे कि नहीं. तो एक और मुझे यहाँ से लेसन मिला कि सबसे पहले रात में सोने से पहले आप कोई चीज़ रखें ना रखें, अपना फ़ोन सही सलामत ठीक ठाक अपनी प्रॉपर जगह पे रखें, जिससे सुबह उठ के आपका टाइम एकदम वेस्ट ना हो. तो ये तो मेरी शुरुआत हुई थोड़ी सी ढीली, टगमगाती हुई, ढूंढती हुई, तड़पती हुई. आपकी मॉर्निंग की शुरुआत कैसे हुई है मुझे बताइए 6:22:107 पर, या फिर आप मुझे अभी तो मैसेज ही कीजिए गुड मॉर्निंग वाले. थोड़ी देर बाद जो है वो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं. कॉल करने के लिए नंबर है 6:43:6:43:77. आज भी हमारे इस शो में बहुत सारी बातें होंगी, इंटरेस्टिंग बातें हैं, टॉपिक भी है, वीकेंड है, एंड ऑफ कोर्स वीकेंड के हिसाब से आज का टॉपिक ही मैंने सोचा है. तो ये भी होगा अमेजिंग से आपके लिए जो सॉन्ग्स हैं वो भी आज मैं प्ले करने वाली हूँ. एंड मेक श्योर आज सुबह ही प्रॉमिस कर लेते हैं एक दूसरे से कि आज हमें जो अपना गेम प्रॉपर टाइम पर स्टार्ट करना है. लेट्स टेक एन ओथ कि बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे इसे स्टार्ट करेंगे एंड अच्छे खासे लोगों के साथ गेम में भी जुड़ेंगे. बट बिफोर दैट जल्दी से झटपट से आप आ जाइए 6:22:107 पर. यहाँ पे मॉर्निंग खेल लेते हैं, एक दूसरे का हाल चाल जान लेते हैं यहाँ पर. और बस अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे तो फिर और बहुत सारी बातें आपके साथ और आपकी बातें भी होनी चाहिए मेरे साथ.
2: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है. इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं. इरशादे खुदावंदी है, वज़कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो. और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार एफ एम 107 पर.

من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس.

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله.

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك

0: की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है।
1: अपने शरई मसाइल के हल, रोजमर्रा जिंदगी से मुतालिक दीनी रहनुमाई, अहले इल्म के मुदल्लल जवाबात और मुफीद इल्मी गुफ्तगू सुनने के लिए समात कीजिए नूरे इस्लाम। तर्तीबो पेशकश फुरकान शाहिद कासमी, हर जुमा शाम 4 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
2: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
1: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: दोस्तों, गर्मियों के मौसम में जब गर्मी अपनी शिद्दत पर होती है, ऐसे वक्त में फायर इंसिडेंट्स का रिस्क भी बढ़ जाता है, इसलिए रूफ टॉप्स या छत की सेफ्टी पर खास तवज्जो देना जरूरी है। अक्सर बिल्डिंग्स की छतों को लोग एक्स्ट्रा सामान रखने की जगह समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये आदत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कोई भी सामान, खास करके फ्लेमेबल मटेरियल्स जैसे के पुराने कार्टन्स, प्लास्टिक, कपड़े या पेट्रोल पेंट के डब्बे आग लगने की सूरत में बहुत जल्द आग या फ्लेम्स को फैला देते हैं। रूफटॉप या अपनी छत को साफ रखना और वक्तन फावक्तन उसको देखते रहना बहुत जरूरी है। हमेशा कोशिश करें कि छत पर फकत जरूरी ही सामान रखा जाए और वो भी ठीक तरीके से। अगर वायरिंग या इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स छत पर हैं तो उनको भी चेक करना लाजमी है, क्योंकि पुरानी या खराब वायरिंग से भी स्पार्क होकर आग लग सकती है। रेगुलर इंस्पेक्शन एक ऐसी आदत होनी चाहिए जो हर बिल्डिंग मैनेजमेंट या हर फर्द अपने घर पर लाजमी बनाए। महीने में कम से कम एक मर्तबा अपनी छत को जरूर चेक करें। सामान की सफाई करना और किसी भी अनयूजुअल स्मेल, वायर या गर्म होने वाले इक्विपमेंट्स को देखना बहुत मददगार साबित होता है। एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये भी बात याद रखें कि एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये इंश्योर करें कि फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेसिबल हो, उसकी एक्सपायरी डेट चेक हो और हर वक्त काम करने की पोजीशन में हो। ये सब छोटी छोटी एहतियात आपकी और आपके आसपास रहने वालों की जिंदगी को महफूज बनाती हैं। विदारत दाखला का कहना है कि याद रखें, आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सोशल जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आपकी एहतियात से दूसरे लोग भी महफूज रहते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: हाँ जी हाँ जी, वापस आ चुके हैं. वेलकम बैक, अ वेरी गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. मैं हूँ नाजिया आपके साथ 6:20 ऑन द क्लॉक. और कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं. सबसे पहले हमें एक मैसेज आया है सऊदी अरेबिया से, और ये है मुजाहिद जी. गुड मॉर्निंग कहते हैं और हमें वहाँ से सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली मैसेज. और बहुत अच्छा इन्होंने जो है वो अपना ब्रेकफास्ट भी मेरे साथ शेयर किया है. आप पराठे कह रही थी? नहीं, मैं तो कह रही थी कि भाई सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना सुबह उठ के, वो थी एक तड़प थी. वो तड़प थी कि जब मुझे मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा था, तो बस आप सोच सकते हैं किस तरह की कैफियत से मैं जो हूँ वो गुजरी हूँ. तो अपनी सारी चीज़ें रात में अगर हम रेडी करके सब कुछ रख लें तो कितना आसान हो जाए ना हमारे लिए. ये मैसेज था, ये एक इंपॉर्टेंट लेसन था जो मैंने कम से कम लर्न किया. और मैं चाहती हूँ कि आपके साथ इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए. जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फॉर द मॉर्निंग, वो आप थोड़ा सा रात में अगर टाइम मिल जाता है, हालांकि कहाँ ही मिलता है पता है, हम सब इतने बिजी होते हैं, थक के आके पड़ जाते हैं क्या चीज़ें कब कहाँ रखें. लेकिन हाँ, अगर ऑर्गेनाइज्ड चल ही रहे हैं हमेशा तो इतना मसला नहीं होता. खैर, यहाँ पे सलाम कहते हैं, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ आपकी अच्छे से मॉर्निंग जा रही होगी. जी जी, मेरी मॉर्निंग बहुत अच्छी जा रही है आप लोगों के साथ. और मैं भी उम्मीद कर रही हूँ कि आपकी मॉर्निंग की भी शुरुआत बहुत ही अच्छी और हाई नोट पर हुई होगी. यहाँ पर अशरफ हमारे साथ जुड़ गए हैं. सलाम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? आप ठीक हैं खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ. उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे. सलाम एमडी बशीर जी ने ना जिया इस तरह से लिखा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है. अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे. बहुत ही प्यारा नाम, ना अलग है और जिया अलग तरीके से लिखा, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा है. अच्छा, इसके साथ है तौफीक जी का मैसेज अल वक्रा से हमें सुनते हुए. गुड मॉर्निंग एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे, यू टू हैव अ ग्रेट डे अहेड. वाओ, कुछ फूल भी भेज दिए तौफीक जी. ये बताइएगा ये आप ही हैं क्या? आज मैंने फर्स्ट टाइम तौफीक जी को देखा. अच्छा, आप ऐसे होते हैं? मतलब क्या होता है ना, जब हम बात बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे जहन में एक अलग ही पिक्चर पोर्ट्रेट होती है. बट माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे फ्लावर्स और माशाल्लाह आपकी ज़बरदस्त सी पर्सनालिटी. थैंक यू. और ज़बरदस्त सा मैसेज एक और मुझे यहाँ पर है, एंड इनका नाम है अहमद. गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद कर रही हूँ आप भी खैरियत से होंगे. एंड इसके अलावा यहाँ पर मैसेज है, नाम नहीं पता. गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग. हमें मैसेज है, इनका भी हम चेक कर लेते हैं. गुड टिप्स टू एनर्जाइज मॉर्निंग स्टार्ट्स. और कादिर अब्दुल हादी जी, थैंक यू सो मच. अभी तो शुरुआत ही हुई है कादिर जी, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आना बाकी हैं. अच्छा, अभी गुड मॉर्निंग कहते हैं और सारी टीम को गुड मॉर्निंग का यूसुफ शमीम जी ने. और आई थिंक आज का जो दिन है, बस यही दिन था जो मैं इंतज़ार कर रही हूँ. आज है हैप्पी फ्रेंडशिप डे. यस, ये दिन इन्होंने मुझे बता दिया है, दैट्स नाइस. और तौफीक जी ने कहा है कि हाँ जी, ये मैं ही हूँ. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी आपकी पिक्चर. ओ, समबडी इज हैविंग समथिंग वेरी हेल्दी. देखो जी, यहाँ पर जो है कादिर अब्दुल हादी जी हैं, आज का उनका ब्रेकफास्ट है. भाई मुझे ये समझा दो, सुबह सुबह ये एवोकाडो कैसे खा कैसे पाते हैं आप? कैसे खा पाते हैं? या ये सोच के खाते हैं, देखो चिया सीड्स भी हैं, एप्पल भी है, देन इन्होंने जो है ब्राउन ब्रेड्स का इस्तेमाल किया है. और एक तो है ही इनके लिए, इतना हेल्दी और इतना टेम्पटिंग. बस ये, बस मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो है ना पिक्चर्स में ना, तो इतना टेम्पटिंग, इतना अच्छा लगता है कि जेन्युइनली भी उतना ही इंजॉय किया जाता है. व्हेन यू गाइस ईट दिस, बताइएगा प्लीज, बी ऑनेस्ट. हाँ बिल्कुल ऑनेस्टली मुझे बताइएगा कि आप वाकई आप उतना ही इंजॉय करते हैं. एंड खलील पराचा जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए. सलाम मैडम, वालेकुम अस्सलाम, एंड योर प्रोग्राम गोइंग गुड माशाल्लाह. ओहो, थैंक यू सो मच, इट ट्रूली मीन्स अ लॉट. इसके साथ एक और मैसेज है और ये भी हमें सऊदी अरेबिया से है. ये हमारे साथ हैं शाहिद जी. गुड मॉर्निंग कहते हैं मैडम, यहाँ भी आगे तो कुछ समझ पता नहीं. थोड़ा सा वापस से आप मुझे भेजिए या फिर मुझे वॉइस नोट भेजिए. कुछ तो उन्होंने लिखा है बट एकदम समझ में नहीं यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं. कुछ तो कहना चाह रहे हैं सऊदी अरेबिया के हवाले से. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा वॉइस नोट भेजिए तो मुझे समझ में आएगा. ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने एग्जैक्टली लिखा क्या, क्योंकि जो लिखा है वो तो कुछ ऐसे पढ़ने लायक जैसा नहीं समझ में आ रहा है, तो खैर बताइए मुझे. और चलिए जब तक आप लोग मुझे वॉइस नोट या मैसेजेस भेज रहे हैं, तब तक मैं अपने मौसम भाई की तरफ आ जाती हूँ. और आपको घर से तो निकलना ही निकलना है, तो मुझे लगा क्यों ना एक इम्पॉर्टेंट हेडअप आपके लिए हो जाए. तो आज जो है वो दोहा में सूरज निकलेगा, ऑफकोर्स निकलेगा, लेकिन थोड़े थोड़े बादल भी रहेंगे. और जो लोग अर्ली राइजर्स हैं, जो सुबह सुबह उठ ही जाते हैं, उन्होंने तो देखा होगा कि आज उतनी ज़बरदस्त वाली धूप नहीं थी. इट्स लाइक पार्शली क्लाउडी. और सनराइज़ की बात करूँ तो आज सुबह सनराइज़ हुआ है 4:59 AM पर, और सूरज हमें अलविदा कहेंगे 6:20 PM पर. यानी आज हमारे पास टोटल 13 hours and 20 minutes हैं. इतना लंबा डे टाइम हमें मिल रहा है कि हम अपने सारे काम जो है वो कंप्लीट कर लें. वहीं अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो इस वक्त जो है वो मौसम तकरीबन 34 degrees Celsius है, लेकिन हाँ ह्यूमिडिटी है ठीक ठाक तरीके से है, उसकी वजह से हमें 38 फील होगा. और दिन के टाइम जो मर्करी है वो 42 degrees Celsius तक पहुँच सकती है. तो ह्यूमिडिटी फिर आज ज़्यादा है, इट्स अगेन 75%. तो आपको जो है ठीक ठाक थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी, बट द गुड पार्ट इज़ कि आज पार्शली क्लाउडी है. तो फिर भी अगर आप बाहर निकलते हैं, जो कि आपको निकलना ही निकलना है विद नो चॉइसेस लेफ्ट फॉर अस, तो बट अपनी वाटर बॉटल्स जो है वो कैरी करना ना भूले. आज क्योंकि है फ्रेंडशिप डे, तो मैं कहूँगी वाटर बॉटल को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो. एटलीस्ट जब तक यहाँ गर्मी है तब तक के लिए तो ये आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए. दो आई नो हम सब के बेस्ट फ्रेंड इज़ लाइक आर फोन, बट हाँ थोड़े दिन के लिए. एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू कैरी योर सनग्लासेस, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलिए. ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती है. बाकी एक और मुझे दिमाग में चीज़ आई कि मैं आपसे पूछूं कि क्या 42 डिग्री का जो गर्मी है उसमें क्या आप लोग पाँच तो चलो रह सकते हो, 10 मिनट बिना एसी के गुजार सकते हैं? क्या कभी किसी ने खुद को जो है वो इस गर्मी में डाला, आई मीन टू से क्या खुद को इस आजमाइश में डाला? मुझे बताइएगा कि जब इतना टेम्परेचर होता है लाइक 42, तो 10 मिनट भी आप बिना एसी के गुजार पाते हैं कि नहीं? आप मुझे वॉइस नोट भेज सकते हैं 6622107 पर, एंड बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पर मैं चेक नहीं करूँगी, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि हाँ कोई बंदा है जो 10-12 मिनट गुजार सकता है. वरना कुछ लोग, जैसे कल हुआ मैं अपने एक फ्रेंड को पिक करने गई, तो जब मैं उसको पिक करने गई तो ठीक था, मतलब हम लोग थोड़ी देर बाहर भी उतरे, फिर हम गाड़ी में वापस आके बैठे, तो मैं बैठने के साथ थोड़ा से फ़ौरन ही आप थोड़ी देर में आप स्टार्ट ही कर लेते हो एसी, बट शी इज़ लाइक रेस्टलेस, जल्दी स्टार्ट करो. मैंने कहा अभी एक मिनट भी नहीं हुआ, इट्स लाइक लिटरली कुछ सेकेंड्स गुजरे हैं और ये हालत तुम्हारी कि जल्दी स्टार्ट करो एसी, जल्दी चलाओ. तो मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा भाई सोचो कि हम मतलब यहाँ हैं, वी आर ब्लेस्ड कि हमें इतनी फ्रिक्वेंटली हमें हर जगह जो है एसी मिल जाते हैं, बट जस्ट इमेजिन कितनी जगहें ऐसी हैं या कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ये वाली जो फैसिलिटीज़ हैं वो हैं ही नहीं, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते दैट वे, तो क्या कैसे वो रहते होंगे? और हम अगर थोड़ी देर अपने ऊपर थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त कर ले तो इसमें बुरा ही क्या है भाई? बट देन लाइक आई हैव सीन शी इज़ लाइक सो रेस्टलेस कि नो, मैं तो किसी हाल भी एक सेकेंड एक मिनट के लिए भी नहीं रुक सकती बिना एसी. तो ये हालत होती है भाई. तो मुझे बताइएगा क्या आप जो है वो इस गर्मी में लाइक 10 मिनट या चलो लेट्स कीप इट और शॉर्ट लाइक 5 मिनट बिना एसी के गुजार सकते, गुजार पाते हैं? कभी गुजारा है आपने? मैक्सिमम कितने मिनट्स हैं जो आपने एसी के बगैर गुजारे हैं, वो भी मुझे बताइए. एंड उसके साथ आज है 30th of July और आज है सॉलिड वाला वीकेंड. तो आज वैसे तो बहुत सारे डेज है, बट मुझे लग रहा है बहुत ही यूजलेस है, तो उस पर तो मैं बात ही नहीं करूँगी. सिर्फ एक इंपॉर्टेंट डे है, एंड दैट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप. ये दिन आज मनाया जाता है, और ये दिन कहीं ना कहीं हमें और आपको ये याद दिलाता है कि दोस्ती जो है ना वो सिर्फ लोगों के लिए नहीं होती, बल्कि डिफरेंट कल्चर्स को जानने का मौका मिलता है हमें दोस्ती के थ्रू. डिफरेंट कम्युनिटीज से हम इंट्रोड्यूस हो जाते हैं दोस्ती के थ्रू. एंड ऑफकोर्स जो कंट्रीज़ हैं वो भी एक दूसरे के करीब आती हैं. तो बेसिकली जो दोस्ती है ना वो अंडरस्टैंडिंग का पैगाम हमें देता है, पीस का पैगाम देता है. कई बार हमारी पॉकेट पे भी हैवी पड़ जाता है, कई बार कोई अच्छे लेसन्स भी हमें हमारे दोस्त से मिल जाते हैं, और कई बार कोई हमें धोखा भी दे जाता है. तो दोस्ती को आज सेलिब्रेट करेंगे थोड़ी देर तक. आपके सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड के लिए कोई आपका मैसेज है जो आप हमारे थ्रू भेजना चाहते हैं, तो वो भी हमें ज़रूर मैसेज कीजिए. वॉइस नोट आप मुझे भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. अगेन द नंबर 6666221107. यहाँ पर आपका आपके मैसेजेस का मुझे इंतज़ार रहेगा. फिलहाल के लिए एक छोटा सा क्विक मैंडेटरी ब्रेक, वापस आएंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर स्ट्रेट अवे आ जाएंगे. स्टे हुक टू FM 107, दिल से देसी.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
3: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है. पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे. सो नो फोमो एवर अगेन. सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ. रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी.
4: दोस्तों, रात को बिना लाइट के गाड़ी चलाना कानून की खिलाफ वर्जी है. ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 70 के मुताबिक रात के वक्त अगर आप गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन किए बगैर ड्राइव करते हैं तो ये ना सिर्फ एक ट्रैफिक वायोलेशन है बल्कि किसी की जान के लिए भी खतरा बन सकता है. रात के अंधेरे में दूसरी गाड़ियों, पेडेस्ट्रियंस और ऑब्स्टिकल्स को देखना मुश्किल होता है. हेडलाइट्स ऑन करने से ना सिर्फ आपको रास्ता बेहतर दिखाई देता है बल्कि दूसरे लोग भी आपकी गाड़ी को देख सकते हैं. हमेशा याद रखें, रात को गाड़ी चलाने से पहले लाइट्स चेक करें. बिना जरूरत हाई बीम का इस्तेमाल करना भी गलत है. हाई बीम सिर्फ उन जगहों पर इस्तेमाल करें जहां रोशनी कम हो और सामने से कोई आ ना रहा हो. अपनी और दूसरों की जिंदगी की हिफाजत का ख्याल करें और ड्राइविंग में एहतियात बरतें. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.
5: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब. सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107. एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीस सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी. स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीस, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम. हदीस टू हैबिट, हदीस टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए.
4: क्रिकेट हो,
6: and he's hooked that away. That's four runs.
4: फुटबॉल हो,
7: Goal!
4: या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में.
8: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
4: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM.
8: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की.
4: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है. अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नेहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो. सबसे पहला कदम ये है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए.

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नासिया आपके साथ एंड इट्स 6:36 ऑन द क्लॉक। और यहां पे खलील पराठा जी का भी मैसेज है और सखर सिंध पाकिस्तान में कह रहे हैं कि सेम टेम्परेचर है, चलिए तो वहाँ भी आपको बारिश के दीदार नहीं हो रहे हैं, आई मीन टू से। और कंट्रीज में, खैर हम लोग के मुल्क में बारिश हो रही है, ठीक ठाक मानसून सीज़न है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ जगहों पे अभी भी बारिश का इंतज़ार किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे रमेश यादव जी का है मैसेज और कहते हैं, गुड मॉर्निंग, स्नेह अनकहे शब्दों का संस्कार है जिसे सिर्फ दिल ही समझता है, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच और हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे। हम आपके अभी दिन की, शुभ दिन की कामना करते हैं। थैंक यू फॉर दिस लवली मैसेज। इसके साथ एक प्यारा सा मैसेज है और ये है, इनका नाम है तारिक जी, तारिक हमारे साथ जुड़ गए, गुड मॉर्निंग कहते हैं और कहते हैं कि आज मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को याद कर रहा हूँ, बिलाल उनका नाम है, वो मेरे साथ नहीं है लेकिन हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ओके नाइस, चलिए आज आप अपने बेस्ट फ्रेंड को याद करें। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो बहुत लकी होते हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड उनके साथ होते हैं या उनके आसपास होते हैं या उनके साथ उनका रिश्ता आसान हो जाता है, लेकिन हाँ कुछ लोग जो हैं वो बेचारे उस तरह से अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट नहीं हो पाते। ओके, यहाँ पर अब्दुल खादिर जी का मैसेज है, एवोकाडो इज मैंडेटरी इन माई ब्रेकफास्ट। और कहते हैं, बीइंग अलोन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट आफ्टर फजर प्रेयर्स और 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। क्या बात है, 4 AM से बंदा उठा हुआ है, ग्रीन टी, एवोकाडो टोस्ट, चिया सीड, क्या बात है। और मैं अपना एसी स्विच ऑफ करके ही जाते हैं एक्सरसाइज करने एंड माय गुड मैसेज टू माय फेवरेट। तो ये वाली तो मॉर्निंग आपने मेरी सेट कर दी है। कबीर भाई फॉर मेकिंग इवनिंग, पैक करते हैं सरवर भाई फॉर शाही पकवान, सफा जी फॉर गोभी के फूल, मोहम्मद अमीन जी इन एथलेटिक क्राउन, तो आई लव ऑल द आरजीज। क्या बात है, आपने अपने सारे आरजीज का जो है वो यहाँ पे उन सबको मेंशन किया। थैंक यू सो वेरी मच एंड यू बीन सो सो काइंड, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। इसके साथ है हमारे साथ यहाँ पर ये मैसेज, आप लोगों के नाम अलबत्ता आप लोग मुझे लिख दिया करें तो कितना अच्छा हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मुझे देखना पड़ता है। ये है हमारे साथ अनिल, अनिल गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, और आपकी मॉर्निंग कैसी जा रही है मुझसे पूछा है। मेरी मॉर्निंग बहुत अच्छी जा रही है आप लोगों के साथ। यहाँ पर मुझे मैसेज है हुसैन जी का, गुड मॉर्निंग कहते हैं, सलाम कहा है। और फैसल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं एंड आपने भी सलाम कहा है।

0: थैंक यू सो मच. वालेकुम अस्सलाम. इसके साथ एक और मैसेज है और ये है इरफान जी. अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वालेकुम अस्सलाम आपको भी. एंड हमें सलाम कहते हैं नाजी शेख. थोड़ी देर के लगा कि मेरा नाम तो नहीं लिख दिया आपने, बट यहाँ नाजी शेख लिखा है. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. एंड हमें टुमारो लॉक मी, अच्छा कल मिलने की बात कही तौफीक जी ने. इंशाल्लाह ज़रूर कल तो मुझे लगता है डेफिनेटली आपसे हमारी मुलाकात होगी ही होगी. यहाँ पर सलाम का एक बहुत प्यारा मैसेज है अजहर हुसैनी जी का. वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग आपको. कादिर जी और ऑलवेज वेलकम ऑलवेज. इसके साथ कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद कर रही हूँ आप भी बिल्कुल ठीक होंगे. और ये मैसेज मुझे है अहमद जी का. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. अच्छा आज के तो प्यारे प्यारे मैसेजेस तो हम आपके लेते रहेंगे और इस बार ध्यान से मैं लेती रहूँगी, बहुत ही ध्यान रखूँगी. लेकिन हाँ आज का जो हमारा मुद्दा है उस पर हम ज़रूर आ जाते हैं. देखिए जब भी ना लाइफ में बात होती है क्या कहते हैं फ्रीडम की, आज़ादी की, तो हम बढ़ चढ़ के आगे आते हैं और हम जो है उस पर बात भी करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ जो है वो हमारे सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. फिर दूसरी तरफ जब बात आती है प्रोटेक्शन की, तहफ़ की, तब भी हम बहुत बढ़ चढ़ के उस पर बात करते हैं और हमें लगता है कि ये तो हमारा हक है, कौन हमसे छीन सकता है. लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें हमारी ऑफलाइन ज़िंदगी के लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन अगर हम ऑनलाइन ज़िंदगी की बात करें तो आपको क्या लगता है ज़्यादा कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है? आई मीन ऑनलाइन आपकी लाइफ में ज़्यादा कौन सी चीज़ अहमियत रखती है, ऑनलाइन फ्रीडम या फिर ऑनलाइन प्रोटेक्शन? आज मैंने सोचा है कि सिंपल रखती हूँ. और सोशल मीडिया का तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, हर तरीके से हम जो हैं कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं. आज का दौर ही ऐसा है, डिजिटल ज़माना है, इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हम उस पर इंफॉर्मेशन भी हासिल करते हैं, नॉट दैट अपना टाइम वेस्ट करते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, दोस्तों से कनेक्ट भी रहते हैं. और आज जैसे आज तो हैवी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, तो वो दिन भी है और ख़ास करके अपनी राय भी हम शेयर करते हैं, कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो भी हम शेयर करते हैं. लेकिन एक अहम सवाल जिस पर अब बहुत सारे लोग जो है वो बात करने लगे हैं, अब इस पर भी बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी है, वो ये है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके हिसाब से क्या चीज़ है, ऑनलाइन फ्रीडम या फिर ऑनलाइन प्रोटेक्शन? दोनों में से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको लगता है क्या है? देखिए ऑनलाइन फ्रीडम का अगर मैं मतलब आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो इंटरनेट पे अपनी बात आज़ादी से रख सकें, मतलब कंप्लीट फ्रीडम के साथ रख सकें, इंफॉर्मेशन जो वो हासिल करना चाहते हैं वो कर सकें और साथ ही अपने पसंद का जो भी कॉन्टेंट है वो देख सकें. वहीं अगर ऑनलाइन फ्रीडम के अलावा मैं अगर बात करूँ कि प्रोटेक्शन क्या है, व्हाट यू मीन टू से, तो वहाँ पर आपकी प्राइवेसी आ जाती है सबसे पहले. ऑनलाइन प्रोटेक्शन का मतलब ये भी है कि यूज़र्स को ऑनलाइन डेंजर से बचाया जाए, जो डेंजर हो सकते हैं उसमें सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ें शामिल हैं. तो ये तो बहुत ही सुपरफिशियसली मैंने आपको समझाया कि व्हाट एग्जैक्टली आई मीन टू आस्क यू, ऑनलाइन प्रोटेक्शन या फिर ऑनलाइन फ्रीडम. अगर हम सोशल मीडिया के हवाले से देखें तो यहाँ आप मुझे बताइए क्या चीज़ आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, ऑनलाइन फ्रीडम आप चाहते हैं कि पूरी आपको मिले या फिर आपको लगता है कि नहीं जो ऑनलाइन प्राइवेसी है वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन सिक्योरिटी है वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मुझे ज़्यादा मैटर करती है? तो बस आज का हमारा ये टॉपिक है, इसे हम मिलकर एक्सप्लोर करेंगे. फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ऑन द नंबर 443-443-77. यहाँ पर आप आइए बताइए, आप अपनी राय मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. कोई भी आपका पास्ट में इंसिडेंट हुआ है रिलेटेड टू योर फ्रीडम, कहीं आपने किसी भी दोस्त को कुछ ऐसा कॉमेंट लिखा जिसके बाद बवाल हो गया, किसी भी पोस्ट के नीचे आपको लगा कि अरे मुझे तो आज़ादी नहीं है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की, थोड़ा भी मैं लिखता हूँ देखो अगला सामने से मुझे इतना कुछ कह देता, मुझे तो ब्लॉक कर दिया गया. या फिर कभी किसी तरह का कोई और चैलेंज रिलेटेड टू योर प्राइवेसी आपने फेस किया, कोई अच्छा इंसिडेंट है, कोई ऐसा लर्निंग वाला इंसिडेंट है जो आपको लगता है कि हाँ मैं शेयर करूं और बहुत सारे लोगों का उससे फायदा हो सकता है, देन प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद मी. 443-443-77 हमारा नंबर है एंड वी आर कनेक्टेड टू वन कॉलर. हेलो अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. जाहिद भाई आके चले गए क्या?
0: अरे अभी तो मैं खुद ही अभी आके आई हूँ.
1: जाहिद भाई

0: कल तो मैं कॉल भी लगा नहीं पाया।
1: नहीं वो बता के गए थे दो दिन वो बिजी रहेंगे, तो फिर उन्होंने मुझे कहा था संडे में अब हमारी आपकी बात होगी। नंबर उनका आपके पास है और पूजा मुझसे रहे कि आगे गए तो आपको पता नहीं है कि वो आज दो दिन उन्होंने तो बोला था ऑन एयर ही।
0: हाँ ऑन एयर मैं बोला कॉलिंग पे पता नहीं आए या नहीं आए तो कल भी मैं नहीं कर पाया ना एक्चुअली टुकड़ा टुकड़ा तो नहीं मिला, बिजी था यहाँ वहाँ। जब गाड़ी के साथ रहूंगा तो रेडियो, फिर गाड़ी से बाहर रहूंगा तो फिर रेडियो से जुदाई हो जाती है, फिर गाड़ी फिर रेडियो, इस तरह से ना टुकड़ा टुकड़ा में सारा कुछ ना ये कम्फर्टेबल नहीं हुआ है। तो फ्री में तुम्हें बोला चलो अभी सुबह ही से फारिग हो जा, बाद में देखा जाएगा आगे का।
1: आपको ऐसा लगता है ये काम है जल्दी से कर लो, मैं फ्री हो गया। अरे भैया हो गया काम,
0: बिल्कुल मतलब जो एक इंटरेस्ट है और जो एक मतलब खुशी है और एक लगाव है तो उससे मतलब एक अच्छा, और फिर इतने बेहतरीन आरजेस है तो फिर मजा नहीं आता है ना खाली ड्यूटी करने है तो वो एक मतलब एक वो बन गई है।
1: शहजादा जी ये तो आपका दिल ही जानता है किस किस तरह से आप बोले, लेकिन चलिए आपने जो बोला हम उसको एकदम सच समझ रहे हैं एंड वी अप्रिशिएट, तहे दिल से शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आप हम सारे आरजेस के साथ जुड़ते हैं, हमारे सारे शोज में आप पार्टिसिपेट करते हैं जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और शायद इसीलिए आप जैसे हमारे जो लिसनर्स हैं उन्हें हम याद रखते हैं, आई थिंक हर शो में हर आरजे जो है वो याद रखते हैं, और ऑन ईयर के अलावा हम ऑफ ईयर भी अपने जो बहुत ही रेगुलर लिसनर्स हैं उनका जिक्र करते हैं, वी एक्सचेंज गुड मेमोरीज विद ईच अदर के मज़ा आता है, स्पेशली आप हमेशा टॉप पे रहते हैं हमारी कन्वर्सेशन में।
0: और एक्चुअली जो स्पेशल बोलूंगा स्पेशल तो सभी किसी का किसी से कंपैरिशन नहीं है, लेकिन कुछ आरजेस ऐसे ना फीमेल्स में तो सुने बिगड़ नहीं रह सकते ना, उनको सुनना जरूरी है।
1: क्यों ऐसा है शहजादा जी, खाना नहीं हजम होता आपको?
0: खाना
1: बिना सुने
0: हाँ लेकिन वो एक हुआ है ना वन और सेवन से जो इतना कैजुअल इतना रिस्पांस, और सबसे बड़ी बात क्या है हर एक लिसनर को जो कुछ मिलता है ना यानी जो कहीं नहीं वो शेयर कर पाता है तो यहाँ आके शेयर करके जरा दिल हल्का कर लेता है किसी भी टॉपिक से हो और किसी भी मुद्दे पे हो तो वो बिना किसी झिझक के ना आके ना अपने इजारे ख्याल करता है, बड़ा अच्छा लगता है और उसमें से कुछ टिप्स भी मिल जाती है और दूसरे लिसनर को सीखने मिल जाता है। फिर आरजे उसको स्पेशलिस्ट जो है ना मोटिवेशन देते हैं तो एक बहुत बड़ा अप्रिशिएट है ना 107 की टीम को। तो
1: नहीं नहीं आप लोगों को भी पूरा क्रेडिट जाता है, कितने अच्छी अच्छी बातें आप लोग शेयर करते हैं, हर बंदा कोई एक नया पॉइंट ढूंढ कर लाता है तो हमारे लिए बहुत ही कमाल का लर्निंग एक्सपीरियंस है। तो ये एक तरह का लर्निंग प्लेटफॉर्म भी बन गया है तो हम एक दूसरे को मिलजुल के पढ़ा रहे हैं, कौन टीचर है कौन स्टूडेंट है पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा शहजादा जी आज मैं पूछ ही रही हूँ कि व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया, अगर सोशल मीडिया की बात करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़्यादा अहमियत कौन सी चीज़ रखती है, ऑनलाइन फ्रीडम ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर ऑनलाइन सेफ्टी?
0: फ्रीडम और सेफ्टी दोनों ये दो ही मौजू है ना, या फ्रीडम चूज करो या सेफ्टी चूज करो। हाँ लेकिन फर्स्ट थिंग तो यही है कि ना सेफ्टी है, हाँ क्योंकि सेफ्टी से आपको जो सेफ्टी ऑनलाइन से है और गवर्नमेंट से है और आप जिस डिपार्टमेंट में हो वहाँ से है तो उसका जो सेफ्टी का जो एक मतलब एक बहुत अहम मतलब एक इच्छा है हर एक इंसान के लिए ना, हर एक स्किल हर एक फील्ड के लिए ना, तो बेहतर है और आपको सेफ्टी का कोर्स हो सेफ्टी के इंडक्शन लेना और सेफ्टी फॉलो करना तो आपकी मतलब पूरे एक लाइफ की सिगोट है ना, एक आपकी पूरी एक लाइफ की एक सिगोट है, कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जाए ना। हालांकि सेफ्टी का सेफ्टी ने इंडक्शन दिया था और सेफ्टी से उधर के साइंस बोर्ड लगे हुए थे तो उसके बाद भी आपने फॉलो नहीं करके मतलब कुछ अपना दिमाग चलाया या आपने मतलब उसको इग्नोर कर दिया ना तो कहीं ना कहीं फिर नुकसान भी साबित हो सकता है ना। तो सेफ्टी इज ग्रेट ऑब्वियसली, मैं तो यही कहूंगा
1: क्योंकि मैं अच्छा ऐसा कभी हुआ शहजादा जी आपने कोई पोस्ट है उसके नीचे कोई कमेंट किया उसके बाद लोगों ने आपको जो है वो ट्रोल करना शुरू किया या फिर ऑनलाइन किसी तरह का कोई हरासमेंट हुआ या कोई बुलिंग हुई आपके साथ ऐसा कोई है इंसिडेंट?
0: हाँ जी एक ही है वो प्रैक्टिकली में रियली प्रैक्टिकल में जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था ना कंस्ट्रक्शन हाँ तो मेरे पास बड़ी गाड़ी होती है डायना जो है ना तो उसमें एक इक्विपमेंट था बहुत बड़ा सिलेंडर है ना तकरीबन 3 टन से ज्यादा था वो और ये एक फोर क्लिप होना जरूरी होता है यानी तो फिर क्रेन मतलब एक छोटा मतलब ये क्या बोलते हैं बॉब ट्रक आता है एक है ना बूम बूम बूम ट्रक आता है उस पे भी एक छोटा सा क्रेन रहता है छोटा सा उसको बेल्ट डाल के उसको उठा के और कहीं पर है ना सेफ्टी जगह पर है ना शिफ्ट करना होता है वो एक सेफ्टी तो था फिलीपीन का था एकदम यंग लड़का था वो तो उसने क्या किया मालूम है मैं तो लगा दिया फिर मैंने साइड के जो डोर्स होते हैं ना उसको डाला बोलते हैं उसको मैंने ओपन कर दिया तो वो लोग उसने लेबर्स को ना चारों को चढ़ाया और बोलता कि इसको उतार के मैं बोला नहीं मैं बोला क्या कर रहे हो ये मैं बोला ये बहुत है मत ऐसा हाँ मैं बोला ये ऐसा नहीं उतरेगा मैं बोला वेरी डेंजरस मैं ऐसा नहीं होगा तो बोले के फिर कैसा मैं बोला वेट वेट वेट वेट तो फिर मैंने क्या किया उधर ना ऊंट पड़े थे चौड़े और मोटे और हाइटेड भी थे तो उनको है ना एक है ना प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया ना कि गाड़ी की जो हाइट से लेके जमीन तक यानी जैसा पिसलने का एक स्केटिंग होती है ना उस तरह से पूरा बनाया वहां से वहां गाड़ी के जो अपनी लंबाई है ना पीछे की बॉडी की 6 फुट 5 फुट की जो भी हो तो तकरीबन 70% तक उसका ऐसा मतलब स्केटिंग जैसा है ना बोलना जैसा इस तरह से पूरे ऊंट बिछा बिछा के 6 इंच चौड़े थे वो और लंबे थे कुछ 6 फुट 7 फुट ऐसे ही थे तो 6 इंच उसको मतलब ज्वाइन करते करते नीचे जमीन तक है ना पूरा मतलब उसको एक अच्छा सा कंफर्टेबल एक प्लेटफॉर्म बना क्योंकि वो जो बड़ा जो सिलेंडर जो था ना उसका में 2 टायर थे बीच में उसके लास्ट 2 टायर थे और फिर है ना उसको आते से 2 बंदे को बोला ऊपर रहो और 2 बंदे नीचे रहो और 2 बंदे को उसको रोप रस्सी बांध के आप लोग ऊपर पकड़ो उसको छोटा छोटा छोटा छोटा रिलीज करना है जब एकदम मुंह के पास कॉर्नर पे आएगा जब टायर है ना तो वो स्लोप में ना वो दोनों टायर रोल होते हुए ना नीचे ना इसी तरह से वो बिल्कुल हटती है जैसे ऊपर से कोई गाड़ी है।
1: शहजादा जी आप एकदम छा गए पता है कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपसे पूछा आपका नाम क्या और आपने अपना पूरा घर का एड्रेस बताया? मैं इतनी देर से ये सोच रही हूँ कि इसमें ऑनलाइन कौन सी ऐसी बात आने वाली है ये सारा काम आपने वीडियो बनाया वो शूट करके डाला उसके बाद लोगों ने कुछ आपको बोला कमेंट किया है ये क्या हुआ कहाँ निकल गए
0: ये जब सेफ्टी से उतर गई वो जो इक्विपमेंट जो था हेवी वाला वो सेफ्टी से उतर के जो मेरा डायरेक्शन था ना उसी पर उतर सेफ्टी से वो रखा गया साइड में तो उसने मेरे को थैंकी बोला जो लड़का था ना फिलीपीन का उसने मेरे को थैंकी बोला और थोड़ा सा उसने कुछ ये करने लगा यार बड़ा इजी उतर गया तुम्हारे बोला हाँ जो तुम चारों को उठा के ऊपर से नीचे उतार दोगे भले किसी के पैर भी गिर गया तो बेचारा तो गया।
1: शहजादा जी मैं एक हाथ से नहीं 2 हाथ से आपको सल्यूट कर रही हूँ यहाँ पे सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ कितना मैंने क्या पूछा और आपने कितना कुछ प्यारा प्यारा बताया बट चलिए जो भी चीज आपने सेफ्टी के हवाले से बताई दैट्स नाइस और हमें सबको एट वर्क प्लेस पे हमें सेफ्टी का ख्याल रखना ही चाहिए लेकिन मैं बात कर रही थी ऑनलाइन कभी होता है ना कि कोई किसी ने पोस्ट कर दिए कुछ हमने उसको कोई ऐसे मजाक में कुछ वर्ड लिख दिया फिर लोगों ने हमें कहना शुरू कर दिया या कई बार आपका दोस्त अपसेट हो जाता है ना उसने मान ली बहुत ही स्टाइलिश सी पिक्चर डाली और कह रहे अरे तुम क्या लग रहे हो इस पिक्चर में या तुमने कुछ हंसी का कुछ एक कोई इमोजी सेंड कर दी उसके बाद एक मसला शुरू हुआ दोस्ती आपकी खराब हुई या रिश्तेदारी में ऐसा कुछ हुआ यू नो इस तरह की चीजें कई कभी बार हो जाती है हम लोग इंटेंशनली नहीं करते बट हो जाती है तो आज हम उसकी भी बात कर रहे थे बट एनीवेज आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये वाला किस्सा जो पर्टिकुलरली हमारे साथ शेयर किया दैट इज अगेन फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव सो थैंक यू सो मच और खास करके जब आप सब लोग काम पर होते हैं तो इन सारी चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी जैसे मैंने कहा कि चाहे फ्रीडम की बात हो चाहे प्रोटेक्शन की बात हो हम सबके लिए ऑफलाइन तो बहुत जरूरी है दैट्स क्वाइट मैंडेटरी
0: बाकी जो रहा पोस्टिंग का है ना, मैं अपने अपने फैमिली में मतलब शेयरिंग करता हूँ ज्यादातर। अच्छा। स्पोर्ट्स एक्टिविटी के जो क्रिकेट टूर्नामेंट होता है ग्राउंड पे रहता हूँ ना, तो मैं बल्ला होता है और मेरा जो गेटअप है ना एकदम अजीब ही होता है, मतलब कैप

0: होती है, गॉगल्स होता है, टी शर्ट होते हैं ना, तो वो सब है ना वो एकदम से ना हैरान हो जाते हैं कि बोले बस भी करो अब कब तक खेलोगे, मैं क्यों नहीं खेलू,
1: क्यों नहीं खेलूंगा, हाँ खेलिए।
0: इस तरह से ना अप्रिशिएट होता है और बहुत मतलब अच्छा लगता है। तो ये सब मेरे ऐसा बाकी और कोई पोस्टिंग से कोई दूसरे और यहाँ वहाँ से किसी ने कोई कमेंट नहीं किया, जो जानने वाले वही है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी के टूर्नामेंट के मैं शेयर करते रहता हूँ जो कंपनी टूर्नामेंट,
1: मतलब अच्छे ही कमेंट्स करते हैं लोग, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग है ना,
0: अप्रिशिएट करते हैं। और हाँ, और वो कई लोग तो बोलते तू कभी बुढ़ा होगा, बोला गॉड गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट मुझे मुझे मिला स्पेशल, तो अल्लाह का शुक्र है।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह लगाइए।
0: मैंने देखा हूँ मेरे एरिया में मोहल्ले में वगैरह में ना, तो कोई माता बन गया, कोई दादा बन गया ना, मेरे दोस्त लोग जो है तो वो मतलब है ना बोलते यार वाकई में यार कैसा तू क्या खाता है क्या ऐसा मेंटेन रखता है, मैं बोला गॉड गिफ्ट है
1: कहना भाई, मैं दुआ दुआ दुआ लेता हूँ, दो सुबह दो शाम दो रात दुआएं चलती है मेरी। नहीं नहीं, आप कोई स्पोर्ट भी खेल रहे हैं ना तो उससे भी फर्क पड़ता है, फिर थोड़ा सा आदमी फिट रहता है और ये जरूरी भी है। बहुत से लोग जो है ना, मैंने कहा ना बिल्कुल कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाते, इंक्लूडिंग माय सेल्फ टू, तो फिर उनके जल्दी चांसेस हैं कि आप एज करें जल्दी। बट चलिए, थैंक यू सो मच शहजादा जी, फैंटास्टिक टॉकिंग टू यू, हमेशा की तरह अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और इन्जॉय कीजिए, अगर आज आपका वीकेंड होता है, कल आपकी छुट्टी होती है, देन इन्जॉय द वीकेंड, एंड थैंक यू वंस अगेन आपकी कॉल के लिए,
0: जज़ाकअल्लाह,
1: थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Alright, so दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं इज रिलेटेड टू सोशल मीडिया एंड ऑफ कोर्स व्हाट ट्रूली मैटर्स, व्हाट इट कम्स टू यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल मीडिया, व्हाट मैटर्स मोर इन योर लाइफ। आपको क्या लगता है, इज इट ऑनलाइन फ्रीडम और इज इट ऑनलाइन प्रोटेक्शन, आई मीन टू से ऑनलाइन सेफ्टी। सो यहाँ एक और कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, हेलो,
2: हेलो, गुड मॉर्निंग,
1: अ वेरी गुड मॉर्निंग, इज इट अज्जू राइट?
2: Yeah,
1: yeah, yeah. So, hi, how are you? How's your morning going? Happy weekend.
2: Happy weekend. Morning going good. Humidity is going increase now.
1: Humidity so almost, is increasing.
2: We checked the humidity 52 to 51 in Dukan field. So, those are working outside in field, please take care of yourself and drink water. It's necessary and mandatory to take rest every 10 to 15 minutes.
1: You're so lucky, see. Otherwise, ऐसा होता नहीं है कि नो, बट सम पीपल दे वर्क आउटसाइड। अभी तो खैर टाइमिंग्स की है फ्लेक्सिबिलिटी कि ये विंडो ओपन है।
2: No, no, the safety and the control protocol is during humidity, you have to secure your life, you know. Some people will be collapsed in this humidity. So, work 15 minutes, 20 minutes and the mandatory take rest 5 or 10 minutes in shared area.
1: Sahi.
2: We are not machine. We are not machine. We are, everyone is human and everyone have own life. So, you have to secure in your life.
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं इज लाइक व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया, क्या चीज ज्यादा अहमियत रखती है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू, इज इट लाइक ऑनलाइन फ्रीडम और इज इट लाइक ऑनलाइन सेफ्टी प्रोटेक्शन?
2: नो नो, व्हाट इज सम नॉट सम सोशल मीडिया इट्स लाइक व्हाट कैन आई से, online freedom is nothing, online safety also is nothing, because the Meta is a big platform for social media, but how many cases against Meta? Recently also New Mexico, they fined $300 million dollar against Meta, against child safety and something. How many scams are we are facing every day? So someone calling us and asking our details, and how they getting our details? This is an unfair thing. Like if you're using social media, okay, that is your personal thing, but don't update your personal things in social media, like your important photos, your family photos and your details. Don't
1: personal information, right?

0: Contrary information, don't do such a things in social media, because there is no safety protection against social media. But in especially in Facebook, if anyone access my account and they can save my photo and they can create the same account like me.
1: ये मेरे साथ तो बहुत सारा हो रहा है.
0: तो ये चीज टोटली अनफेयर है. वो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसका अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहिए. आप अभी एक फोटो अपलोड कर रहे तो उसका सेव ऑप्शन को निकालने का. अब सेव ऑप्शन एंड स्क्रीनशॉट का ऑप्शन, ये दोनों ये लोग को निकालने का. सो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने का 50% चांसेस है.
1: So आपको क्या लगता है, what's the proper solution to this?
0: No, the proper solution, they have to improve the
1: digital literacy.
0: Yeah, because online में बहुत सारा को freedom है. Online freedom is accessible, because you can write any command in your mind. You can write any command against anyone, against anything, against any activities. You can write any commands. You can post any post like against what you can feel. तो ऑनलाइन फ्रीडम ऑलरेडी है, लेकिन उसका प्रोटेक्शन किसके पास है? उसका प्रोटेक्शन नहीं है, ऑनलाइन प्रोटेक्शन. तो ओनली योर नेम एंड योर नेम इज इनफ टू ट्रैक योर इंफॉर्मेशन. देन सम ओके, इफ यू आर अ बिग रीचेबल पर्सन इन सोशल मीडिया, then this there is one Google Lens, you know, you upload your photo and they will give you all information.
1: Sahi.
0: So mera personal thing se online mein wo this is your wish, your freedom. We cannot say about anything, but thoda sochne ka iska peeche kya kya hai, kya kya information leak ho raha hai, wo thoda soch ke aapko koi post dalna hai ka, koi comment post karega usko thoda soch ke karne ka. Agar ye to koi na koi scam aapka upar aa jayega.
1: So you mean to say ki best protection is ki how reluctant are we in sharing our personal information? Yehi best protection hai.
0: एवरीथिंग आपका हमारा पास उसका सॉल्यूशन भी है, उसका कैसे यूज करने का सॉल्यूशन भी है. सो थिंक एंड सेफ्टी फर्स्ट.
1: सेफ्टी इज फर्स्ट.
0: एक्सपेशली अभी आजकल वो इंटरनेट इज एवरीवेयर, नॉट लाइक बिफोर. इवन प्रीकेजी स्कूल में भी इंटरनेट अवेलेबल है. बच्चों लोग को इंटरनेट में प्ले करता है, एंड मोर ओवर सम किड्स आर वाचिंग यूट्यूब वीडियो से कोकोमेलन और समथिंग. तो ये आपका डिवाइस है, तो आपका मेरा फॉर एग्जांपल मेरा डिवाइस मैं कभी भी मेरा बेटी को नहीं देता हूँ, क्योंकि वो मेरा यूट्यूब में मैं फ्रीक्वेंटली क्या सर्च करता है वो ही आता है.
1: सही.
0: तो मेरा मेरा डिवाइस मैं नहीं देता हूँ. मैं उसके लिए एक डिवाइस है, वो भी मैं देता हूँ, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑन करके देता हूँ.
1: नाइस.
0: तो ये सोशल मीडिया अभी बहुत दो तरीके है. आपको सही से यूज करेगा तो वो सही है, आप गलत चीज को यूज करेगा तो वो गलत दिखाएगा.
1: सही कहा आपने. तो जितना आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं दैट इज इम्पोर्टेंट.
0: या आफ्टर एआई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दिस सोशल मीडिया. There is only one photo is enough. They can make anything.
1: That's true. बिल्कुल.
0: एंड वन मोर थिंग फॉर प्रोटेक्ट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो साइट को आप एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यू आर सर्चिंग समथिंग, फॉर एग्जाम्पल यू आर सर्चिंग हेलमेट, ओके. एंड इसमें आपको बहुत सारा इंटरनेट का, गूगल ने बहुत सारा इंटरनेट वेबसाइट देता है. इसमें से कोई कोई ब्राउज़र्स आपको इन्फॉर्मेशन देता है, गिव मी योर ईमेल आईडी, गिव मी योर फोन नंबर एंड छोटा सा इन्फॉर्मेशन वो लोग को पूछता है. अगर वो पूछता है तो वो मत देने का. अगर ये ट्रस्टेबल है लाइक अमेजोन, लाइक फ्लिपकार्ट, ऐसे थोड़ा ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है तो, ऑनलाइन वेबसाइट है तो आप दे सकते हैं. लेकिन आपको ये पहले वो फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग दैट वेबसाइट एंड दे आर आस्किंग इन्फॉर्मेशन सम लाइक योर नेम एंड योर नंबर्स एंड

0: your, so we need to be careful.
1: Information, yeah, hmm. don't give. Hmm. Because maybe they can share your data some others.
0: सही
1: ये बहुत सारा कंपनी में इंडिया में बहुत सारा कंपनी
0: के साथ ये बिकता है आराम से बहुत अच्छे से डेटा बेचा जा रहा है इट्स अगेन अ बिग बिजनेस दैट वी नो
1: इवन इवन देयर वाज अ कंप्लेंट लास्ट टाइम इन हाई कोर्ट इन द बीजीएमए दे सेल देयर पर्सनल डेटा फ्रॉम द सम अदर कंपनीज बट हु नोस वी डोंट नो
0: सो बेटर आपको
1: Better don't share your information more in online. Kabhi it is mandatory.
0: This
1: mandatory
0: is the first
1: to,
0: way.
1: Yeah, it's the first way. It is mandatory to ask giving information. Okay, like government sector platform or your company related any platform. Okay, if they are asking your information, please provide. Otherwise, some other application, other social media platforms, if they are asking your information like deeply, don't give.
0: True.
1: Yeah.
0: That's
1: and,
0: nice.
1: And unauthorized Wi-Fi networks.
0: Free wale Wi-Fi, public Wi-Fi.
1: Free wale Wi-Fi. Public Wi-Fi. Better you should avoid those things.
0: Very well said. Zabardast, thank you so much. Thank you for your call and have a fantastic day. अपना ख्याल रखिए. Okay, bye. All right, दोस्तों, यहाँ पर इस टॉपिक को हम फर्दर भी एक्सप्लोर करेंगे. आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की. So when it comes to social media, what truly matters more for you? Is it online freedom or you think is it online protection and safety? Do let me know on the number 443-443-77. उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक. हम यूं गए और यूं ही आए.

FM 107. Time check. Time check. वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नाजिया आपके साथ और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 7:08 और इस वक्त हमारे इस शो का पहला गाना शाम श्वेता पंडित की आवाज़ में अमेजिंग सा ट्रैक एंजॉय कीजिए. वापस आएंगे तो फर्दर इस टॉपिक पे ढेर सारी बातें करेंगे. कुछ मैं भी आपको बताऊंगी, बहुत कुछ आप मुझे बताएंगे. तब तक के लिए सोच के रखिए, आपके लिए सोशल मीडिया पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कौन सी चीज़ रखती है, कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्या ऑनलाइन सेफ्टी प्रोटेक्शन इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू यू और या फिर ऑनलाइन फ्रीडम? इनमें से एक चॉइस के साथ आपको जाना है, तो आप किस चॉइस के साथ जाएंगे और क्यों?

0: Right guys, welcome back. You are tuned into FM 107. आप सुन रहे हैं Summer Mornings. मैं हूं नाजिया आपके साथ 7:17 on the clock. आज हम बात कर रहे हैं social media की and of course social media पर हमारी online freedom या फिर हमारी online protection या safety दोनों में से ज़्यादा कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा matter रखती है और क्यों? एक caller मेरे साथ यहाँ जुड़ गए हैं. चलिए इनसे बात करते हैं. Hello.
1: हाँ जी मैम.
0: Good morning. A very very good morning. कैसे हैं गावा जी आप?
1: जी ओके रिपोर्ट मैडम.
0: ओके
1: उम्मीद करता हूँ कि आप भी
0: एक्सीलेंट बोला कीजिए.
1: चलिए आज से फिर एक्सीलेंट बोला करूँगा जी.
0: हाँ ओके. मुझे ऐसा लगता है कि वो जो डिग्री है उसमें थोड़ा नीचे है. अपने लिए कहिए कि हमेशा एक्सीलेंट.
1: एक्सीलेंट ओके मैम थैंक यू.
0: अच्छा तो आज क्या कहना चाहेंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया और वहाँ पे ऑनलाइन फ्रीडम या फिर ऑनलाइन सेफ्टी और प्रोटेक्शन, दोनों में से एक को आपको पिक करना है तो आप किस चॉइस के साथ जाना चाहेंगे एंड क्यों?
1: मैडम बातें दो इकट्ठी हो गई हैं. एक तो मैंने करनी है आपके शो की तारीफ.
0: अच्छा ये दिन आ गए मेरे शो के.
1: चलो वो बाद में करता हूँ.
0: अच्छा.
1: पहले टॉपिक पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ.
0: सही.
1: मेरे हिसाब से मैडम ऑनलाइन प्रोटेक्शन बेटर है ऑनलाइन फ्रीडम से.
0: ओके.
1: जी तो मैडम देखिए ना कुछ साल पहले की बात है. ऑनलाइन प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है? ये तेलंगाना की खबर है मैडम, इंडिया की. किसी ना बच्चे ने अपने दादाजी का फोन लिया यूज करने के लिए.
0: अच्छा.
1: तो उसने एक गेम डाउनलोड कर ली, उसका नाम तो मैं नहीं लूंगा.
0: अच्छा.
1: वो नया नया खेलने लगा था. जी जी जी. तो उसने गेम डाउनलोड की, उसने पहले तो अपने दादाजी के खाते से कुछ लाख रुपए इंडियंस, फिर उसके बाद में अपने दादी के खाते से, दोनों के मैडम उसने पैसे उड़ा दिए और इन लैक्स.
0: और दोनों को पता ही नहीं चल रहा है.
1: और दोनों को पता नहीं चल रहा है. बुजुर्ग होंगे ना मैडम, ओटीपी वगैरह बंदा इतना नहीं केयर करता. अगर ओटीपी भी आया होगा तो फोन तो उसके पास था ना, बच्चे के पास.
0: हाँ, वो कर रहा है एक्सेस. तो यहाँ ये चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है. मतलब आपस में यहाँ तो बिल्कुल घर की ही बात हो गई, अब तो बाहर के लोगों से थोड़ा सतर्क रहो ये हम कहते हैं, बट यहाँ तो वो वाली बात भी नहीं रही ना
1: मैडम. एक्चुअली ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट है, इसके अलावा और पता नहीं कितने हैं. किसी बच्चे ने अपने फादर का फोन लिया सिर्फ वाईफाई यूज करने के लिए.
0: सही.
1: तो अगर मैडम हो सके आप लोग अपना जो हॉटस्पॉट देते हो ना किसी को, अननोन बंदे को, वो भी नहीं देना चाहिए मैडम. क्योंकि उसमें जो पासवर्ड डालता है वो तो अपने वाईफाई से रिलेटेड होता है ना, उसका कंसर्न तो अपने फोन से होता है.
0: हाँ ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही
1: जी.
0: अब आगे से मैं बहुत ध्यान रखूंगी. हाँ ये तो मतलब ये तो वाकई बहुत ही मजबूत पॉइंट व्हेन कम्स टू सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन. और हम लोग दे भी देते हैं, हम लोग को उतना याद वो भी नहीं रहता ना. तो
1: नहीं रहता मैडम. एक्चुअली पता क्या है, देखिए चाहे इंडिया है चाहे कतर है, अपना जो मोबाइल नंबर है ना, हम लोग पहले क्या होता था, कभी बंदे ने साल बाद बदल दिया, कभी दो साल के बाद नया सिम ले लिया. अभी हर बंदे को वही सिम रखना पड़ता है. उसका कारण क्या है मैडम, वही सिम गवर्नमेंट की साइट से लिंक होता है.
0: हाँ.
1: वही बैंक की साइट से, उसी पे ओटीपी आता है, उसी पे सारा सिस्टम उसी पे होता है,
0: वो रजिस्टर्ड आपका.
1: जी तो कोशिश करनी चाहिए जिसमें अपना वो वाला सिम है वो तो मैडम बिल्कुल नहीं, उससे हॉटस्पॉट किसी को भी नहीं देना चाहिए अननोन बंदे को.
0: बहुत ही अच्छा पॉइंट, वैलिड है, बिल्कुल सही कहा आपने. आगे से मैं भी इस चीज का बहुत ध्यान रखूंगी
1: जी. और मैडम हम लोगों को एक चीज की और ऐसे रहता है, अभी हम लोगों ने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाल के डिलीट कर दी या कोई कमेंट ऐसा लिखा जो कम्युनिटी के खिलाफ है, वो बाद में डिलीट कर दिया. वो हम लोगों को तो लगता है मैडम डिलीट हो गया, मगर वो कभी भी उस सिस्टम से डिलीट नहीं होगा. कभी
0: होता, कभी नहीं होता. ये तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया. आप सारी चीजें ऑन एयर बोल नहीं सकती, बट आपने कहा तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया. मुझे कितना कुछ बोला गया है और एक छोटी सी ओपिनियन मैंने वहां पर उस पोस्ट के नीचे शेयर की थी और फिर मैंने उसे वाकई डिलीट कर दिया, बट मुझे मेरे नाम से लिख लिख के मेरे मैसेंजर्स में इतने मैसेजेस आए. हम लाइक इतना छोटा सा मैसेज और वो भी बहुत हार्ड या हार्श नहीं था, दैट वाज माय ओपिनियन, बट लोगों ने मुझे इतना ट्रोल किया, इतना कुछ लिखा कि मैं आपको क्या बताऊं. तो मुझे वाकई एहसास हुआ कि आपने सही कहा कि आप डिलीट भी कर देते उसके बाद भी लोग आप कुछ रिप्लाई दे रहे हैं, मतलब आ रहे मैसेजेस. तो बड़ी हैरत हुई मुझे कि देखिए. और यही चीज़ जो हम कहते हैं ना हेट स्पीच, ये वो हैं चीज़ें. अब हमें फ्रीडम नहीं है, कहने को कह रहे हैं ऑनलाइन फ्रीडम है कि आप अपनी राय जो है, अपनी ओपिनियन जो है वो शेयर कर सकते हो, बट क्या वाकई हमारे पास फ्रीडम है? नहीं है, हम शेयर नहीं कर सकते। हम अगर कुछ शेयर करते हैं तो अगला सामने से अगर उसके थोड़ा सा भी खिलाफ है, या मतलब थोड़ा सा भी उसको सही नहीं लग रहा है, तो देखिए आपको किस तरह से ट्रोल किया जाता है, किस तरह से आपको हरास किया जाएगा कि आप शायद अपना अकाउंट ही ना बंद कर लें।
1: मैडम बस इस मैटर पे तो बहुत खुल के बात हो सकती है।
0: हाँ,
1: आप देखिए मैडम, बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिन्होंने पोस्ट डाली, बाद में उस पोस्ट का नतीजा क्या हुआ, वो बंदे डिप्रेशन में चले गए।
0: बताइए,
1: इतने ज्यादा कमेंट, इतनी गालियां, लोग मैडम चक्कर पता क्या है, लोग फिर फैमिली को भी साथ में इन्वॉल्व कर देते हैं।
0: सबको सबको
1: पर्सन टू पर्सन है, बस ओके है यार। फैमिली को, लेडीज को वो चीज अच्छी नहीं है मैडम,
0: कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं।
1: तो इससे अच्छा यही है मत ही लिखिए, है ना।
0: इसीलिए मुझे पता है क्या लग रहा है, आज के टाइम में सब लोग कह रहे हैं ऑनलाइन प्रोटेक्शन, बट मुझे लगता है कि ऑनलाइन फ्रीडम पे बात हो। और ये वाकई जब मैं टॉपिक लाती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं किसी डिबेट का हिस्सा होते हैं। तो ऑनलाइन फ्रीडम कहने को हमें है, बट है नहीं हमारे पास, एक्चुअल में हमारे पास नहीं है। प्रोटेक्शन भी एक बड़ा कंसर्न है, वो तो हमेशा से ही है, प्राइवेसी का वो तो रहेगा ही हमेशा। बट जब हम कहते हैं ना कि हम ऑनलाइन फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली हमारे पास है ही नहीं वो एक्सेस अब के टाइम में। पार्शली हमें नजर आ रहा है कि ऑनलाइन फ्रीडम हमें मिली हुई अपनी राय, अपनी ओपिनियंस रखने की, बट नहीं ऐसा है नहीं
1: जी। बस मैडम इस मैटर पे तो आप एक घंटा भी बात करो ना,
0: सही कह रहे हैं, एक दो दिन खींच सकते हैं,
1: ज्यादा उस पे तो नहीं जाऊंगा।
0: हाँ,
1: अब मैं आता हूँ आपकी तारीफ की तरफ मैडम।
0: अच्छा, अब मैं सही से बैठ जाती हूँ।
1: अबे देखिए, एक पॉइंट तो आपने खुद रेज कर दिया, अभी मैं जो भी चीज लेके आती हूँ अपने शो में वो बहुत ही सरल होती है। ठीक है मैडम, आप जो भी टॉपिक अपने शो में लेके आते हो या कुछ भी आप रेज करते हो मुद्दा, रेज तो होता ही होता है मैडम। आपका जो समझाने का तरीका है ना, सिंपल और सरल भाषा में, वो हर बंदे से रिलेट करता है मैडम। सबसे बड़ी बात तो ये है।
0: थैंक यू जी, शुक्रिया बहुत। इसका मतलब मैं अच्छी कभी ना कभी टीचर भी बन सकती हूँ, है ना
1: जी। मैडम देखिए, आप इंग्लिश के वर्ड्स तो यूज करने पड़ते हैं थ्रू आउट द शो, मगर आप इतने भारी भरकम नहीं यूज करती वर्ड्स भी, वो दूसरे बंदे के समझ में ना आए, आपके बोलने के अंदाज से बंदा समझ जाता है।
0: चलिए थैंक यू, चलिए बहुत शुक्रिया। मैं अगर अच्छा समझा पा रही हूँ तो मैं वाकई अपनी पीठ थपथपाऊँ कि यस, क्योंकि मुझे ये लगता है कि शायद मैं उस तरह से समझा पाती हूँ कि नहीं पाती हूँ, पता नहीं समझ में आता है अगले को कि नहीं।
1: मैडम ये तो मेरे को आपके सिस्टम का पता नहीं है भी कैसे इसका पैरामीटर नापा जाए, जैसे IDMB रेटिंग होती है ना, अगर कहीं वो सिस्टम हो ना आपके शो के ऊपर मैडम, आप खुद हैरान हो जाएंगी। उसकी एग्जांपल ये है, उसकी एग्जांपल भी मैं देता हूँ आपको। बहुत सारे कॉलर्स या लिसनर्स बोलते हैं मैडम, कभी कभी तो हमने पूरा आपके शो में थ्रू आउट द शो कॉल मिलाई मगर कॉल लगी नहीं। ये एक लाइव एग्जांपल है मैडम आपके शो की, कि आपके शो की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है दोहा में।
0: चलिए थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग का प्यार है और वही प्यार जो है मुझे सुबह सुबह उठा के और खींच के यहाँ लेकर आता है। अगर मैं थोड़ा सा भी मुझे लगती है सुस्ती या कुछ, तो मुझे लगता है नहीं, मेरे लिसनर्स हैं, जैसे ही मैं सोचती हूँ मेरे लिसनर्स, तो मुझे एक अलग तरीके की वाइब एनर्जी मिलती है। एंड दैट्स सो ट्रू, इसमें मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, वाकई मुझे लगता है नहीं मुझे जाके अपने लिसनर्स से मिलना है।
1: अभी तो 2-3 पॉइंट्स हो रहे हैं, मैं कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम शो करूंगा। और मैं लास्ट में आपसे यही बात कहना चाहता हूँ मैडम, ये जो स्टारडम है ना, ये जो आपकी पॉपुलैरिटी है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को लगता है ये कभी भी आपके दिमाग के ऊपर हैवी नहीं होगा मैम,
0: क्योंकि मैं मान ही नहीं रही हूँ खुद को।
1: यस,
0: ये आज
1: क्योंकि आप अभी भी लर्नर मान रहे हो ना अपने।
0: हाँ, यही तो चल रहा है, मैं अभी तक नहीं मान पा रही हूँ कि मैंने कुछ भी थोड़ा सा भी अचीव किया है। लेकिन चलिए, आप लोग के प्यार से मैं बहुत खुश होती हूँ और बहुत अच्छा मुझे लगता है, और मैं हमेशा ये चाहूंगी कि आप लोग का प्यार मुझे और हम्बल बनाए, यही मेरी दुआ है, रिस्पॉन्सिबल और हम्बल बनूँ मैं। बट थैंक यू वंस अगेन, आप मेरा दिन सेट कर देते हैं, प्लीज डेली कॉल किया कीजिए, एंड यू कैन ऑलवेज शेयर गुड वर्ड्स।
1: जी जी, आप मैडम यकीन मानिए, आपके जो लिसनर कॉलर सभी सुनने वाले हैं ना मैडम, एक से बढ़कर एक हैं।
0: हाँ,
1: सभी नहले पे दहला मैडम।
0: हाँ, ये तो मैं
1: सभी को भी सल्यूट है मैडम,
0: बहुत बहुत
1: सल्यूट है।
0: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. और सारा सल्यूट आपकी तरफ भी जाता है घूम के. आप जैसे लोग मेरे साथ जुड़ते हैं जो हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, जो कि आज के टाइम में लोग एक दूसरे को पुल करते हैं, कोई ऐसे मोटिवेट नहीं करता. बट यू आर वन योर सेल्फ एंड क्वाइट यूनिक, तो ये आपकी जो है बहुत ही एक्सेप्शनल क्वालिटी है. थैंक यू वंस अगेन
1: जी. लास्ट में मैडम देखिए, आप स्टूडियो में बैठ के गर्मी का अंदाजा तो लगा सकते हो भी बाहर कितनी गर्मी है, मगर आप अपनी फैन फॉलोइंग का अंदाजा नहीं लगा सकते मैडम. दोहा में बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है आपकी.
0: चलिए आज मैं, मेरा कुछ ना कुछ वजन बढ़ेगा, मैं खुश हूँ. चलिए थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए. ओके टेक केयर, बाय. ऑल राइट, इतनी अच्छी प्यारी प्यारी बातें हो गई हैं यहाँ पर, और कुछ और भी कॉलर्स हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं. चलिए उनसे बात कर लेते हैं. हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कैसे हैं रईस जी, खैरियत से?
2: अल्हम्दुलिल्लाह. आपका अंदाजे गुफ्तगू की तारीफ करके 2 किलो वजन हम भी बढ़वा देते हैं.
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं बहुत ज्यादा वजन हो जाएगा मेरा.
2: आप आज नहीं, मैं कुछ साल पहले मैं आपकी तारीफ को मतलब कर चुका हूँ. आपका अंदाज जो बयां होता है, आपका अंदाज जो गुफ्तगू होता है, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन. और आपको तो मैंने जर्नलिस्ट के उस पे ही मैंने रख दिया था कि आप बहुत बेहतरीन जर्नलिस्ट भी, मतलब आपके अंदर वो क्वालिटी है. क्योंकि
0: शुक्रिया,
2: कोई जरूरी नहीं है कि बंदे का मतलब जो एक अंदाज होता है बात का, सामने वाले को किस तरीके से सेटिस्फाई कर देते हैं बात करके, वो बिल्कुल आपका अंदाज बेहतरीन है. और महवेश भी, अभी फिलहाल महवेश भी जो मतलब शुरू में जब आई थी तो उतना तो मैं नहीं पसंद करता था जो 2014 में, लेकिन बाद में उनके अंदर भी बहुत बेहतरीन आ चुका है क्वालिटी. हालां वो भी बेहतरीन है. और हमारे भाई और ये क्या नाम है इनका भी अभी बेहतरीन अंदाज होता है, जो हमारे भाई अभी आपके जो साथी हैं गए सरवर साहब, वो भी मतलब
0: लोगों को कहाँ ही होता है, उनका कब होता है बेहतरीन? देखिए मैं आपको रईस जी बताऊं, उनका माशाल्लाह ठीक ठाक, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक ठाक वजन है, क्यों चाह रहे हैं और बढ़ जाए?
2: पता है उनकी तो मतलब वीडियो देखते रहते हैं लाइव माशाल्लाह. एक हमारे मामू का लड़का है वो भी यहीं पे है, तो दोनों को कंपेयर करें साथ में तो शायद है कि मतलब.
0: अरे भाई हमारे सर्वर भाई जो है ना वो थोड़े और भारी ही बढ़ेंगे. इस पे तो हम लोगों ने बेट लगा रखी है, कहीं भी किसी को हम भेजते हैं हमारा आदमी.
2: नहीं नहीं नहीं, तो कंपटीशन में वो मेरे मामू का लड़का भी है, उसको भी थोड़ा बोलते हो कि मतलब थोड़ा सही है, बोलता यार.
0: अच्छा मुझे फोटो भेजिए, मैं देखना चाहूंगी कि सर्वर भाई ज्यादा मतलब वो जरा आगे रहेंगे क्या आपका रिलेटिव हो.
2: मिलते जुलते है. अच्छा. वो बोलता है यार क्यों मेरा वजन इतना मेहनत करके तो अपने मतलब बॉडी को मैंने ये किया हूं, तो
0: क्यों आप नजर लगा रहे हैं उसकी बॉडी को? वाकई सही है
2: तो अभी उम्र उसकी भी 32-35 साल की उम्र है, लेकिन
0: तो कुछ भी नहीं है.
2: तो
0: लेकिन सर्वर भाई की तो खैर चलो ज्यादा ही है, 50 तक पहुंच ही रहा है. मैंने कहा अब तो आपके टाइम मतलब वही हो रहा है, थोड़ा सा वजन
2: नहीं पहुंचा है उनका भी, वो तो आप लोग देख रहे हैं वो चेहरे का ये बता देता है. माशाल्लाह वो भी थे तो बेहतरीन, मतलब वो भी वो मतलब प्रोग्राम को पेश करने का उनका अंदाज. और खासकर हमारे जो यूपी वाले होते हैं जो इस मामले में, खासकर जो अलीगढ़ और ये सब जगहों पे, तो उनके उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है उस सब कॉलेजों में, सब यूनिवर्सिटी में, कि वो कहीं भी कोई भी फील्ड में रहें तो समझ लो उनके अंदर काबिलियत रहता है वो. मैम तो मतलब ये करता हूँ.
0: अच्छा तो आज, आज का मुद्दा जो है,
2: मैं थोड़ा सा इसके ऊपर अभी मैं थोड़ा लेट में ट्यूनिंग किया मैं.
0: अच्छा आपने लेट किया. आज हम बात ये कर रहे हैं कि अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज है, क्या ऑनलाइन फ्रीडम, ऑनलाइन आजादी आपको लगता है कि ये ज्यादा जरूरी है, या फिर आपको लगता है कि ऑनलाइन प्रोटेक्शन या सेफ्टी ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है?
2: भाई प्रोटेक्शन अगर नहीं है ना तो समझ लो कि ये ऑनलाइन का जो फ्रीडम व्रीडम कुछ नहीं है. मैं तो देख रहा हूँ मतलब इस तरीके से लोग इतना ज्यादा लोग ट्रोल करके और इतने भद्दे कमेंट कर रहे हैं ना, मतलब मुझे हैरानी होता है कि यार हर आदमी का अपना एक मतलब सोच है, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब मुल्क में रह रहा है उसी प्राइम मिनिस्टर को सारे के सारे लोग मतलब सैल्यूट करें।
0: भैया भैया भैया रुकिए रुकिएगा, कुछ बोलिएगा नहीं ऐसा ऐसा।
2: नहीं नहीं मैं समझ गया समझ गया, बस मैं कोई भी मुल्क का हूँ, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लूंगा,
0: कुछ भी नहीं बोलिएगा,
2: नाम नहीं लूंगा मैं। मेरा ये कहने का मतलब कि कोई भी मतलब जो बंदा जो ऊंचे उस पर है तो हर बंद कोई जरूरी नहीं कि कोई आलिम ही हो या कोई जमात का भी हो, तो कोई जरूरी नहीं कि हर कोई उसके हर बात से एग्री हो, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो फिर वो भद्दे कमेंट करने पे और उनके फैमिली तक पहुंच जाते हैं ना, ये बहुत बड़ा मतलब बदतमीजी का मतलब वो, और अपनी वो मतलब मैं क्या हूँ वो बता देते हैं कि मेरे अंदर कितना ये है। तो इस चीज का जो अंदाज है तो कभी कभी तो मैं इतना फंस गया हूँ ना कि बड़े फिर हम उस पर नहीं उतर आते हैं, ऐसे ऐसे बेवकूफाना लोग को मतलब कम्प्लीमेंट करके मतलब लोगों को ये कर जाते हैं ना।
0: हाँ ये तो है,
2: तो बड़े आराम से करके कि भाई मतलब समझा के ही निकले हैं, अगर हम भी उसी पे उतर आए तो फिर वो बहुत ज्यादा ओवर हो जाता है। तो फिर हम थोड़ा समझाने के मोड में थोड़ा सा वो बंदे के अंदर आ जाता है इंसानियत की, हो सकता है अगले को ऐसे मतलब बेवकूफी ना करे, तो हम भी उस पे नहीं उतरते हैं कि यार फिर इसके उसमें हमें फिर इसमें फर्क क्या रह जाएगा,
0: क्या फर्क रह जाएगा। सही बात है,
2: बहुत जरूरी है फ्रीडम का ये है। हाँ और बहुत सी बातें जो मतलब खासकर अभी जो हालात है इसमें तो बिल्कुल मुझे मतलब, बल्कि मैं तो न्यूज देख लेता हूँ, बोलता हूँ कि कमेंट में ना जाऊं, कमेंट में जाऊंगा ना तो 5 मतलब पॉजिटिव है तो 10 नेगेटिव मिलते हैं उसके ऊपर मतलब ये करने वाले लोग और मतलब हंसने वाले इमोजी, और उसको इतने बेहतरीन बात उसमें भी हंसने वाला इमोजी, उसका मजाक करने वाला इमोजी या कुछ उल्टे कमेंट करके लोग मतलब उसको सामने वाले को,
0: हम बोलते हैं
2: यार क्या है इस बंदे के अंदर की, अब इससे भी ज्यादा अगर आदमी मतलब ये ना हो पाए तो वो किस लेवल का बंदा है और किस कौन से माइंड सेट को रख रहा है। और फिलहाल के हालात पर भी कुछ लोग मतलब ऐसे ऐसे निकल के आए कि मतलब उनका भी सुन के बड़ा अफसोस हो रहा है देख के, उनको हकीकत से बिल्कुल मतलब ये करके पीछे रख के बस अपने उसको जो एक उसको फॉलो करते हैं वो उसी को लेके बस आंख बंद करके इतना ज्यादा अंधे हो गए हैं लोग, मतलब हम लोगों के ही उसमें, खासकर हम मुसलमानों में भी।
0: और आपने एक चीज बहुत ही अच्छी कही कि कहने को है कि हम आजाद ऑनलाइन फ्रीडम की बात करते हैं बट है नहीं, और ये बात सच है, अब है नहीं तो बस चलो फिर बचता है क्या, ऑनलाइन प्राइवेसी या फिर सेफ्टी सिक्योरिटी इस पे ही आ जाते हैं, क्योंकि जेन्युइनली देखा जाए तो वाकई अब एज सच है तो नहीं, हम अपनी राय उतना ओपनली शेयर नहीं कर सकते, और जैसे बताया कि लोग ट्रोल करने लग जाते हैं, उल्टे सीधे कमेंट्स डालते हैं, और फिर वो बहुत जैसे गाबा जी ने बताया कि आप डिलीट भी कर दो ना मैसेज उसके बाद भी आपको मैसेंजर पे जाके इधर उधर जाके।

0: मतलब सुनते सुनते
1: आप बहुत अकलमंद है माशाल्लाह। हाँ,
0: नहीं, हम लोग को भी आप लोगों से सीख लिए हैं, अकल आ गया कि अब इतना ज्यादा मतलब ओपनली कहने की जरूरत नहीं है,
1: हर कोई समझ रहा है, बस वही है कि कभी कभी हम लोग बातें करते हैं, चाहते हैं कि बात निकले
0: और अच्छे अच्छे पोस्ट पे बैठ के और ऐसे ऐसे मतलब उनसे लोगों को मतलब बिल्कुल ये मतलब उम्मीद नहीं रहता कि यार ऐसे ऐसे लोग बेवकूफाना बातें करके और ऐसे ऐसे मतलब ये करके लोगों को ये करेंगे, तो हालां बहुत सोच समझ के हमें ये करना चाहिए। और फिर ये हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि किसी के ऊपर कमेंट करने से पहले बहुत आगे पीछे सोचना चाहिए, बहुत आगे पीछे कि जिस किस लेवल का बंदा है उसके ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं, वहां पे मतलब कमेंट करें, नहीं नहीं तो बिल्कुल खामोश होके निकल जाए, वो बेहतर है मेरे ख्याल से, बेहतर है कि वो उससे ज्यादा ना पड़े उस बहस में। अगर वो बंदा उस लेवल का है, क्योंकि कुरान में हमें कहा गया है कि अगर वो सामने वाला बंदा तुम्हारे उसको तो उसको नहीं तो कालू सलाम है उसको सलाम मतलब निकल जाओ तुम वहां से बिल्कुल, मतलब इतना ज्यादा बहस करोगे जाहिलों से तो फिर वो तुम्हारे ऊपर मतलब वो ये हो जाएगा, तो जाहिलों से बहस नहीं करना चाहिए। हाँ, आपके लेवल का बंदा है तो उससे थोड़ा सा कोई भी मामले में उससे थोड़ा सा समझा कि हाँ हो सकता है उसके अंदर मुस्बत आ जाए सोच बन जाए उसका, तो थोड़ा सा उसका मतलब ये रहनुमाई करो। लेकिन अब ऐसे लोगों को रहनुमा कि जिनका पेशा वही है तो फिर वो बहुत बड़ा, मैं सऊदी अरब में था फर्स्ट में, तो एक बंदे ने मेरे से मांगा मोबाइल, बोला यार दे दो थोड़ा सा, मैं एक बंदे के कॉल करना है, तो आजमगढ़ के साइड का था वो बंदा, तो उसने कहा कि थोड़ा दे दो, तो मैं कहा यार मेरे मिस कॉल की क्या बात यार, फोन बात कर ले, तो बोल कोई मसला नहीं है पैसे मोबाइल में, तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं खाली मिस कॉल करूंगा। वो बंदा मिस कॉल किया, अब वो जब वहां से रिप्लाई करना शुरू किया ना, तो इतना बदजबान बंदा वो, मैं बोला यार ये कौन बंदा यार, मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ। वो मजाकन उसने मुझे ये किया कि वो बंदे का भी मतलब उसका रिटर्न क्या होएगा, तो मैं बोला यार ये तो बंदा बहुत बदमाश मतलब इसी है, और फिर मैं उसको बहुत डांटा, मैं बोला तू क्यों ऐसा किया, तो बोला मजाक में मैंने, तो मैं बोला उसके मैं इतना तंग आ गया, फिर बाद में उसको भी मतलब ब्लॉक किया मैं बोला यार अब ऐसे ऐसे लोग बेवकूफी कर जाते हैं कि उसका मतलब बहुत गलत, उनका बिजनेस ही वही, उसको कितना भी समझाते लेकिन लास्ट में उसके मुंह से गिलाजत ही निकलता, तो ऐसे ऐसे लोग हैं उनका पेशा ही वही है, तो ऐसे लोगों में मतलब ये नहीं होना चाहिए हमको। और एक बात और मैंने सुना कि एक बंदे ने उसको समझ लो कि उनके दादी दादा का मतलब

0: मेरे लड़के ने खुद मुझे बेवकूफ बनाया है साल पहले है, तो मैं खुद बेवकूफ बना हूँ कि मैंने सिम को क्या किया, वो असल में वहाँ पे बनारस में पढ़ता था, तो मैं बोला यार मेरे पास, मैं तो कतर में जा रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल ये कर रहा हूँ, तो यार सिम पड़ा रहेगा हर महीने रिचार्ज करना वैसा, और इससे भी जरूरत पड़ता है तो अपना खुद यूज करेगा, और मैंने बैंक का सिम दे दिया। वो बंदे ने वो मतलब हाला वो नादानी में मतलब उसने किया, मैंने बहुत उसको डांट लगाया, मैं बोला तुम इतने बड़े बेवकूफ लोगों के साथ में, तो ये सब हमें बहुत सोच समझ के अपने मतलब उस लेवल का प्राइवेसी ये ख्याल करना चाहिए,
1: बहुत ज्यादा ख्याल करना चाहिए।
0: नुकसान किया बाद में मैंने बैंक के मैनेजर को फोन किया, तो उसने कहा कि भाई अब ये इससे वो UPI किया हुआ है आपका, मैं बोला मैं तो यार कतर में बैठा हूँ, तो ये सब चीजें आम हो गई, तो बहुत सोच समझ के और उनको
1: या
0: तो ट्रस्ट करें,
1: सही बात,
0: उस हिसाब से उनको अपने ट्रस्ट में लें, नहीं तो फिर वो आजकल के माहौल के हिसाब से बोलते यार क्या जाता है, लोग सोच रहे हैं कि बस हाँ अरब में रह रहे हैं लोग, तो बिल्कुल उनका उनको क्या हो, तो तोड़ तोड़ के खाली दे रहे हैं, उनको कोई मकसद मतलब उनको परेशानी,
1: बहुत ज्यादा एहतियात चाहिए और बहुत ज्यादा मैं कहती हूँ लिटरेट करने की जरूरत है, अवेयरनेस की बहुत सख्त जरूरत है,
0: ध्यान करना चाहिए कि मतलब उस लेवल का, या तो उनको तुम अवेयर करके ले जाओ, तो फिर उस हिसाब से उनको आग बन के ट्रस्ट करो, नहीं तो फिर वो धोखे में तुमको बेवकूफ बना देंगे,
1: कोई बड़ा कोई मिसाप ना हो, जी जी जी सही कहा, बहुत अच्छी जबरदस्त बात, थैंक यू सो मच रईस जी, जजाकल्ला, थैंक यू फॉर योर कॉल, बहुत मजा आता है आपसे बात करके, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, चलिए ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, और वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा मैंडेटरी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो इस टॉपिक पे थोड़ी सी और बात करेंगे और फिर इसे कंक्लूड भी करेंगे, फिलहाल के लिए छोटा सा ब्रेक, मैं यूं गई और यूं आई।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से, कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: बस खत्म हो गया। वेलकम बैक गाइस। और ये गाना इतना प्यारा है, इतना प्यारा कि मैं तो इस गाने में ही खो गई और मुझे लगा कि थोड़ा और चले बट ये यहाँ पर एंड हुआ। और इतने अच्छे बोल के बदला नहीं है, मैं कहती हूँ कि भाई बदला लो ना लो, खुद को बदलो, क्योंकि अब वो दौर है कि जब हम ये लाइन तो कह नहीं सकते कि देखिए बदलिएगा नहीं, जैसे आप हैं वैसे रहिए, नहीं ऐसा हो नहीं सकता। आपको जो है ना सिस्टम धक्के मार के, आपको लोग धक्के मार के, आपको वो चैलेंजिंग सिचुएशंस जो है ना वो धक्का दे दे के बदलने में मजबूर करती हैं। इसीलिए आज एक नया वर्ड यूज़ किया जाता है कि नहीं हम बदल नहीं रहे, वी आर लर्निंग समथिंग न्यू, अडॉप्टिंग समथिंग न्यू, और ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट भी हो गया है।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
0: वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नाजिया आपके साथ 751 ऑन द क्लॉक, और मेरे साथ एक कॉलर यहां पे कनेक्ट हो चुके हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम नाजिया, कैसी हैं आप?
0: वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं?
2: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मॉर्निंग आई एम श्योर एज ऑलवेज एक्सीलेंट जा रही है।
0: जी जी जी, एक्सीलेंट इज द वर्ड, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई होप द सेम फॉर यू, आपकी भी मॉर्निंग बहुत ही एक्सीलेंट जा रही है
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: सो यार, आपका टेक ऑन टुडेज टॉपिक?
2: नहीं मैं कुछ एक लिसनर्स को सुन भी रहा था और आपकी भी बात सुन रहा था, लेकिन मुझे ना क्लैरिटी नहीं हुई है एक्चुअली इस टॉपिक के ताल्लुक से, कि जब आप ऑनलाइन फ्रीडम या ऑनलाइन प्राइवेसी बोल रहे हैं आप, तो व्हाट डज दैट मीन एक्चुअली?
0: देखिए ऑनलाइन फ्रीडम का मतलब ये है कि आपके पास इतनी फ्रीडम हो कि आप जब चाहें जो चाहें अपना पीओवी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपना जो ओपिनियन है वो कहीं भी शेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन फ्रीडम का मतलब ये है कि आपके पास सारी चीज़ों का एक्सेस हो, कोई भी टूल जिसे भी आप सर्च करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो आपकी एक ऑनलाइन फ्रीडम है। और ऑनलाइन प्रोटेक्शन तो आप समझते ही हैं, उसका मतलब ये है कि जितने भी ऑनलाइन डेंजर्स हैं उनसे आपको बचाया जाए, आप बचें या महफूज रहें, चाहे प्राइवेसी है, चाहे सेफ्टी है, चाहे सिक्योरिटी है, वो सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। उसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे सिक्योर रखी जाए, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनसे कैसे प्रोटेक्शन मिले, या फिर जो हार्मफुल कॉन्टेंट है वो आपके बच्चों तक ना पहुँचे, या फिर जो ऑनलाइन हरासमेंट्स हैं या जो बुलिंग है उन पर अच्छा कंट्रोल हो, और स्कैम्स हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। बट मुझे लगता है कि फ्रीडम भी यहाँ पर कुछ हद तक हल्की फुल्की अहमियत रखती है आज के दौर में, जहाँ हम अपनी आवाज़ जो है ना वो पहुँचाना चाहते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन फ्रीडम भी हमें चाहिए। स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं,
2: ऑनलाइन फ्रीडम तो है, आप जो चाहे पोस्ट कर सकते हैं, मतलब
0: क्या वाकई आपको लग रहा है ऐसा है? नहीं, व्हाट आई एम सेइंग है, कहने को फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट इज देयर, बट कभी भी आप देखिए, नोट कीजिए, अगर आप थोड़ा भी ऐसे वैसे पोस्ट के नीचे, लेट्स नॉट टॉक, मतलब डीप बहुत ज़्यादा हम नहीं बात करेंगे, बट आपने महसूस किया होगा कि कभी आपने कोई पोस्ट है ऐसी वैसी और आपने उसके नीचे अपना कोई कमेंट डाला और वो बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव कमेंट नहीं था, या वहाँ पे लोग उससे इत्तेफाक नहीं रख रहे, तो लोग ऑल ऑफ सडन कुछ ही मिनटों में या कुछ सेकंड्स में आप देखेंगे कि आपको जो है ना वो ट्रोल करना शुरू कर देंगे, फिर आपको बाकायदा जो है वो टैग करेंगे, फिर आपके साथ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे। सो ये मतलब आप अपनी राय नहीं रख सकते, मैं जनरल टॉपिक्स की बात कर रही हूँ कि कोई ऐसा जनरल है,
2: हम जनरल पे ही बात करेंगे,
0: हाँ, तो हमारे पास उतनी फ्रीडम है नहीं एग्जैक्टली कि हम अपनी राय ओपनली रख सकें।
2: अच्छा, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि हमारे पास एक्चुअली फ्रीडम है, मतलब आप जो चाहे अपनी बात कह सकते हैं। अच्छा, जो जो आप जो बात कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं, ये आपको कोई रोकता नहीं है वहाँ पर, राइट?
0: रोकता
2: आप
0: नहीं
2: जो चाहे कह सकते
0: कह सकते हैं, बट आपको ट्रोल तो करते हैं ना?
2: नहीं, अब वो दूसरी चीज है, दैट्स व्हाट आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। अभी देखिए, आप वहाँ पर अपनी कोई भी बात आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, किसी को पसंद आए या नहीं पसंद आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, राइट, आप रख सकते हैं। तो जब आप रख सकते हैं तो फिर दूसरा भी कोई बात रख सकता है, तो उसको भी वही फ्रीडम है।
0: हाँ, मतलब ये तो है।
2: आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो पूरी फ्रीडम होनी चाहिए कहने की, दूसरे को ना हो वो फ्रीडम, दैट शुड नॉट बी द केस। तो मुझे लगता है फ्रीडम तो है, हम मतलब जहां तक मैं इसको देखता हूँ, जिस तरीके से मैं इसको देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ फ्रीडम तो है। अब जो एक्चुअली जो इशू है ना वो फ्रीडम का नहीं है यहाँ पर, इशू जो है वो ये है कि आप जो है वो कितना एथिकल यूजर है उस पे, ठीक है। आप जो है, अब देखिए ये सारा जो है ना, अब आप इसी को अगर आप ऑनलाइन प्राइवेसी से भी अगर जोड़ेंगे ना, तो आप फ्री में जो है आज की तारीख में, व्हेन आई से आप, आई डज नॉट मीन यू, आप, आई मीन जनरल ऑल ऑफ,
0: बिल्कुल,
2: ठीक है। तो आप जो है फ्री में जो है वो दुनिया भर का सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, क्यों दिया हुआ उन्होंने आपको फ्री में, कभी सोचा है आपने?
0: हाँ, कुछ भी आज के दौर में फ्री नहीं मिलता, तो ठीक है।
2: there is no free lunch in this world, right? और आप दिन भर जो है वो फ्री का सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भैया? जैसे ही आप जो है कोई भी सोशल मीडिया या कोई भी लिंक जो है वो क्लिक करते हैं ना, आप देखिए, इट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू नो कि भाई मैं हैक्ड हूँ, एंड देन यू नो यू टेक द करेक्शंस अकॉर्डिंगली।
0: तो अगर मैं हैक्ड हूँ तो फिर मैं तो फ्री भी नहीं हूँ।
2: हाँ, आप हैक्ड हैं, यस, आई मीन नॉट ओनली यू, एवरीबॉडी ऑफ,
0: हाँ, सो मतलब जो हम कह रहे हैं ना कि हम कहने के लिए हमारे पास है फ्रीडम, बट हम एक्चुअली फ्री नहीं है।
2: आप अपनी बात कोई कहना चाहती हैं, आप उसके लिए फ्री हैं, ठीक है। हम जो बात कर रहे हैं इस पे वो ये है कि क्या हम अपनी बात कह सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं, ठीक है। लेकिन आपका डेटा जो है, जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी नहीं है, वो ऑलरेडी पूरे नेट पर है, वो और उसका उसको कमोडिटाइज किया जाता है उसको बकायदा, है ना। तो वो जो है, मुझे लगता है कि इशू यहाँ पर मेरे नजदीक ये नहीं है कि भी फ्रीडम है या नहीं है, मुझे लगता है फ्रीडम है। द इशू इज, आप खाली हम उसी फ्रीडम के वाले की बात कर रहे हैं कि इशू जो है वो ये है कि उसकी जो एथिकल यूजेज है वो किस हद तक ना आप इनकरेज कर सकते हैं। वो जो है वो गवर्नमेंट को और सोसाइटी को मिलकर जो है उसके ऊपर काम करना चाहिए। सी, एक चीज है इसमें, आपको ये ध्यान रखना, चाहे मैं हूँ या आप हूँ या कोई भी हो, हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिएगा कि

0: हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट एज फ्रीडम फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेस. आप समझ रही हैं?
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: मतलब आप ये
1: सही.
0: आप ये नहीं है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप कुछ भी बोल के जो है वो आप बच जाएंगे. ये है कि ये होना चाहिए.
1: और फ्रीडम का देखिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे लगता है कि आज पूरी दुनिया में फेक न्यूज कितनी तेज स्प्रेड हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें फ्रीडम है कि हम चीजें एक्सप्रेस करें तो हम आराम से वो चीजें एक्सप्रेस कर रहे हैं. साइबर बुलिंग क्यों बढ़ रही है? फ्रीडम को ही तो अटैक किया जाता है ना. फ्रीडम की फ्रेम में ही तो इनटू द ब्रैकेट हम लोगों के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं. फ्रॉड्स हैं या स्कैम्स हैं, तो ये सब किसके अंडर में हो रहे हैं? किस बिग अम्ब्रेला के अंडर में हो रहे हैं? अगेन फ्रीडम के अंडर में.
0: ये सब जो है मुझे ऐसा लगता है
1: कि हम फ्री हैं तो हर चीज शेयर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज हो रहा है, हेट स्पीच बढ़ रही है, आप देखिए ऑनलाइन हरासमेंट फैल रहे हैं. ये सारी चीजें दे कम अंडर फ्रीडम. द बिग अम्ब्रेला इज फ्रीडम, क्योंकि आजादी की बात होती है एंड हम कहते हैं, हम मानते भी हैं इस चीज को कि होनी चाहिए. बट उस आजादी के चलते ही तो हमें इतनी लिबर्टी मिली है कि हम सारी चीजें जो है वो फैलाएं.
0: फ्रीडम देखिए, फ्रीडम क्या है कि आपको फ्रीडम है, ठीक है. अब ये आपका जो है ये आपका विवेक है कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है. ये फ्रीडम का मतलब मैं जैसे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, फ्रीडम डज नॉट मीन फ्रीडम ऑफ स्पीच डज नॉट मीन फ्रीडम फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है. तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए, या सारी जो हम जो भी लोग हैं उनको, हम सबको ये पता होना चाहिए. फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी बोलूंगा और उस पे जो है वो कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा. वो स्टेप होना चाहिए वहां पर. आई थिंक दैट शुड बी, दैट इज द राइट यू नो प्लेस टू वर्क ऑन. क्योंकि फ्रीडम, जैसे देखिए मैंने जैसे कहा, फ्रीडम अगर आपको है तो मुझे भी होगी, होनी चाहिए.
1: क्यों नहीं है, और क्या. बिल्कुल. तो जब मुझे भी कुछ कहने के,
0: we cannot be selective in that sense, right?
1: तो आपको लगता है कि फ्रीडम की जब हम बात करें तो there has to be like certain restrictions जहां पर
0: problem पता है क्या है? हाँ. problem पता है क्या है ना, ये problem ये है कि हम फ्रीडम का हम सही से मतलब समझते नहीं है. ये
1: ये असली बात कही आपने, बिल्कुल. ये हमें नहीं समझ में आता फ्रीडम किसको दे रहे हो, किसको मिल रही है.
0: तो जिस दिन हम लोग फ्रीडम का मतलब समझ जाएंगे उस दिन शायद ये जो जितने इश्यूज हैं वो सब खत्म हो जाएंगे. आई डोंट थिंक इट विल हैपन सून एटलीस्ट, बट जिस दिन हमें फ्रीडम का मतलब सही हम सब लोगों को समझ में आ जाएगा सही से, तो शायद उस दिन समझ जो है वो कुछ ये बेहतर जगह हो जाएंगे. अदरवाइज आई कैन टेल यू दीज आर ऑल फिल्दी प्लेसेस, यू नो मोस्ट ऑफ देम आर फिल्दी प्लेसेस.
1: अब तो सभी समझ गए हैं, बट स्टिल वी आर सो यूज्ड टू एंड सो एडिक्ट कि हम चाह के ना चाह के देखते तो हैं ही, पढ़ते तो हैं ही चीज़ें, सर्कुलेट भी कर देते हैं. हो सकता है अपने कमेंट्स हम रिजर्व कर लें, बट देन बाकी चीज़ें तो हम कर ही रहे हैं. तो इफ वी आर देयर ऑन दैट प्लेटफॉर्म हम एक्सपोज तो हैं दुनिया के सामने.
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. और सिक्योरिटी के ताल्लुक से तो देखिए ये जो है ना, ये आप द मोमेंट यू आर ऑन एनी प्लेटफॉर्म और क्लिक अ लिंक और एनीथिंग यू आर ऑलरेडी एक्सपोज्ड.
1: या ये तो सच.
0: तो आप ये मत समझिए कि भाई आप जो है आपने अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी है या अपना कुछ ऐसा करके रखा है तो वो इट विल यू नो यू आर सेफर देन अदर्स. नो यू आर नॉट, नोबडी इज एक्चुअली, नो वन ऑफ.
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये फैक्ट.
0: इफ यू आर एन इनफॉर्मड यूजर इट इज ऑलवेज बेटर फॉर यू कि भाई आपको पता है, हाँ भाई ये मेरा जो इन्फॉर्मेशन है प्राइवेट पब्लिक सारी सब है सर्वर्स पे. और कभी आप जाके देखिएगा कुछ एक वेबसाइट है लाइक यू नो हैव आई बीन पॉन्ड करके है, ठीक है, एक ऐसी नॉट वीपीएन का है, उस पे देखिएगा आप अपना ईमेल डालिएगा आपको बता देगा आप कितनी जगह पे आपका डेटा ब्रीच हो चुका है ऑलरेडी. मैं एक्सपोज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रीच की बात करता हूँ.
1: अच्छा
0: जी,
1: मैं लिख लेती
0: हूँ. ब्रीच की बात कर रहा हूँ कि कितना डेटा जो है वो, और ये सारा आपका डेटा डार्क वेब पर होता है ये सारा. आप सिर्फ लकी हैं अगर आपके साथ कोई जो है वो अभी कोई ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं हुआ है. सिर्फ आप लकी हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं. अदरवाइज
1: कब तक है,
0: और ये अब आपकी किस्मत के ऊपर.
1: ये तो सही कहा, हमारी किस्मत है, देखिए हम कब तक लकी रहे. बिल्कुल सही कहा, और जितने भी पॉइंट्स थे बहुत ही वैलिड थे. मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, बहुत ही अच्छा आपने कहा, बहुत ही जबरदस्त.
0: तो इसका हमें ध्यान रखना है कि भाई फ्रीडम की, फ्रीडम जो है वो आपको फ्रीडम है मेरे जाल पे थप्पड़ मारने की, बट देन आई ऑल्सो हैव द सेम फ्रीडम. तो यू नीड टू केयरफुली एक्सरसाइज योर फ्रीडम, दैट्स द पॉइंट.
1: ये इम्पोर्टेंट लाइन, वेरी वेल सेड. बहुत ही कमाल की आपने बात कही और इस टॉपिक को आई थिंक इतने अच्छे से समराइज करना, इतने अच्छे से एक्सप्लेन अभी तो मैं भी नहीं कर पाती जितना आपने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. सो थैंक यू वंस अगेन. हमेशा की तरह हमेशा ही मैं आपसे कहती हूँ कि बहुत अच्छा आपका टेक रहता है हमारे टॉपिक पे, एंड थैंक यू कि आप टाइम निकालते हैं और जुड़ते हैं मेरे साथ. सो रियली थैंक यू सो मच.
0: एज ऑलवेज, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू.
1: Same here. Have a great day. Take care. Enjoy your weekend.
0: Take care.
1: You too. Take care. Bye. Walaikum assalam. ऑल राइट दोस्तों, यहाँ पर इतने अच्छे से इस टॉपिक को समझा के कंक्लूड किया कि मुझे बस एक लाइनर, वन लाइनर जो है कंक्लूजन दूंगी मैं छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि अभी फिलहाल हम बढ़ रहे हैं एक मैंडेटरी ब्रेक की तरफ.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check. Right guys, welcome back. Time for the time check. और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 8:05।
0: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: आज दोस्तों हमने जो है ना बहुत ही कमाल धमाल के टॉपिक को एक्सप्लोर किया, जहां आपसे मैंने पूछा ये था कि व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इज़ इट लाइक ऑनलाइन फ्रीडम और ऑनलाइन प्रोटेक्शन। तो मैं कह सकती हूँ यूनानिमसली जितने भी कॉलर्स मेरे साथ जुड़े सबका मानना था कि प्रोटेक्शन, और मैं भी आपकी बात के साथ इत्तेफाक रहती हूँ, कम्प्लीटली एक्सीड टू दिस कि हाँ ऑनलाइन फ्रीडम जो है वो ऑनलाइन प्रोटेक्शन से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हाँ प्रोटेक्शन बुनियादी है और फ्रीडम उसके ऊपर अगर आ जाए तो ठीक है, बहुत अच्छा है। देखिए जब तक लोग जो है वो महफूज महसूस नहीं करेंगे तो ऐसी फ्रीडम का क्या फ़ायदा, और वहीं दूसरी तरफ अगर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो तो क्रिएटिविटी और उस तरह के सेल्फ एक्सप्रेशन का क्या फ़ायदा। इसलिए जो सबसे बेस्ट अप्रोच हो सकती है ना हम सबके लिए लाइफ में हमारी, वो है कि फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमें रिस्पॉन्सिबल हमें ही बनना है, जैसे कहा माय लिसनर्स ने कि हमें आज़ादी है, हमें आज़ादी है। आज इंटरनेट पे हम जो चाहें सर्च करें, जो चाहें हम देख लें, जो चाहें हम एक्सेस कर लें, तो ये हमें आज़ादी है। लेकिन हमें जो है आज़ादी का सही इस्तेमाल करना है, मतलब फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोटेक्शन विद बैलेंस, ये दोनों चीज़ें जो हैं बेस्ट टेक हो सकती है। वन लाइनर टेक ही मुझे देना है क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और फिर मैं आप लोगों के साथ गेम नहीं खेल पाती हूँ, तो फिर समझ सकते हो तो बस ये होता है कि आज हम गेम जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो बस यही आपसे कहूँगी कि जब फ्रीडम हो और चॉइसेस आपके पास टफ हो, फ्रीडम है लेकिन प्रोटेक्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो देन कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का जहन में रखना है कि आज़ादी जो है वो हमारे लिए, हम सब के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह है, और जो प्रोटेक्शन है उसमें गुड बैलेंस अगर हम क्रिएट कर पाते हैं तो इन दोनों चीज़ों को एक्सेस करना हम सब के लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए इसी टेक के साथ अब यहाँ पर मैं जो हूँ इस टॉपिक को कंक्लूड कर रही हूँ। अब से थोड़ी देर बाद हमारा गेम सेगमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा, उसके अलावा हमारा जो है ऑनलाइन सेगमेंट भी है एक छोटा सा, जहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी मैं आज आपके लिए नरेट करने वाली हूँ, और आप मुझे ये बताइएगा कि ये कहानी जो है वो किस शख्स की है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको उनका नाम लिखकर भेजना है मुझे, और व्हाट्सएप पर ही हम इस सेगमेंट को जो है वो रखेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करने वाली हूँ और 6621207 पर आपको उनका नाम बताना है। तो आज की कहानी कुछ इस तरह से है दोस्तों, ये कौन सी पर्सनालिटी है, ये कौन सेलिब्रिटी है, उसको आपको पहचानना है। और आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो फिल्मों में अक्सर विलन बने लेकिन असल जिंदगी में हीरो साबित हुए। जी हाँ, पंजाब के शहर से निकले और ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी थे, लेकिन इनके जो थे ख्वाब बड़े थे, हौसले उससे भी ज़्यादा बड़े थे, इसीलिए ये मुंबई लैंड किया। इन्होंने स्ट्रगल की, फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की बेहद कोशिश की, देखने में भी ठीक ठाक थे लेकिन बावजूद इसके इन्हें उस तरह के रोल्स नहीं मिले। इनिशियली बेशुमार रिजेक्शन मिला, फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि मैं लीड रोल्स में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, कैरेक्टर जो मिल रहे हैं, जो और रोल्स हैं वो मैं करना स्टार्ट करता हूँ। इन्होंने अपनी अना को साइड में रख दिया, बिल्कुल कोने में रख दिया। और फिर हुआ ये कि इस एक्टर ने एक बहुत ही हिस्टोरिकल फिल्म में एक राजकुमार का किरदार निभाया, और यहाँ पे एक हिंट ये है कि उस फिल्म का नाम जो है ना वो एक मशहूर बादशाह और उनकी बेगम के नाम पर है। ठीक है, ये मैंने हिंट आपको दिया। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि इनकी एक और ब्लॉकबस्टर मूवी आई, वहाँ एक बहुत ही पावरफुल विलन बने जो एक दबंग पुलिस ऑफिसर के सामने नजर आए। जी हाँ, ऑडियंस ने विलन को ज़्यादा पसंद किया। अब एक और हिंट मैं आपको ये दूंगी कि ये दबंग हैप्पी न्यू ईयर आर राजकुमार, सिम्बा जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, लेकिन सबसे खास बात जो इन्हें एक्चुअल में हीरो बनाती है वो ये कि जब कोविड आया या किसी भी तरह की और कोई टफ सिचुएशन आई, एक्चुअल में हजारों लाखों लोगों के घरों तक खाना पहुंचाना, जो फंसे हुए थे उन्हें वहां से निकालना, उनकी मदद करना और खुद हर इनिशिएटिव का हिस्सा बनना, ये कहीं ना कहीं इन्हें रियल हीरो बनाता है। लोगों के लिए इन्होंने ट्रांसपोर्ट अरेंज किया, खाना पहुंचाया, बीमार जितने भी बीमार थे उनके लिए दवाएं पहुंचाई और भी जो ज़रूरत की चीज़ें हो सकती थीं वो सारी चीज़ें पहुंचाई। कोविड के टाइम में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और शायद इसी वजह से इन्हें रियल लाइफ हीरो लोगों ने कहना शुरू कर दिया। अब छोटे छोटे हिंट और मैं आपको देती हूँ कि वैसे तो ये रियल लाइफ विलन है बट रियल लाइफ हीरो है। ये जोधा अकबर में भी नज़र आए, जी हाँ, दबंग में एक यादगार विलन का इन्होंने रोल किया और जो सबसे ज़्यादा मकबूलियत इन्हें जो मिली है, पॉपुलैरिटी या शोहरत, वो इनके चैरिटी और ह्यूमैनिटेरियन वर्क के ज़रिए। अब आपको गेस करना है और मुझे बताना है और मैसेज करना है कि ये मैं किस एक्टर के बारे में बात कर रही हूँ। वेल द नंबर इज 666-22-107। देखते हैं कितने लोग हैं जो इस एक्टर को पहचान पाएंगे। फैयाज जी, क्या बात है, एक तो इतना प्यारा मैसेज आपने किया, मैं आपको बताऊंगी किसने मुझे ट्रोल किया था। देखिए, अब कुछ ऐसे होते हैं ना लोग, जब आपको ट्रोल कर रहे तो उन्हें पता ही नहीं होता कि मैं इधर साइड में इतनी अच्छी हूँ, उन्हें मुँह ने पता ही नहीं, वो मुझे लिखे जा रहे हैं, कुछ भी लिखे जा रहे हैं। आखिर में ये हालत हुई कि मुझे ब्लॉक करना पड़ा, पता है। अच्छा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्या बात है, बहुत जल्दी सही जवाब पहचान लिया आपने। यहाँ पर अहमद जी हमारे साथ हैं एंड ओके, किसी ने लिख के जसविंदर जी ने डिलीट कर दिया है, यूसुफ जी ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। अहमद जी का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है एंड मुबशर फरहान, ओहो क्या बात है, आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। मुबशर जी सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। एंड मुर्शीद जी हमारे साथ यहाँ जुड़ते हैं और इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। आरिफ अंसारी जी का जवाब बिल्कुल ठीक है, नूर मोहम्मद जी का जवाब सही है, रईस खान जी का जवाब बिल्कुल ठीक है, एंड हु इज ही, शरीफ काजी जी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, एंड यहाँ पर सही सही जवाब हमें दिया है मेरी मर्जी, इनका नाम क्या है, हाय कहते हैं, अभी नाम मुझे नहीं पता, आपने अपना नाम लिखा ही नहीं है तो हमें समझ में नहीं आएगा। इमरान खान जी का जवाब बिल्कुल ठीक है और शेख मीरा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। एंड फयाज जी बता रहे हैं कि इन्होंने कोविड में बहुत काम किया, यस अहमद है, ऑल राइट अहमद, और ये सही जवाब हमें भेजा है शाह वसीम जी ने। शाह वसीम जी आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, ये है मोइन अहमद जी का जवाब, मोइन जी ने भी बिल्कुल सही बताया, मीरा का जवाब बिल्कुल ठीक है, शेख मीरा जी बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग जो हैं वो जुड़ते चले जा रहे हैं। लियाकत जी ने सही जवाब दिया है, दैट्स अ राइट आंसर। हसन हमारे साथ जुड़ गए हैं और उन्होंने भी सही जवाब दिया है, ओके सही जवाब। यहाँ पर हमें कोई पूछ भी रहा है कि आज का सवाल क्या, भाई आप तो इतने अच्छे, इतने प्यारे इंसान हैं, मैं क्या ही बोलूँ, अभी मैंने इतनी कहानी सुनाई आपने सुनी नहीं। चलिए मैं फिर आपको हिंट देती हूँ कि आपको एक्चुअल में गेस करना है कि आज मैं किस एक्टर के बारे में बात कर रही हूँ। देखिए कुछ हिंट दे देती हूँ जल्दी से, कहानी तो पूरी क्या ही सुनाऊंगी। ये जो है ना वो इन्होंने जोधा अकबर मूवी, दबंग मूवी और हैप्पी न्यू ईयर और देखा जाए तो आर राजकुमार, इन मूवीज़ में काम किया। हालांकि उतना ज़्यादा एक्टिंग इनकी, मतलब मैं कह नहीं सकती कि बहुत कामयाब हुए, बट या देन ही इज़ अ रियल लाइफ हीरो। ये वैसे तो रियल लाइफ में विलन का रोल ज़्यादा करते हैं, उसमें इन्हें मकबूलियत तो पॉपुलरिटी मिली है, बट हाँ एक्चुअल में देखा जाए तो ये हम सब के लिए रियल लाइफ हीरो हैं क्योंकि बहुत सारे चैरिटेबल वर्क किए हैं इन्होंने, ह्यूमैनिटेरियन वर्क बहुत सारे किए हैं, स्पेशली कोविड की मैं बात करूँ या और भी कुछ कुछ और भी ऐसे मौके आए जहाँ पर इन्होंने बढ़ चढ़ के जो है ना लोगों की आवाज़ से अपनी आवाज़ मिलाई। जब लोग बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं, बोलना नहीं चाहते, डरते हैं कि कहीं उनको किसी तरह की परेशानी मुसीबत का ना सामना करना पड़े, ये वो बंदे थे जो बाकायदा ग्राउंड पे आए, मौजूद थे, लोगों के साथ खड़े हुए, लोगों के साथ इन्होंने जो है वो उनको सपोर्ट किया जितना जो भी जैसे कर सकते हैं। तो बस आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये मैं किस एक्टर के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपको समझ में आ गया है कि ये कौन से एक्टर हैं तो बस इनका नाम लिखिए और मुझे भेजिए। और फिर मैं बताऊंगी कुछ एक खास बात आपको यहाँ पर. रियल हीरो, बिल्कुल सही कहा आपने. इनका नाम है, इनका नाम यहाँ पर जो है बशीर. बिल्कुल सही जवाब आपका. इसके साथ है हनीफ मोहम्मद जी, वालेकुम अस्सलाम, आपने भी बिल्कुल सही जवाब बताया है. एंड सैयद खादिम हुसैन भाई, कैसे हैं आप? और आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग आपको. एंड यहाँ पर एक और मैसेज है, और इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है बट इन्होंने जवाब बिल्कुल सही भेजा है. इसके अलावा यहाँ पर सही जवाब भेजने वाले हैं, इनका नाम मैं ज़रा चेक कर लेती हूँ, फैसल जी. फैसल जी का बिल्कुल सही जवाब है. एंड फैसल के साथ साथ ये कौन है, हुसैन जी, उन्होंने भी सही जवाब भेजा है. बिल्कुल सही आपने कहा, इज़ द राइट आंसर. एंड शेख नाजी शेख जी का जवाब बिल्कुल ठीक है. एंड इसके साथ समवन, इनका जवाब ठीक है, समवन ने भी सही जवाब भेजा है हमें. जसविंदर जी कह रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ जसविंदर जी, आपको तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपके इलाके में तो उन्होंने जाके कितना काम किया. पंजाब से ही आते हैं ये, तो आप कैसे नहीं पहचान रहे बताइए ज़रा मुझे. मैं बिज़ी हूँ और मैंने बहुत ट्राई किया अब, ओके, लेकिन फ़ोन नहीं मिला. तो भाई अभी हम आपको खुद कॉल करते हैं और आपके साथ गेम वेम भी खेलेंगे, तो मना मत कीजिएगा, ठीक है? तो गेम ट्राई कीजिएगा. ओके दोस्तों, जब तक आप वापस और सोच रहे हैं, आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, सोचिए और फिर वापस आएंगे तो अपना गेम जो है वो फौरन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो उसके लिए भी आप ज़रा सा तैयार रहिए. फिलहाल के लिए एपी ढिल्लन और योयो हनी सिंह की आवाज़ में आदत. भैया आदतें अपनी सुधार लो. कैसर जी ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ, सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: देखिए, मुझे नहीं पता था कि मैं ही इनकी फैन हूँ, आप भी इनके बहुत जबरदस्त वाले फैन हैं। कितने सारे लोगों ने बिल्कुल सही सही यहाँ पर गेस कर लिया है। कुछ और लोगों के नाम हम यहाँ पे शामिल करेंगे, जिनमें जल्दी जल्दी नाम देख लेते हैं। इनका नाम तो यहाँ मेंशन नहीं है, बट आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। इसके साथ यहाँ सही जवाब दिया है, इनका नाम भी यहाँ पर नहीं है, तो आपने जवाब बिल्कुल ठीक भेजा है। और ये कौन है, जीने दो। अच्छा, इनका नाम भी नहीं लिखा है, बट आपने जवाब सही दिया। इसके साथ है बशीर जी, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। एंड हु एल्स, यहाँ है जासिम जी, इनका जवाब बिल्कुल ठीक है। एंड इसके साथ सही जवाब भेजा है ये मकसूद जी हैं, इनका जवाब बिल्कुल ठीक है। एंड हमारे पास सही जवाब जो है वो अब्दुल जी का है, अब्दुल जी ने बिल्कुल सही बता दिया है। एंड आरिफ जी, आज मेरा कॉल कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जो मेरे पास था वो सब लास्ट कॉलर्स ने एग्जैक्टली कह दिया। हाँ आरिफ जी, आज आपसे बात अब होगी ना, अब हम गेम की तरफ आ रहे हैं और फिर आज आपसे ही शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले आप ही से हमारी बात होगी, तो ज़रूर आप हमें कॉल कीजिए। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि हमने जो ये बाकायदा आपसे पूछा था ना कि ये कौन से एक्टर हैं जिनके बारे में हम बात करें, तो ये एक्टर्स जिसको आपने सही सही पहचान लिया है, ये हैं सोनू सूद जी। जी हाँ, सोनू सूद, इन्होंने फिल्मों में काम किया है लेकिन उतने सारे इन्हें रोल नहीं मिलते, और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि ये जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते बहुत सारी चीज़ों पे, और ये इनका अपना जो है वो इनके अपने उसूल ऐसे हैं जहां लोग कहते हैं कि उसूल के चलते यहां तुम्हारा चल पाना बड़ा मुश्किल है। तो देखिए, इंडस्ट्री में कई बार फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, झुकना पड़ता है, कुछ चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें, बट ये बंदा अपने आप में काफ़ी रिजिड है, और नहीं मैं रिजिड नहीं कहूँगी, ये उसूल पसंद शख्स है। और इनका शायद इनको इन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में भी ये बात हमेशा कही कि अगर आपको लाइफ में अपने बनाए हुए, अपने पेरेंट्स के दिए हुए उसूलों के वैल्यूज़ के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए, तो फिर आप शायद अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो ये इनका एक फिलॉसफी है कि मैं अपने जो वैल्यूज़ हैं जो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिले हैं उनके साथ मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, भले से मुझे कम काम क्यों ना मिले। और आपने देखा ही था कि कोविड के टाइम जब इतनी मुश्किल थी, हज़ारों माइग्रेंट वर्कर्स जो थे वो घरों से, अपने अपने घरों से दूर फंसे हुए थे, इन्होंने बाकायदा उनके लिए ट्रांसपोर्ट का जो है वो इंतज़ाम किया, बसेस, ट्रेन, सब जगह इन्होंने इंतज़ाम किया। और यही नहीं बल्कि कोशिश ये की कि ये महफूज जगह पर ये लोग पहुँच जाएँ। इसके अलावा मैं कहती हूँ इनके लिए मेरे दिल में और ज़्यादा इज्जत तब बढ़ी जब मैंने देखा कि ये खुद ऑन ग्राउंड पहुँच भी रहे थे, कोशिश हालांकि उस टाइम इतने रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन खाना पहुँचाना, मेडिकल जो भी मदद हो सकती है वो पहुँचाना, ये सारा काम। और अब तो बाकायदा इन्होंने जो है वो एक अपनी चैरिटेबल एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दी है, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना, उनकी हेल्थ केयर और भी जो रोज़गार से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम किया जाता है। बहुत ही अच्छी खूबसूरत बात ये है कि आज भी किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत आए, कोई नेचुरल डिजास्टर है, कोई भी चीज़ है, तो अक्सर आपने देखा है कि रिलीफ एफर्ट्स के लिए जो है वो इनका नाम पहले आता है या फिर ये सबसे पहले खुद ही अपनी पेशकश कर देते हैं। तो आज इनका जो है बर्थडे भी है, तो मुझे लगा कि चलिए इनके बारे में आज हमें बात करनी चाहिए। कुछ एक्टर्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई साइलेंटली जो ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि वो हमारे दिल को छू जाते हैं, और शायद उनमें से एक है सोनू सूद। तो बस आज इनके बर्थडे को भी सेलिब्रेट करेंगे और बहुत सारी और भी बातें करते रहेंगे। लेकिन हाँ, अब आपको आना है, बिल्कुल आना है, जो मैं वेलकम आपको कहना चाहूँगी, हमारे साथ जुड़िए। और हमारा जो गेम सेगमेंट है वहाँ आपके पास मौका है कि आप अच्छा स्कोर

0: स्कोर करें. 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम होता है. 30 सेकेंड्स में कुछ मैं हिंट आपको देती हूँ और मूवी आपको पहचानी है. मैंने तो अभी मूवीज भी नहीं बदली हैं, इसीलिए कि हम सबके लिए आसान रहे, आपके लिए खास करके बहुत आसान रहे. तो बस 30 सेकेंड्स में जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं कीजिए. एक कॉलर इस वक्त मेरे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं. हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु.
0: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु. कैसे हैं आप? खैरियत से?
1: अल्लाह का शुक्र है. नाजिया जी, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं?
0: जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ. सरफराज जी हमारे साथ.
1: बस खाली दूसरों का नाम लियो लेकिन कभी गरीब का नाम मत लियो खाली. शेख अजहरुद्दीन फ्रॉम
0: हैदराबाद. हाँ, अजहर जी, सबके नाम याद है. तो आप तो खुद ही बीच बीच में से गायब हो जाते हैं, तो कैसे आपका नाम याद है? भूल जाते हैं.
1: बिल्कुल सही बात है. हम गायब हो जाते जी. मैं तो खैर इधर ही हूँ और एक लास्ट 10 दिन पहले अल्लाह का फजल करम है, आप लोगों की दुआ है, उमरे को भी जाके आया मैं.
0: अल्हम्दुलिल्लाह
1: अल्हम्दुलिल्लाह. तो इसीलिए जैसो आने सका था मैं, जरा आके भी 10 दिन हो गया तो वाला सुन रहा हूँ. तो मैं 10 दिन से सुन रहा हूँ आपको. वाला मौका जब भी मिला बात करेंगे बोल के. आज अल्लाह ताला वो वक्त लाया, आपसे बात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह.
0: नाइस, चलिए मुझे बहुत खुशी हुई और ये जान के खुशी हुई कि आप माशाल्लाह से उम्रा करके आए. दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब की भी ये दुआ पूरी करे और हम लोग को भी मौका मिले इंशाल्लाह.
1: आमीन आमीन रब्बिल आलमीन. खैर कैसे आप नाजिया जी?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, अच्छी हूँ.
1: ये जो मेरा ये जो ड्रीम था ना, आप यकीन मानिए मेरा लगभग 12 साल से मैं के पीछे कोशिश में था मैं अल्हम्दुलिल्लाह. जब से मैं यानी 2015 में कतर में आया मैं अल्हम्दुलिल्लाह, उससे पहले एक ड्रीम था मेरा कि अल्लाह उनके रसूल की बारगाह में हाजिर होना बोल के एक कोशिश थी. तो अल्लाह का एहसान है इस गुनहगार को अल्लाह ताला जो ना वो मौका दिया कि बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनके जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे हाजिर हुए अल्हम्दुलिल्लाह. बस नमाज पढ़े, दुआ करे, सारी उम्मत के लिए दुआ करे, अल्लाह का शुक्र है. क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं है उधर जाना. लोग ऐसे दुनिया में करोड़ों अरबों बिलियनर रहने के बावजूद भी जो है ना अल्लाह उन लोगों को नसीब नहीं रखा. लेकिन अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी रहो, बस अल्लाह उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को, सारी उम्मत को अल्लाह जो है ना नसीब करे कि उमरा करने की तौफीक दे अल्लाह रब्बिल आलमीन.
0: बहुत ही अच्छी दुआ, माशाल्लाह जबरदस्त. तो अजहर जी, क्या हम गेम खेलें आपके साथ? आप खेलना चाहेंगे?
1: मैं गेम खेलने के वास्ते नहीं करा. काफी दिन हो गया आपसे बात नहीं हो के बोल के. मैं बोला बस आपकी खैर खैरियत ले लेंगे.
0: अरे थैंक यू जी,
1: दुआ में याद रखो इंशाल्लाह बोल के बात करने के लिए फोन करा. गेम तो क्या, जिंदगी से बहुत बड़ी गेम है. सही है ना?
0: हमारे साथ कहना जिंदगी रोज एक गेम खेलती है, हम क्या गेम खेलेंगे
1: जी?
0: है ना?
1: नहीं, वही तो बोलो, जिंदगी खुद एक गेम हो गई. गेम के साथ क्या गेम खेलेंगे? क्योंकि कभी कभी गेम के साथ गेम खेलना ही भारी पड़ जाता है. जो जिंदगी के साथ
0: गेम के साथ गेम खेलो, गेम हो जाता है उसका. ये तो
1: गेम हो जाता है. तो बस यही है कि अल्लाह पाक जो है ना सबको जो है ना नेक रास्तों पे चलने की तौफीक दे. अल्लाह जो है ना सबको मुस्तकबिल का रास्ता आसान करे और सारे तमाम 107 वालों के स्टाफ को अल्लाह सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और आफियत रखे अल्लाह रब्बिल इज्जत.
0: आमीन सुम्मा आमीन. जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारी दुआ. और चलिए अब आप उम्रा करके आए तो मैं आपको बहुत फोर्स भी नहीं करूंगी. हाँ
1: नहीं वैसा नहीं, दूसरे लोग भी इंतजार करें, भाया भी दूसरे लोग भी इंतजार करें जो 107 के फैंस है. तो उन लोग को मौका देंगे. बस आपसे थोड़ी बहुत सलाम दुआ खैर खरीद करने के लिए मैं कॉल करा. गरीब के लिए कभी भी कुछ भी अगर खिदमत है तो जरूर हाजिर है भाई के नाते से, कभी भी आप बात कर सकते हैं इंशाल्लाह. ठीक है
0: जरूर. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.
1: शुक्रिया,
0: जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़. वालेकुम अस्सलाम. तो दोस्तों यहाँ जो है बहुत ही प्यारी सी कॉल थी, इन्होंने कहा कि नहीं मैं तो गेम नहीं खेलना चाहता, बट मैं चाहूंगी कि आप जरूर खेलें. तो आपसे मतलब आप सबसे मुराद है कि आप सब जरूर गेम खेलिए. और खेलने के लिए आपको करना यह कि या तो हाय हेलो लिखकर मुझे भेजिए जिससे मैं आपको कॉल कर लूँ, या फिर अगर आप डायरेक्टली खुद ही कॉल करना चाहते हैं तो बस फिर डरना क्या, सीधा कॉल मिलाइए 666-22-107 पर. हाय हेलो भेजेंगे आप मुझे तो मैं मिलाऊंगी. अगर आप डायरेक्टली कॉल मिलाएंगे तो 4-4-3-4-4-3-7-7 ये नंबर है, यहाँ पर आप मुझे कॉल मिला सकते हैं और हम और आप मिलके गेम भी खेल सकते हैं. तो चलिए आज का भी गेम बहुत सिंपल है और कल का हाईएस्ट इज लाइक 5. अभी मैंने कल ही कहा था कि आज मैं चाहूंगी कि कोई 5 से ज्यादा का स्कोर करे, कोई ऐसा हो जो थोड़ा सा ट्राई करे और 5 से ज्यादा का स्कोर करे. सो लेट्स सी आज कोई हमारे साथ जुड़ता है और देखते हैं 5 से ज्यादा स्कोर कर पाता है कि नहीं. हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम, खैरियत?
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: वरहमतुल्लाह वबरकातुहु, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है, आप कैसे हैं? नूर जी है ना हमारे साथ?
1: जी, मैंने कॉल तो इसलिए नहीं लगाया उस टाइम कि मुझे आपका टॉपिक आज समझ में भी नहीं आया इसका क्या रीजन निकलेगा, मैंने कॉल नहीं लगाया
0: उस वक्त कॉल लिया। चलिए, आपने इस टाइम ना बहुत सही टाइम पे कॉल लगाई है।
1: अब मेरा बात निकला जो आपका लास्ट कॉलर जो था ना,
0: हाँ।
1: उस बात कर रहा था फिजिक का मतलब क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। जितने समझ में आएगा मालूम करेगा, मैंने मैसेज में लिखा भी इस टॉपिक का मतलब मुझे खुद समझ में आया, मैं इसका इसका आंसर दूंगा।
0: सबसे अच्छी बात है, इसका मतलब आप इतना ऑनलाइन जो है ना वो अपने आप को आपने एक्सपोज ही नहीं, इतना ज्यादा है ही नहीं उन पर। अच्छा लगा मुझे जान के कि आप जो रियल वर्ल्ड है उसके साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं, रियल वर्ल्ड के साथ नहीं जुड़े हुए। बस अच्छा है, जितना कम समझ में आया ना हमें उतना ही हमारे लिए अच्छा है, उतना ही फायदेमंद है। अभी तो ना जाके भी सब समझ ही चुके हैं।
1: बार बार मोबाइल निकालने के लिए टाइम नहीं मिलता है, पानी से गीला हो जाता है। देखा कोई कॉलर नहीं है, मतलब यही मौका छक्का मारने का।
0: सही, तो चलिए ट्राई तो कीजिए नूर जी, आप शायद हो सकता है कुछ ना कुछ स्कोर कर ही लें, और मुझे लगता है आप ठीक ठाक भी कर सकते हैं इसको, कोशिश करके देखते हैं आपके साथ। नहीं अब जो है ना टॉपिक नहीं है, अब मैं आपको कुछ हिंट दूंगी और आपको मूवी गेस करनी है। टाइम आपके पास होंगे 30 सेकेंड्स।
1: ओके ओके,
0: ठीक है। चलो ये बात हुई ना, जबरदस्त सी बात। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तीन भाई जो बचपन में जुदा हो जाते हैं, एक का नाम है अकबर और दो औरों के नाम भी ए से शुरू होते हैं। नहीं पता। ओके, म्यूजिकल फिल्म ड्रामा है फिल्मी, और नंदनी और समीर लीड रोल में है।
1: नंदनी और समीर जय देवगन के साथ है, सलमान क्या नाम है?
0: हाँ, सलमान खान की मूवी है। नहीं, एक और ट्राई कीजिए। ये लव स्टोरी है, वीर है और पाकिस्तान में इनकी एक्ट्रेस है।
1: नहीं आता है, मैं मूवी इतना देखता

0: मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब भी जिस टाइम भी हमारे साथ जुड़ते हैं, प्लीज जुड़ते रहिए. ओके चलिए, हैप्पी वीकेंड, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, बाय. ऑलराइट, एक और कॉलर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सो लेट्स गेट कनेक्टेड. हेलो, हाय, वेरी गुड मॉर्निंग.
1: यस, गुड मॉर्निंग.
0: कौन है हमारे साथ? आपका नाम? आपकी थोड़ी सी आवाज मुझे क्लियर क्यों नहीं आ रही?
1: हेलो
0: हेलो, या
1: कैन यू हियर मी?
0: या या, नाउ आई कैन हियर यू, बट आपकी वॉल्यूम थोड़ा सा लो है. नाउ आई एम गेटिंग दिस.
1: या ओके, आई एम अल्पा स्पीकिंग.
0: सॉरी, प्लीज कम अगेन.
1: मैं अल्ताफ बात कर रहा
0: हूँ. अच्छा अच्छा जी, रव जी कैसे हैं आप? खैरियत से?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ. तो हम गेम खेल रहे हैं, क्या आप गेम खेलने के लिए तैयार हैं?
1: बिल्कुल, मैं खेलने के लिए तैयार हूँ, बट दिस इज फॉर मी लाइक अ लकी डे टुडे, आई कॉल फर्स्ट टाइम फॉर रेडियो 107 एंड कॉल कनेक्ट भी हो गई, देन इट्स लाइक बात भी हो रही है.
0: ये दिन तो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, मेरे लिए भी खुशी की बात है.
1: बिल्कुल, मैं अभी आपके 107 पर एक एक ताली में उसका प्रोग्राम आता है जुमे के रोज 3 बजे के बाद में.
0: जी जी,
1: तो उस टाइम पर मेरे कुछ कंसर्न थे तो मैं उनको कॉल करना चाह रहा था, तो वो कॉल लगी ही नहीं मेरी. अब मैं पूरे फुल प्रोग्राम में कॉल करा उनको, सो इट वॉज सो मी बैड, बट आज आपको मैं ऐसी कॉल कर लिया रैंडमली, आपने नंबर बोला तो मैं उसको डायल कर चलो बात करते हैं आज और गेम भी खेलते हैं.
0: क्या बात है, गेम खेलते हैं. ये लाइन भी ना इतनी जबरदस्त आपने की, लोग थोड़ा सा डरते हैं, अरे हम हार गए तो क्या हुआ. ये चीज आपकी अच्छी है कि नहीं, हार जीत एक तरफ, पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट, ये होना चाहिए.
1: yes.
0: है ना, लाइफ में ये स्पिरिट होनी चाहिए. तो बहुत ही अच्छा लगा, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अब आप ये नंबर सेव कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे.
1: इंशाल्लाह.
0: ओके डन, चलिए आपके साथ गेम स्टार्ट करती हूँ. 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है, छोटे से कुछ मैं आपको क्लू दूंगी, मूवी आपको पहचाननी है, ठीक है?
1: ओके ओके,
0: चलो ऑल द वेरी बेस्ट. और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब.
1: एक
0: ब्लाइंड लड़की टूरिस्ट गाइड.
1: सॉरी,
0: एक ब्लाइंड लड़की टूरिस्ट गाइड, आमिर खान.
1: Tourist guide,
0: Is the right answer. Wedding clash, दो states के बीच और wedding clash, दो states के बीच.
1: थोड़ा हिंदी में बोले आप.
0: अच्छा चलिए, एक और आपसे पूछती हूँ. चार दोस्त गोवा ट्रिप. एक और लास्ट आपको देती हूँ, टाइम अप हो चुका है, ये ट्राई कीजिए. कपिल देव 1983 वर्ल्ड कप.
1: मूवी का नाम है, रणवीर कपूर की मूवी है. नहीं मालूम.
0: पर फिर भी आपने बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छी सी कोशिश आपने की, एटलीस्ट आपने जीरो का स्कोर नहीं किया है. फना मूवी आपने पहचान ली, सो ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपसे बात करके, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड कि आगे भी आप मेरे साथ जुड़ेंगे. इट्स अ प्रॉमिस.
1: इंशाल्लाह.
0: इंशाल्लाह.
1: थैंक यू.
0: थैंक यू सो मच. एंजॉय योर डे. टेक केयर. बाय.
1: Bye.
0: Bye. All right. So, यहाँ पर एक और कॉलर मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं. Let's see, कौन जुड़ा है. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आरिफ़ आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए.
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से. कैसी जा रही है मॉर्निंग आपकी? आज आपने बहुत ट्राई किया, जैसे आपने मुझे बोला.
2: आज तो ट्राई किया क्यों, बहुत ही अच्छा टॉपिक था. I like it.
0: अच्छा सच्ची?
2: कोई मुश्किल नहीं, मेरे कोई मुश्किल नहीं पर
0: बट नूर भाई आई कह रहे हैं मुझे तो आज टॉपिक समझ में नहीं आया, आप क्या बोल रही थी?
2: नहीं नहीं, आज बहुत ही अच्छा टॉपिक था, मतलब सोशल के हवाले से, सामाजिक या व्यक्तिगत के हवाले से.
0: सही, चलिए खैर, अच्छा
2: जिन्होंने भी जितनी बातें की अच्छी बातें की, बहुत बहुत लास्ट वाले कलर में एकदम बहुत ही अच्छा।

0: बहुत ही अच्छा।
1: हाँ मुझे लग रहा था उन्होंने मेरा सारा काम कर दिया।
2: एक बात थी ना नोट भी पीएन की, वो उनका एक वो जो ऑनलाइन सिक्योरिटी बोल रहे थे ना, वो प्राइवेसी के लिए सबसे बेस्ट है। उनका 30 दिन का मनी बैक गारंटी भी देते हैं वो लोग। आपको मोबाइल में कोई स्कैम कुछ ऐसा कुछ मतलब वो पहले ही डिटेक्ट करके आपको बता देगा और ब्लॉक कर देगा।
0: ये एक एक्स्ट्रा हम लोग को सबको इन्फॉर्मेशन भी मिली उनके थ्रू। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही अच्छा लगा। आज के टॉपिक पे भी बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने, हालांकि इतना वाइड टॉपिक था कि इस पर और भी बहुत देर तक बात हो सकती थी, बट देन हमें बस टाइम नहीं होता ना।
2: हाँ
0: एक आराम से एक आध घंटे का टीवी शो हो सकता है, कंटिन्यूसली हम बात करें। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे टाइम पर आए, बहुत अच्छे टाइम पे आपकी एंट्री हुई है। गेम आपके साथ हम खेलेंगे, आपको पता है गेम आपको पता ही
2: मैंने उसी के लिए फोन किया कि फोन भी नहीं आ रहा था मेरे को, थोड़ा काम था। फिर मेरे को 2 मिनट टाइम मिला तो टाइम मिला तो मैंने बोला फोन कर ले रहा हूँ, फिर काम 2 मिनट।
0: पता है मैं दिल से शुक्रिया कह रही हूँ जो लोग गेम खेलने के लिए छोड़े वाकई मैं दिल से बहुत शुक्रिया कि जितने लोग भी टाइम निकाल रहे हो गेम खेलने के लिए जुड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो टॉपिक पे बात करने से भी बड़ी बात है, तो ये बड़ी बात के लिए आप जुड़े हैं, इसलिए बहुत पहले से ही बहुत शुक्रिया। अब हम आपके साथ गेम स्टार्ट करते हैं, 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है। लेट्स सी आप कितनी मूवीज गेस करते हैं। ओके एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। राज सिमरन यूरोप ट्रेन, सही। हार के जीतने वाले को
2: कहते हैं,
0: इज द राइट आंसर। फर्स्ट टाइम फीमेल विलन सीक्रेट किलर, बॉबी देओल।
2: बॉबी देओल फीमेल विलन,
0: हाँ
2: सॉरी आई डोंट पास।
0: अच्छा ठीक है। शाहरुख खान काजोल की एक्शन कॉमेडी कमबैक फिल्म, सही। उसके बाद नाम ही एक शॉपिंग मार्केट के नाम पर है मूवी का,
2: मूवी का नाम ही शॉपिंग का।
0: ओके एंग्री यंग मैन, चलो एक और आपको दिया।
2: अमिताभ बच्चन,
0: नहीं मूवी, मूवी का नाम बताइए।
2: मूवी मूवी
0: इस मूवी के बाद उन्हें टाइटल मिला था एंग्री यंग मैन,
2: उतना फिर याद नहीं।
0: अरे जंजीर आपके, आप अमिताभ जी के फैन हैं तो आपने दिलवाले से ही पहचानी, बाजीगर से ही पहचानी, डीडीएलजे, क्या बात है। 3 का स्कोर ना चाह के भी आपने कर ही लिया, चलते फिरते ऐसे चलते फिरते कर लिया। लाओ चलो जल्दी से मैं कर लेता हूँ कुछ एक आध। चलिए अच्छी कोशिश की आपने, हिंट थोड़े से टाइट है बट आपने अच्छी कोशिश की, वेरी वेल प्लेड, बहुत सही, बहुत ही ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच और अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए और फिर इंशाल्लाह संडे में आपकी हमारी मुलाकात होगी। इंशाल्लाह जरूर।
2: ओके इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।
0: टेक केयर, बाय। ऑलराइट यहाँ पर एक और कॉलर दोस्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो
3: हेलो,
0: हाय, अ वेरी गुड मॉर्निंग, कौन है हमारे साथ?
3: गुड मॉर्निंग, नाम तो जाना होगा,
0: राहुल, राज, राज नाम तो सुना है मैंने। राज हमारे साथ फाइनली, कैसे हैं राज आप?
3: बढ़िया बढ़िया मैडम, आप कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आप तो हमारे चैंपियन हैं भाई, ऐसे वैसे स्वागत
3: तो यूट्यूब पर वैसे भी मतलब बहुत ही प्यारे हैं तो
0: हाँ वो तो भरपूर क्रेडिट आपको दे रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे वो चैंपियन वही जीतेंगे, मैं तो पीछे हूँ। तो मैंने कहा ये बात सही है, आप सब एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं। लोग कहते हैं कि आज के दौर में अच्छे लोग नहीं है, देखिए FM 107 पे आइए, सारे अच्छे अच्छे लोग।
3: रियली गुड, रियली गुड। और 107 जो जो टॉपिक और जो भी प्रोग्राम करते हैं रियली बढ़िया होती है एंड नॉलेजेबल होती है।
0: थैंक यू जी, थैंक यू। और आप जैसे लोग जब हमारे साथ जुड़ते हैं, जब लिसनर्स हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं कि हम थोड़ा सा और अच्छा करें, तो असल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आप लोगों से हमें मिलती है, सो थैंक यू। Oh, you've been so kind always. चलिए आपके साथ गेम स्टार्ट करती हूँ मैं, ऑल द वेरी बेस्ट। और यहाँ पे 30 सेकेंड्स आपको मिल रहे हैं, देखते हैं आप कितना स्कोर करते
3: हैं। मैं एक्चुअली कल कॉल करने वाला था, मिला नहीं, लेकिन अच्छा। जो ठीक क्या था पहला वन डे बिफोर यू आर गिविंग ओनली ओनली दी डायलॉग सो

0: मैंने कुछ 40-50 डायलॉग रट के आ गया था पिक्चर का और आपने पेपर ही चेंज कर दिया।
1: देखा, मैं पेपर लीक के मामले मैं जो हूँ मैं बदलती रहती हूँ ना पेपर, ये है मामला। अच्छा तो देखिए, मैं पूरी ईमानदारी जो है वो बना के यहाँ पे रख रही हूँ, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और सबको फेयर चांसेस मिलने चाहिए, ये मेरा मोटो है। ठीक है, तो चलिए, आज भी मुझे नहीं लगता कि आपके लिए टफ होगा, आई डोंट थिंक सो, आसान ही होगा।
0: फॉर मी नेम जो है वो कैची नहीं है, मतलब आई डोंट फोकस ऑन द नेम दैट मच, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ट्राई करते हैं।
1: चलिए ट्राई करते हैं, लेट्स सी कितना पहचान पाते हैं। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। डैश को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, आसान है। ओके, विजय दीनानाथ चौहान,
0: अग्निपथ,
1: बिल्कुल सही। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, धन्नो, गब्बर,
0: सॉरी,
1: बिल्कुल सही। अमिताभ बच्चन डबल रोल में फादर और बेटे,
0: महान,
1: सही।
0: महान,
1: अच्छा, उसके साथ रैंचो का फेमस मैसेज ऑल इज वेल,
0: थ्री इडियट्स
1: इज द राइट आंसर। राज और सिमरन की लव स्टोरी,
0: डीडीएल जे,
1: क्या बात है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या बात है, अभी तक का हाईएस्ट स्कोर आपने किया है 6। राज, ये नाम मुझे याद रहेगा। वेरी वेल प्लेड, बहुत अच्छा आपने खेला। टाइम भी 30 सेकेंड्स होते हैं जो बहुत जल्दी निकल जाते हैं, पर 30 सेकेंड्स में अभी तक का बाय फार इस वीक का हाईएस्ट स्कोर है। 5 वॉज हाईएस्ट और अभी किसी ने फर्स्ट टाइम 6 किया है, सो वेरी वेल प्लेड। ऐसे ही आपको लोग चैंपियन नहीं कहते हैं, कुछ तो बात है। But thank you so much. Have a great weekend and thank you so much for your call.
0: Thank you.
1: Okay, take care. Bye. All right. तो यहाँ पे हमें ultimate champion तो मिल चुके हैं with 6. देखना ये है कि 6 से ज्यादा कोई और score कर पाता है कि नहीं। एक और caller मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Aha. तो बैक टू बैक चैंपियंस की एंट्री हो रही है। वालेकुम अस्सलाम। आपको ऐसी बेचैनी तो नहीं हुई कि अरे अरे ये क्या हो गया, मैं 2 नंबर और ज्यादा स्कोर कर लूं? अच्छा खेले, काफी अच्छा खेले और काफी अच्छी कोशिश की, तो ये तो है। चलिए आपके साथ भी गेम खेलते हैं। आई होप आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगी इंशाल्लाह। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। घोस्ट लव स्टोरी रानी मुखर्जी, लव स्टोरी रानी मुखर्जी शाहरुख खान,
2: पास।
1: ओके, क्रिकेट और अंग्रेज,
2: लगान,
1: राइट। मुगैम्बो खुश हुआ,
2: यस इंडिया,
1: सही। साइंटिस्ट और टाइम मशीन,
2: मिशन इम्पॉसिबल,
1: नो। सुपर हीरो का,
2: मंगल, मंगल, मिशन मंगल।
1: सुपर हीरो का पहला बॉलीवुड वर्जन, पहली मूवी इज द राइट आंसर। आमिर खान टीचर बनते हैं डिसलेक्सिया का स्टूडेंट,
2: तारे जमीन पर,
1: तारे जमीन पर इज द राइट आंसर। क्रिश, तारे जमीन पर, मिस्टर इंडिया, लगान,
2: फर्स्ट वन पहेली है, पहेली।
1: हाँ, पहेली थी।
2: शाहरुख खान रानी मुखर्जी
1: एंड घोस्ट इज पहेली, बट कोई बात नहीं, फिर खेलेंगे आपके साथ। आज हल्का सा आपने जो है थोड़ा सा राजी से कम स्कोर किया, बट फिर भी आपने बहुत अच्छा खेला, क्योंकि मैं अलग अलग आज पूछ रही, रिपीट भी नहीं हुए ना, तो इसलिए भी
2: नहीं।
1: और आपकी आपकी किस्मत में थोड़े से टफ भी आ गए ऐसा लग रहा है। जैसे जैसे मैं नीचे आती जा रही
2: हूँ,
1: आपने पहली पहचान ही ली थी, बस ये कहिए कि बस थोड़ी सी चूक हो गई।
2: हाँ,
1: चलिए फिर खेलेंगे संडे में कुछ और आपके साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय
2: बाय, टेक केयर, बाय
1: बाय। ऑलराइट, तो यहाँ पर अभी तक राज जो है वो हाईएस्ट चल रहे हैं विद 6। देखना ये है कि इनसे ज़्यादा कोई स्कोर कर पाता है कि नहीं। एक लास्ट कॉलर के साथ इस गेम सेगमेंट में हम कनेक्ट होंगे और फिर इसको हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। हेलो,
3: हेलो,
0: हम आप अगले उसमें शिक्षा मंत्री बनाएंगे जरूर। आप इतना तगड़ा पेपर लीक के मामले में
1: अरे अरे अरे अरे अरे अरे सबर करिएगा।

0: नहीं
1: कर दे रही है आप,
0: नहीं तो, मैं तो
1: आप बता देंगे, आप फंसा के फिर आपने गेम को उसको उलट देती है, फिर देखिए फंस जाता नहीं है।
0: नहीं नहीं, मैं बहुत इस मामले में बहुत ज्यादा एहतियात रखती हूँ कि सबको फेयर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, है ना।
1: आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आप शिक्षा मंत्री बने।
0: नहीं नहीं, बहुत बहुत हम यहाँ बैठे बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। अच्छा, आपके साथ हम गेम खेलना स्टार्ट करें?
1: अरे करो बस भैया, इसमें क्या जाता है, कौन सा हमारा इसमें कुछ ये होना है, ट्रोल थोड़ा इसमें होना, ये तो सबसे बेहतरीन सबसे बेहतरीन
0: सही कहते हैं, कौन सा इसमें हमें कुछ होना है। हाँ ये तो है, कोशिश ही तो करनी है। चलिए ट्राई करते हैं आपके साथ, और 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर आपका टाइम।
1: एक दो हम भी कर ले।
0: हाँ नहीं, मैं आसान दूंगी, आसान दूंगी। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सीक्रेट एजेंट टाइगर, सलमान खान, कैटरीना।
1: टाइगर,
0: चलो दिया, एक था टाइगर। संजू बाबा की बायोपिक।
1: संजू बाबा की बायोपिक ये रणबीर कपूर ने किया।
0: मूवी का नाम बताइए।
1: नाम
0: संजू बाबा की, इसी में इनका मूवी का नाम है।
1: बायोपिक ही है शायद उस पर कुछ है।
0: अच्छा, सर्किट और मुन्ना भाई। सर्किट और मुन्ना भाई
1: MBBS।
0: मुन्ना भाई MBBS इज द राइट आंसर। जादू की झप्पी,
1: उसमें वो भी शायद वही है, जादू की झप्पी मुन्ना MBBS का ही है शायद ये।
0: लगे रहो मुन्ना भाई, ये था इसका।
1: थोड़ा सा
0: और जो संजय, जो संजू बाबा की बायोपिक है ना, उस मूवी का नाम ही था संजू। दो का तो स्कोर किया, एक था टाइगर आपको दिया, मुन्ना भाई MBBS। क्या बात है रही जी, आपने कुछ ना कुछ तो कर ही लिया।
1: चलो भाई, और बाकी हमारे राज भाई हैं बेहतरीन, उनका।
0: हाँ आज एकदम से आए कि राज नाम तो सुना होगा, और देखिए कितना अच्छा स्कोर करके गए, बहुत ही कमाल का।
1: मतलब उसका कोई किसी का ये सब मामले में बहुत तगड़ा ये रहता है।
0: हाँ, तो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन।
1: मूवी देखे रहते हैं लेकिन वो थोड़ा सा जल्दी में
0: नहीं आते
1: निकल जाता है,
0: ये बात तो है।
1: ये सब चीजों में हम लोग थोड़ा वीक है।
0: नहीं नहीं, बस
1: आदमी नहीं ये हो सकता है ना, बस औरों को भाई मौका मिलना चाहिए, किसी को सुपर से ऊपर रखना बेहतर है, मजा आता है सुनने में।
0: हाँ, चलिए नहीं, सब ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, और कभी भी अपने आप को अंडर रेट मत कीजिए। ट्राई करते रहेंगे तो आप हो सकता है बहुत अच्छा स्कोर कर ले, और धीरे धीरे आपकी जो नॉलेज है बढ़ती हुई चली जाए, है ना। तो ये तो है बिल्कुल। चलिए थैंक यू वंस अगेन, शुक्रिया बहुत बहुत आपका।
1: आपने कोई चीज को रिपीट नहीं किया, ये मैं आपको मतलब सबसे ज्यादा ये करूंगा कि हर बार आप चेंज करके कर रही
0: हैं। आज मैंने चेंज कर दिया। हाँ, मैंने सोचा कि ये हो जाता है, कुछ लोग मुझे फिर मैसेज करके कहते हैं कि मैम एक सा होता है तो जो पहले कर रहा है उसको तो फायदा नहीं हो रहा।
1: फर्स्ट में जितने आपने क्वेश्चन किए थे ना, उसमें से तकरीबन 3-4 मैं निकाल लेता था, अमर अकबर एंथनी से लेके
0: अमर अकबर एंथनी थी जो नहीं पहचान पाए हमारे लिसनर, वो थी मूवी।
1: तो सब वो भी मूवी हमारी देखी, और बाद में आपने जो जितना मतलब 2-3 पूछा उसमें मेरे ब्रेन में फटाफट आया, मैं बोला यार अभी मैं कॉल लगा दे, 26-27 बार मैंने कॉल किया, बाद में इतना बिजी हो जाता आपका ये गेम।
0: पर चलिए फिर हम खेलेंगे आपके साथ, और डेफिनेटली आप इंशाल्लाह जरूर जुड़िएगा। चलिए अपना ख्याल रखिए,
1: और मैं दिन पूरा हो जाता है आपसे बात करके, दिन पूरा हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगता है। हम लोग को एक दिन जहन में बना के रखते, जरूर कॉल करके बात करेंगे,
0: जरूर।
1: आपका टाइम भी अभी पूरा हो गया इसलिए मैं थोड़ा बात लंबी किया,
0: यहाँ पर आज के हमारे इस गेम के विनर रहे हैं राज विद 6 points। क्या बात है, उन्होंने एंट्री ली और एकदम ताबड़तोड़ तरीके से जो है वो 6 का स्कोर भी किया, जो अभी तक का इस वीक का हाईएस्ट है। सो यस, अगले वीक कुछ और होगा या यही होगा, ये तो अगले वीक ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए वक्त हो गया कि आपसे इजाजत ली जाए इस वादे के साथ, इंशाल्लाह आपकी हमारी मुलाकात होगी संडे 6 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी भाई।

जिनमें बिजली घर और पुल भी शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सिफारती रवाबित आरजी तौर पर मुअत्तल कर दिए गए हैं और उनकी इंतजामिया फिलहाल किसी मुलाकात में दिलचस्पी नहीं रखती, जब तक ईरान संजीदगी और बामाना मुजाकरात के लिए आमादगी जाहिर न कर दे। इसके अलावा उन्होंने इन खबरों पर भी तबसरा किया कि जिनमें कहा गया कि चीन ईरान को मिसाइल लॉन्चर या कंधे पर रख कर चलाए जाने वाले फिजाई दिफाई निज़ाम फराहम करने का इरादा रखता है। ट्रंप ने इन इत्तलात को हैरान कुन और मायूस कुन करार देते हुए कहा कि चीनी सदर ने इससे कबल इस तनाज़ों में शरीक न होने पर जोर दिया था। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि ईरान पर आयद अमरीकी मुहासरा बदस्तूर सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। सेंडकाम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि गुज़श्ता बुध तक अमरीकी अफवाज ने 20 तजारती बहरी जहाज़ों का रुख तब्दील किया, 2 जहाज़ों को रोक दिया जबकि मजीद 2 बहरी जहाज़ों की तलाशी भी ली गई। ये खबरें उर्दू रेडियो कतर FM 107 से नशर की जा रही हैं। गज़ा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फ़ौज की जानिब से गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान फ़िलिस्तीनियों के घरों पर किए गए फ़िज़ाई हमलों और गोलाबारी के नतीजे में एक फ़िलिस्तीनी शहीद हो गया। गज़ा की वजारत सेहत ने बताया है कि तिब्बी लेबार्ट्रियों के ऑपरेशनल इस्तेदाद जंग के आगाज से पहले के मुकाबले में घटकर सिर्फ 38% रह गई है। वज़ारत के मुताबिक लेबार्ट्री के ज़रूरी सामान की शदीद किल्लत के बाइस सेहत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तातुली को पहुँच चुका है। उधर मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज ने शुमाली अलखलील के कस्बे बैथे उमर पर छापे के दौरान एक फ़िलिस्तीनी को गोली मारकर ज़ख्मी कर दिया जबकि एक और फ़िलिस्तीनी को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी जानिब अरब लीग ने कहा है कि इसराइली जारहीत और एक तरफ इकदाम बशमूल यहूदी आबादकारी फ़िलिस्तीनी अराजी का इलहाक और 2 रियासती हल को कमज़ोर करना न सिर्फ पूरे खित्ते में अमन इस्तेहकाम के इम्कानात को ख़तरे में डाल रहे हैं बल्कि मौजूदा हालात आलमी बिरादरी से महज बहरान के इंतज़ाम से आगे बढ़कर तनाज़ों के मुस्तकिल हल के लिए इकदामात करने का तकाजा करते हैं। इसके अलावा अक़वामे मुत्तहिदा ने भी मकबूजा मगरबी किनारे में आबादकारों के बढ़ते हुए तशद्दुद और फ़िलिस्तीनी अराजी के इलहाक की कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। लुबनान का सदर जोसेफ ऑन ने कहा है कि असलहा सिर्फ लुबनानी रियासत के पास रखने का फ़ैसला लुबनान का खालिसतन खुद मुख्तार कौमी फ़ैसला है जो दाखिली मुजाकरात के ज़रिए सदर जमहूरिया और रियासती आईनी इदारों की निगरानी में किया जाएगा। एक सहाफ़ती बयान में सदर जोसेफ ऑन ने कहा कि लुबनान वाशिंगटन में तय पाने वाले माहदे पर अमल दरामद का पाबंद है, तहम इस माहदे की कामयाबी वाजह ज़मानतों से मशरूत है। उन ज़मानतों में इसराइली अफवाज का मुकम्मल इनखिला, लुबनानी फ़ौज की तैनाती के साथ बैक वक्त अमल दरामद और जनूबी लुबनान में जारी खिलाफ वर्जियों और हमलों का मुस्तकिल खात्मा शामिल है। सूडान के खुदमुख्तार कौंसिल के सरबराह जनरल अब्दुलफत्ताह अलबुरहान ने खुरतुम के दौरे पर आए जनूबी सूडान के सदर के सलामती उमूर के मुशीर तोत कुलवाक से मुलाकात की जिसमें अमन इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा मुलाकात के दौरान जनूबी सूडान से सूडान के रास्ते खाम तेल की नकल व हमल और तरसील के शोबे में बाहमी तआवुन को फ़रोग देने के तरीक़ों पर भी गुफ्तगू हुई। दूसरी जानिब अक़वामे मुत्तहिदा की इदारा बराए अतफ़ाल यूनिसेफ ने बताया है कि गुज़श्ता 2 माह के दौरान मग़रिबी सूडान की रियासत शुमाली कुर्दफान में वाक़ शहर अलबियस के गिर्द जारी लड़ाई में कम से कम 23 बच्चे जाबहक और 25 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। यूनिसेफ के बयान के मुताबिक रवा साल के पहले 6 माह के दौरान कम से कम 330 बच्चे हलाक या ज़ख्मी हुए जबकि मुसलसल तशद्दुद, बार बार नकल मकानी और शहरी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही बच्चों की जानों को शदीद खतरात से दोचार कर रही है। लीबिया के आला रियासती कौंसल ने मोहम्मद टकाला को 4थी मुद्दत के लिए दोबारा अपना सदर मुंतखब कर लिया है। वाज़ेह है कौंसल ने गुज़श्ता रोज़ सदर के इंतखाब के लिए एक इजलास का इनेकाद किया जिसमें इस ओहदे के लिए 5 अरकान के दरमियान मुकाबला हुआ।

0: ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के जरिए 156,088,781 शेयर्स का लेन देन हुआ, जिसकी कुल मालियत तकरीबन 379,594,647.226 कतरी रियाल रही। इसके नतीजे में 13 कंपनीज के शेयर्स में इजाफा हुआ, 34 कंपनीज के शेयर्स में कमी आई, जबकि 5 कंपनीज के शेयर्स अपनी साबका इख्तितामी प्राइसेस पर बरकरार रहे। सामिन, खबरों के इस मरहले में समाप्त कीजिए स्पोर्ट्स न्यूज।
1: स्पोर्ट्स हेडलाइंस फुरकान शाहिद के साथ फ्रॉम उर्दू रेडियो एफएम 107।
2: कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने शेख अहमद बिन खलीफा बिन अहमद अलसानी को एसोसिएशन का सदर और शेख तमीम बिन मोहम्मद अलसानी को नायब सदर मुकरर किया है। वाजरे एसोसिएशन ने अपने बयान में वाजह किया कि तकरीरी का फैसला एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव ब्यूरो की मंजूरी से किया गया है। कतर ओलंपिक कमेटी ने मरकज़ किफ़ालत यतामा दरीमा के तआवुन से बादिर इकदाम के हवाले से एक तारुफी और आगाही सेमिनार का इनेकाद किया। ये सेमिनार कतर ओलंपिक कमेटी की जानिब से पायदार समाजी असरात रखने वाले इकदाम की हिमायत, बाहमी तआवुन और यकजहती की अकदार को फ़रोग देने की कोशिशों का हिस्सा है, ताकि कौमी इदारों के दरमियान शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके और एक ज़्यादा मुत्तहिद और जामع मुआशरे की तामीर में किरदार अदा किया जा सके। कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने आइंदा सीज़न 2026-2027 के लिए क्लबों में खिलाड़ियों के इंदराज से मुतालिक ज़वाबित में नई तरामीम की हैं। नई तरामीम में बासलाहियत खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक एक इस्तिस्ना ख़त्म करने के साथ साथ एक ऐसा तरीक़ेकार मुतारफ़ कराया गया है, जिसके तहत मखसूस ज़वाबित के मुताबिक बाज़ गैर मुल्की और बासलाहियत खिलाड़ियों की हैसियत तब्दील करके उन्हें मकामी खिलाड़ियों के तौर पर रजिस्टर किया जा सकेगा। कतर मोटर एंड मोटरसाइकिल फेडरेशन और लुसैल इंटरनेशनल सर्किट ने वर्ल्ड एंडोरेंस चैम्पियनशिप के तहत होने वाली कतर 18-12 किलोमीटर रेस मनसूख करने का फैसला किया है। वाज़ह रहे यह रेस आइंदा 22 से 24 अक्टूबर के दौरान होने वाली थी। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन से कहा है कि वह अपनी तजारती सरगर्मियों के इंतज़ाम और टूर्नामेंट्स के इनेकाद के लिए एक आज़ाद तजारती इदारा कायम करने के मंसूबे पर अमल दरामद से कबल बर्रे आज़मी फुटबॉल फेडरेशन और मुतल्लिका फरीकों से मुशावरत करे। स्पोर्ट्स न्यूज़ में इतना ही, अब समाप्त कीजिए न्यूज़ हेडलाइंस।
1: न्यूज हेडलाइंस आरजे सफा के साथ फ्रॉम उर्दू रेडियो एफएम 107।
0: साहिब समो अमीर से कतर के दौरे पर आए हुए रूसी तेल कंपनी रॉसनेफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने मुलाकात के दौरान एनर्जी के शोबों में कतर और रशिया के दरमियान जारी तआवुन के ताल्लुकात और उन्हें मजीद फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा ने अलग अलग टेलीफोन राब्तों में ब्रदर मुल्क कुवैत और जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू के दौरान बाहमी तआवुन के ताल्लुकात और उन्हें मज़ीद मज़बूत बनाने के तरीकों समेत इलाके की ताज़ा तरीन सूरत हाल, बिलखसूस कशीदगी में कमी, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए जारी सफारती कोशिशों और मुश्तरक राबता कारी पर तबादला ख्याल किया। कतर ने ब्रदर मुल्क जॉर्डन पर ईरान की जानिब से किए गए हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इन हमलों को जॉर्डन की खुद मुख्तारी और बैनुल अक्वामी कानून की सरह खिलाफ अर्जी करार दिया है। गजा और मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयों, फलस्तीनियों की हलाकतों और सेहत के निज़ाम की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर अरब लीग और अक्वामे मुत्तहदा ने तश्वीश का इजहार करते हुए अमनो इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी से फौरी इकदामात करने पर जोर दिया है। اسی کے ساتھ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسٹوڈیو روم سے ہماری ساؤنڈ ٹیکنیشین سارا, سوشل میڈیا ٹیم سے یسرا محمود اور نیوز روم سے فرقان شاہد اور مجھے یعنی صفا صفدر کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے ایف ایم 107, دل سے دیسی.

0: मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 55 के क्लॉज नंबर 3 के तहत गाड़ी चलाते वक्त 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठालने की इजाजत नहीं है। बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठालने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बैठालने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है। क्रिकेट हो,
2: And he's hooked that away. That's four runs.
1: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
3: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM।
3: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।
4: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कतर के उभरते हुए बास्केटबॉल स्टार मुस्तफ़ा निदाउ। जी हां दोस्तों, मुस्तफ़ा निदाउ को बास्केटबॉल सितारों में शुमार किए जाते हैं और वो अल अहली क्लब के लिए खेलते हैं। वो सेंटर पोजीशन पर खेलते हैं और अपनी यंग एज के बावजूद हिम्मत, एनर्जी और मेहनत की वजह से जल्द ही मकबूल हुए हैं। कोर्ट पर रिबाउंड हासिल करना, पेंट एरिया में दिफा करना और टीम को फिजिकल प्रेजेंस देना उनकी अहम खसूसियत हैं। निदाउ ने कतर की नेशनल टीम के लिए भी मुकाबलों में शिरकत की है और फीबा एशिया सतह पर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है। उनकी ट्रेनिंग डिसिप्लिन और मुसलसल परफॉर्मेंस को एनहेंस करने की जो आदत है वो कोचेस को काफ़ी मुतासिर करती है। अल अहली क्लब में वो मुस्तकबिल के बुनियादी खिलाड़ियों में गिने जाते हैं और हर सीजन के साथ उनका तजुर्बा बढ़ता जा रहा है। बास्केटबॉल एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि अगर वो इसी रफ्तार से तरक्की करते रहे तो कतर के लिए बहुत अहम एसेट साबित हो सकते हैं। कम उम्र के बावजूद उनका कॉन्फिडेंस और टीम वर्क की सोच उन्हें दूसरे प्लेयर से अलग बनाती है और फैंस उनसे मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियों की उम्मीद रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, गाड़ी चलाते वक्त तेज रफ्तार से परहेज करना सिर्फ एक एहतियात नहीं बल्कि एक जिम्मेदार ड्राइवर की पहचान भी है। जब आप अपनी गाड़ी को हद से ज्यादा तेज चलाते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि रास्ते पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान को भी खतरा लाहक होता है। सड़क पर हमेशा मोहतात और एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं ताकि हर किसी की हिफाजत हो सके। एक्सेसिव स्पीड में ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अपनी गाड़ी की स्पीड हमेशा स्पीड लिमिट के अंदर रखें, ट्रैफिक साइंस और सिग्नल का एहतराम करें और सड़क की हालत को मद्देनजर रखते हुए सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस इख्तियार करें। याद रखें, आपकी छोटी सी एहतियात से ना सिर्फ आपकी जिंदगी महफूज होती है बल्कि आप अपने फैमिली और मुआशरे की भी हिफाजत करते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि सड़क पर एहतियात और सब्र से चलिए, अपनी और दूसरों की हिफाजत को पहली तरजीह दीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डिस्टेंस हम बात कर रहे हैं कि जो एक्सरसाइज है वो हर एज में कितनी अहम है, क्यों ज़रूरी है, और आज हम बात करेंगे और कि बढ़ती उम्र के साथ वर्जिश की जो अहमियत है वो क्या है। बहुत से अफराद समझते हैं कि जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती है तो उसके साथ एक्सरसाइज की ज़रूरत भी कम होती चली जाती है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। बुज़ुर्ग अफराद के लिए मुनासिब एक्सरसाइज सेहतमंद और फ़ाल ज़िंदगी गुजारने में अहम किरदार अदा करती है। उम्र ज़्यादा होने के साथ साथ मसल्स की ताकत और हड्डियों की मजबूती कम होने लगती है। बाकायदा एक्सरसाइज इन तब्दीलियों की रफ्तार को कम कर सकती है और जिस्मानी तवाज़ुन बेहतर बना सकती है। बुजुर्ग अफराद के लिए हल्की फुल्की वॉक, स्ट्रेचिंग, स्विमिंग और ये कि बैलेंस को बेहतर बनाने वाली एक्सरसाइजेज मुफीद समझी जाती हैं। ये एक्टिविटीज गिरने के खतरे को कम करती हैं और रोज़मर्रा का जो काम कर रहे होते हैं उन्हें बेहतर अंदाज में करने की सलाहियत को बरकरार रखने में मदद देती हैं। एक्सरसाइज दिल की सेहत बेहतर बनाती है, ब्लड प्रेशर को काबू में रखने में मदद देती है और इसी तरह जो डायबिटीज की जो मैनेजमेंट है उसमें भी मुआवन साबित होती है एक्सरसाइज करना। इसके अलावा जो हमारी मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं वो हमारी याददाश्त, ज़हनी जो चुस्तगी है और समाजी रवाबत को भी बेहतर बनाती है। जो बुजुर्ग अफराद बाकायदगी से एक्सरसाइज करते हैं इनमें खुद मुख्तारी और ज़िंदगी के मायार में बेहतरी देखी जाती है। अलबत्ता एक्सरसाइज का इंतखाब उम्र, सेहत और जिस्मानी हालत के मुताबिक होना चाहिए। किसी भी नई एक्सरसाइज के आगाज से पहले अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से आप जरूर कंसल्ट कीजिए तो वो बहुत ही मुफीद हो सकता है। लिसनर्स, एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं है बल्कि जिंदगी के हर मरहले में जरूरी है। चाहे आप बच्चे हों, नौजवान हों, बालिग हों या बुजुर्ग हों, जो जिस्मानी एक्टिविटी है यानी एक्सरसाइज है वो सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी की कुंजी है।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माविश खान और हमारा शो है हदीस टू हैबिट। और जैसे कि आप जानते हैं, ये एक ऐसा शो है जो हम हर हफ्ते लेकर आते हैं और इस उम्मीद के साथ लेकर आते हैं कि इस शो में जो कुछ भी हमारी बातें होंगी उसको हम अपनी जिंदगी में अप्लाई जरूर करेंगे। तो आज भी एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है तहारत यानी सफाई। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम रोजाना अपनी जिंदगी में देखते हैं लेकिन अक्सर इसकी असल अहमियत को महसूस नहीं करते। इस्लाम में सफाई सिर्फ एक आदत नहीं, सिर्फ अच्छी अपीयरेंस नहीं, बल्कि ये ईमान का हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाकीज़गी आधा ईमान है। सोचिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को ईमान के साथ जोड़ा। इसका मतलब यह है कि एक मुसलमान की जिंदगी में सफाई सिर्फ ऑप्शनल चीज नहीं बल्कि उसकी शख्सियत, इबादत, इखलाक और रूहानियत का हिस्सा है। आज की दुनिया में हम सब बहुत मसरूफ हैं। किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को स्टडीज की, किसी को घर की जिम्मेदारियां हैं, किसी को फ्यूचर की फिक्र है। इतनी मसरूफियत में अक्सर इंसान का कमरा बिखर जाता है, डेस्क गंदा हो जाता है, कपड़े इधर उधर पड़े होते हैं और कभी कभी दिल भी वैसा ही बिखरा हुआ महसूस होने लगता है। आपने शायद खुद भी महसूस किया होगा कि जब आपका कमरा साफ होता है, बेड तरतीब से लगा होता है, मेज ऑर्गेनाइज्ड होती है तो दिल को सुकून मिलता है। लेकिन जब इर्द गिर्द गंदगी या बिखराव हो तो इंसान जल्दी इरिटेट होता है, गुस्सा बढ़ता है, दिल बेसुकून रहता है। इस्लाम चूंकि फितरत का दीन है इसलिए उसने इंसान के इनर पीस को भी अहमियत दी है और यही वजह है कि दीन हमें जिस्म की सफाई, कपड़ों की सफाई, घर की सफाई, हत्ता के रास्तों की सफाई तक सिखाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें तो हर जगह हमें सफाई का एहतमाम नजर आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू पसंद फरमाते थे, मिसवाक किया करते थे, साफ सुथरे कपड़े पहनते थे, वजू पूरी तवज्जो के साथ करते थे। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाने को भी सदका फरमाया। जरा सोचिए, हम अक्सर इबादत को सिर्फ नमाज, रोजा या कुरान तक महदूद समझ लेते हैं लेकिन इस्लाम हमें बताता है कि अगर आप अल्लाह की रजा की नीयत से अपने घर को साफ करते हैं, अपने कपड़े साफ रखते हैं या अपने वर्क प्लेस को टाइडी करते हैं तो ये भी इबादत बन सकती है। आज एक और मसला ये है कि हमारी जिंदगियों में सिर्फ फिजिकल क्लटर नहीं बल्कि डिजिटल क्लटर भी बहुत बढ़ गया है। मोबाइल में बेशुमार गैर जरूरी यूजलेस एप्स, पिक्चर्स, एंडलेस नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया का शोर, ये सब इंसान के जहन को थका देता है। इंसान जिस्मानी तौर पर भी टायर्ड होता है और मेंटली भी एग्जॉस्टेड फील करता है। इसीलिए सफाई सिर्फ झाड़ू लगाने का काम नहीं।

0: इस हफ्ते जब आप वजू करें, अपना कमरा साफ करें या कोई बेतरतीबी दूर करें, तो ये ना सोचें कि मैं सिर्फ क्लीनिंग कर रहा हूँ, बल्कि ये सोचें कि मैं एक सुन्ना को अपनी जिंदगी में ला रहा हूँ, मैं अपने ईमान को मजबूत कर रहा हूँ। और शायद यही छोटी छोटी आदतें हमें अल्लाह के करीब ले जाएं।
1: आप सुन रहे हैं हदीद टू हैबिट आरजे महविश के साथ, ओनली ऑन एफएम 107।
0: लिसनर्स, अब आते हैं उस हिस्से की तरफ जिसका हम सबको इंतजार होता है, यानी हैबिट प्लान। क्योंकि सिर्फ सुन लेना काफी नहीं, असल तब्दीली तब आती है जब हम इसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। इस्लाम हमें हमेशा अमल की तरफ ले जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि छोटे छोटे अमाल अगर मुस्तकिल हों तो वो इंसान की जिंदगी बदल देते हैं। इसीलिए आज हम सफाई को एक आसान, काबिले अमल और खूबसूरत रूटीन में ढालेंगे। ये हैबिट प्लान इस तरह से हम शेयर करेंगे कि चाहे स्टूडेंट हो, घर में रहते हो या काम करते हो, सभी इस पर आसानी से अमल कर सकें। आप अपने आप से आगाज करें। सुबह उठकर सबसे पहले अपनी नीयत साफ करें। दिल में ये सोचें, या अल्लाह, मैं आज अपनी सफाई को तेरे लिए बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद अच्छी तरह वजू करें, ब्रश करें, साफ कपड़े पहने, अपने बेड को सही करें। ये बहुत छोटे काम हैं, लेकिन दिन का आगाज खूबसूरत बना देते हैं। आप महसूस करेंगे कि आपका मूड बेहतर हो गया है और आप ज्यादा फोकस्ड हैं। पूरा घर साफ करने की जरूरत नहीं, इब्तिदा में एक छोटा सा हिस्सा मुंतखब करें। अपनी टेबल, एक शेल्फ, एक ड्रॉअर या कमरे का कोई कोना। सिर्फ 10 से 15 मिनट लगाएं, चीजों को तरतीब दें, गैर जरूरी चीजें अलग करें और जगह को साफ कर दें। ये छोटा सा अमल आपके जहन पर भी बड़ा असर डालेगा, क्योंकि जब बाहर का माहौल साफ होता है तो अंदर का जहन भी क्लियरर महसूस करता है। अब अपनी स्टडी टेबल या वर्क प्लेस को साफ करें, कागजात तरतीब दें, बुक्स, नोट्स, पेन वगैरह अपनी जगह पर रखें और साथ ही साथ अपने मोबाइल के गैर जरूरी नोटिफिकेशंस को भी बंद कर दें। डेस्क और स्क्रीन को साफ करें। ये अमल आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, आपको काम आसान लगने लगेगा और जहन बिखरने के बजाय फोकस में आएगा। अब सफाई को आप अकेले नहीं बल्कि फैमिली एक्टिविटी के तौर पे करें। किसी एक काम में घर वालों को शामिल करें, साथ मिलके कमरे तरतीब दें, बच्चों को छोटे काम दें, हल्की सी सफाई को टीम वर्क बनाएं। इस्लाम हमें इज्तमाईयत सिखाता है। जब घर के लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो ना सिर्फ घर साफ होता है बल्कि दिल भी करीब आते हैं। अब अगला दिन कम करने का दिन है। पुराने या गैर इस्तेमाल शुदा कपड़े अलग कर दें, टूटी हुई या गैर जरूरी चीजें हटा दें, मोबाइल से गैर जरूरी फाइल्स डिलीट करें, सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल कम करें। यह अमल आपकी जिंदगी को हल्का करेगा, क्योंकि क्लटर सिर्फ घर में नहीं होता बल्कि जहन में भी होता है। अब एक सिंपल रूटीन बनाएं। सुबह उठते ही बेड को सही करना है, दिन में चीजों को अपनी जगह पे रखना है और शाम में क्विक क्लीनिंग कर लेनी है, चाहे 10 मिनट के लिए क्यों ना हो, और सोने से पहले भी घर को थोड़ा सा टाइडी करना है। ये कोई सख्त रूल नहीं बल्कि एक नरम सी आदत है। आप इसे जारी रखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सफाई नहीं करना पड़ेगी। अब अपने आप से सवाल करें, क्या मेरी जिंदगी पहले से साफ और मुनज्जम हुई है? क्या मुझे ज़हनी सुकून महसूस हुआ है? क्या मेरी नमाज में तवज्जो बेहतर हुई है? क्या मेरे घर का माहौल बेहतर हुआ है? ये सोचें कि सफाई सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक एहसास है, सुकून का, क्लैरिटी का और डिसिप्लिन का। और फिर फैसला करें कि मैं इस हैबिट को सिर्फ एक हफ्ते तक जारी नहीं रखूंगा बल्कि मैं इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लूंगा। एक छोटा सा मशवरा भी है, हर दिन सिर्फ परफेक्शन का मकसद ना रखें। मकसद ये हो कि थोड़ी बहुत इम्प्रूव

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। साथियों इस वक्त FM 107 की घड़ी बजा रही है 11:01 और हो चला है टाइम सफा के साथ एंजॉय करने का अपने थर्सडे को, यानी कि सन एंड साउंड ऑन FM 107।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: जी हाँ साथियों, सन एंड साउंड आप सुन रहे हैं सफा के साथ ऑन FM 107। और भाई थर्सडे ढेर सारा मुबारक हैगा। देखो मेरी जो थर्सडे की खुशी होती है ना, वो डबल ट्रिपल ट्रिपल से भी ट्रिपल होती है, क्योंकि मैं ट्यूसडे से ही थर्सडे का इंतजार कर रही होती हूँ। आज मैंने ऑफिस में 3 दफ़ा पूछा, मैंने कहा आज थर्सडे ही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज वेनसडे है। और मेरी खुशी ऐसी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्सडे है, लेकिन फिर सबने कहा नहीं भाई ऐसा कोई मामला नहीं है, हाजिर नाजिर हो कोई मसला नहीं है, ज्यादा एक्साइटेड मत हो, आज थर्सडे ही है। तो भाई अपनी खुशी आपके साथ शेयर करने आ गई हूँ। मतलब ये कि भाई देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वीकेंड ऑफ मिलता है, मतलब फ्राइडे सैटरडे ऑफ मिलता है, तो मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हूँ, तो मुझे तो एंजॉय करने दो ना। तो साथियों आप सुन रहे हैं शो सन एंड साउंड, इस वक्त FM 107 की घड़ी में हो रहे हैं 11:03। आपको याद दिलाती चलूं कि ये शो जो है, यानी कि मेरा और आपका साथ जो है, वो रहेगा 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, और इसके दरमियान हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, मुख्तलिफ आपके ओपिनियन लेंगे मुद्दे पे जब बात करेंगे तो, और फिर उसके साथ साथ जो है हम आपके साथ गेम भी खेलेंगे। इस हफ्ते का गेम हमने यही रखा था कि आपने एक टॉपिक के ऊपर बात करनी है 1 मिनट के लिए, तो ये गेम हमारा चल रहा है। अब नेक्स्ट वीक से आपको ये बता दूं कि नेक्स्ट वीक से ना हम वापस से अपने बॉलीवुड ट्रिविया पर आ जाएंगे, क्योंकि लोग बॉलीवुड ट्रिविया को मिस कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो बॉलीवुड ट्रिविया पे नेक्स्ट वीक से आएंगे। इस वीक तो वही वन टॉपिक वन डिस्कशन फॉर 1 मिनट। तो भाई शो शुरू करते हैं और बात करते हैं वेदर रिपोर्ट के बारे में। देखो मेरी जो वेदर ऐप है ना, उसके अंदर बड़ी

कट वाली गर्मी है, सफा कुछ चेंज नहीं हुआ। और अम्मा कहती ना वो चड्डी बुशर्ट पहन लो, वो चड्डी बुशर्ट में खड़ा हुआ चड्डी बुशर्ट शॉर्ट्स और शर्ट में खड़ा हुआ एक बंदा, टोपी पहनी हुई है, अपने अपने पसीने साफ कर रहा, मतलब उससे पता चल रहा है वेदर देखे बगैर ही पता चल रहा है उसका क्या हाल है, उसका मोबाइल ऐप के अंदर ये हाल है, तो असल में लोगों का बाहर क्या होगा। तो भाई आपको ये बताती चलूँ कि इस वक्त वेदर रिपोर्ट ये कह रही है कि फेयर वेदर है, मुझे बिल्कुल अनफेयर लग रहा है क्योंकि वेदर 42 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है टेम्परेचर और सनी एज यूजल, लेकिन लेकिन मामला ये कि वेदर रिपोर्ट तो कह रही है 42 पर है लेकिन फील्स लाइक 48। भाई ये कैसे हो सकता है, मुझे कोई बताओ इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो सकता है, मतलब 42 कहाँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8 6 डिग्री ऊपर जाकर फील हो रहा है, ये कौन सी, हम कौन सी डायमेंशन में रहते हैं कि टेम्परेचर असल में 42 डिग्री सेल्सियस चल रहा है लेकिन फील्स लाइक 48 हो रहा है। चलो क्या ही कर सकते हैं, अपने बस में क्या ही है, हम भी फील कर लेंगे। तो भाई स्काई एज एक्सपेक्टेड सनी है, जाहिरी बात है 42 डिग्री सेल्सियस में क्या ही आपने कुछ बारिशें ढूंढनी है। और अगर हवाओं की रफ्तार के बारे में बात करें तो भाई 11 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, आप कह रहे हैं 10-11 ऐसी चल रही है। अच्छा ये जो ह्यूमिडिटी का हाल है ना, ह्यूमिडिटी ने हमारी जान ना छोड़नी। देखो अगर आपको ज़रा सी भी उम्मीद है ना तो मैं आपकी उम्मीदों पे पानी फेरते हुए आगे बढ़ रही हूँ और आपको याद दिला रही हूँ कि ह्यूमिडिटी का ये मौसम है। अच्छा एक चीज़ अल्लाह ताला लेता है तो दूसरी दे देता है, ह्यूमिडिटी में ना भाई गाड़ी का एसी बड़ा सेट काम करता है, बहुत सेट। जब शाम हो जाती है ना, जब शाम को ह्यूमिडिटी बढ़ती है अगर आप गाड़ी चलाते हैं शाम में, तो भाई क्या सेट वाला माहौल गाड़ी में, जो ना एसी बड़ा सेट काम करता है, पता नहीं क्या कोई इसका रीज़न है, कोई साइंस होगी इसके पीछे, किसी दिन मैं दरियाफ्त करूँगी साइंस को, लेकिन गाड़ी का एसी बड़ा सेट काम करता है भाई ह्यूमिडिटी में। अच्छा ह्यूमिडिटी के बारे में बताऊँ तो 35% ह्यूमिडिटी है, जितनी कल थी उतनी आज भी है। खुश मत हो कि वो कुछ इक्का दुक्का नीचे आई है, ज़्यादा खुश मत होना, खुशी को नज़र लगते देर नहीं लगती। और कुछ दिनों तक तो ह्यूमिडिटी का नाम सुनकर बिल्कुल भी खुश मत होना, कुछ दिनों तक तो ये ऐसी ही रहेगी। भाई देखो खजूरें पकने का मौसम है, तो अगर आपने अपने आप को नहीं पकाना तो घर के अंदर रहना। मामला ये है कि शाम के टाइम भी ह्यूमिडिटी होती है सेट वाली, तो मैं तो ये कहूँगी कि चाहे शाम का टाइम हो चाहे दिन का टाइम हो, आपने एक काम करना है कि अपने साथ पानी की वाटर बॉटल्स वगैरह कैरी करनी है, हाइड्रेटेड रहना है। अच्छा मुझे एकदम से याद आया, हमारे पंजाब साइड पर ना खासतौर पर गर्मियों के दिनों में एक काम किया जाता है कि किसी ने नाम सुना, हम तो उसे कच्ची लस्सी बोलते थे, कच्ची लस्सी। अब ये कच्ची लस्सी क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ, मुझे नहीं पता आपकी लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं, लेकिन ज़रा रेसिपी सुनिएगा। रेसिपी इसकी होती है कि फॉर एग्जांपल आपने एक ग्लास लिया खाली, उसके अंदर बिल्कुल 1/3 मतलब आधे से भी आधा दूध डाला आपने एक ग्लास के अंदर, ठीक है, आधे से भी आधा दूध डाला और उसको पूरा पानी के साथ भर दिया आपने, और फिर आपने उसके अंदर 1-2 चुटकी नमक डाला, उसको खूब विश वुश करके घुमा घुमू के आपने पी लिया। दोपहर के टाइम ये बहुत ज़्यादा पिया जाता है। इट इज़ नॉट लस्सी मेड विद दही, इसे मेरे ख्याल से मैंने यही नाम सुना है, मुझे नहीं पता आप लोगों के पास ये पी जाती है कि नहीं पी जाती, लेकिन पंजाब साइड पर बहुत ज़्यादा पी जाती है, कंज्यूम की जाती है। और पंजाब साइड पर ना वो सत्तू भी लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, वो भी बड़ा ठंडा होता है तासीर में, ख़ास तौर पर दोपहर की जो गर्मी होती है ना उसमें ये कहा जाता है कि सत्तू मुझे नहीं पता यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में तो मिलता है, पंजाब साइड पर वो बहुत लोग शौक से पीते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हल्का रखता है, ठंडा होता है तासीर में। और ये जो कच्ची लस्सी होती है इसका मैंने कहा थोड़ा सा आप दूध लेते हैं, 1-2 घूंट जितना आपने दूध लिया एक ग्लास में, और उसके अंदर आपने बाकी जो है ना पानी भर लिया, फिर उसके अंदर 1-2 चुटकी नमक डालकर आपने अच्छे से उसे हिला झुलू कर और आप उसे पी लेते हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ होती है। मैं बता रही हूँ जिन लोगों को ये शिकायत होती है ना कि माना हुआ तरीका है, मैं आजमाया हुआ तरीका है, जिन लोगों को ये बहुत ज़्यादा शिकायत होती है कि वो डिहाइड्रेटेड रहते हैं, या कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि आम बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं कुछ लोगों को, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा कि वो इतना आम खाते हैं कि आम खाने की वजह से उनका पेट ख़राब हो जाता है, इतना ज़्यादा आम खाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी अगर आप ये कच्ची लस्सी वाला फार्मूला पिए ना, मतलब आपने आम खा लिया और उसके बाद आप कच्ची लस्सी पी लें थोड़ी सी 1-2 ग्लास, तो आपको मुंह पे दाने नहीं निकलते, दैट इज़ अ

प्रूवन फैक्ट, ये मैंने आजमा कर देखा है, क्योंकि वो तासीर उसकी ठंडी होती है और अक्सर औकात लोगों को यूटीआई इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसमें भी ये बे इंतहा अफेक्टिव चीज़ है। डिहाइड्रेशन का भी तोड़ है इसके अंदर, ये जो कच्ची लस्सी का मैंने तरीका बताया है। तो अगर आप खुद भी कंज्यूम करें, रूम में रहते हैं, रूममेट्स हैं, अगर आप डिलीवरीज का काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, आपका पूरे दिन का ऐसा काम है, तो खाली पानी तो हाँ हाइड्रेटेड रखता है, लेकिन अगर आप ये तरीका भी आजमाएं ना, ये जो कच्ची लस्सी वाला तरीका है, ये मजाक की बात कर रही हूँ, प्रूवन, मैंने मैंने मैंने जो है ना ये आजमाया है, इट वर्क्स लाइक वंडर्स। अल्लाह ताला ने पता नहीं क्या साइंस रखी है इसके पीछे, लेकिन थोड़ा सा दूध, ढेर सारा पानी, एक से दो चुटकी नमक, वो भाई वंडर्स की तरह काम करता है ये, वंडर्स, गर्मियों में तो तबाही काम करता है ये। तो भाई ऐसे सिंपल और सस्ते मशरूबात जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कारामद होते हैं, बहुत सेट तरीके से आपकी बॉडी को सेट रखते हैं, ना आपका इससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ना आपका इससे कोई शुगर लेवल बढ़ेगा, कुछ नहीं, बिल्कुल बैलेंस चलते हैं। जैसे मैंने एक दफ़ा आप लोगों को ये भी कहा था कि नॉर्मल बाजार से जो आप लस्सी लेकर पीते हैं, वो जो कैंस मिलते हैं या बॉटल्स में होती है, वो थोड़ी थिक होती है, उसको और पतला करें। अगर एक बॉटल आप लस्सी की ले रहे हैं, छोटी वाली, वो जो बिल्कुल छोटी सी कुछ ml की बॉटल होती है, उसके अंदर एक से दो ग्लास आप पानी भरें और फिर वो पतली कर पिएं। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या साइंस है, बट इट डज अफेक्ट, वो तासीर में ठंडी होती है। जिन लोगों को ये शिकायत रहती है ना भाई गर्मियों के दिनों में कि हमारा पेट जलता है, हमें खाना हजम नहीं होता, हमारा एपिटाइट लूज हो जाता है, तो खाली पानी पीने से बेहतर है कि आप ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई रेसिपी ट्राई करें जो वाकई में कारामद हो। तो मुझे जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया हुआ है खुद ज़ाती तौर पर, वो ये दो तीन चीज़ें हैं जो काम करती हैं। और हाँ, तुख मलंगा भी, इट ऑल्सो वर्क्स लाइक वंडर्स। आपको पसंद है जूस में मिलाकर पी लें, आपको पसंद है आप खाली पानी में पी लें, इट डिपेंड्स। बेसल सीड्स जो होते हैं, जिन्हें हम बेसल सीड्स कहते हैं इंग्लिश में, तुख मलंगा होता है, वो कुदरती तौर पर बहुत एनरिचिंग और बहुत ठंडी चीज़ होती है तासीर में, तो उसको भी ना भूलें, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो भाई इन शॉर्ट, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और वेदर रिपोर्ट हमें ये कह रही है कि माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। वेदर रिपोर्ट मैंने आपको दे दी है, वेदर रिपोर्ट के बाद जाएंगे हम एक छोटे से ब्रेक पर। बेशक फील्स लाइक 48 हो रहा है, लेकिन हम 42 को ही अपने दिमाग में रखेंगे। दिल को बहलाने को ये ख्याल अच्छा है गालिब, दिल को बहलाने को, ठीक है, वो जो बड़ा नंबर नज़र आता है ना, बस उसी को दिमाग में रखते हैं, ठीक है, छोटे वाले को भूल जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आकर ब्रेक के उस पार हम जो है अपना फन ट्रिविया डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, बस आपने करना ये है कि आपने बने रहना है FM 107 पर सन एंड साउंड सफा के साथ, सुनते रहें कना यारी। हाय हाय हाय भाई, कोक स्टूडियो ना गजब करता है, जब आता है गजब करता है, और कुछ गाने इनके ऐसे हैं कि जो आप चाहे कोई भी सीजन हो, देयर ऑसम। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।

0: यस आई हेयर यू, और मैं ये सोच रही हूँ कहीं एपी और यूयू पैसे के बारे में तो बात नहीं कर रहे थे भाई, क्योंकि उम्र के इस हिस्से में आकर मुझे एक ही चीज ऐसी लगती है, जिस दिन तू नजर ना आवे उस दिन को दिन नहीं गिनती मैं भाई, पैसा पैसा मार्केट में।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
0: तो भाई वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड ऑन FM 107। इस वक्त हमारी घड़ी बजा रही है 11:20, और भाई देखें आपको इतनी सारी अच्छी अच्छी मैंने वेदर से मुतालिक रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी, और आपको कुछ टोटके भी दिए, देसी टोटके जो हमारी नानियां दादियां अम्माएं हमारे साथ कर चुकी हैं, एक्सपेरिमेंट जो काम कर गए वो ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ने का वक्त आ गया, तो मतलब ये कि फन ट्रिविया का टाइम आ गया। इससे पहले कि मैं फन ट्रिविया के बारे में बात करूं, आपको ये बताती चलूं कि ये एक इन्फॉर्मेटिव शो भी है, कन्वर्सेशनल शो भी है, और कन्वर्सेशन दो लोगों के बीच में होती है, यानी कि एक तो मैं हूँ, मैं तो अपनी फेवरेट हूँ मुझे पता है, लेकिन गोविंदापुर ना दूसरे तो आप हो। तो भाई अगर आपने भी कम्युनिकेट करना है तो ज़रा अटेंडेंस अटेंडेंस लगवाओ ना, 666-22107 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, 666-22107 666-22107 पर गोविंदा फिल्लो आप खुशबू लगा के मैसेज कीजिएगा, ओके, आपकी खुशबू हमें मैसेज के थ्रू पहुंच जाएगी। टेंशन नॉट भाई, टेंशन नॉट, टेलीपैथी यू नो, दिल से दिल को राह होती है, हम पहचान लेते हैं अपने दोस्तों को। अच्छा 666-22107 पर आप मैसेज कर सकते हैं, और अगर चाहे गुफ्तगू करना, मतलब ये कि टॉक शॉक करना, तो जरूर करें, किसने मना किया, खुश रहें अपने अपने खर्चे पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 443-443-77 पर, किस पे कॉल कर सकते हैं फिर ना कहना मैंने जल्दी जल्दी नंबर बोला था, 443-443-77 443-443-77 सब कुछ डबल चल रहा है। ये थर्सडे का दिन है कि मैं इतनी इतनी प्रेजेंट माइंडेड चल रही हूँ कि मुझे हर चीज डबल में नजर है, 443-443-77 वाह अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। वैसे तो रोज बोलती हूँ नंबर, लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ क्यों लगा पता नहीं। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं, तो मैं बात करने लगी हूँ अब आपसे, शेयर करने लगी हूँ फन ट्रिविया। देखो भाई फन ट्रिविया में आपसे क्या बात की जाए, कि देखिए फन ट्रिविया में ना आज मेरे पास बड़ी मजे की चीज है। आपने मिसाल तो सुनी होगी, हाथ तो आया पर मुंह ना लगा, है ना, सुनिए ना। अब आपने जो है वो अक्सर औकात हीर रांझा लैला मजनू की कहानी भी सुनी होगी, बस कुछ ऐसा ही मामला है जिसके बारे में मैं आपको फन ट्रिविया बताने लगी हूँ, लेकिन इसके अंदर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा नेचर का फिनोमिना है, जो नजर तो आता है लेकिन आपके हाथ नहीं आता, आप यूं आसमान की तरफ खड़े हुए देख रहे होते हो, भाई अभी मस्त वाली बारिश मेरे ऊपर गिरेगी और मैं नहाऊंगा इसके अंदर, और आपको मजे की बात यह है कि वो बारिश नजर भी आ रही होती है भाई, लेकिन वो आप तक पहुंचती नहीं है। अब मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ भाई, सीधी सी बात है, मैं बात कर रही हूँ रेन दैट वैनिशेस, जिसे विरगा भी कहा जाता है। देखें सोचिए आप आसमान की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, बादल गहरे घने आए हाय हाय हाय, क्या वो ग्रे काले रंग के बादल होते हैं ना, हवा में आपको ठंडक भी महसूस हो रही है, और आप ये सोच रहे हैं कि बस भाई अभी भाई बारिश शुरू, बस अभी भाई, फिर आप ये देखते हैं कि बादलों से पानी के कतरे भी नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब आपको प्रॉपर नजर आ रहा है भाई, इतने पास आते आते आपको प्रॉपर नजर आ रहा है। लेकिन अजीब सी बात होती है कि वो जमीन तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाते हैं। लगा ना झटका। देखो अब सवाल ये है कि आप उधर खड़े हुए ये सोच रहे होते हैं कि भाई ये क्या कोई प्रैंक हो रहा है क्या हमारे साथ। देखो भाई इसे कहा जाता है विरगा। विरगा एक ऐसा मौसमी फिनोमिना है जहां बादलों से गिरने वाली बारिश, या आप कह लें कि कभी कभी बर्फ के साथ भी ऐसा होता है, जो बर्फ होती है ना उसके छोटे छोटे कतरे जमीन की तरफ आना शुरू तो होते हैं लेकिन रास्ते में कप भाप बनकर हवा में घुल जाते हैं, गुम वेपर बन के उड़ जाते हैं, यानी बादल हमें मुंह चिढ़ा रहे होते हैं, बादल कहते हैं कि भाई ले लो पानी चाहिए, ले लो ले लो ले लो, लेकिन जमीन ये कह रही होती है भाई मेरा पार्सल अभी तक पहुंचा नहीं है, कहां मेरा पार्सल कहां है, मतलब ये कि ऐसा लगता है जैसे हमारी डिलीवरी ना बीच रोड पे कहीं कैंसिल हो गई है। ये अक्सर उन इलाकों में होता है जहां हवा बहुत ज्यादा ड्राई या गर्म होती है, जैसे आप कह लें कि सहारा डेजर्ट होते हैं ना, और दूसरी तीसरी ऐसी जो खुश्क इलाके होते हैं उनमें ये होता है फिनोमिना। जब पानी के कतरे बादल से नीचे आते हैं ना, तो उन्हें नीचे आते आते जो हवा है ना, वो इतनी ड्राई होती है कि वो उन कतरों को इवेपोरेट कर देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, एक किस्म का यूं समझे कि वो एब्जॉर्ब कर लेती है। नतीजा ये होता है कि बादल भी नजर आ रहे होते हैं, बारिश भी गिरती हुई नजर आ रही होती है आपको, लेकिन जमीन पर एक भी कतरा नजर नहीं आ रहा होता। अच्छा, दूर से देखे ना तो जो एन शाहिदीन है, जो जिन्होंने ये मंजर देखा है, लोग कहते हैं कि विरगा हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात याद दिलाता है, पानी कितनी कीमती चीज़ होती है। कुछ जगहों पर बारिश जिंदगी लाती है और कुछ जगहों पर बेचैनी आ जाती है बारिश की ना आने की वजह से। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये जो चीज़ है ना विरगा, सिर्फ डेजर्ट्स में नहीं होती बल्कि दुनिया के कई ड्राई एरियाज में भी देखी जा सकती है। कभी कभी विरगा के साथ हवा का प्रेशर भी तब्दील हो, अगर हो तो उसकी वजह से अचानक हवाएं भी चलना शुरू हो सकती हैं। कुछ लोग इस चीज़ को गोस्ट रेन भी कहते हैं, कई जगहों पर इसे गोस्ट रेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बारिश नज़र तो आ रही होती है लेकिन हाथ नहीं आ रही होती। भाई हाथ आगे करते हैं ना, लगता है बारिश होने वाली है, वो सीन नहीं होता। तो भाई साथियों, अगर अगली बार जब आप आसमान में बादल देखें और आपके दिल में आए कि वाह भाई वाह, हाय हाय हाय बारिश होने वाली है, अब तो भाई सेट शर्त लगा लो, हजार हजार रियाल की शर्त लगा लो, बारिश होगी आज तो भाई याद रखना, कभी कभी कुदरत भी थोड़ा सा ड्रामा खेलती है। बारिश का ट्रेलर दिखाकर ना मूवी रिलीज ही नहीं होती। तो भाई आज मैं आपसे इसी अगर पूछूं अभी फिलहाल के लिए, तो आपको क्या लगता है कि ये तो मैंने आपको एक कुदरत का नमूना बताया, आपको क्या लगता है कि दुनिया का अगर कोई अजीबोगरीब कुदरती मंजर आपको देखने का मौका मिले तो आप किस चीज़ को देखना पसंद करेंगे? होता है ना, कुछ लोगों को होता है कि भाई हम डेजर्ट देखें, पहाड़ देखें, वो जैसे हम लोग डेजर्ट सफारी पे जाते हैं इधर सी लाइन की साइड पर, कुछ लोगों को होता है दूर दूर से आते हैं वेस्ट से, लोग कहते हैं हमें सहारा डेजर्ट की तरह ना ऐसे ऐसे वाले डेजर्ट देखने। कुछ लोगों को नॉर्दर्न लाइट्स देखने का शौक होता है, मेरी तरह, वो भाई वो अरोरा होता है ना, नॉर्दर्न लाइट्स आए हाय जन्नत की याद दिलाते हैं। कुछ लोगों को वॉल्केनिक इरप्शन देखने का बड़ा शौक होता है, लोग बाकायदा हजारों किलोमीटर सफर करते हैं कि भाई फलानी जगह वॉल्केनिक इरप्शन होने वाली है, मैं जाऊंगा देखने जाऊंगा। पता नहीं कैसे लोग होते हैं लेकिन होता है भाई, शौक है, सबके अपने अपने शौक हैं। तो अगर आपको जिंदगी में एक मौका मिले साथियों, गोभीदियां फूल लो, खुशबू लगा के कहाँ जाओगे, कौन सा नेचुरल फिनोमिना देखोगे, नॉर्दर्न लाइट्स, डेजर्ट की विरगा रेन या वॉल्केनिक इरप्शन? चॉइस आपकी है। वैसे एक बात बताऊं, ये जो अपनी विरगा रेन है इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इतनी खूबसूरत दिखती है कि ऐसा लगता है जैसे आसमान से ना, दूर दराज से ऐसा लगता है जैसे वो मोती की लड़ियां गिर रही होती हैं, ऐसा लगता है जैसे वो धागे नहीं होते ऐसे आ रहे होते हैं। तो उनको देखकर इतना खूबसूरत मंजर नज़र आता है कि इंसान ये कहता है कि भाई ये कितनी खूबसूरत चीज़ है, सुभान अल्लाह। देखने वाले इसको खूबसूरती से बयान करते हैं जो, वो यही कहते हैं कि बड़ी देखने में बड़ी खूबसूरत होती है। हाँ ये और बात है, हमारा दिल दुखता है कि बारिश नहीं मिल रही लेकिन देखने में बड़ी खूबसूरत होती है ये। एक दफ़ा इंटरनेट पे जाकर आप सर्च कीजिएगा, आपको शायद नज़र आए, मैंने भी इंटरनेट पे जब सर्च किया तो देखने में बड़ी खूबसूरत दिखती है ये, बड़ा हैरान कुन कुदरत का मंजर है ये कि बादल से बारिश तो आ रही है लेकिन नीचे ज़मीन पे कहाँ जा रही है पता नहीं, हवा में गुम हो जा रही है। तो चलो भाई इसी इन्फॉर्मेशन के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे करेंगे ढेर सारी बातें। नंबर है 4434347।

7 to call 443-443-77 is the number to call. Or chahein to aap message bhi bhej sakte hain 666-22107 par. Dekho, hum jo hai na is waqt channo ke paas ja rahe hain. Ali Zafar bahut shiddat se yaad aa rahe the aaj mujhe, bahut shiddat se. To maine kaha kyun na Ali Zafar ko aaj bula hi liya jaye. Ali Zafar bhai, aap aa jaye zara, channo ki aankh mein ek nasha hai. Aaj pata nahi kyun yaad aa raha tha. मैंने कहा ठीक है, लगा लेते हैं. और भाई, आप सुन रहे हैं सफा के साथ एफएम 107 पर सन एंड साउंड. वापस आकर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बताऊंगी टॉपिक क्या आज का. इन शॉर्ट मुद्दे पे बात करेंगे ना. सुनते रहो एफएम 107, दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारते दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर। डोंट मिस इट।
2: Absolute cinema.
3: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
4: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
3: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ RJ नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
5: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर।

0: मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पर और मैसेजिंग द नंबर इज 666-22107 और चाहें तो हमें कॉल भी कर सकते हैं 443-443-77 पर. देखो भाई आज हम मुद्दे पर आते हैं तो मुद्दा हमारा आज का बड़ा थोड़ा सा फनी सा है. मैं ना मुझे बड़ी पसंद है वो अगर मैं मूवीज के बारे में बात करूँ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो मूवीज़ होती है ना जो हम पता है कि वो लगती हैं कि हाँ भाई वो मूवीज़ हैं उसके अंदर आप ज़्यादा रोना धोना बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर उसके साथ अटैच नहीं हो जाते. तो मुझे मल्लू मूवीज़ ना बड़ी एक्सट्रीम लगती हैं इस चीज़ में. उनका कॉमेडी भी बड़ी अजीब सी इंटरेस्टिंग सी होती है. तो मैं ना एक दो दफ़ा मूवीज़ ऐसे देख रही थी तो मैं हंस हंस के पागल हो गई खास तौर पर वो जब हीरो या हीरोइन की एंट्री होती है ना तो उसके ऊपर जो मज़े मज़े के म्यूज़िक और गाने चलाए जाते हैं ना वो मुझे बड़ा मस्त लगता है. तो मेरे दिमाग में एकदम से ख्याल आया, मैंने कहा अगर कभी लाइफ में, वैसे मेरी लाइफ में कोई एडवेंचर चल नहीं रहा था, ठीक है, मेरी लाइफ में ये एडवेंचर चल रहा है कि मैं कपड़े धो लूँ, बर्तन धो लूँ, घर की सौदे ग्रॉसरी पूरी कर लूँ, तो वही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर चल रहा है आजकल, ठीक है. तो ऐसा अगर कोई एडवेंचर हो लाइफ में लेकिन हम उसे फुल ऑन एज अ एडवेंचर ही लेंगे, ठीक है, ग्रॉसरी है बेशक लेनी, कपड़े बेशक धोने, लेकिन भाई हम अपनी मूवी के हीरो हैं, ठीक है, को भी तो भूल लो, अंडर एस्टिमेट नहीं करना, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सफा, ओके. तो तो भाई मामला ये जरा सोचिए, अगर आप एक सिंपल सी डेली लाइफ एक दिन के लिए एकदम बिग बजट एक्शन मूवी की तरह बन जाए आपकी लाइफ, ठीक है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि मिशन कोई डेंजरस वाला नहीं है, ना इसमें कोई विलन है, ना इसमें कोई दुनिया को बचाना है, ना आपने अपने हाथों से जो है ना वो आपने स्पाइडर वेब्स भी नहीं फेंक रहे, बस मिशन ये है कि आपने ग्रॉसरी लेने जाना है, आपने कपड़े धोने, ठीक है. सोचिए जैसे ही यू लॉन्ड्री रूम का दरवाज़ा खुलता है या मशीन आपने जहाँ पर रखी है दरवाज़ा खुलता है और पीछे से यूँ शाहरुख खान वाली वाइब आती है, अपने आपको शाहरुख खान समझ रहे हैं किसी मूवी का, तो शाहरुख खान जब एंट्री मारता है भाई तो म्यूज़िक बजता है ना. तो सोचिए दरवाज़ा खुलते के साथ वो हवा के स्लो मोशन में चल रही है, पीछे ड्रामेटिक म्यूजिक बज रहा है, तो भाई बताओ ये ड्रामेटिक म्यूजिक होगा क्या. अगर आपकी इस सिचुएशन को लेकर अगर आप कह रहे हैं कि मेरी डेली लाइफ की सिचुएशन कैसी चल रही है उसको लेकर अगर कोई गाना आपके दिमाग में आता है तो वो कौन सा होगा. मेरे दिमाग में तो पसूड़ी आता है. जिंदगी आजकल ना पसूड़ी लेवल पर चल रही है. तो मुझे बताओ आपके दिमाग में आपकी लाइफ की सिचुएशंस को लेकर कौन सा दिमाग में गाना आता है. कोई अच्छा गाना हुआ ना तो चलाएंगे भी, हाँ, क्योंकि थर्सडे तो मजा करना है हमने. मुझे ये बताओ आपकी लाइफ में, आपकी जो लाइफ की ऑपरेशंस चल रहे हैं, आप जो 007 चल रहे हो अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ के ऊपर गाना कौन सा सूट करेगा भाई. अच्छा मजे का कोई गाना बताओ भाई, कोई फनी सा, ठीक है, ये कोई रोने धोने वाला ना बता देना, जिंदगी की यही रीत है ये वाला नहीं, नहीं नहीं थैंक यू, कुछ मजे का गाना बताओ ना भाई. देखो लाइफ से और वीकेंड से सूट करता हुआ मिलता जुलता कुछ होना चाहिए, क्योंकि बात सारी ये है कि बस जिंदगी जो है ना वो ऐसे ही चलती रहेगी तो हमने उसको हंसते मुस्कुराते गुजारना है. अब हमें भी तो हीरो वाली फील चाहिए, तो मुझे बताओ कि हीरो वाली फील के साथ लेकिन धक्का खाती हुई जिंदगी इसका कौन सा गाना, वो याद है गाना, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, बस उस टाइप का कोई गाना बताओ मुझे जिसका गाना सबसे अच्छा लगा ना उसका गाना चलाएंगे, क्या कहते हो. 666-22107 इज द नंबर टू कॉल, 666-22107 मैसेज करने के लिए, 666-22107 इज द नंबर टू मैसेज और कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-77. देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है. अस्सलाम वालेकुम. अब मेरे जो दो बाल बचे हुए थे उनको और ज्यादा सफेद करने के लिए आ गए मुझे दादी अम्मा बोलने के लिए. है कि नहीं सही पहचाना कि नहीं पहचाना.
1: एकदम.
0: मैं देखा बस कभी गुरूर नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह. आपको तो मैं नाम लिखे बगैर पहचान लूंगी.
1: अच्छा.
0: कितने मजे कर रहे हैं. अच्छा है इतनी अच्छी यादाश्त हो गई है गजनी की. तो भाई नफीस भाई है ना, नफीस भाई है ना,
1: बोल कर रही दादी अम्मा.
0: मुझे मुझे मुझे एक दफा इस गजनी को जरा नाम याद दिलाएं अपना जरा. वैसे मुझे पता है कौन है लेकिन मैं

0: नाम के
1: लगता है आपको नाजियाबान के साथ थोड़ा वो पिकनिक खाना पड़ेगा।
0: नहीं, मुझे उनसे ज्यादा खाना पड़ेगा, मेरा मामला उनसे ज्यादा खराब है। नासिर भाई हैं, नफीस भाई हैं, नाम नाम में मैं कुछ इधर उधर हो रही हूँ। नसीम भाई, हाँ मैंने बीच का कोई नाम निकाले ना, चले मैं नसीम भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे, सेहत वाली जिंदगी दे,
1: आमीन आमीन,
0: आपको खुश रखे आपके खर्चे पे। नसीम भाई ये बताएं कि अगर अभी जो जिंदगी की सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर कोई गाना, मस्त वाला गाना चाहिए मुझे, तो वो गाना कौन सा होगा?
1: वही प्यार होता है दीवाना सा ना।
0: आ, इस उम्र में प्यार की बातें शोभा नहीं देती
1: दादी अम्मा। बच्चे हैं।
0: अच्छा, ये वो वाला गाना ना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, है ना? ये वही वाला DDLJ वाला है ना?
1: जाम में भी खुशी ढूंढ लेते हैं।
0: अरे अरे अरे अरे, बहुत दिल फेंक चल रहे हैं, दिल की जगह बॉल तो ना लगवा लिया था, वो जो रबड़ का बॉल होता है ना, जो हर जगह उचकता फिरता है।
1: नहीं, आप कपड़ा बड़ा धो रहे तो मैं दिल को धो रहा हूँ।
0: हाँ, ये अच्छा है, अच्छा है, चले गुड, गुड हो गया, गुड हो गया। इंसान को जिंदा दिल होना चाहिए, बस संभाल के रखिएगा कहीं धोते धोते बिल्कुल ही ना धुल जाए। संभाल, थोड़ा सा एहतियात से धोइएगा प्लीज, लेकिन डिटर्जेंट ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है? ब्लीच तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करना धोते टाइम भाई, दिल धुल जाएगा बिल्कुल, सफेदी की चमकार हो जाएगा दिल।
1: अच्छा है ना, आपकी जो दो चार बाल बचे हैं,
0: फिर लोग कहेंगे, नहीं ना, फिर लोग कहेंगे आपके दिल को देखकर, लोग कहेंगे देखो इसका तो खून सफेद हो गया है। चल देखिए, मैंने भी बात कर दी। चले, ये आपका गाना है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, दिल की जिंदगी की सिचुएशन ऐसी चल रही है कि तुझे देखा तो ये जाना सनम। वाह, अब रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्या है ये समझ में ना आ रहा, लेकिन ये वाला गाना है, चले ठीक है। अच्छा ये बताएं, हमारे साथ गेम खेलेंगे?
1: गेम तो वैसे ही जिंदगी खेल रही है, आप भी खेल लीजिए, क्या दिक्कत है?
0: बड़े ही उदास चल रहे हैं, मतलब ये वीकेंड वाले दिन भी इतनी कोई उदासी होती है क्या? अरे भाई नसीम भाई, छोटी छोटी खुशियों में खुश रहते हैं, वीकेंड आ रहा है ना, उसके पर खुश हो जाओ, वीकेंड है।
1: खुश तो है, इसलिए तो मैं बोला तुझे देखा तो ये दीवाना।
0: बस सही है नसीम भाई, आप आपका कोई हाल नहीं है, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे। अच्छा ये बताएं कि रेडी है, आपको दिया जाएगा एक मिनट, और उस एक मिनट में आपको दिया जाएगा एक टॉपिक, उसके ऊपर आपने बात करनी है, ठीक है? और प्लीज बात ऐसे कीजिएगा कि हमें समझ में भी आए, अपनी ही बात अपने आप से कर मुख्तसरन चले ना जाइएगा, ठीक है?
1: ठीक है, देखता हूँ समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं।
0: चले भाई, आपका टॉपिक है, आपका टॉपिक क्या दिया जाए आपको? अच्छा जी, आपका टॉपिक है ट्रैफिक जैम, ठीक है? ओके, ट्रैफिक जैम पे स्टार्ट किया जाए।
1: क्या बोलना है?
0: भाई वही तो आपने बोलना है ना, एक मिनट तक ट्रैफिक जैम के ऊपर बात करनी है आपने, ठीक है? आपका टाइम स्टार्ट होता है, जैसे ही टाइम खत्म होगा मैं आपको बता दूंगी, मैं कहूंगी एक मिनट पूरा हो गया, ठीक है? तब तक आपने बोलते चले जाना है। ओके, आपका एक मिनट स्टार्ट होता है नाउ। ट्रैफिक जैम,
1: ट्रैफिक जैम पे और थोड़ा देखभाल के गाड़ी चलाना चाहिए, आगे पीछे साइड में कोई गाड़ी आ रही हो तो उसको देखना चाहिए, आगे कोई गाड़ी हो स्लो चलना चाहिए, फास्ट नहीं, थोड़ा हॉर्न का कम इस्तेमाल करें, और जब तक लाइन क्लियर ना हो आप स्पीड ना करें गाड़ी।
0: सही, बस इतना ही, 17 सेकंड, बस 17 सेकंड में छुट्टी हो गई, 6 घंटे का स्कूल था, 17 सेकंड में बच्चे ने कॉपी फिनिश कर ली और बच्चा स्कूल से घर चला गया, वेरी गुड। चले, 17 सेकंड का एफर्ट भी काउंट होता है, एटलीस्ट काउंट होता है, वेरी गुड, तालियां।
1: ओके दादी,
0: चले जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।

ये वैसे नसीम भाई ना अपने आप में ही कुछ बात करते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मैसेजेस को हम लिखे हुए टेक्स्ट मैसेजेस को हम डीकोड करते हैं। नसीम भाई की बातों को डीकोड करना पड़ता है भाई मुझे, मतलब मुझे इतनी सैलरी मिल नहीं रही है जितना मैं डबल ट्रिपल काम कर रही हूँ। चले खादिर अब्दुल हादी का हमें मैसेज आया, क्या कह रहे हैं, गोविंदिया पुल्लो एक्सपर्ट सफाजी अस्सलाम वालेकुम, टेम्परेचर करंटली शोइंग 44 डिग्री सेल्सियस, मुझे 42 दिखा रहा था। अच्छा मेरी ऐप जो है ना वो ऐसी ही है। तो सफाजी सॉल्टेड लस्सी, लस्सी प्लस ग्रीन चिली प्लस मिंट प्लस क्यूमिन सीड्स प्लस आइस, स्वाद अनुसार सॉल्ट 75। अब ये 75 चले, वो तो लस्सी की मुझे कोई वो पता चल गई कि भाई हाँ जीरे वाली लस्सी की कोई आपने रेसिपी बता दी एंड इट इज़ गुड। तो ये 75 क्या है भाई, मतलब ये मतलब मुझे इतनी पेमेंट मिल नहीं रही ना कि मैं वीकेंड वाले दिन भी मैसेजेस डीकोड करती फिरूं। समझा करो, समझा करो। अच्छा जी, और कौन है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सिस्टर सफानूर, सफानूर कैसी हैं आप, गोविंदिया पुल्लो कौन है भाई हमारे साथ, राफील है, राफील भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं कह रही हूँ बहुत खर्चा आता है नाम चेंज करने में, तो मुझे सफा सफदर के नाम से याद रखें, ठीक है। अच्छा क्या है, कौन है, कौन है, कौन है और कौन है, अदनान भाई हैं, अदनान भाई क्या कह रहे हैं, अदनान भाई कह रहे हैं भाई क्या है, इब्न बतूता बगल में जूता पहने तो करता है चुर, इब्न बतूता वाला गाना अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। हाँ दिस इज इब्न बतूता, बगल में जूता पहने तो करता है चुर। अच्छा भाई और कौन है हमारे साथ, कोई तो भाई हैं जो कॉफ़ी, नसीम भाई, नसीम भाई को देखो, नसीम भाई पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा शेयर कर रहे हैं। अच्छा अस्सलाम वालेकुम सफा सफदर, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसिफ के सी हैं हमारे साथ और रोहेल, अच्छा रोहेल हैं, अच्छा आपके आपके नंबर के ऊपर तो आपका नाम लिखा हुआ है राफील अहमद, या वहाँ से चेंज करें। अच्छा जिनको मैंने राफील बोल दिया वो गुस्सा हो रहे हैं, मेरा नाम रोहेल है, अब मुझे क्या पता आपका नाम रोहेल है, आपने मैसेज में लिखा थोड़ी था, मैंने कहा ना मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिल रही कुछ एक्स्ट्रा रिसर्च करने की मैं AI नहीं हूँ। अच्छा भाई और कौन है हमारे साथ, गुलाम राजिक हैं, हाथ जोड़ के माफ़ कर दें, मैंने क्या किया, मैंने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा ना करें ना, क्या हो गया, आपने तो दिल पे ले ली बात। अच्छा भाई और कौन है हमारे साथ, हमारे साथ हैं अदील भाई, अदील भाई क्या कह रहे हैं, अदील भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आपके सफा जी, जी हाँ परफ्यूम लगा के आ गए हैं और इन्होंने लस्सी की बोतल भी दिखाई और परफ्यूम की बोतल भी भेजी है, वेरी गुड वेरी गुड। इसे कहते हैं अच्छे बच्चे, देखो स्टूडेंट आते हैं क्लास में, ये वो 10/10 स्टूडेंट है जो 100 out of 100 मार्क्स लेकर जाता है। फिलहाल 100 out of 100 के बारे में बात करें तो क्यों ना क्लॉक सेट कर लें, एकदम से 00 से याद आया ना, क्लॉक सेट कर लें भाई, क्लॉक सेट कर लो,

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: वेलकम बैक जी, आप FM 107 सुन रहे हैं सन एंड साउंड विद सफा। और इस वक्त अगर टाइम की तरफ देखा जाए तो टाइम हो रहा है

0: में 12:02। तो गोभी दिया पुल्लो आ जाओ जरा खुशबू लगा के और बताओ कि अगर जिंदगी जिंदगी अपनी जो आजकल की गाड़ी चल रही है जिंदगी की उसके ऊपर आपने कोई गाना अपने आप को डेडिकेट करना होता तो वो क्या होता। देखो इस चीज को नजर में रखना कि उदासी बहुत वैसे ही फैली हुई है, ठीक है, तो कुछ फन दो ना वीकेंड अच्छा गुजारने के लिए, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ अच्छा सा गाना बना बताओ। क्या हालात जिंदगी चल रहे हैं उसके ऊपर कोई गाना बता दो अच्छा सा, कुछ तड़कता भड़कता जो हम किसी गाना अच्छा लगा ना तो उसका गाना लिस्ट में स्पेशली डालकर चला भी देंगे, क्या कहते हो। अच्छा भाई मैसेजेस की तरफ आए तो 666-22107 पे आप हम मैसेज कर सकते हैं, 666-22107 इज द नंबर टू मैसेज, और चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, 443-443-77 इज द नंबर टू कॉल। आरिफ भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आरिफ भाई, कैसी हैं आप। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा और कौन मेरी हाँ में हाँ भरता हुआ। इरफान भाई हैं कह रहे हैं हाँ भाई बिल्कुल कच्ची लस्सी, कच्ची लस्सी वो जो शुरू में मैंने बात की थी कच्ची लस्सी की, मैंने पूछा था कि उसको आप लोगों की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कहते हैं हाँ कच्ची लस्सी ही कहते हैं उसे। और एक और भाई का मैसेज आया है लेकिन ये वॉइस मैसेज है जो कि मैंने ब्रेक में सुना नहीं, लेकिन मैं सुनकर आपको जवाब देती हूँ भाई। और कौन है, मोहम्मद यूसुफ खान है, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। और हैप्पी थर्सडे मॉर्निंग, आपको भी हैप्पी वाला थर्सडे मॉर्निंग जी। और मुबीन भाई क्या कह रहे हैं, मुबीन भाई के मैसेजेस, वाह वेलकम वेलकम वेलकम को सर्वर, अच्छा ठीक है सब का क्या, रुको ज़रा मुझे ये मैसेज डीकोड करना पड़ेगा। मुबीन भाई ज़रा आपकी जो टेक्निकल लैंग्वेज है ना वो मुझे समझनी पड़ेगी, कुछ लोगों के मैसेज ना मुझे मेरे अब्बा की टाइपिंग स्किल्स याद दिला देते हैं। मैं बता रही हूँ मेरे अब्बू की टाइप की हुए मैसेज जिसने डीकोड कर लिए भाई वो शहजादा, मेरी तरफ से उसे वाटर कूलर फ्री। मुझे 3 दिन लगते हैं उनके मैसेज डीकोड करने में, मैं कहती हूँ इससे अच्छा था अब्बा वॉइस मैसेज भेज देते। अच्छा ये कौन है हमारे साथ, ये हैं आसिफ भाई। आसिफ भाई क्या कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सफा सफदर, एक सॉन्ग है जो अपना ख्याल नहीं रखते वो दूसरों का क्या ख्याल रखेंगे। अच्छा प्लीज प्ले है, प्लीज प्ले, एक सॉन्ग है जो क्या क्या क्या, ये कौन सा सॉन्ग है भाई, ये तो मैं बोलती हूँ, ये कौन सॉन्ग सी, मेरी आवाज इतनी सुरीली कब से हो गई, मैंने तो अभी तक कोई गाना रिलीज नहीं किया ना इसके ऊपर, लगता है मुझे कॉपीराइट्स निकालने पड़ेंगे। 443-443-77 इज द नंबर टू कॉल, देखते हैं हमारे साथ कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम,
0: बिल्कुल ऐसे जैसे अल्लाह की रजा में राजी लोग होते हैं बिल्कुल वैसे अल्हम्दुलिल्लाह।
1: अच्छा अच्छी बात है, कैसे खैरियत है।
0: अल्हम्दुलिल्लाह, कौन है हमारे साथ
1: आपका, मैं मुदस्सिर बात कर
0: रहा हूं। मुदस्सिर भाई, मुदस्सिर भाई जो सांपों वाले नहीं है।
1: जी
0: मुदस्सिर भाई
1: सांपों वाले नहीं।
0: आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं।
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत है।
0: ये बताएं कि अगर जिंदगी के ऊपर कोई गाना डेडिकेट करना हो अभी हाल फिलहाल के ऊपर तो कैसी चल रही है जिंदगी, क्या गाना होगा।
1: गाने का मेरा मुझे मालूम नहीं है,
0: चले कुछ शेर सुना दे, रोर कर दे, रोर
1: गाने का नहीं है,
0: गाने गाना शेर गाना तो क्या क्या कहना चाहेंगे, जिंदगी अभी कैसी गुजर रही है।
1: बस जिंदगी अच्छी गुजरती है अल्हम्दुलिल्लाह
0: अच्छी गुजर रही है, तो कुछ कुछ हैप्पी हैप्पी हो जाए उसके ऊपर, क्या कहते हैं
1: जी। अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अच्छा जी तो गाना सुनना नहीं है, हाल वाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है, शेर हमें पता नहीं है, तो चले कुछ ना कुछ नहीं है तो हम आगे बढ़कर कुछ गेम ही खेल लेते हैं, क्या कहते हैं मुदस्सिर भाई, या गेम पे भी। लो मैंने गेम के बारे में बात की, मुदस्सिर भाई ने कॉल ही काट दी। मुदस्सिर भाई का एक और तीसरा सवाल ये करने लगी, बंद कर दो कॉल, ये क्या हो गया मुदस्सिर भाई, ये तो ये वाला टैलेंट मुझे भी चाहिए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम
2: जी, मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर बात कर रहा हूँ
0: जी। उमर भाई कहाँ से
2: जी, मैं इंडिया से, मैं यूपी से बात कर रहा हूँ।
0: इंडिया से यूपी से बात कर रहे
2: हैं जी, जी मैं
0: इंडिया में अभी हैं कि इंडिया से ताल्लुक है आपका।
2: मैं कतर में हूँ, मैं रहता इंडिया में यूपी से।
0: हाँ मैं यही सोच रही थी, नंबर तो मुझे कतर का दिखाई दे रहा, मैंने कहा यूपी में कतर का। नहीं मजाक कर रहे थे, समझ में आ गई थी मुझे बात, ऐसे ही मजाक कर रही थी मैं। मेरे भाई नाम बताइएगा, नाम आपका उमर है, ठीक
2: उमर
0: है, उमर है। उमर भाई ये बताएं जिंदगी कैसी चल रही है।
2: जिंदगी जी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, बस मेरी भी सैलरी कोई खास नहीं है मैम, तो बस हम लोग अभी जंगल में जा रहे हैं अभी सिटी से।
0: अच्छा
2: ठीक है, काम भी जा रहे जंगल में।
0: अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे, खैर व आफियत रखे। ये बताएं कि अगर आपके लिए कोई गाना डेडिकेट किया जाए तो वो क्या होगा? कुछ सुपर हीरो टाइप का गाना रखिए ना अपने लिए। देखें आप मेहनत मुशक्कत करने वाले आदमी हैं माशाल्लाह से, हर कोई इतनी मेहनत मुशक्कत नहीं कर पाता भाई, हर किसी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती। आप स्ट्रांग आदमी हैं, अपने लिए कोई अच्छा सा गाना बताएं, आपके लिए एक अच्छा सा गाना चलाते हैं हम, क्या कहते हैं? कुछ गाना दिमाग में आ रहा है, कुछ कोई गाना अच्छा लगता हो?
2: गाना तो मैम
0: हाँ जी
2: जी
0: कुछ कुछ कुछ दिमाग में कुछ भी नहीं।
2: हीरो मैम फिल्मी हीरो बड़ी लंबी जुदाई।
0: भाई गाना सिचुएशन भी अच्छी है, गाना भी अच्छा है, लंबी जुदाई
2: जी, जी बड़ी लंबी जुदाई।
0: अरे वो ये अपना क्या कहते हैं रेशमा जी का गाना था ना
2: जी।
0: अरे भाई जी, वो बड़ा खूबसूरत गाना है भाई, बहुत खूबसूरत गाना है वो। चलें आपके लिए गाना चलाएंगे हम, ठीक है
2: जी,
0: स्पेशली डेडिकेटेड टू यू। तो हम आज एक गेम भी खेल रहे हैं साथ साथ, और गेम का मामला ये है कि आपने एक मिनट बात करनी है, मैं आपको टॉपिक दूंगी एक हल्का फुल्का सा, आपने उसके ऊपर एक मिनट तक बात करनी है
2: जी। कुक के ऊपर आप दे सकते हैं, मैं ऑलरेडी कुकिंग में तब्बा हूं,
0: उसके
2: ऊपर अगर कोई देना चाहती है तो दे सकती है।
0: अच्छा भाई आपको कहना, आपको कहें तो फिर आपका एक मिनट का कंटेंट आपने बताना है चिकन कढ़ाई
2: जी,
0: ठीक है? चिकन कढ़ाई चलेगी
2: जी जी, ओके, मुश्किल नहीं है।
0: चलें जी चिकन कढ़ाई पे आप बात करें जरा एक मिनट के लिए, जैसे एक मिनट खत्म होगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है
2: जी।
0: 1 2 3 योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
2: ओके, जो चिकन कढ़ाई के लिए पहले से अच्छा सा चिकन हो जो बोन का होना चाहिए, उसको आराम से अच्छे पानी से उसको धुलो, धुलिए नमक और विनेगर में अच्छे, उसके बाद में हल्के उसको ऑयल में फ्राई कीजिए, और उसको मैरिनेट करने के लिए उसको जो थोड़ा दही होना चाहिए, लेमन होना चाहिए, लेक मिर्च,
0: सही
2: थोड़ा फिर से हिंदी होनी चाहिए, मतलब हिंदी जो इंडिया की मिर्च होती है हरी मिर्च,
0: सही
2: वो थोड़ा गार्लिक, थोड़ा थोड़ा पसा प्याज डाल के थोड़ा फिर हल्का ब्राउन कीजिए, तावे में खड़े मसाले डाल के
0: सही
2: मतलब 15 से 20 मिनट उसको हल्का ड्राई कीजिए, उसके बाद में उसको जो मिक्सर में डाल के ग्राइंड कीजिए, एक नंबर इंशाल्लाह उसमें टेस्ट जो आएगा। फिर ग्राइंड करने के बाद में जो मैरिनेट होगा चिकन दही और थोड़ा ब्लैक पेपर, थोड़ा उसमें लेमन बस, और थोड़ा गार्लिक पेस्ट, गार्लिक अदरक वो पेस्ट मिला के पेस्ट के लिए रख दीजिए, उसकी ग्रेवी ग्रेन करके बनाइए, उसमें जो थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा जो मिक्स मसाला आता है वो।
0: चले भाई तालियां तालियां तालियां, नाइस नाइस नाइस नाइस, हो गया रेसिपी। आपने ना आज आपने सरवर भाई की कमी पूरी की है, आपको पता ये बात? सरवर भाई याद दिला दी आपने मुझे
2: जी, थैंक यू।
0: चलें जी अपना ढेर सारा ख्याल रखें।
2: हम लोग चला ही रहे थे, सुन लिया था गाड़ी से जा ही रहे जंगल की तरफ, अभी वहाँ भी हो सकता है कफील के लिए खाना बनाना पड़ेगा, उसका तो बस मजबूस मस्कूल, यही तो इधर कतर का फेमस
0: नेशनल डिश है मजबूस तो कतर की
2: जी। थैंक यू।
0: चलें जी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपकी रोजी रोटी में बरकत दे, आप मेहनती आदमी हैं, तो भाई आपके लिए गाना चलाएंगे, ठीक है?
2: ओके थैंक यू मैम,
0: अल्लाह हाफिज।
2: खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए,
0: आप भी अल्लाह हाफिज। हाय हाय दिल पे लगा देने वाला, यूं ठा करके लगता है मुझे ये गाना, और कभी कभी मैं रो भी पड़ती हूँ उस गाने को सुनकर। लंबी जुदाई है, मुझे ये गाना बड़ा पसंद है भाई, ये तो गाना बनता है। देखो मुझे कॉल आ रही है लेकिन ये गाना बड़ा इमोशनल है, उन्होंने ये बोल कर ना पूरा ठप कर दिया मेरा बिजनेस। तो एक काम करते हैं कि ये गाना सुनते हैं, वॉल्यूम हाई करो क्योंकि ये बहुत बहुत ठा करके दिल के किस कोने पर लगता है मुझे नहीं पता, लगता है। सुनते रहें तो 107.7 साउंड, दिल से देसी।

0: और जी ब्राउन मंडे आ जाओ जरा खुशबू लगा के आ जाओ क्योंकि आप सुन रहे हो सफा के साथ सन एंड साउंड ऑन एफएम 107।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
0: और जी ब्राउन मुंडे ही नहीं ब्राउन कुड़ियां भी आ सकती हैं। नॉट एन इश्यू एट ऑल। तो भाई आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड और मेरे और आपकी गुफ्तगू हो रही है। मुद्दा ये है हमारा आज का कि अगर आपने कोई अच्छा सा तड़कता भड़कता देखें मुझे इमोशनली जो है ना मैं थोड़ी टच हो गई थी वो रेशमा जी का जो गाना है ना वो थोड़ा सा वो हो जाता है ऑफ रोड चली गई मैं थोड़ा सा वो दिल पे लगता है क्या करूँ मैं। तो भाई देखें आपने मुझे कुछ तड़कता भड़कता मज़े का वीकेंड से रिलेटेड गाना आपने मुझे कुछ बताना है जो आपकी ज़िंदगी की सिचुएशन पे इस वक्त सेट फिक्स हो रहा हो। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पर 666-22107 पर और आप चाहें तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 443-443-77 पर 443-443-77 इज़ द नंबर टू कॉल। एक कॉलर के पास चलते हैं देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। क्या रजिस्टर ठीक है
0: अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है हमारे साथ।
2: मैं उस्मान बात कर रहा हूँ पाकिस्तान।
0: पाकिस्तान से देखें पाकिस्तान से हैं आप और कतर में रह रहे हैं। वाह वाह वाह
2: कतर में रह रहे हैं।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान की याद तो आती ही होगी।
2: याद बिल्कुल रिसेंटली अभी दो दिन पहले आया हूँ और शादी करके आया हूँ।
0: अरे भाई देखें ये बड़ा सेंसिटिव सा मुद्दा है। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। अब क्या रुलाओगी पगले।
2: रुलाना क्या बस ये है कि अभी वो आपको मैं अभी जो है ना एफएम के प्रोग्राम सुन रहा था पहले सुनता था तो अभी दोबारा आन के तो आपका चल रहा था प्रोग्राम। मैंने कहा कि एक जो है वो सॉन्ग अगर आप लगा दें दिल दे दिया है जान में देंगे।
0: ये मतलब एक बात तो बताएं मेरे भाई एक बात बताएं उस्मान भाई। वैसे तो नसीम भाई आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। मैसेज आया। अच्छा ये पता है मैंने क्लियर कट कहा कि इमोशनल नहीं होना इस वीकेंड पर। अगर मैं ऐसे वाले गाने चला दूंगी तो मेरा तो पिशो यूं जाएगा यूं जैसे वो जहाज जाता है ना यूं पानी के अंदर।
2: हम तो ये कहते हैं आपका जो शो है वो कतर में सबसे टॉप पे जा रहा है। अभी भी जा रहा है
0: दुनिया के लेवल पर ग्रेविटी के अंदर अंदर लेकिन कोई अच्छा सा ना कोई कोई कोई कोई कोई को, को, को, को, को, थोड़ा सा यूं निंचिक निंचिक
2: या वो सियारा का लगा दे फिर
0: सियारा चलेगा। हमारी जो है ना हमारी एक दोस्त है यहाँ पर उनको भी सियारा बहुत पसंद है। उन्होंने मुझे शो के शुरू में कहा था सियारा लगाओ
2: तो सियारा फिर लगा दे वो बहुत अच्छा है।
0: चले भाई सियारा चले ये भी देख लेते हैं सियारा का भी देख लेते हैं मामला इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने बोल दिया हो जाएगा। भाई ने बोल दिया ना उस्मान भाई ने बोल दिया तो बस हो गया काम।
2: बहुत बहुत बहुत शुक्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: उस्मान भाई गेम शेम नहीं खेलेंगे क्या बहुत जल्दी में लग रहे हैं।
2: गेम मैं असल में ड्राइव कर रहा हूँ।
0: चले फिर छोड़ दें। चले जी इंशाल्लाह आपके गाने की फरमाइश के ऊपर नजरसानी की जाएगी।
2: ठीक है
0: चलिए जी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। देखो हम जो ना रिक्वेस्टिंग कलेक्ट कर रहे हैं ठीक है तो जिसका गाना सबसे ज्यादा अच्छा लगा उसका गाना प्ले करेंगे। 443-443-77 इज द नंबर टू कॉल 443-443-77। चलते हैं कॉलर के साथ जुड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम सफा बहन क्या हाल चाल।
0: मेरे भाई बिल्कुल अल्लाह की रजा में राजी लोगों का जो हाल होता है ना बिल्कुल वैसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह।
3: नहीं मेरे को एक चीज की प्रॉब्लम है। हाँ। भाई को शादी मुबारक पहली बात।
0: हाँ, ठीक है
3: उसके ऊपर इतना सैड सॉन्ग क्यों तैयार और
0: मैं यही तो कह रही हूँ भाई मतलब जिंदगी का एंजॉय भी करो। देखो अब आ गया है नहीं वो उनको कह रहे ना बेचारे दो दिन पहले तो आए हैं कह रहे शादी भी कर आए हूँ तो उनके दुख अलग हैं।
3: भाई मैं पांच दिन पहले आया हूँ मैं मुंबई से पांच दिन पहले आया।
0: अरे भाई
3: मेरे को सैड सॉन्ग सुनने का दिल नहीं कर रहा है। और ये भाई और ये तो छोड़ो ये तो भाई फिर भी ठीक है

0: थोड़े बहुत तो ठीक है,
1: हाँ।
0: उससे जो पहले वाले थे ना
1: वो रेशमा का गाना,
0: ये वो क्या था
1: लेकिन भाई पता है क्या, उन्होंने गाना ऐसा बोल दिया था कि मैं खुद ट्रिगर हो गया भाई, वो गाना ना रेशमा का, वो रेशमा का, रेशमा जी का गाना बहुत
0: भाई के ऊपर डेडिकेट करना चाहिए था गाना
1: सौरभ भाई याद आ गया। अच्छा मैंने आज सुबह कोई सौरभ भाई को मैसेज किया, मैंने कहा सौरभ भाई क्या ही करोगे इतनी सारी छुट्टियों का, आ जाओ वापस आ जाओ, शो इंतजार कर रहा है।
0: ये गाना तो मैं चाहता हूँ कि ये गाना तो भाई के ऊपर, हमारे जो भाई है कौन से वाले,
1: कौन से
0: कबीर भाई,
1: कौन से, कौन से वाले, कौन से
0: कबीर भाई,
1: हाँ कबीर भाई के लिए गाना, जिंदगी कबीर भाई से रिलेटेड चल रही है। अच्छा आपने अपना नाम तो बताया नहीं मुझे।
0: मेरा नाम है आसिफ।
1: अच्छा आसिफ भाई है। अच्छा आसिफ भाई ये बताएं कि कबीर भाई आपकी जिंदगी में इतने ज्यादा इन्वॉल्व चल रहे हैं कि आप उन्हें गाना डेडिकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, अब कौन सा वाला गाना होगा वो?
0: कबीर भाई से हमारा कुछ अलग ही नाता है,
1: हाँ, ये तो है।
0: वैसे ना मेरा गाना जो था आज सोनू सूद का बर्थडे है, तो मेरा फेवरेट हीरो है वो, तो उसके लिए ना मेरे को दो गाने बहुत पसंद है, एक मुन्नी बदनाम मूवी डार्लिंग तेरे लिए, और एक आपकी कशिश वो जो था जो इमरान हाशमी के साथ में, तो आप ना एक गाना बजा दो मुन्नी बदनाम मूवी।
1: अच्छा मैं देख लेती हूँ, ये हमारी प्लेलिस्ट में होता है, तो मैं जो है ना गाना देख लेती हूँ, फिर थोड़ा सा इवेल्युएट करके फिर निकालते हैं गाना, फिर लगाते हैं, ठीक है, चलें जी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन ये तो बताएं गेम खेलेंगे कि नहीं?
0: गेम तो जिंदगी खेल रही है सबके साथ।
1: अरे भाई सबकी गेम जो है ना, जिंदगी सबके साथ ही गेम खेल रही है, अनोखे नहीं।
0: एक और सॉन्ग है।
1: लो इन्होंने तो लिस्ट ही बना दी।
0: सिंगर का नाम है सफा सफदर।
1: थैंक यू। देखें ये अभी तक मैं बता रही हूँ, मैंने अभी तक एल्बम इसलिए रिलीज नहीं किया, अच्छे अच्छो का ना लेवल डाउन हो जाएगा।
0: जी बिल्कुल।
1: मेरा गाना ऐसा सुपर हिट होने वाला है ना, समझा करें, हम तभी मार्केट में अभी तक एंटर नहीं हुए, क्योंकि हम आ गए ना तो खत्म, मार्केट खत्म है फिर
0: नहीं तो फिर मत आओ आप उधर मार्केट खत्म मत करो।
1: लोगों ने गाने सुनना बंद कर देने दूसरों के, मेरे नहीं
0: तो आप मत आओ भाई, आप अच्छे लग रहे हो उधर
1: ही, तभी तो देखिए दूसरों की रोजी रोटी का भी ख्याल है हमें।
0: हाँ बिल्कुल रोजी रोटी के
1: दूसरों के कानों का बहुत ख्याल है मुझे। देखिए मैं लोगों को टॉर्चर नहीं करना चाहती। देखिए अगर हर मार्केट में मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगी तो देखिए फिर लोगों के, आप कहते हैं ना रोजी रोटी पे क्यों लात मारे हम दूसरों की, बाकी सबकी मार्केट बैठ जाएगी। तो
0: अच्छा दो दिन पहले आपका मैं शो सुन रहा था, तो आप बोल रहे थे टॉपिक आता, मतलब बोल रहे थे ना कोई,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: मौसम के बाद एकदम इफेक्टिव मौसम बता रहे थे आप उसके बारे में, तो मैं मतलब हम लोग सब दोस्त लोग साथ में बैठे थे, मतलब तो सफा सफदर जी को क्या हो गया है
1: वो खालिस उर्दू आ गई थी ना खालिस। वो देखें हमारे अंदर का जो पाकिस्तानी है ना, वो कभी कभी जाग पड़ता है बहुत ज्यादा शिद्दत से, तो हम बड़ी खालिस सी गाढ़ी उर्दू बोल पड़ते हैं, वो बस है
0: उर्दू में आज सबको सबक सिखा रहे
1: वो कभी कभी कभी कभी ना वो अंदर की उर्दू भाई। देखें 12 साल तो हमने अपने सिलेबस में, 12 साल भी नहीं, मैंने बीए मास्टर्स ये वो ठीक है, मैं कहूँगी 16 साल 17 साल जिंदगी के उर्दू पढ़ी ही पढ़ी है कुरुक्षेत्र में मैंने, तो वो कहीं तो नुमाया होगी ना, कहीं तो जाहिर होगी वो।
0: बिल्कुल वैसे उर्दू में बहुत अच्छा लगता है मेरे को उर्दू सुनने के लिए, वैसे तो मैं मुंबई का हूँ, मैं इंडिया से हूँ, मैं तो मेरे को उर्दू सुनने बहुत पसंद आती है।
1: सही। अच्छा मुंबई वालों की अपनी लैंग्वेज होती है, उनकी भी उनकी अपनी लैंग्वेज भाई, उनकी हिंदी नहीं है।
0: नहीं निकाल रहा अपनी लैंग्वेज, वो नहीं निकाल रहा, क्योंकि सरोवर भाई और कबीर भाई के सामने ही निकल
1: वो मैं बर्दाश्त ना कर पाऊंगी, उसका लेवल शायद मेरे सर के ऊपर से गुजर जाए।
0: बिल्कुल।
1: चले आपके साथ ना जिंदगी तो गेम खेल ही खेल रही है, लेकिन हम भी गेम खेल लेते हैं, हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं।
0: बहती गंगा में नदी बोल देती
1: तो हाँ, बहती नदी में नहीं, वो मुहावरतन कहा जाता है ना, मुहावरा है ऐसे, ये पर्टिकुलर एक मुहावरा है।
0: गंगा बुरा मान जाएगी आपकी बात।
1: नहीं, बहती नदी में ठीक है, बहते समंदर में, नमकीन वाले समंदर में,
0: वो अच्छा है।
1: चलें ठीक है, बहते समंदर में पैसिफिक ओशन में हाथ धोएंगे जाकर।
0: गेम सस्ता वाला है कि एकदम महंगा वाला है?
1: नहीं देखें ये थर्सडे वाला दिन है, तो ये सस्ते सस्ते गेम खेलते हैं हम, 2 रुपए वाले।
0: अच्छा ठीक है, तो एक हफ्ते की मतलब फुर्सत है।
1: हाँ अब आपको आपको एक एक टॉपिक दिया जाएगा, आपने उसके ऊपर ना कुछ मजे का

0: कंटेंट देना है, मजे का, कोशिश करें मजे का, ठीक है?
1: चलिए चलिए।
0: तो आपका कंटेंट नहीं, आपका टॉपिक है मेरा तकिया। मेरा तकिया जो कि मेरे लिए तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है भाई, मैं तो दे लगातार सोने में, मैं तो स्लीपिंग ब्यूटी हूं। तो मेरा तकिया आपका कंटेंट है, आपने इसके ऊपर एक मिनट तक बात करनी है, और एक मिनट जब आपका खत्म होगा तो मैं आपको बता दूंगी कि
1: मेरा तकिया मेरे लिए फुटबॉल है।
0: हाँ चले, 1 2 3 गो।
1: ओके, मेरा तकिया फुटबॉल है मेरे लिए, मैं कभी कभी उसके साथ में खेलते रहता हूँ। मैं तकिए नीचे बहुत कम लगाता हूँ, कमर के नीचे ज्यादा लगाता हूँ, पैरों के नीचे ज्यादा लगाता हूँ मैं। ये मेरा तकिया है और इसके साथ में मैं अपना टाइम पास बहुत अच्छे से करता हूँ। ये मेरे साथ में दिन रात दिन भर रहा है, कभी कभी तो मैं कार में भी लेके इसको निकल जाता हूँ। है छोटा सा, बाकी बहुत मजेदार है।
0: ठीक है, ओके,
1: इतने ही इसके ऊपर,
0: बस इतना ही। 25 सेकंड सर्वाइवल सीरीज की एक बात तो बताएं, ये बेचारा तकिया है या घर की आवाम है, क्या है? मतलब ऑफिस में भी तकिया लेकर जाते हैं क्या अपने साथ?
1: मैं कभी कभी कार में भी लेके बैठता हूँ, अच्छा लगता है मेरे को। मतलब स्पंज वाला तकिया, मैं उसके अंदर फाइट करता हूँ, सोता नहीं उसके तक में, बस फाइट उठा के फेंकना कभी इधर कभी उधर, उसको बस इधर से उधर करते रहो, उसके अंदर मजा आता है।
0: ये आपका कोई इमोशनल, लोग इमोशनल सपोर्ट के लिए एनिमल्स रखते हैं, ये इमोशनल सपोर्ट के लिए तकिया रखते हैं।
1: मैं अलग लेवल का बंदा हूँ।
0: अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अलग लेवल के रहें, हमें अलग लेवल वाले लोग चाहिए दुनिया में, क्योंकि सीरियस वाले बहुत ज्यादा हो गए। चले भाई, अल्लाह ताला आपको खुश और खुर्रम रखे, अपना ढेर सारा ख्याल रखे।
1: मुन्नी
0: बदनाम हुई, मुन्नी को ना छोड़ना, ठीक है? ओके चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। भाई ये मुन्नी कहाँ से लेकर आऊँ मैं, ढूंढू तो सही मुन्नी को पहले। वीकेंड में घूमने फिरने निकली हुई है मुन्नी मुझे लगता है, तो एक काम करती हूँ ढूंढती हूँ, अगर अगर ये हमारी लिस्ट में हुआ तो मिल जाएगा, वरना मुश्किल लग रहा है। लेकिन 443-443-77 इज द नंबर टू कॉल, आप मुझे कॉल कर सकते हैं साथियों, और अगर चाहें तो मैसेज भी भेज सकते हैं 666-222-107 पर। मैसेजेस पर आ रही हूँ, मैसेजेस ढेर सारे भरे पड़े मैसेजेस वालों की तरफ से। वो चलें जी और हमारे पास मैसेजेस में कौन है, मैसेजेस में है मोहम्मद बशारत। मोहम्मद बशारत ने क्या मैसेज किया है, 3 बार खाओ गोभी दिया फुला। 3 बार खाऊं क्यों, 3 बार कहो, अच्छा कहो, मुझे खाना पीना याद आ रहा है भाई इस वक्त, खाने मैं कहो। अच्छा जी, और कौन है हमारे साथ, हमजा शब्बीर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हमजा, सॉन्ग टाइटल जलते दिए फ्रॉम परामेरतन। भाई प्रेम रतन धनबायो, अब मैं इतना दूर दराज का मैं कह रही हूँ, कोई अच्छे गाने बता दो, प्रेम रतन धनबायो, अल्लाह मतलब मेरा दिल कर रहा है मैं एक लंबी सी ब्रेक पे चली जाऊं, वीकेंड वाले थे, मुझे मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कह रही कोई अच्छे से गाने, अच्छे से कोई, वो जैसे मज़े का कोई पार्टी मिक्स होता है ना उस टाइप का कोई, ठीक है? अच्छा क्या है, मुबीन भाई क्या कह रहे हैं, नहीं मुबीन भाई टाटा बाय बाय करके कब के जा चुके हैं। अच्छा भाई कौन है हमारे साथ, रमेश यादव हैं, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सफा जी, पनीर कोरमा आपके लिए। भाई मतलब मुझे हैप्पी फ्रेंडशिप, अरे वाह हैप्पी फ्रेंडशिप डे है क्या आज कोई? देखिए मुझे ना दोस्तों के नाम से एलर्जी है। ना पूछेगा क्यों, मुझे बस एलर्जी है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं ज़िंदगी में, मुझे दोस्तों से एलर्जी है, तो मेरे लिए हैप्पी फ्रेंडशिप डे नहीं है। अच्छा भाई और कौन है, ठीक है, अच्छा समवन ने किसी को करेक्ट करते हुए बोला है, ठीक है, ओके कुछ कभी कभी दूसरों की गलतियों के ऊपर पर्दा डाल देना ना समवन, दूसरों की गलतियों के ऊपर कभी कभी पर्दा इसलिए भी डाल दिया जाता है कि दे आर ट्राइंग, मीखें निकालते हो बस मीखें, अब मीखों का मतलब ढूंढो जाकर। मीखों का मतलब क्या होता है? अच्छा भाई नसीम भाई ने मैसेज किया है, बेचारा क्या जाल में फंस गया, कौन फंसा भाई, किसके जाल में फंसा बेचारा? अच्छा ओ उनकी शादी हो गई इसीलिए बोल रहे हैं, अच्छा उस्मान भाई आपके लिए कह रहे हैं ये।

के जाल में फंस गया. इनके खुद के बड़े बुरे बुरे एक्सपीरियंस चल रहे होंगे ना तभी. अच्छा और कौन है हमारे साथ मैसेज में? मैसेज में आसिफ भाई, आसिफ भाई क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, कह रहे हैं एक के चक्कर में सबको क्यों रुला रही हैं. अच्छा भाई की शादी मुबारक. उस्मान भाई आपके लिए मैसेज आया है, शादी मुबारक, आपने सबको ट्रिगर कर दिया है. दूसरी बात भाई, हो गई शादी तो इतना सैड क्यों? किसी ने उस्मान भाई, वैसे एक बात है, किसी ने ज़बरदस्ती तो कराई ना थी शादी जो इतना उदास चल रहे हैं. अच्छा और कौन है हमारे साथ? हाय आई एम आसिफ, अफगान जलेबी. अरे अफगान जलेबी, हाँ अच्छा गाना है भाई. हाँ जिंदगी अफगान जलेबी की तरह चल रही है, बिल्कुल सीधी. क्या कहते हैं ना, अफगान जलेबी अच्छा गाना है भाई, दिल तो कर रहा है सुनने का. क्या कहते हो? मैं कह रही हूँ कि चला लेते हैं, मैं तो कह रही हूँ अफगान जलेबी चलाते हैं फिर वापस आते हैं. ठीक है, अफगान जलेबी सुनते हैं और फिर वापस आते हैं. सुनते रहे हैं 107 सफा के साथ, सन एंड साउंड सुन रहे हैं आप, बने रहे हमारे साथ. गाना ढूंढ रही हूँ मैं कोई अच्छा सा. देखो इतनी देर बाद एक गाना अच्छा वाला आया, अफगान जलेबी. नाइस, आई लाइक इट, आई लाइक इट. अच्छा इस गाने के वीडियो में ना कुछ वो डांसिंग शांसिंग टाइप, वो कुछ कुछ अच्छा सा है भाई, अच्छा अच्छा गाना है. एंजॉय करो ना, क्या मेरी बातें सुन रहे हो? सुनते रहे 107 पर सफा ऑन FM 107, दिल से देसी.

0: मैं सबसे पहले मैं सबसे ज्यादा अपने आप को मैं प्यार करती हूँ. मैं अपने लिए अपनी फेवरेट हूँ, बिल्कुल फेवरेट. ऐसा ही रहना चाहिए इंसान को, अपनी फेवरेट. हाँ मेरे लिए भाई, मेरे लिए.
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ, सिर्फ एफएम 107 पर. दिल से देसी.
0: वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड ऑन एफएम 107 सफा के साथ. और भाई इंसान को इतना खुश रहना चाहिए कि सामने वाले 6 लोग पूछें कि भाई खुशी किस बात की है, मतलब मेरी तरह खुश रहना चाहिए. समझ रहे हो गोविंद यहाँ फुल्लू, आ जाओ जरा खुशबू लगा के. और ढेर सारे मैसेजेस आप लोगों के मौसूल हो रहे हैं, कॉल्स मौसूल हो रही हैं. मैंने जाने से पहले सवाल ये किया था कि अगर जिंदगी से रिलेटेड, आजकल की जिंदगी, गाड़ी जो ट्रेन जो बस जो टूटी फूटी चल रही है ना अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, तो उससे रिलेटेड कोई फनी सा, कोई अच्छा सा, कोई अपबीट वाला गाना बताओ भाई. वीकेंड है, मैचिंग साउंड चाहिए मुझे. तो आप मुझे मैसेज करते हैं 666-22107 पर, 666-22107 पर, या कॉल भी कर सकते 443-443-77 पर. और भाई हमारे भाई हैं, उन्होंने कहा सलाम जी, एक्सेलेंट प्रोग्राम है.

0: हैप्पी बर्थडे टू अब्दुल नाफे और फ्रॉम कैसर अब्बास. थैंक्स सफा जी, कह रहे हैं कि अनाउंस कर दें हैप्पी बर्थडे टू अब्दुल नाफे. अब मैं गाऊंगी तो फिर वाकई में लोगों के कानों से खून ही निकलना शुरू हो जाएगा. तो भाई हैप्पी बर्थडे विश करना था वो मैंने कर दिया. भाई देखो ड्यूटी पूरी कर दी मैंने अपनी, गा करना बोलूंगी मैं. पता चला जो लोग चार लोग सुन रहे हैं वही भाग जाएंगे. अच्छा शहदाज सलीम क्या कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आपके साथ FM 107 कॉल करो ना सफा मैम कॉल. अच्छा मैं आपको कॉल करूँ, अच्छा ये भी होता है कि हाँ मैं हाँ मुझे याद पड़ता है मैंने ये इस सर्विस का ऑफर भी दिया था. अच्छा करती हूँ रुके जरा सब रुको जरा सब्र करो. और कौन है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम सफा जी. छेती आते हाँ हमारे क्या क्या कौन सी क्या है ये केड़ी पंजाबी लिख भेजिए मैनू. मैं हूँ अफगान जलेबी की तरह तरह फ्राई हो रहे हम भी गर्म गर्मी में. अच्छा भाई ये केड़ी पंजाबी लिख देती है मैनू ये जो ये क्या लिख कर भेजा है ये प्ले कर दें बस मुझे समझ आया ये प्ले कर दें. छेतिया ते हाँ पता नहीं आगे क्या कुछ अगर अगर हो सके ना थोड़ा सा अच्छा सा सर्च मारो दो रुपये एक्स्ट्रा डालकर और नाम मुझे सही से लिख कर भेज दो मुझे कुछ समझ में तो आए कि क्या है. अच्छा जी और कौन है हमारे साथ. हेलो जी सफा मैम, मैं पवित्र सिंह. हेलो हावर कैसे हैं. तो जी आपको भी हमारी तरफ से हेलो हाय जी भाई. और हमारे साथ कौन है, बॉस मूवी का कोई भी सॉन्ग चला दें.
1: अरे बॉस मूवी, हाँ भाई बॉस मूवी के गाने बड़े जबरदस्त हैं. बॉस ये है हुकुम का इक्का बॉस, उसकी बहुत सारी क्या होती हैं ट्रकें होती हैं. बॉस बॉस बॉस ठीक है, इसके ऊपर जो है वो रिसर्च की जाएगी बॉस मूवी का गाना. अभी तो फिलहाल 4434377 इज द नंबर टू कॉल. देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप.
0: बिल्कुल ठीक ठाक भाई, आप सुनाएं आप कैसे हैं. चांद पर चले गए क्या, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही.
2: अल्हम्दुलिल्लाह
0: मेरे भाई, कौन बात कर रहा है.
2: अब्दुल समद बात कर रहा हूँ.
0: अब्दुल समद भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, गर्मी एंजॉय कर रहे हैं.
2: जी कर ही रहे
0: कर ही देखो कोई ऑप्शन तो है नहीं सफा, आप ऐसे बात कर रही हैं जैसे हमारे पास कोई ऑप्शन है. तो जब है तो है, एंजॉय कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं. अच्छा ये बताएं
2: कल या आज बारिश हो, लेकिन बारिश
0: ही नहीं हुई. हमने तो दुआ की थी, इज्तमाई दुआएं की थी हमने. अब अल्लाह ताला की मर्जी भाई, अल्लाह ताला बेहतर. एक प्लानिंग इंसान करता है, एक प्लानिंग अल्लाह ताला करता है भाई. बेस्ट प्लानिंग तो उसी की होती है. ये सिलसिला वैसे मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन आधा दर्जन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं होगी. मुझे आपकी बात इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि मेरी भी घर पिछले दिनों बात हुई है, तो बारिश इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है कि पूरा हफ्ता बारिश चलती रही है उनके पास. तो भाई अब्दुल सलाम भाई की आवाज़ मैं बता दूं आपको एक दफ़ा फिर से, अब्दुल सलाम भाई आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है आप चांद पे बैठे हुए हमसे यहाँ पे.
2: हाँ एयर कंडीशन का उसके था ना, एसी के सामने. हाँ
0: तो अब्दुल सलाम भाई ने ये कहा कि पिछले दिनों घर अब्दुल समद भाई ने हमसे ये कहा कि मैंने पिछले दिनों घर बात की तो घर वालों ने दिल जला दिया ये बोलकर. आज सुबह अभी बारिश चल रही है
2: जी.
0: अच्छा कौन से एरिया में आपके घर वाले, कौन से.
2: मैं मियांवाली.
0: मियांवाली मतलब मियांवाली कहाँ पड़ता है ये, अपनी पंजाब साइड पर. पंजाब साइड पर हाँ जी. तो पंजाब साइड पर तो माशाल्लाह बारिश हो रही है और भी अच्छी खासी हो रही है, इतना तो मुझे भी अंदाजा है क्योंकि हमारे घर वाले भी पंजाब साइड पे बैठे हुए हैं. तो वो भी यही बोलते हैं कि भाई हफ्ता हफ्ता से बारिश चल रही है, दो दो तीन तीन घंटे के लिए रुकती है और फिर वापस से
2: बारिश. मुझे कहते हैं सुनाओ बारिश हो रही है, मैंने कहा बारिश बादल यहाँ पर नजर नहीं आते, बारिश तो दूर की बात है.
0: उनसे कहें बारिश की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो.
2: बादल यहाँ पर नजर नहीं आते, बारिश तो बाद की बात है.
0: यहाँ में बादल नजर नहीं आते, हाँ वो थोड़ा हेज हो जाता है, वो हम जिसे कहते हैं ना गुबार आसमान में आ जाता है. लेकिन आप यकीन जाने उस गुबार की वजह से बड़ी बचत हो जाती है.
2: एक रिक्वेस्ट थी आप.
0: जी जी जी जी भाई.
2: आप गाने वगैरह बहुत से मतलब कहते हैं लोग ये, पर कोक स्टूडियो पाकिस्तान कुछ चला दिया करें, उनके भी अमेरिकन पाकिस्तान के अलावा इंडिया वाले भी सुनते हैं, हर कोई सुनते हैं.
0: ऑन द रिकॉर्ड अगर मैं आपको बताऊं ना,

0: कोक स्टूडियो इज वन ऑफ माय फेवरेट, और मैंने आज अपना शो शुरू ही कोक स्टूडियो के गाने से किया था, और वो भी कैफी खलील के गाने से. कना यारी
1: क्योंकि काफी सॉन्ग आते हैं, लेकिन कोक स्टूडियो काफी कम.
0: अच्छा चले, आपसे अगर पूछा जाए कोक स्टूडियो, क्योंकि कोक स्टूडियो इज अ थिंग के उसका जो भी गाना उठाए भाई वो
1: कोई भी चल रहा था वो इसलिए.
0: आप बताएं आपको कौन सा गाना सुनने को दिल कर रहा है?
1: कोई, मैं वही कह रहा हूँ, कोई भी हो चल जाएगा.
0: नहीं नहीं, आज तो हम आप ही की मर्जी का चलाएंगे. आज हम आपकी मर्जी का चलाएंगे. बताएं आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है. बताएं बताएं बताएं, क्योंकि कोक स्टूडियो के सारे गाने बड़े जबरदस्त.
1: झूल लगा लें, पसूरी लगा लें, ये अफरीन लगा लें, कनयारी लगा लें, मैं क्या क्या बताऊं, मुझे सारे जो भी हिट है सारे.
0: चले भाई सेट है. मुझे तो ऐसा लग रहा है आजकल के सिनेरियो जो लोगों की जिंदगी में चल रहे हैं ना, वो पसूरी सबके लिए सूटेबल है. क्या कहते हैं, ये पसूरी चलाएंगे.
1: झोल भी सही है.
0: झोल असल में मैंने इतना सुन लिया है, इतना सुन लिया है कि जिंदगी झोल हो गई.
1: कनयारी लगा
0: लें फिर. झोल भी अच्छा गाना है, लेकिन झोल जो है ना वो थोड़ा सा सैड सा हो जाएगा. पसूरी थोड़ा अब बीट वाला है. पसूरी थोड़ा सा अब बीट वाला लगा लेते हैं. क्या कहते हैं शरण जी, पसूरी को मद्देनजर रखा जाए और इसके ऊपर जो है ना कुछ काम किया जाएगा. चले, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. ये बताएं हमारे साथ गेम खेलेंगे?
1: मैंने अभी ज्वाइन किया. क्या गेम?
0: गेम ये है कि आपको एक मिनट दिया जाएगा. एक मिनट के अंदर आपने एक टॉपिक दिया जाएगा आपको. आपने उस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, कुछ भी फन. जैसे आप बात कर लें मेरी घड़ी.
1: मैं वैसे इतना बतौनी नहीं हूँ.
0: चले कोई बात नहीं, आप अपना वीकेंड एंजॉय करें. ठीक है
1: जी.
0: चले जी, अपना ढेर सारा ख्याल
1: रखें. आपसे कोक स्टूडियो के थोड़े से लगा लें बस.
0: चले, आपने बोल दिया हाजिर. वैसे आपने मिस कर दिया हमारा एक गाना, लेकिन आपके लिए फिर हम एक और गाना लगा लेते हैं. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.
1: अल्लाह हाफिज.
0: तो साथियों देखो भाई, मेरा जाने का टाइम आ गया है. जिन लोगों के मैसेजेस मैं नहीं पढ़ पाई हूँ उनसे माजरत. मैसेजेस आए चले जा रहे हैं, मैसेज आए चले जा रहे हैं, मैसेजेस आए चले जा रहे हैं. आज तो मैसेजेस की भरमार हो गई है. कोक स्टूडियो, कोक स्टूडियो, कोक स्टूडियो. जी हाँ, अताउल्ला खान. अब भाई अताउल्ला खान, ये किसने मैसेज किया है? अताउल्ला खान, देखो मुझे ट्रिगर कर जाते हो ऐसे ऐसे नाम लेकर ना. जावेद कुरैशी भाई हैं और वो कह रहे हैं उन्होंने अताउल्ला खान का याद दिलाया है. अताउल्ला खान भाई, अब आप लोग जैसे जैसे गाने बोल रहे हैं ना, वो असल में वीकेंड के साथ ना वो थोड़ा बहुत मैच नहीं कर रहे. लेकिन नो डाउट ये वो नाम है जिनका नाम सुनते के साथ किसी का भी दिल ललचाएगा कि भाई ये वाला गाना तो चला ही दो. तो एक काम करती हूँ मैं, जो हूँ वो स्टूडियो अभी मुझे छोड़ना है, क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट शो के जो है ना मुंतजर, मेरे ख्याल से कबीर भाई आएंगे. काफ़ी दिनों बाद कबीर भाई से मुलाकात होगी. तो एक काम करती हूँ, अभी तो फ़िलहाल मेरा जाने का टाइम आ गया साथियों, और अच्छे अच्छे गानों के साथ आपको छोड़ जाऊँगी. ये याद रखें आज का एक बड़ा फन सा टॉपिक था, क्योंकि जाहिर बात है वीकेंड था, लाइट मोड पे रखना था. लेकिन जाते जाते एक बात जरूर बोलना चाहूँगी आप लोगों को, जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती. ये याद रखें कि द ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर एंड. मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती. अल्लाह ताला ने हर किसी को इक्वल रखकर उसके हिसाब से ये बोला गया है कि तुम्हारे कंधों के ऊपर वो बोझ नहीं डाला जाएगा जो तुम सह ना सको, जो तुम बर्दाश्त ना कर सको. तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि गुजारनी ऐसी भी है, गुजारनी वैसी भी है. दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत करें. लाइफ जैसी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह करके उसको गुजारें, अपना बेहतरीन तरीन दें. जिंदगी सिर्फ एक दफ़ा मिलती है, तो अपना बेहतरीन तरीन दें. अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर ऊपर जाना है हमने, तो रिपोर्ट कार्ड को अच्छा बनाएं कि अल्लाह ताला तेरे रजा में राजी थे. तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे. अपना ढेर सारा ख्याल रखें. इस लालच में कुछ लोगों को ये होता है कि नहीं भाई हमने दूसरों का ख्याल रखना है. अरे भाई अपना ख्याल रखोगे तभी तो दूसरों का ख्याल रख सकोगे. इसी लालच में अपना ख्याल रख लो कि अपना ख्याल इसलिए रखो कि दूसरों का भी ख्याल रखना है. जो अपना ख्याल नहीं रख सकता वो दूसरों का क्या ही ख्याल रखेगा. मी साइनिंग आउट, क्योंकि अगर मैं बोलना शुरू करूंगी वापस से तो फिर से जीरो मीटर से शो स्टार्ट हो जाएगा. तो फिलहाल के लिए मी साइनिंग आउट. इजाजत दे मुझे, टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज एंजॉय योर वीकेंड सुनते रहे एफएम 107 दिल से देसी. और भाई इस गाने का हमें किसने कहा था गुमरू मोहम्मद बशारत भाई ने ये अच्छा गाना.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: इस टाइम जो मुझे सुन के अभी भी सरप्राइज है, आप इस हफ्ते पहली मरतबा एक बजे आए हैं, मुझे पूरा यकीन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड आजरा भाई साहब। क्या हाल है, उम्मीद नहीं होती ना इस टाइम पे आएगा ये। तो मुझे तो लोगों ने शाम और मुझे यूनैनिमसली एक साथ रख रखा है, हम सिनोनिम्स हो चुके हैं। इतनी भारी भरकम बात करने के बाद सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा भाई, क्या हाल है आपके? बढ़िया है, जो इस टाइम आ गए हैं आ गए हैं। शाम को भी आना है आपको। मैं अभी वैसा वाला शख्स हो गया हूँ जो इनविटेशन भेजता है और फिर बाद में कहता है, सुनिए वो आपके पास इनविटेशन आया, शाम को भी आना है घर पे, चाय हमारे यहाँ ही है। ऐसे नहीं तो शाम को मिलेंगे। वैसे वेरी हैप्पी वीकेंड। अब मेरा तो वीकेंड कायदे से शुरू हो चुका है, अभी तो काम ही काम है भाई शाम तक। बाकी आपके क्या हाल है? बढ़िया। कुछ मैसेजेस आए, मैं उसके बाद स्पोर्ट्स राउंडअप की सारी खबरें शुरू करूंगा। एक मैसेज है एआई कबीर की, मुबीन भाई कह रहा है ये वाला असली नहीं है, एक बजे वाला असली नहीं है, ये एआई है। एआई नहीं भाई, मैं ही हूँ। और मुझे सुन के हैरान है शेख इरफान अल कासमी साहब। इरफान भाई, मैं इस वक्त आता हूँ क्योंकि अमीन भाई की प्रॉक्सी लगा रहा हूँ मैं, अमीन भाई हैं छुट्टी पे इसीलिए। अच्छा, आप खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले फुटबॉल से शुरुआत करेंगे। देखो, मुझे लग रहा है अर्जेंटीना ने फैसला कर लिया था, अगर हम कप ना जीते तो फुटबॉल तो कम से कम हमारी वजह से चलता रहेगा, न्यूज में आता रहेगा। फुटबॉल की खबर अर्जेंटीना से जुड़ी हुई अभी भी आ रही है। पंगा हो गया भाई, पंगा हो गया बहुत बड़ा वाला। तो फीफा पूरी एसोसिएशन है, अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन, और कुछ प्लेयर्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन

शुरू कर दिए हैं। ये जो पूरा मामला है ये वर्ल्ड कप के दौरान हुआ था, आपको पता ही होगा, फिर वो पॉलिटिकल बैनर्स और सब कुछ, क्राउड बिहेवियर को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स हो चुके थे। सो उससे ही जुड़ी हुई जो बातें हैं वो अभी भी सामने आ रही हैं। तो प्लेयर्स को अपना जवाब देने का मौका दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि सीधा लगा दिया भाई इन्होंने क्या, ये वहाँ खड़े थे, मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा, ऐसा भी नहीं है। मगर प्लेयर्स को अपना जवाब देने का मौका मिलेगा, क्यों किया, किस लिए किया, एंड उसके बाद जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना होता है, मीडिया के सामने भी नहीं आई टीम, पूरी पूरी सामने से निकल गई, तो उसका भी, उसकी भी जवाबदेही अर्जेंटीना को देनी पड़ेगी, उसके बाद फाइनल फैसला सुनाया जाएगा। आई डोंट नो, फाइनल फैसला तो ऐसे लिखा है, पता नहीं क्या ही कर देंगे, पर कुछ तो होगा। ऐसे बोला फाइनल फैसला सुनाएंगे, हालांकि मुझे लगता है कि अगर कुछ फाइनल फैसला होगा भी तो बेसिकली कुछ छोटा मोटा जुर्माना लगा देंगे, मिलियन डॉलर्स लेते हैं सारे प्लेयर्स, उनको कहाँ ही फर्क पड़ेगा, बट ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। दूसरी बहुत बड़ी खबर है, एंड दूसरी फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, और वो है फ्रांस की टीम की तरफ से। सो फुटबॉल के लेजेंड, इनका नाम बच्चे बच्चे ने सुना है, फुटबॉल को पसंद करता हो ना पसंद करता हो, मेसी रोनाल्डो के अलावा और बहुत सारे नामों के बीच में जो मशहूर हैं उनमें से एक नाम है ज़िनेदीन ज़िदान। ज़िदान ने फ्रांस की नेशनल टीम की कोचिंग संभाल ली है, सो वेरी वेरी बिग न्यूज़, और फैंस को उम्मीद है, इनफैक्ट मुझे भी उम्मीद है कि उनकी लीडरशिप में फ्रांस दोबारा बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में मजबूत परफॉर्मेंस देगी। एंड अभी भी मुझे लग रहा था, इनफैक्ट इस वाले जो बीते वर्ल्ड कप में मुझे लगा था क्या हो सकता है फाइनल में आके हुर्रा दे फ्रांस की टीम, बट दैट डिडंट हैपन, बट ठीक है, दे रियली रियली प्लेड वेल। बट ज़िनेदीन ज़िदान, ज़िदान के आने के बाद यार एक तो नाम बड़ा कूल है ये, आई थिंक कुछ तो फर्क पड़ेगा। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया। आप आरिफ भाई एकदम बढ़िया। और मैसेज क्या है, जैस भाई ने कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, अरे ओवर टाइम लग रहा है भाई, ओवर टाइम नहीं है ऐसा मत बोलो, आपके चक्कर में मांग लूंगा जाके ओवर टाइम। एक मैसेज है, मेरे को तो रिकॉर्डेड शो लगता है। अरे नहीं भैया, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद, एक बात बताओ, किसी आरती पे शक नहीं करते, ये सारे के सारे मुझ पे शक करते। अगर मैं किसी और टाइम पे आ जाऊं ये पक्का रिकॉर्डेड है। एक मैसेज है, चले भाई गर्मी की थकान थोड़ा कम हो जाएगी, इट्स बिकॉज ऑफ यू। इरफान भाई को बहुत सारा प्यार, इरफान भाई गर्मी में चाय भी सब ठीक हो जाएगा। एक मैसेज है, ऐसे रीड होती है न्यूज़, जबरदस्त, लव यू भाई, ट्रेन भर के, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार भाई को। और इसके बाद एक और खबर है जो कि इंजरी से जुड़ी हुई है। देखो खिलाड़ियों को जब इंजरी हो जाती है तो बहुत मामला खराब हो जाता है, ना सिर्फ टीम का बल्कि देखने वालों का भी। तो मैनचेस्टर सिटी के जो मिडफील्डर हैं रोड्री भाई सबको सर्जरी के बाद रिकवरी चल रही है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अब वो क्लब टीम्स का ऐसे होता है, जब क्लब मैचेस होते हैं तो फैंस बहुत एक्साइटेड होते हैं आर्सेनल, पर अभी क्लब मेडिकल स्टाफ के मुताबिक उनको कुछ हफ्ते और एक्शन से दूर रहना ही पड़ेगा। सो कुछ नहीं कर सकते, तो मैनचेस्टर सिटी के अभी और मैचेस होने बाकी हैं। रोड्री भाई साहब जो हैं वो सारे मैचेस को भी मिस करने वाले हैं कुछ हफ्तों के लिए, इज बेटर दैट ही रेस्ट, एंड ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। क्रिकेट की तरफ ज़रा बढ़ लेते हैं। सो क्रिकेट की तरफ बढ़ने के लिए मैं सबसे पहले अजिंक्य रहाणे के बारे में बात कर रहा हूँ। अजिंक्य रहाणे जो हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट उन्होंने ले लिए, फाइनली ये खबरों में आ चुका है। रहाणे भाई साहब पहले भी लेने वाले थे, पहले भी एक मरतबा बयान आया था, ऐसी उड़ती उड़ती खबर थी, लेकिन इंडिया के सीनियर बैटर अजिंक्य रहाणे ने इमोशनल वीडियो के जरिए, बाकायदा वीडियो है भाई, इमोशनल वीडियो के जरिए अपनी इंटरनेशनल रिटायरमेंट अनाउंस कर दिए। उन्होंने फैंस, टीममेट, सारे कोचेस सबका शुक्रिया अदा किया है, एंड काफ़ी स्वीट मोमेंट था यार। एंड रहाणे साहब ने ऑस्ट्रेलिया में हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज जीत और कई यादगार इनिंग्स के लिए हमेशा उन्हें वैसे भी याद रखा जाएगा, एंड ही मेंशनड फ्यू ऑफ द इनिंग्स एंड ही वाज रियली ग्रेटफुल। और वो वीडियो मैंने देखा, उन्होंने कहा भाई यार दिस इज सच एन इमोशनल थिंग टू डू, जब आप किसी चीज़ से सालों से जुड़े हुए हों और अचानक से आपको अलविदा कहना पड़े तो कैसा फील होगा, एंड ही विल बी मिस्ड। सो अजिंक्य रहाणे साहब, ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और दूसरी जो अपडेट है वो हमारे पड़ोसी मुल्क की है, पाकिस्तान की है, पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज के टेस्ट की है। अब मेरे पाकिस्तानी भाइयों सामने आइए और बताइए आपकी क्या प्रतिक्रिया है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस, बिकॉज वेस्ट इंडीज़ ने पहले टेस्ट में मजबूत बॉलिंग और काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन बैटिंग की वजह से पाकिस्तान पर प्रेशर बना दिया, और मुझे लग रहा था ये ऑपोजिट होगा, बट आई थिंक वो टेस्ट इतने टाइम से खेला नहीं है। इंडिया की भी बात करूँ तो हमने चलो थोड़ा बहुत खेल लिया टेस्ट, मगर टेस्ट मैचेस का जो वो जो प्लग इन हुआ करता था हमारी ज़िंदगी में कि पाँच दिन बैठ के देख रहे हैं, उसकी भी कमी है। बट नंदलेस अभी प्रेशर सिचुएशन में है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को मैच बचाने के लिए टॉप ऑर्डर से बड़ी पार्टनरशिप की बेहद ज़रूरत है। सो कितने लोग फॉलो कर रहे हैं वाला टेस्ट मैच मुझे ज़रूर बताएगा। टेस्ट मैचेस को फॉलो करने वाले आज भी हैं,
आई रियली वॉन्ट टू नो. एक मैसेज है भाई, क्या भाई आपके फैन आपको खबरी सुनाने के लिए नहीं छोड़ता. थैंक यू सो मच भाई मोहम्मद भाई, जजाकल्ला. एक भाई मैसेज है भाई, मैक्सिमिलियन कतर की अपडेट देखिए जाइएगा. भाई अभी कोई अपडेट नहीं है, बस बताया गया कि ही विल बी हेयर सून, बट अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं है. मैं दूसरे शो में उसके बारे में बात भी कर रहा हूँ इरफान भाई, मैं ज़रूर बताऊँगा. आरिफ अंसारी भाई लिखते हैं, अमीन भाई को बोलिए 3-4 साल छुट्टी हफ्ते को सुनने को मिल रहा है. लव यू भाई, लॉट्स ऑफ लव आरिफ भाई को. हाँ तो कोई पाकिस्तानी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, आर यू फॉलोइंग द मैच बाय द वे, ये पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज वाला टेस्ट मैच, क्योंकि अपेरेंटली आजकल लोगों ने टेस्ट मैचेस को फॉलो करना छोड़ दिया है. एम के साहब वालेकुम अस्सलाम, और मोमिन भाई लिखते हैं यकीन माने मैंने क्या स्पोर्ट्स नहीं सुनता था, आपकी वजह से सुन रहा हूँ और अच्छा भी लग रहा है. बहुत सारा प्यार मेरे भाई को, थैंक यू सो मच मोमिन भाई. यूसुफ भाई वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी वीकेंड. अभी आज ये टाइम क्या है, बहुत हैरान है. फजील भाई भी ठीक है, अमीन भाई भी ठीक है. अमीन भाई छुट्टी पर है इसलिए मैं आया हूँ और पिछले 2 हफ्ते से आ रहा हूँ. ऑल राइट, अब जरा आगे बढ़ते हैं क्रिकेट की. एक क्रिकेट से जुड़ी हुई एक और खबर भाई, और मैं बचपन से, अभी से नहीं, मैं बचपन से कह रहा हूँ इस खबर के पीछे पड़ा था मैं. ओलंपिक्स का जब भी जिक्र होता था मैं ये सोचता था कब हमें शामिल किया जाएगा. अभी रिसेंटली हॉकी गया, बाकी मैचेस बाकी खेल गए, लेकिन अभी क्रिकेट ओलंपिक्स की तरफ जा रहा है, समझ रहे हैं. अभी कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, इट इज सच अ ह्यूज न्यूज, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो क्रिकेट को 2028 में, अभी नहीं 2028 में, लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में शामिल करके इंडिया और दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को टारगेट कर रही है. If it all happens, मेरी तो अंग्रेजी भी फिसल गई. If it all happens, मैं बता रहा हूं ये इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती है. ओलंपिक्स में भाई साहब हम आग ला देंगे अगर ऐसा हो गया तो. एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इससे क्रिकेट का जो ग्लोबल पॉपुलैरिटी है वो और भी बढ़ जाएगी. मैं ये नहीं कहूंगा कि क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल चालू कर दिया जाए कि ओहो इक्वली फेमस हो जाएगा, आई डोंट नो, बट इतना है कि अगर क्रिकेट ओलंपिक्स में शामिल कर दिया जाए तो भाई बहुत बड़ी बात हो जाएगी. दैट इज डेफिनेटली ट्रू. हाउ एक्साइटेड आर यू, आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा या आर यू एक्साइटेड अगर क्रिकेट ओलंपिक्स में आ गया? क्योंकि हम देशियों की तरफ एक चीज़ हो जाती है, जब हम ओलंपिक्स देखते हैं तो हम वो वाला खेल देखते हैं जिससे हमें थोड़ा बहुत पड़ी हो, है ना, या तो हमारे मुल्क का कोई खिलाड़ी खेल रहा हो. बट इफ क्रिकेट कम्स इन टू ओलंपिक्स, ये मैं बता रहा हूँ, इट विल बी ए ह्यूज टर्न अराउंड. बचपन से सोचते आ रहे हैं हम लोग, और मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा क्यों है, क्या दिक्कत है, क्रिकेट को भी शामिल कर ही लो इतने सारे खेल ने तो. बट लेट्स सी, इस बार 2028 के लिए जो चीज़ कही गई है क्या ये कारगर साबित होने वाली है या नहीं, ये चीज़ देखने वाली होगी. सो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, व्हाट इज योर ओपिनियन दिस, बताइएगा. अरबाज भाई लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम गारी मौलाना साहिब, मैं ये सोच रहा हूँ कि आवाज़ तो मुझे जानी पहचानी लग रही है, ये कौन है, मैं वही हूँ जो शाम में आता है. तो या अच्छा, इसके बाद मैं आगे खबरों की तरफ बढ़ूंगा, बट मैं कुछ ओपिनियंस आपके जानना चाहता हूं कि आप जो हैं, जैसे आज की मैंने बात करी टेस्ट मैच क्रिकेट की, पहले यार हम भी देखते थे टेस्ट मैचेस बैठ के, रात के टाइमिंग के हिसाब से अगर चल रहा है तो भी रात को मैचेस देखते थे. अभी थोड़ा टाइम स्पेन और अटेंशन स्पेन कम हो चुका है लोगों का, तो टेस्ट मैचेस को फॉलो नहीं कर पाते, धुएंधार बल्लेबाजी देखने की आदत हो चुकी है. बट इफ़ यू आर स्टिल फॉलोइंग टेस्ट मैचेस तो बताइएगा, आई रियली वॉन्ट टू नो ओपिनियन. मैं इस बारे में सोच भी रहा था कि अगर जब तक आप क्रिकेट के बहुत बड़े फैन नहीं है तब तक तो शायद यू विल नॉट फॉलो अ टेस्ट क्रिकेट मैच. एक मैसेज है, मैं शर्मा के एक शो भी नहीं देखा, शो में आपका वही देखना पड़ता है, अब ये भी देखना पड़ेगा भाई, बस कुछ दिन के लिए फिर अमीन भाई वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह. और एक मैसेज है, क्यों भाई हमारा क्रिकेट इवेंट ओलंपिक से कम है क्या, हमें नहीं जाना ओलंपिक में. नहीं इरफान भाई, आई एम नॉट सेइंग कि ओलंपिक से कम या ज्यादा है क्रिकेट, मैं ये कह रहा हूँ ओलंपिक चूंकि जिस स्टेज पे होता है वो बहुत बड़ा स्टेज है ना, वो उन मुल्कों तक पहुंच जाता है जहां तक शायद क्रिकेट नहीं पहुंचता, या अब क्रिकेट पहुंचता है तो वहां की टीम्स खेलती नहीं.

आप रिसेंट टाइम्स में देखेंगे तो कितनी कितनी अलग अलग मुल्कों ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया. बट इफ क्रिकेट इज अ पार्ट ऑफ ओलंपिक्स, ये बहुत बड़ा जंप हो जाएगा. इससे बड़ा जंप नहीं होगा भाई, मैं बता रहा हूँ आपको. एंड इट विल मेक अ ह्यूज ह्यूज ह्यूज इंपैक्ट. आई डोंट नो मेडल्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे पर डेफिनेटली फर्क तो पड़ेगा भाई. तो मैं एज अ क्रिकेट फैन, मैं खेलता नहीं हूँ, आई यूज टू, बट देन आई एम अ फैन. और हम सब बींग इंडियन, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज, नेपाली, हमारे अंदर है वो क्रिकेट का जुनून. तो कहीं ना कहीं हम ये चाहेंगे कि क्रिकेट जो है ओलंपिक्स में शामिल हो जाए. एंड इफ इट ऑल हैपन्स भाई मजा आ जाएगा. कबीर भाई वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. इशफाक भाई ने मैसेज किया. खादर अब्दुल्लादी भाई वालेकुम अस्सलाम. और ये कह रहे हैं पक्का रिकॉर्डेड होगा. अरे कुछ रिकॉर्डेड नहीं है यार मोहम्मद हुसैन भाई, क्यों मेरे पे ये इल्जाम लगता है? लोगों को भरोसा ही नहीं है कि ये एक बजे का शो कर सकता है आगे. पक्का सो रहा होगा. अच्छा एक और ओपिनियन है, ये भाई जो है शहजाद भाई लिखते हैं, कबीर भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्रिकेट ओलंपिक में शामिल हो गया तो उससे बड़ी खबर हो नहीं सकती. और फिर तो गोल्ड मेडल, गोल्ड ही गोल्ड मिलेगा हमारी टीम्स को. सच में बता रहा हूँ मैं तो. ये जैसे इरफान भाई ने कहा कि कोई कम कोई ज़्यादा नहीं है, इट्स जस्ट दैट अगर क्रिकेट आ जाता है ओलंपिक में, हमारी तरफ वाले ओलंपिक देखने बैठ जाएंगे भाई, जस्ट फॉर द क्रिकेट. इतनी बड़ी चीज है हम सबके लिए. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, नाउ यू आर टेकिंग द प्लेस ऑफ अमीन भाई. अरे मैं किसी की जगह नहीं रहा भाई, छुट्टी पर है अमीन भाई, इसीलिए मैं अभी आया हूँ एंड नथिंग एल्स. अच्छा जरा टेनिस की तरफ बढ़ लेते हैं, जब तक आप अपने ओपिनियन दीजिएगा. आर यू हैप्पी दैट क्रिकेट इंशाल्लाह विल बी अ पार्ट ऑफ ओलंपिक्स, और यू जस्ट वॉन्ट टू टेल मी के नहीं यार नहीं चाहिए, ओलंपिक का हिस्सा नहीं बनना है, आपका क्या ओपिनियन है? डू लेट मी नो. बाकी मैं अगली खबरों की तरफ बढ़ता हूँ. टेनिस की तरफ बढ़ेंगे. नोवाक जोकोविच भाई साहब जो है वो सेबेलेंका यूएस ओपन मिक्स डबल्स में पार्टनरशिप करेंगे, और ये दोनों जो हैं वर्ल्ड क्लास स्टार्स हैं. इनकी जोड़ी टूर्नामेंट की सबसे एक्साइटिंग पेयरिंग में जा रही है. मुझे लग रहा है एक पल से टर्न अराउंड टेनिस की दुनिया में भी आने वाला है. एंड एज आई ऑलवेज टेल यू, आई डोंट नो कि आपको कितना इंटरेस्ट है, मेरा इतना इंटरेस्ट था नहीं. अभी मेरा इंटरेस्ट 20-25% होगा टेनिस में. लेकिन एक मरतबा अगर आपने टेनिस के कोर्ट में जाके मैच देखने की कोशिश करी ना भाई, मजा आ जाएंगे आपको. कुछ अलग ही सिस्टम है को बहुत अलग सिस्टम है. टेनिस के कोर्ट में कभी जाइएगा टेनिस का मैच देखने के लिए, मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, नो स्पॉयलर्स, बट इफ यू गो देयर वो जो साइलेंस वहां पर मिलेगा ना, आपको यकीन नहीं होगा. अरे ये क्या, आप हाँ कुछ गिर गया आपकी जेब में से, एक हल्की सी आवाज भी भाई पूरे एरिया में गूंजती है, इट इज डेड साइलेंस. अच्छा इसके अलावा आंद्र रुबलेव ने एस्टोरल ओपन में सीधे सेट्स में जीत हासिल कर ली, क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली अपनी, और उनकी टूर्नामेंट के लिए एक हौसला अफजाई है और बहुत बड़ी बात है, बिकॉज पीपल आर एक्सपेक्टिंग हिम टू विन एंड फाइनली एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरे वो. और फिर फॉर्मर यूएस ओपन चैंपियन डोमिनिक, बड़ा प्यारा नाम लगता है मुझे, एंड आई वॉन्ट टू प्रोनाउंस दिस नेम बिल्कुल उनके क्या कहते हैं उसको लोकल की तरह, डोमिनिक ने प्रोफेशनल टेनिस के बाद ऑस्ट्रिया के लोकल फुटबॉल क्लब के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली, अपनी तैयारी कर ली उन्होंने पूरी की पूरी, और ये उनके स्पोर्ट्स करियर का एक नया और काफ़ी दिलचस्प चैप्टर होगा. जो लोग या तो क्या कहते हैं उसे क्लब से सीधा कंट्री के लिए खेलते हैं, या फिर एक होता है ना कि आप किसी चीज से जुड़े हुए कई सालों तक, एंड देन यू शिफ्ट कंप्लीटली, पूरी टीम पूरा सब कुछ खेल बदलने का, तो डोमिनिक के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ है. कुछ और मैसेज आए, अब ओपिनियन देते हुए लोगों ने मैसेजेस किए हैं. फैयाज सईद भाई कहते हैं लव यू, थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत सारा प्यार. लिखते हैं क्या, हॉकी इज माई फेवरेट गेम, प्लीज प्रमोट. खादर अब्दुल्लादी भाई, हॉकी इज योर फेवरेट स्पोर्ट, आई अग्री, बट देन हॉकी को भी बाहर कर दिया गया, तो हम कैसे जीते यार गोल्ड मेडल, हमें भी तो कुछ चाहिए. इस बार क्रिकेट ओलंपिक में है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, 2028 में से कहा जा रहा है कि इस तरफ बढ़ रहा है, तो जैस भाई वही पूछ रहा हूँ कि विल यू वॉच ओलंपिक, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ओलंपिक तभी पूरी तरह से फॉलो करते हैं देख के. देखो एक होता है अपडेट ले लेना, इंटरनेट पर टाइप कर लिया कि कितने कितने गोल्ड मेडल्स और सिल्वर और ब्रॉन्ज मिले हैं, और एक होता है लिटरली फॉलो करना. पीपल माइट स्टार्ट डूइंग इट अगर क्रिकेट ओलंपिक का हिस्सा बन गया, दैट इज जस्ट माई ओपिनियन, बाकी कह नहीं सकते. एम के साहब लिखते हैं भाई सुबह सवेरे अच्छा होगा डिलीवरी का काम ज्वाइन करो एम के भाई कह रहे आज के शो के क्या है
टीआरपी बढ़ जाएगी या पीआर टीआरपी बढ़ जाएगी, कौन सी जो कि टीआरपी बढ़ जाएगी भाई, काश टीआरपी सिस्टम होता, कसम से मजा आ गया होता भाई, कताई मजा आ गया होता। अच्छा इसके बाद जरा फॉर्मूला वन की तरह बढ़ूंगा, फॉर्मूला वन रुन रुन रुन रुन। सो टेनिस समर ब्रेक से पहले

चैंपियनशिप पॉइंट्स के लिए सख्त मुकाबला जारी है भाई। कतर में भी होने वाला है, कतर एयरवेज का जब यहाँ पे टूर्नामेंट होगा लुसेल सर्किट में ग्रां प्री, उसमें भी अलग मजा आएगा। बट फिलहाल ये जो टेनिस कह रहा हूँ, टीम समर ब्रेक से पहले जो चैंपियनशिप पॉइंट्स के लिए सख्त मुकाबला है वो जारी है। कंस्ट्रक्टर्स और ड्राइवर्स चैंपियनशिप्स दोनों में कॉम्पिटिशन काफी करीबी है। इसका रिजल्ट, उसका पूरा का पूरा फर्क हमें यहाँ देखने को मिलेगा जब यहाँ पे पूरे के पूरे टूर्नामेंट होंगे, एंड आई थिंक इट विल क्रिएट अ ह्यूज ह्यूज इम्पैक्ट। सो वो भाई जब होगा इंशाल्लाह तब बताएंगे आपको। बाकी बॉक्सिंग की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है, टाइसन फ्यूरी अपने अगले मुकाबले के लिए तैयारी में काफ़ी बिजी हो गए, और जो उनके फैंस हैं ऑफकोर्स कमबैक की तलाश है सबको। टाइसन फ्यूरी एक ऐसा नाम है बॉक्सिंग की दुनिया में जो लोगों ने इक्वली सुना है बाकी बॉक्सिंग स्टार्स के बीच में, फैंस जस्ट वॉन्ट्स कि जल्दी जल्दी भाई वापस आ जाओ भाई, कमबैक के इंतजार में। प्रेशर बहुत बढ़ जाता है बड़े बड़े लेजेंड जब कमबैक कर रहे होते हैं। आई एम होपिंग जो बॉक्सिंग के फैंस हैं वो भी टाइसन फ्यूरी के लिए तैयार हैं। एक तो नाम ही ऐसा है भाई, इतना भारी भर का नाम रखा कि लगता है ये आदमी टाइसन फ्यूरी, ये पक्का बॉक्सिंग में होगा या रेसलिंग में होगा। नाम ऐसा रखो कि आपको स्पोर्ट्स में नाम लेके भी लोग बोले आ यही है। अरबाज भाई कहते हैं शो में आप है ना सर, इसलिए बढ़ जा रही है, खतरे में लग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं अरबाज भाई, कुछ मैसेज इतनी मोहब्बत वाले आप कर देते ना मैं पढ़ भी नहीं पाता पता ही दैट इज जस्ट सो स्वीट ऑफ यू। एंड आरिफ भाई तो भाई थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत सारा प्यार आरिफ अंसारी साहब को भी। एंड एक मैसेज आया मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग, इन्होंने टेक दिया है, ये मैसेज किया है मुझे, क्या नाम है आपका, AMY लिखा है आपने, एमी, अच्छा ओके। इन्होंने लिखा है कि क्रिकेट के बारे में भी बचपन से सोचता था कि क्रिकेट हो सकता है कभी ओलंपिक में आएगा, पर मुझे यकीन नहीं था कि कभी क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो क्रिकेट के शायकीन के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम भी बैठ के ओलंपिक फिर पूरा पूरा देखेंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर क्रिकेट ओलंपिक का हिस्सा बन गया, जो कि 2028 में इंशाल्लाह बन जाएगा, सो लोग फिर एक एक खेल नहीं पूरा का पूरा देख डालेंगे भाई, कि क्रिकेट है तो अब देखना ही पड़ेगा। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स की तरफ ज़रा बढ़ते हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आई डोंट नो कितने अपडेटेड हैं आप, लेकिन हर स्पोर्ट्स राउंडअप में इसकी बात करना बड़ी ज़रूरी है। सो ग्लासगो में जो कॉमनवेल्थ गेम्स जोरों शोरों से जारी हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा और इंडिया मेडल टेबल में मजबूत मुकाबला कर रहे हैं भाई, अलग अलग खेलों में मेडल्स जीते, एथलेटिक्स में, स्विमिंग में, बॉक्सिंग में, वेट लिफ्टिंग में सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कुछ तो ऐसा होगा टर्न अराउंड जिससे हमारी कंट्री, स्पेशली मैं अपनी बात करूँ तो मैं इंडिया से हूँ, तो आई वांट इंडिया टू जस्ट स्टे देयर, लगे कि हाँ ये टेबल पे भाई कुछ तो किया है हमने ज़िंदगी में। तो कॉमनवेल्थ गेम्स पे कितने लोग फॉलो कर रहे हैं आई डोंट नो, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी होती हैं ना, हम अपने मतलब के हिसाब से देखते हैं और इंटरनेट भी हमें हमारे मतलब के हिसाब से दिखाता है। आई डोंट नो कि एल्गोरिथम के हिसाब से आपको कॉमनवेल्थ की कोई खबर मिली है नहीं मिली है, बट ये खबर ज़रूरी थी तो मैंने बता दिया। एक और ओपिनियन आया मेरे पास, ये अली शमान भाई ने मैसेज किया है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपको मैं 1 बजे सुन रहा हूँ, आप इस टाइम कैसे आ गए, बाकी स्पोर्ट्स राउंडअप आपको करना चाहिए, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। थैंक यू सो मच भाई, दैट इज़ सो स्वीट ऑफ यू भाई, लोगों को ये भी पसंद आ रहा है ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था, बट थैंक यू, दैट इज़ सच अ जेनरस मैसेज। एंड आपका क्या ओपिनियन है एक बताइएगा। एक भाई कह रहे हैं कि हाँ भाई मैं कॉमनवेल्थ को फॉलो कर रहा हूँ, हर साल करता हूँ, इनफैक्ट इंडिया में आपको याद होगा कि क्या लगे इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स जब हुए थे तो मैं उसमें वॉलंटियर था। अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एक और मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप इस टाइम, जी भाई इस टाइम देखो कहानी का मत बोलना पता चला अभी से लोगों ने मैसेज करना शुरू कर दिया, कहानी कहाँ है इस टाइम, कुछ नहीं कहानी। तो 666-22-107 नंबर है, एंड डू लेट मी नो क्या हाउ डू यू टेक दिस फॉरवर्ड, जब आपको ये क्या कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में किसी की स्पोर्ट्स को अभी फॉलो कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, क्योंकि हमारी देशियों की आदत है कि हम दूसरे स्पोर्ट्स को फॉलो करते रहें, अनटिल यू आर बॉर्न हियर तो आप थोड़ा फुटबॉल की तरफ आपकी तवज्जो हो जाती है। जैसे कि अभी फुटबॉल की एक दो खबरें और हैं और एक भाई ने मुझे अच्छा दिलाया तो उस बारे में बात करूंगा। सऊदी अरेबिया की जो टीम है उसको AFC चैंपियंस लीग इलीट फाइनल्स की होस्टिंग का मौका मिल गया, तो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि अगले 3 एडिशंस कि AFC चैंपियंस लीग इलीट फाइनल्स सऊदी अरब में ही होंगे, तो सऊदी अरब में ही होंगे, कंफर्म खबर है। और इस फैसले का मकसद टूर्नामेंट की कमर्शियल वैल्यू और जो फैन एंगेजमेंट ऑफ कोर्स उसको बढ़ाने का है, और सऊदी अरब के पास अभी मौका है क्योंकि आने वाले वक्त में फिर इतना बड़ा वर्ल्ड कप भी

होस्ट करना है, सो दिस इज देयर चांस टू गिव इट बैक टू द वर्ल्ड. एंड इसके अलावा जो फुटबॉल क्लब्स हैं, इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड जारी है, तो वर्ल्ड कप के बाद फुटबॉल क्लब्स में अभी इन्वेस्टर्स उसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि अब आओ इनको ही पकड़ते हैं. तो लिवरपूल हो, क्रिस्टल पैलेस, लेचेस्टर सिटी, ये बड़े बड़े क्लब्स जो हैं इसमें इन्वेस्टर्स ये भी ढूंढ रहे हैं, इन्वेस्टर्स इन्हें ढूंढ रहे हैं. तो एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि फुटबॉल अब दुनिया के सबसे अट्रैक्टिव स्पोर्ट्स बिजनेस का हिस्सा बन चुका है. जैसे भी हम देख रहे हैं इंडिया में भी IPL हो या पाकिस्तान PSL हो, सब जगह इन्वेस्टर्स की नज़र है और ये जो खेल फैल रहे हैं. अगर क्रिकेट अगेन कमिंग बैक टू द न्यूज़, अगर ओलंपिक का हिस्सा बनता है तो आई थिंक इन्वेस्टर्स विल बी मच मोर इंटरेस्टेड. इसके अलावा मॉर्गन रॉजर्स का रिकॉर्ड ट्रांसफर हो चुका है. यंग इंग्लिश स्टार जो है मॉर्गन रॉजर्स, उनको चेल्सी का ट्रांसफर इस साल के सबसे महंगे डील्स में उन्हें शामिल कर लिया गया है. क्लब को उम्मीद है कि वो मिडफील्ड और अटैक दोनों में अहम किरदार ऐड करेंगे. एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, क्रिकेट की और भी खबरें, जैसे इंग्लिश टीम, इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने जो रूट को दोबारा टेस्ट कैप्टन बना दिया है और न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग को हेड कोच अपॉइंट कर लिया गया है और दोनों से उम्मीद की जा रही है कि इंग्लैंड की टेस्ट टीम को दोबारा टॉप लेवल पे लाया जाए. तो ये तो जद्दोजहद इनकी काफ़ी पैशनेट नज़र आ रही है, इस बार छड़ेंगे नहीं. एक मैसेज आरिफ भाई का, लिखते हैं आप लोग अमीन भाई को क्या कराने लगे हो, जा मैं समझा नहीं आरिफ भाई, मैं पढ़ नहीं पा रही क्या लिखा है. और इनके बाद है रहने साहब का, तो मैंने खबर दी ओलंपिक क्रिकेट की तैयारी जो है. एक और भाई कह रहे हैं कि खबर क्या आ रही है, खबर ये आ रही है भाई कि LA लॉस एंजल्स 2020 ओलंपिक्स के लिए क्रिकेट की तैयारी तेजी चल रही है. तो ये खबर थी, हमने ब्रेक करी तो आप देखेंगे ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स जो हैं काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. और ये T20 फॉर्मेट के लिए है, तो इसमें 50-50 वाला सिस्टम नहीं होगा. इफ़ इट कम्स टू ओलंपिक्स ऑफकोर्स T20 होगा और ये हमेशा से काफ़ी अट्रैक्टिव रहता है, सो दैट विल बी देयर. तो इसके लिए तैयारी रखिए. एंड फार्मूला 1 की तरफ से एक और खबर आ रही है, तो फार्मूला 1 रेसेस में फुटबॉलर्स, टेनिस चैंपियंस और ओलंपिक मेडलिस्ट रेगुलर तौर पर नजर आने वाले. तो इससे F1 वो बेसिकली ग्लोबल ले जाने का मकसद है यार. अगर आप किसी खेल में मशहूर हैं तो मैं आपको अपने खेल में शामिल करूंगा ताकि मेरा खेल भी आपकी ऑडियंस तक पहुंचे. एंड दैट इज़ द टारगेट दैट इज़ ट्राइंग टू बी अचीव्ड बाय F1. तो F1 ने ग्लोबल पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग में काफ़ी इजाफा ऑलरेडी कर लिया है एंड दे जस्ट वॉन्ट कि सारे के सारे बाकी खेलों के लोग भी उनसे जुड़ जाएँ. एक मैसेज आया है, क्या मैसेज किया है, जैसे बोला है कि आपको स्पोर्ट्स राउंड अप करना चाहिए वो. अच्छा अच्छा ओके ओके, हाँ भाई तो अब पब्लिक चाहिए स्पोर्ट्स राउंड अप भी कर लो थोड़ा, तो मतलब है आराम से हल्का हाथ, इतना मत कराओ मेरे से काम, इतना मेहनती हूँ नहीं मैं. अच्छा तो ये था आज का स्पोर्ट्स राउंड अप. एंड इन केस आपके पास कोई ऐसी स्पोर्ट्स की खबर है जो आप दुनिया से शेयर करना चाहते हैं, एंड इफ़ यू फॉलोइंग अ स्पोर्ट सो रिगरसली कि आप छोड़ नहीं सकते, तो हमें बताइएगा 666-22-107 पर. मेन वाइल एक और खबर आ रही है, एक सेकेंड रुकिए ज़रा चेक तो करें. अस्सलाम वालेकुम. भाई आपने नाम नहीं लिखा है, उन्हें यार नाम भी लिख दिया करो, थोड़ी आसानी रहती है बात करने में. ठीक है, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस वाज स्पोर्ट्स राउंड अप. अब मिलेंगे शाम को 5 बजे सीधा इवनिंग 974 में, और कहानी के साथ मिलेंगे, बहुत सारी बातों के साथ मिलेंगे. बट ये भी याद रखिएगा कि आपकी फीडबैक ज़रूरी है, चाहे इस शो के लिए हो चाहे उस शो के लिए हो. तो अभी दोपहर बताइए आराम से, चाय वाय पीजिए, इंशाल्लाह शाम में 5 बजे मुलाकात होगी. बट फॉर नाउ दिस इज़ दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं. मां सलाम.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूँ? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे एफ और अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक पूरी

आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक, टाइम चेक, चेक चेक चेक टाइम चेक। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए हैं दोपहर के 1:31, यानी इट्स टाइम फॉर,
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
2: हां जी, तो मेरे देसी ऑडियंस क्या हाल चाल है, FM 107 पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। हां जी, गुड आफ्टरनून, क्या हो रहा है, कैसे लग रहे हैं गर्मियों वाले दिन। हाँ, वैसे एस्केप रूम में आज आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक तो भाई देखो हमारे कदर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम इस बढ़े हुए टेम्परेचर में अगर कोई ऐसा चैलेंज मिल जाए जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हरियाली ही हरियाली हो, ओहो सिर्फ ग्रीनरी, तो फिर क्या करेंगे। वैसे मुझे लगता है कि जब ग्रीनरी के आप और नज़दीक होते हैं ना, देन कोई भी चैलेंज हो उसे सॉल्व करने में फोकस आसानी से आ जाता है, कि सही है ना। तो चलो ट्राई करेंगे, एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद आज के एस्केप रूम का चैलेंज आपके सामने आएगा। लेट मी सी कि आज आप में से कितने लोग हमारे पजल्स, रिडल्स, क्लू

सॉल्व कर पाते हैं. वैसे 666-22-107 666-22-107 ये हमारा नंबर है, इसे याद कर लीजिए क्योंकि इसके जरिए हमारी बातचीत कंटिन्यूसली चलने वाली है. और अभी के लिए हार्डी संधू एंड निकिता गांधी की आवाज में ग्रेट कॉम्बिनेशन, क्या बात है. लेट्स एंजॉय द सॉन्ग. स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे। सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ RJ नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहाँ हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
3: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से दी।
5: Yes, welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और आज के एस्केप रूम का चैलेंज आपके लिए। पहले बताइए आप में से कितने लोग भूल भुलैया इस तरह की जगहों में गए हैं, मेज में गए हैं जस्ट फॉर फन। अगर नहीं गए हैं तो आज आप जाने वाले हैं। Yes, तसव्वुर कीजिए कि आप एक बहुत बड़े भूल भुलैया के बीचों बीच खड़े हैं। आपके चारों तरफ 10-10 फुट ऊंची घनी हरी झाड़ियां हैं और ऊपर अगर देखते हैं तो आसमान में खूबसूरत परिंदे भी उड़ते हुए जा रहे हैं। इधर उधर चिड़ियों की आवाज है, चहचहाट है। ओहो, हर मोड़ अभी एक जैसा दिखता है। मंजर तो बहुत खूबसूरत है लेकिन जनाब सूरज ढल रहा है और ठंड बढ़ रही है। रात होने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा वरना ये भारी भरकम जो लोहे का दरवाजा है ना, जहाँ से आप बाहर निकलने वाले हैं वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो अगर बाहर निकलने का रास्ता चाहिए तो कुदरत को गौर से देखिए। यहाँ के परिंदे और पौधे ही आपकी मंजिल का पता बताएंगे। तो जनाब अभी आप इस भूल भुलैया के अंदर हैं और आप चल रहे हैं। चलते चलते चलते आप एक डेड एंड पर पहुंच गए हैं लेकिन थोड़ा रुक गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। पर आप देखते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। कौन है आपके साथ? एक नन्हा सा परों वाला मुसाफिर क्लोवर के फूलों के पास मंडरा रहा है। शायद इसे बाहर निकलने का रास्ता मालूम है, बस इसकी गुनगुनाहट का पीछा कीजिए। एंड हियर कम्स योर क्लू नंबर 1, इसे सॉल्व कीजिए। मैं एक छोटा सा रुएदार कीड़ा हूँ, ठीक है? मैं एक छोटा सा रुएदार कीड़ा हूँ जिस पर पीली और काली धारियाँ हैं। मैं सारा दिन फूलों से रस जमा करता हूँ और अपने छत्ते में मीठा शहद बनाता हूँ। बताएं मेरा क्या नाम है? भाई देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। हर एक गार्डन में, हर एक फूल वाली जगहों में ये जो छोटा सा कीड़ा है जिसका जिक्र हुआ है वो मिलता ही मिलता है अपनी गुनगुनाहट के साथ। तो बताएं इसका नाम क्या है? 666-22-107 पर, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ। एंड लेट मी सी कि आप में से कितने लोग ये पहला पड़ाव पार कर पाते हैं। और अभी के लिए एक म्यूजिकल ब्रेक आपके नाम हो रहा है ताकि आप थोड़ा सा म्यूजिक एंजॉय करें और सही जवाब ढूंढकर हमें 666-22-107 पर जवाब दे दे। सो स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: यस वेलकम वंस अगेन माय ऑडियंस, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और चल रहा है हमारा एस्केप रूम। भाई एस्केप रूम का चैलेंज आज बड़ा कमाल का है। एक तो हम बहुत ही खूबसूरत यू कहें एनवायरमेंट में आज कैद हो गए हैं। एक बड़ी हरी भरी सी भूल भुलैया है, जब हमने अपने आप को पाया तो उसके बीचों बीच पाया, उसके बाद हम चलते चलते चलते एकदम डेड एंड पर पहुंच गए। काफ़ी परेशान रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था और लग रहा था कि इस भूल भुलैया में हम अकेले हैं। बट नो, हमारा साथ भी कोई दे रहा था। हाँ, वो चीज़ गुनगुना रही थी। हाँ, क्लू नंबर वन आपको सॉल्व करना था कि मैं एक छोटा रुएदार कीड़ा हूँ जिस पर पीली और काली धरियाँ हैं। मैं सारा दिन फूलों के रस को जमा करता और अपने छत्ते में मीठा शहद बनाता हूँ। मेरा नाम क्या है? इट्स अ मोस्ट सिंपल। हाँ, इसको तो क्यों मैं सॉल्व कर देना चाहिए, लेकिन हमारे लिसनर ने कुछ अलग अलग जवाब दिए, पर हम सीधा सही जवाब की तरफ चलते हैं। जिन्होंने भी लिखा है बी, हनी बी या फिर मधुमक्खी, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। भाई जोरदार ताली हो जाए आपके लिए। क्लू नंबर वन आपने सॉल्व कर लिया है और इसकी भरी मेज से बाहर कले कदम पार कर लिया है। आइए चलिए देखते हैं जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिए हैं, उनके नाम क्या है। तो उनके नाम है उमर, मोहम्मद, अनवर, रमेश, मोहम्मद यूसुफ खान और इनका नाम है मोहम्मद मुशीर आलम। ये जनाब है मोहम्मद बशारत और फातिमा। इन्होंने भी सही जवाब दिया है। वेल डन, आप सबके सही जवाब के लिए सल्यूट है आपको। और अब इस हरी भरी मेज से बाहर निकलने के लिए जरा कदम पार करना पड़ेगा। वेल, जैसे ही आपने सही जवाब दिया क्लू नंबर वन का, मधुमक्खी या हनी बी, अब यह हनी भी धीरे धीरे उड़ने लगी। अब इसके पीछे पीछे चलते अब मेज के बिल्कुल सेंटर में एक गो मैदान में पहुंच गए हैं। यहाँ पर क्लू ढूंढ रहे हैं कि भाई मिल जाए और हम दूसरा पड़ाव पार करें। तो आपकी नजर गई, यहाँ एक पुराना पत्थर का खंभा है, ठीक है, जिस पर रोमन न्यूमरल कुछ लिखा हुआ है। यहाँ कोई घड़ी तो नहीं है, मगर सूरज की रोशनी इस पत्थर पर एक कहानी सुना रही है। क्लू नंबर टू इज दिस, मैं एक एंशियंट इंस्ट्रूमेंट हूँ जो शाही बागों में पाया जाता है। मुझ में कोई गैर या यूं कहें बैटरी नहीं है। मैं सूरज की परछाई से आपको सही बताता हूँ, बाय मेरा नाम क्या है। सोचिए ऐसी कौन सी चीज़ है, एंशियंट ज़माने का ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हमको सूरज की परछाई पड़ते सही बताता है, उसके ज़रिए बताता है, और ये ज़्यादातर शाही बागों में पाया जाता है। उस चीज का नाम बताएं। 666-22-107, 666-22-107 यही नंबर है। इसके जरिए आप अपने नाम के साथ सही जवाब दीजिए और ये जो हमारे एस्केप रूम का दूसरा पड़ाव है उसे पार कीजिए। क्लू नंबर टू एक बार फिर से दोहराऊंगी आपके लिए कि मैं एंशियंट इंस्ट्रूमेंट हूँ जो शाही बागों में पाया जाता है। मुझमें कोई गियर या बैटरी नहीं है। मैं सूरज की परछाई से आपको बिल्कुल बताता हूँ, बताएं मेरा

नाम क्या है? कम ऑन गाइस, सोचे थोड़ा सा, इन हिस्ट्री में जाए और अपना जवाब ढूंढ कर लाए। और अभी लिए एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ हम रुख करते हैं, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरिजीत सिंह की शानदार दमदार आवाज में झूमे जो पठान, जस्ट एंजॉय। स्टे ट्यून्ड टू एफएम 106, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रब करें हमारी कतर में कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हाँ जनाब, एस्केप रूम का ये सेकंड हाफ शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक हुए हैं 2:01। तो ये वो टाइम है जब हम ये दुआ करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस हरी भरी जो मेज़ है, जो इस भूल भुलैया है, इससे बाहर चलना है। लेकिन अगर आपने दिमाग नहीं लगाया तो आप हमेशा के लिए फंस के रह जाओगे।
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
2: वेलकम वंस अगेन। और हम बिल्कुल भी इस हरी भरी मेज में नहीं फंसना चाहते। वेल, अगर नहीं फंसना चाहते, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो रूल्स है बहुत सिंपल है, क्लियर है कि जो एस्केप रूम है इसका चैलेंज तभी होगा और तभी आप चैलेंज से बाहेंगे जब आप क्लूज को सॉल्व करेंगे। देखिए, आज आप एक हरियाली एकदम खूबसूरत हरी भरी भूल भुलैया में कैद हो गए हैं। आपने सोचा कि किसी यहाँ से निकल जाए, पहली बार आप चल रो किया भूल भुलैया में तो डेड एंड पे पहुँच गए जहाँ कोई भी आप मिला, लेकिन एक हनी बी मिली। हाँ, एक मधुमक्खी आप फॉलो किया और अब आप सीधा इस मेज बीच बीच पहुँच गए हैं। बहुत वरदान है यहाँ पर, आप देख रहे हैं यहाँ वहाँ, और आपको क्लू के लिए एक बड़ी खूबसूरत चीज मिली। क्या मिली? आई क्लू नंबर 2 आपके सामने लेकर आते हैं और देखते हैं कि आप इतने लोगों ने सही जवाब दिया है। मैं एक एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट हूँ जो शाही बागों, मुझमें कोई गियर या बैटरी नहीं है, मैं सूरज की परछाई से आपको बिल्कुल सही वक्त बताता हूँ। बताएं इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? आपने कभी देखा होगा, आई एम वेरी श्योर, लेकिन याद नहीं आ रहा है। हमारे लिसनर्स ने घड़ी है, वॉच लिखा है, उसका क्या हो सकता है? सही जवाब रुक करते हैं। कुछ लोगों ने लिखा है सन डायल, कुछ ने लिखा है धूप घड़ी, कुछ ने लिखा है सूर्य घड़ी। उन्होंने भी ये जवाब दिए हैं। अपनी पीठ को थपथपा लीजिए क्योंकि आपने बिल्कुल जवाब दिया है। क्यों ना, आपने सॉल्व किया, क्या बात है।

आइए देखें जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब देने की हमें कोशिश की है. नाम क्या है? नाम है फा मोहम्मद बशारत, मोहम्मद यूसुफ खान और मिस्टर आबी है हमारे साथ, उमर, मोहम्मद अनवर. गुड जॉब, आप सब ने क्लू नंबर 2 सॉल्व लिया है. फैंटास्टिक, अपने वाला है. आगे बढ़ते हैं. जैसे ने सही जवाब दिया सहल, तो अच्छाई के मुताबिक रास्ता विशाल ओक, जो ओक का है उसके पे है, ठीक है. पेड़ इतना बड़ा है कि हटाना मुमकिन है. हमें ऊती का राज समझना होगा ताकि नीचे छुपी हुई खुफिया सुरंग तक पहुंच सके और फिर वहां से रास्ता तय करे. चलिए आपकी है. पो मैं का वो हिस्सा जो जिसके नीचे गहरा रहता है. मैं मिट्टी से पानी पीने के लिए एक स्ट्रॉ का काम करता हूँ और बड़े बड़े पेड़ को तूफान में मजबूती से में रखता हूँ. बताएं मैं क्या हूँ? ये बहुत से आप सभी ने इसके बारे में कहा है स्कूल में भी और आप जानते हैं, ठीक है. बस नाम बता बाकी है. सो क्लू नंबर 3 इज कि मैं पौधे का वो हिस्सा हूँ जो जमीन नीचे छुपा रहता है. मैं मिट्टी से पानी पीने के लिए स्ट्रॉ का काम करता हूँ और बड़े से पेड़ को तूफान में भी मजबूती से थामे रहता हूँ. तो मेरा नाम बताइए मैं क्या हूँ? Fun guys, think about it. सही जवाब दीजिए 666107 पर, 666207 पर अपने नाम के साथ. और जिस एप्रूम से चुने हरी भाई भूल भुलैया से एस्केप जे, ठीक है. सो क्लू नंबर 3 सॉल्व कीजिए और अभी के लिए सम म्यूजिकल ब्रेक की तरफ रुकते हैं ताकि आप थोड़ा सा रिफ्रेश करें और इस क्लू का ढूंढ मुझे मैसेज करें. और अभी के लिए दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग, आई एम श्योर आपको जरूर पसंद आएगा विशाल मिश्रा की आवाज में. स्टे ट्यून्ड FM 107 LCC.

0: आप सुन रहे हैं एस ब्रूक और अंता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: वेलकम वंस अगेन एफएम 7 सुन रहे हैं आप, मैं हूं अकिमिता। और आज एस्केप रूम में कहां पर फंसे हैं आप? ये भाई भूल भुलैया में हैं। यहां से है तो तीन जवाब, पहले क्लू को दिया सही जवाब था बी यानी मधु, दूसरे का भी आपने सही जवाब दिया सन यानी कि सूर्य घड़ी या जिसे धूप घड़ी भी कहता है। अब वो नंबर थोड़ा सा अटक गए हैं, जैसे आपने क्लूज कॉल किया तो आपके सामने एक ओक का पेड़ बहुत ही पास आपको आया, लेकिन दिक्कत ये कि वो इतना कि आप उसको हटा नहीं और आपको तभी कहेंगे। क्लू नंबर थ्री हम सॉल्व करें ताकि जैसे ही हमें इस पेड़ के नीचे छुपी हुई खुफिया सुरंग है वहां तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए, ठीक है? सो क्लू नंबर थ्री इज, मैं पौधे का वो हिस्सा हूँ जो जमीन के नीचे गहरा छुपा रहता है। मैं पौधे का वो हिस्सा जो जमीन के नीचे गहरा छुपा रहता है। मैं मिट्टी से पानी पीने के लिए एक स्ट्रोक काम करता हूँ। इस बड़े पेड़ को तूफान भी मजबूती से थामे रखता हूँ। मैं क्या हूँ? साइंस में भी आपने बहुत पढ़ा इसके बारे में, वैसे भी अंदाजा होगा इस जवाब से। लिखें 6622107 के साथ सही जवाब दी। नंबर 3 और भूल भुलैया से बाहर निकलिए, बस देखो गया मैं।

ही समय और सही जवाब दीजिए। और यहाँ पर हरी साथ में है जो कि मूड को बिल्कुल एकदम सुन रखेंगे, स्मूथ रखेंगे, ठीक है। तो कौन सा गाना है जो आपको दैट इज यो यो हनी सिंह काला स्टार। काफी हुआ, चले एंजॉय करें। स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिस बेसी।

जिंदगी रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क इसके बिजी तो कभी बल्कि भीड़ में छोटी सी मुलाकात, कब सफर के दौरान पहली मुलाकात जो बन जाती याद, और ये यादें ही देती हमें सुकून और एक ऐसी अपनी बिजी। तो आइए इस सफर का बनिए प्रोग्राम विद आरजे सरवर मिर्जा हर

0: में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है कहानी एक एहसास उन जबानी हर सैटरडे शाम 7 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी द डायरीज जहां कहानी बनेगा गा
1: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ FM 7 दिल से दी
2: Yes, welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी फरमीता. अप्रैल का आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. और आज कहां कैद है जनाब? आज आप ही भरी सी बड़ी खूबसूरत सी भोलिया में कैद हो गए. यहां निकलने के लिए क्लूज सॉल्व जाते गए. ठीक है, आपने क्लू नंबर 1 आया, सही जवाब था बी, उसका दूसरा क्लू का सही जवाब था डायल, और तीसरे क्लू में हम थोड़ा सा अटके हुए हैं. यार बड़ा सिंपल क्लू है. मतलब ये तो आपने कितने पढ़ा होगा और देखा होगा, फिर भी सही जवाब देने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है. चले कोई नहीं, जब दोनों क्लू सॉल्व किए तो आपके सामने एक बड़ा सा ओ आया और ये काफी बड़ा है, सवार नहीं सके तो जाहिर बात है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा उपाय होगा जिसे हम इस पेड़ के नीचे से जा सके. एंड यस, वहां एक खुफिया सुन खुली जब आप नंबर 3 सॉल्व. So, clue number 3 was कि मैं पौधा ऐसा हूँ जो जमीन के नीचे गहरा छुपा रहता है. मैं से पानी पीने के लिए एक स्ट्रॉ का काम करूँ और बड़े बड़े पेड़ को तूफान में भी मजबूती से हमें रखा हूँ, तो मैं क्या हूँ? Well, सही जवाब is roots. बड़े और जिन्होंने सही जवाब दिया है जोर से अपनी पीठ को थपथपाएं क्योंकि अब इस हरी भरी भूल से आपने एस्केप कर लिया है. जनाब क्या बात है, आगे रखें आज कौन एस्केप पाया है. वेल नाम है अनवर, फातिमा, मोहम्मद, ओमर, मोहम्मद शरत, ताद नूर, कमरा और मोहम्मद यूसुफ खान. क्या बात है, तो कैसा लग रहा है अब इस बुलिया से निकलने के बाद? आई नो इतना साफ है, चाहे कितनी भी खूबसूरत हो लेकिन अगर कहीं फंस गए तो दिल की धड़कनें हमेशा बढ़ती रहती है जब तक बाहर ना गए. वही एंजॉय कर सकते हैं लेकिन विनर का नाम ही ऐलान करना बनता है भाई. ने नॉन स्टॉप सबसे वैसे ही जवाब देने की कोशिश की और आज की हमारी लकी विनर है फातिमा. आपने तो हमारी आज की मास्टर ऑफ द मेज निकली. हाँ, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआ आपके फातिमा और सारे लिसनर्स के लिए जिन्होंने नॉन स्टॉप हमारा साथ दिया आज के हमारे एपिसोड में. सो आई एम वेरी श्योर जरूर मजा आया होगा और मजा आया है तो अपने वगैरह भी हमसे जरूर शेयर कर अपने 607. वैसे अभी वक्त है मेरे जाने क्योंकि अब भाई मुझे भी अपने वीकेंड तैयार करनी है. इट्स क्वाइट एन इंपॉर्टेंट थिंग. चलिए मुझे दीजिए इजाजत और आपकी मेरी मुलाकात होगी सीधा संडे को दोपहर 1:30 बजे. ठीक है, और बीच में अगर याद है तो FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ सके और वो डायलॉग जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमें रही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते बने रहे FM 107 पर से देसी.

0: आप सुन रहे FM 107 दिल से जी।
1: अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इको स्विच विद सफा ऑन FM 107। हम बात करते हैं उन एवरीडे लाइफस्टाइल चॉइसेस की जो एनवायरनमेंट पर डायरेक्ट असर डालती हैं। रिड्यूसिंग मीट कंजम्पशन, यानी के अपनी डाइट में मीट की क्वांटिटी को कम करना। ये सिर्फ डाइट ट्रेंड नहीं है, पावरफुल एनवायरमेंटल भी है। साथ ही बात यह है, हम जो खाते हैं उसका इम्पैक्ट हेल्थ पर नहीं होता, पानी यूजेज पर, लैंड यूज और ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर भी होता है। इको स्विच हाथ दिलाता है कि कभी कभी प्ले का छोटा सा डिसीजन प्लैनेट का बड़ा फ्यूचर डिसाइड करता है। चलिए एक रियल एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करें। सोचिए बारबेक्यू का प्लान है, ठीक। आपने क्या किया कि भाई नॉर्मली ग्रिल चिकन, कबाब्स, बर्गर्स और पता नहीं क्या कुछ सब इतने है कि नहीं, मैं भी आप हाँ भी करना एंजॉय। उस एक मील के पीछे जो रिसोर्सेज यूजेज होती हैं काफी जो होती हैं। अगर अब हम करें कि अगर एक हाउस होल्ड हर दिन मीट की हैवी जगह दो या तीन वेजिटेरियंस इंक्लूड करें तो मंथली बेसिस पर रिसोर्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। इको स्विच पर्सपेक्टिव से देखें तो भाई लेस मीट का मतलब होता है मेटल प्रेशर। अच्छा, मीट कंजम्पशन का ग्लोबल फुटप्रिंट भी मैं आपको फैक्ट्स बताती हूँ जो आपको सोचने में मजबूर कर देंगे। देखिए, लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन का लगभग 14.5% रिस्पॉन्सिबल है, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से भी ज्यादा है। आपको ये बात पता है कि 1 kg बीफ प्रोड्यूस करने के लगभग 15,000 लीटर पानी यूज होता है। चिकन और लैम्ब कंपेरेटिवली कम प्रिंट रखते हैं, लेकिन फिर भी वेस्ट फूड के मुकाबले में ज्यादा वेस्ट होते हैं। अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ग्लोबल पॉपुलेशन डे पर वीक अगर मीट अवॉइड करें, बिलियंस ऑफ लीटर वाटर और मासिव कार्बन इमिशन सेव हो सकते हैं एनुअली। यहाँ पर देखा जाए तो इको स्विच, यहाँ कॉन्सेप्ट इको स्विच सिंपल सा है, यानी कि डाइट को बैलेंस करना। जब हम मीट कंजम्पशन रिड्यूस करते हैं ना, डायरेक्टली वाटर यूज, लैंड डिग्रेडेशन और मीथेन इमिशन रिड्यूस कर। एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर एक शख्स वीकली 2 मीट फ्री डेज अडॉप्ट करे ना, तो वो एनुअल कार्बन फुटप्रिंट नोटिसेबल लेवल पर रिड्यूस करता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हर वेजिटेरियन मील एक एनवायरमेंटल रीसेट बटन प्रेस करता है। देखिए, यहाँ पर अगर सोचा जाए रिलेटिव लेवल आपको दूं, तो सोचिए सुपरमार्केट में आपका ग्रोसरी है, ठीक है, होती है हमारी ट्रॉली होती है, एक साइड पर मीट प्रोडक्ट्स है, दूसरी साइड पर वेजिटेबल्स और ग्रेन। देखिए, मीट सेक्शन ना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और पैकेजिंग रेफ्रिजरेशन डिमांड ही ज्यादा है। और आप कार्ट का 30 प्लांट बेस्ड आइटम्स रिप्लेस करें ना, तो ना

0: हेल्थ इंप्रूव होती है बल्कि एनवायरमेंटल बर्डन भी कम हो जाता है। एक कुछ कहता है कि हर एक एनवायरमेंटल चॉइस है आपकी। यहाँ पर चलते मैं आपको कुछ मेडिकल टिप्स भी फॉलो करने दे देती हूँ जो लगता है हर कोई बहुत बहुत इजी कर सकता है। पहले ये कि मंडे या वी प्लांट बेस्ड डेज अडॉप्ट करें। दूसरा कि मील्स में वेजिटेबल्स एंड और बीन्स का पोर्शन इंक्रीज करें। तीसरा मीट को डिश के साइड इंग्रेडिएंट के तौर पर यूज करें ना। चौथा ये कि प्रोसेस्ड मीट की जगह फ्रेश प्लांट बेस्ड प्रोटीन चूज करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेयरी रेसिपीज ट्राई करें और अपनी डाइट को इंटरेस्टिंग रखें। साथियों देखिए इको स्विच का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि कंजम्पशन को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है बल्कि बैलेंस क्रिएट करना है। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जो लोग प्लांट रिच डाइट रखते हैं ना वो फूड वेस्ट भी होता है और ऑर्गेनिक ज्यादा एफिशिएंट होती है। फिर मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि इको स्विच का सिंपल सा मैसेज ये है कि हर मील्स टेस्ट के लिए नहीं बल्कि इम्पैक्ट के लिए भी होता है। हर वेजिटेरियन चॉय एक छोटा सा है क्लीनर एक लेस मैसेज और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ। अगली बार जब आप अपना मील करें ना तो एक छोटा सा यूज जरूर ऑन कर लीजिएगा। कैन आई मेक दिस मील अ लिटिल बिट मोर टेस्टी टुडे? कैन आई? आई थिंक सो यस। भाई इसी के साथ मैं और सुन रहे थे इको स्विच एफएम 107 जहां हर बाइट खाना नहीं बल्कि एक फ्यूचर का डिसीजन होता है। तो रहिए एफएम 107 दिल से दे।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107 देसी।

0: कतर का पहली रेडियो स्टेशन FM 100 दिल से देसी।
1: अस्सलामुअलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बरागा FM 7 पर। मुख्य आरडी महावेश खान और आज हम बात करेंगे इनकी यानी ह्यूमिलिटी के बारे में। इनकी सारी एक ऐसी सिफ्ट है जो इंसान को अंदर से सुरत बनाती है। इंसान अपने आप को बड़ा समझने के बजाय मी और सखी इख्तियार करता है तो वो लोगों की में जगह बना लेता है। तब भी यानी एरोगेंस इंसान को दूसरों से दूरती है जबकि इनकारी लोगों को करीब लाती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अपनी कमियाबी अखर न करें बल्कि अका शुक्र अदा करें। एक हम्बल शख्स हर इंसान के साथ बराबरी और इज्जत का रवैया रखता है, ये उसकी पर्सनल खूद और तवाज़ुन बनाता है। आज का अमल यह है कि रवैये का जायजा लें और किसी की नरमी और इनकिसारी से बात करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 FM पर। मैं हूं आरजे मिश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के।
0: देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: आज हम इस सेगमेंट में ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारी जिंदगी के लिए हवा के बाद दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो हद जरूरी है। पानी, वाटर। हम हर रोज सुबह उठते हैं, पानी पीते हैं, इसके लिए पानी चाहिए, बनाने के लिए पानी चाहिए और डेली लाइफ के हर काम में पानी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर एक दिन साफ पानी कम हो जाए, मतलब साफ पीने कम हो जाए तो क्या होगा? इसी सवाल का जवाब आज हम इस फिल्म में ढूंढने की कोशिश करेंगे। पूरी दुनिया जो है वो आज सस्टेनेबल फोकस कर रही है। इसका मतलब है कि पानी को इस्तेमाल करना कि आने वाली जनरेशन भी उनके लिए भी हम छोड़ सकें या के पॉइंट है। ऐसे मुझे लगता है कि मुझे ये बताने की जरूरत है कि पानी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इंसान पानी के बगैर कई दिन रह सकता है, पानी के बगैर ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, घर है, सब पानी पर निकलते हैं। इस वक्त ये एक आबादी बर्बादी है वो लगातार रही है और पानी पर बोझ बढ़ रहा। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा पानी की डिमांड।

भी होगी, इसीलिए बर्ड्स कहते हैं कि फ्यूचर पानी सोने से भी कीमती सोर्स बन जाएगा। दुनिया वाटर चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे बड़ी और अहम वजह है क्लाइमेट चेंज। कुछ कंट्रीज में सुन रहा है, कुछ जगहों पर बारिश का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, कहीं बहुत ज्यादा भी है, कम हो रही है, इसी वजह से फ्रेश वाटर रिसोर्स पर प्रेशर बढ़ रहा है। एक और वजह है पॉल्यूशन। हर साल दोस्तों हर दुनिया की आबादी जो तेजी से कई गुना बढ़ी है, और हर शख्स को साफ पीने का पानी चाहिए, खाने के लिए पानी चाहिए, स्टेशन के लिए पानी चाहिए, पानी तो थी चाहिए। और एक और चीज जो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली करनी चाहिए वो है गाजाना, यानी वेस्ट। ये बचा है, बहुत सी जगहों पर लोग पानी की कमी करते, देखा होगा कि टैप है वो खुले छोड़ देते हैं, पाइप वो लीक कर रहे होते हैं, अननेसेसरी लोग जो है वो कई लीक पानी यूं ही कर देते हैं। लेकिन हमें कुछ ना कुछ सुना है। अच्छी बात ये है कि आज की दुनिया से प्रॉब्लम बात नहीं कर रही, प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन साइंटिस्ट हो, इंजीनियर्स हो, गवर्नमेंट्स हैं, वो इनिशिएटिव्स और सॉल्यूशंस भी डेवलप कर रहे हैं। डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी, गल्फ कंट्रीज तरह कई कंट्रीज जो है वो समुद्र पानी ट्रीट करके ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट रही है, और इस प्रोसेस को कहते हैं डिसैलिनेशन। पहले ये बस बड़ा महंगा हुआ करता, लेकिन नई टेक्नोलॉजी और संस्कृति आज थोड़ा सा इफिशियंट हो गया है। 2030 यानी 2030 डिसैलिनेशन और एडवांस हो सकता है, और भी ज्यादा लोगों को क्लीन वाटर प्रोवाइड कर सके। अब समझना है कि स्मार्ट वाटर सिस्टम क्या है। आजकल स्मार्ट सिटीज हैं, सेंसर्स हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, और ये सब कहीं ना कहीं डिटेक्ट करते हैं कि पानी कहाँ लीक हो रहा है। इस तरह से पानी जाया होने से पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जाती है। इमेजिन कीजिए कि एक शहर जहाँ हर पाइप इंटेलिजेंट कनेक्टेड हो, वहाँ लीक का पता सेकेंड्स में चल जाए। स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट का फ्यूचर। और एक और चीज वो है वाटर रिसाइक्लिंग। क्या आप जानते हैं कि कुछ कंट्रीज यूज को इस्तेमाल कर रही हैं? जी हाँ, ट्रीटेड वाटर वेस्ट को गार्डन्स, एग्रीकल्चर, यू नो, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इससे फ्रेश वाटर पर प्रेशर है जो बिल्ट हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाए। फ्यूचर में वाटर साइक्लिंग यानी वाटर रिसाइक्लिंग हर मॉडर्न सिटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनेगा। वहीं पर स्मार्ट एग्रीकल्चर की भी तो बात नहीं चाहिए। दुनिया का सबसे ज्यादा पानी जो है वो एग्रीकल्चर में यूज होता है। यहाँ ट्रेडिशनल फार्मिंग में बहुत पानी जाया होता है, लेकिन अब फार्मर्स जो है वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का यूज कर रहे हैं। इस मेथड में पानी था प्लांट्स के रूप तक पहुँचता है, कम इस्तेमाल है, क्रॉप्स हासिल होती है। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर फूड सिक्योरिटी के बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम कैसे भूलते हैं, एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया। और इस प्रोसेस में बारिश का पानी कलेक्ट स्टोर किया जाता है और सेव किया जाता है। बाद में यही गार्डनिंग, क्लीनिंग और कई प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। आजकल आपने देखा है कि स्कूल्स हो, ऑफिसेज हो या फिर रेजिडेंशियल कम्युनिटीज भी इस सॉल्यूशन को अडॉप्ट रही हैं। तो मैं कह सकूं कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी ने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें दिया है। AI बोर्ड्स और कंप्यूटर्स तक नहीं है, अब AI पानी बचाने में भी मदद कर रहे हैं। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिडिक्ट कर सकती है कि पानी फ्यूचर में चाहिए होगा, कहाँ पर सूखे का खतरा है, कहाँ लीकेज हो सकता है, किस एरिया में ज्यादा कंजर्वेशन की जरूरत है। टेक्नोलॉजी फ्यूचर वाटर सिक्योरिटी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा गई है। द सस्टेनेबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट्स की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, या हमारी भी है। यंग पीपल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आज के स्टूडेंट्स फ्यूचर लीडर्स हैं। अगर वो आज से वाटर कंजर्वेशन की हैबिट लें तो कल की दुनिया ज्यादा सिक्योर होगी। भी छोटे कदम बहुत फर्क है, जैसे ब्रश का टैप बंद रखें, लीकिंग टैप्स की फॉर रिपोर्ट, पानी सिर्फ जरूरी महसूस कीजिए।

0: क्लास में एफिशिएंट वाटरिंग मेथड इस्तेमाल कीजिए, दूसरों को भी पानी की अहमियत समझाएं, तो 30 तक दुनिया का गोल से ज्यादा पानी हासिल नहीं होगा। असल ये होगा कि हर ड्रॉप को स्मार्ट वे में किया जाए, जो सिटीज स्मार्ट वाटर ग्रिड यूज कर सकती हैं, बिल्डिंग में रेन वाटर कलेक्ट कर सकती हैं, होम वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को पानी ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती है, मिलकर एक सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं। एक थॉट के लिए है, अगर आज दुनिया का हर इंसान रोज सिर्फ 1 लीटर पानी बचाए तो एक साल में कितना पानी सेव हो सकता है, कभी सोचा है आपने? जिया वाटर सस्टेनेबिलिटी जिस पर आज हमने बात, एनवायरमेंट का इशू नहीं है, हेल्थ का भी इशू है, इकोनॉमी का भी इशू है, फूड सिक्योरिटी का भी इशू है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारे फ्यूचर का इशू है। 2030 की फ्यूचर हम सोचते हैं कैसा होगा, हमें याद रखना है कि कुछ रिसोर्सेज खत्म होंगे और कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमें अपनी लाइफ को गुजारना होगा। हम तो नहीं होंगे कि नहीं होंगे भाई, तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है। हर ड्रॉप कीमती है, हर ड्रॉप की अपनी कमी है, अगर आज हम इसे सेव करते हैं तो कल की जनरेशन भी क्लीन सेफ और सस्टेनेबल वाटर का फायदा उठा सकती है। आपके साथ अब वक्त इजाजत का, अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश सुनते रहिए दिल देसी।
1: On the hit, FM 107.
2: Dilsi Desi.

FM 107 अपने एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉर्पोरेशन की मार्केटिंग से। कॉल दें 4888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.ae।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से दिसी
2: को समझने के लिए आसान कर दिया है। हर्ष अपनी समझ और तब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोबत में बैठे खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान पूरे हिदायत से मरहला मरहला कुछ ना कुछ हासिल कर रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पता है अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत अदब और फहमे प्राण के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाए तलहा अशरमानात तहफीम कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।

0: Fico da mai.
1: Terran FM 107.
2: आप सुन रहे हैं FM 107.
1: दिल से देसी.
3: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है. मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन. दोस्तों, आज हम बात करेंगे कतर के उभरते हुए बास्केटबॉल स्टार मुस्तफा निदाओ. दोस्तों, मुस्तफा निदाओ को बास्केट सितारों में शुमार किए जाते हैं और वाली क्लब के लिए खेलते हैं. वो सेंटर पोजीशन खेलते हैं और अपनी एज के बावजूद हिम्मत और मेहनत की वजह से जल्दी मकबूल हुए हैं. ऊपर रिबाउंड हासिल करना, पेंट एरिया में दिफा करना और टीम को फिजिकल प्रेजेंस देना उनकी अहम खासियत है. निदाओ ने कतर की नेशनल के लिए भी मुकाबलों में शिरकत की है और फीबा एशिया सतह पर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है. उनकी ट्रेनिंग डिसिप्लिन और मुसलसल परफॉर्मेंस एनहेंस करने की जो आदत है वो कोचेस काफी ताकती है. लाली क्लब में वो मुबिल के बुनियादी खिलाड़ियों में गिने जाते हैं और हर सीजन साथ उनका तजुर्बा बढ़ता जा रहा है. बास्केटबॉल एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि अगर वो इसी रफ्तार से तरक्की करते रहे तो कब के लिए बहुत अहम एसेट साबित हो सकते हैं. कम उम्र के बावजूद उनका कॉन्फिडेंस और टीम वर्क की सोच उन्हें दूसरे प्लेयर से अलग बनाती है और फैंस उनसे मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियों की उम्मीद रखते हैं. उम्मीद है आज का मैं एक और कतरी स्पोर्ट्स स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे. तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन, शकील अहमद, इजाजत.
1: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107. दिल से दिस

0: the radio station FM 107. This is DC.
1: आप रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम मिस्टर्स, आज बात करेंगे कि सफर के दौरान खुद बीमारियों से

0: इस्तेमाल करने के बाद हाथ आप उनसे जरूर धो लीजिए और अगर पंजाब ना हो तो फिर सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए। सफर में अक्सर नींद का मामूल मुताबिक रहता है जिससे थकन और चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है, इसलिए मुनासिब आराम कीजिए और अगर मुख्तलिफ टाइम जोन्स में जा रहे हैं तो आहिस्ता वक्त के मुताबिक सोने और जागने का मामूल बनाइए। बहुत ज्यादा कैफीन या एनर्जी ड्रिंक से परहेज कीजिए। अगर आप गर्म के में सफर कर रहे हैं तो हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनिए, टोपी और सनग्लासेस और सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए। धूप में ज्यादा देर रहने से गुरेज कीजिए दोपहर के औकात। और अगर खुदा न खास्ता सफर के दौरान तेज बुखार हो, मुसलसल के हो, सांस लेने में दुश्वारी हो, सीने में दर्द हो, कुछ चक्कर आए तो खुद इलाज करने की बजाय आप फौरन करीबी तिबी जो मरकज है वहाँ पर रुजू कीजिए। सेहतमंद सफर सिर्फ अल तक पहुँचने का नाम नहीं है बल्कि रास्ते में अपनी सेहत का ख्याल में है। मुनासिब पानी, आराफाई और एहतियात आपके सफर को महफूज और यादगार बना सकें।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामने हम शामदीद हो आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और ये जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसास्ता उनकी छोटी सुन्नतों में पोश होता है, इन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिर नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी दिली हमेशा कदमों से शुरू होती है। इसलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ 10 सेकंड या 1 मिनट ही, लेकिन इंसान की रूह और अल्लाह से तल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। तो आज हम मिलकर खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामने कराम इसके हवाले से हम खूबसूरत पहल पर गुफ्तगू करेंगे कि इबादत में मयानरवी और मुस्तकिल मिजाजी किस कदर अहम है। आज का मौजू है नफली रोज क़ियामुल लैल में एतदाल और तवाज़ुन इख्तियार करना। अस्म ने मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज महीनों में इतने दिन रोजा न रखते कि हमें गुमान होता कि आप महीने में रोजा रखेंगे ही नहीं, और फिर बाज़ औक़ात इतने ज्यादा रोजे रखते कि हमें कोई दिन छोड़ेंगे ही नहीं। अगर रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हुए देखना चाहते तो देख लेते, और अगर सोते हुए देखना चाहते तो सोते हुए भी लेते। समझे कि हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के हुस्न तज़्म की बेहतरीन पेश करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर वक्त रोजे रखते थे और न हर वक्त इफ्तार करते थे, न पूरी रात हमेशा इबादत में गुजारते थे और न पूरी रात हमेशा आराम करते थे, बल्कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत को इस तरह अंजाम देते थे जिससे कभी हक अदा होता, हर वक्त कभी और अब कभी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हारी आंखों का भी तुम पर हक है और तुम्हारे अहल वयाल का भी तुम पर हक है। अब हदीस का वो हिस्सा जहां अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ये फरमाते हैं कि अगर आप रात के किसी हिस्से में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते ना चाहते तो देख लेते, और अगर किसी वक्त आराम करते हुए ना चाहते तो भी देख लेते। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के मुख्तलिफ हिस्सों में मदद करते थे। कभी रात के इब्तदाई हिस्से में आराम करते, फिर तहज्जुद के लिए उठते, रात के मुताबिक में तब्दीली भी होती। से मालूम हुआ तहज्जुद का मकसद मशक्कत नहीं बल्कि अल्लाह से ताल्लुक करना है। इस्लाम ने हमें नफली इबादत

0: की तरगीब जरूर दी है लेकिन ऐसा बोझ नहीं डाला जो इंसान हमेशा न उठाए। हमने कहा आज की सुन्नत के जो पैगामात हैं इनमें सबसे अहम बात यह है कि इबादत में एतदाल रख नफल इबादत को अपनी इस्तेआत के मुताबिक मुस्तकिल मामूल बनाएं। रात का कुछ हिस्सा चाहे पहली रात में हो चाहे आखिरी रात में हो चाहे रात के आधे हिस्से हो अल्लाह ताला की याद के लिए जरूर वक्त निकालें। उस वक्त में फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए ताकि आप जिस्म अहलना और दीगर जिम्मेदारियों का भी ख्याल रख सकें। हर काम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नमूना अल्लाह ताला हमें इबादत में इखलास एतदाल और इस्तकामत अता फरमाए आमीन या आलमीन। सामीन ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सुन्नत में खैर बरकत सुकून और कामयाबी पोशीदा है और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बना दें तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्नत ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर थी और मुझे तलहा अशरफ हुसैन को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए मासलामा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फर्स्ट ऑन फेस एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी
2: मैक्सिमम म्यूजिक मैक्सिमम फन
1: FM107 दिल से देसी।

0: FM 107 Time Check.
1: लो भाई थर्सडे मुबारक जी। हेलो हबीबी, डबल टाइम चेक एफएम 107 के स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 4:01 और टॉक इतना सख्त भी है टाइम चेक आता है नहीं। थर्सडे का दिन है, टाइम चेक करो ना साहब, 4:00 दफ्तर से छुट्टी मिल गई, इससे अच्छा टाइम क्या होगा। सारे
2: आप सुन रहे हैं द रे शो मेरे यानी फजील के साथ ऑन एफएम दिल से देसी।
1: पक्का कोई बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, पक्का मैं डिसाइड करके आया हूँ कि आज रह लेते हैं और ऐसे ले थीम पे किसी का बर्थडे ना हो सकता है, मतलब पूरी कोशिश होगी कि ये ना हो जाए कि अरे अभी बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है नहीं। सो सलाम अलैकुम, एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। ये शो लगातार आपके लिए आता रहेगा शाम को 4 से 5, और सच बताएं तो आज भी किसी बर्थडे भाई 4:02 और जो नए लोग हैं उनको बता दें ये है द रे शो, जहां पर आप अपने मर्जी के गाने प्ले होते हैं और आप अपनी प्लेलिस्ट से गाने निकाल सकते हैं। एक ऐसे स्पेसिफिक इंसान का या फिर बॉलीवुड से अगर आपको कोई गाना बहुत ज्यादा पसंद है, किसी सिंगर का बहुत अच्छा गाना लगता है, तो आप अपनी प्लेलिस्ट से वो गाना निकालें और हमें बताएं। किन का खास ख्याल कि वो या जिस शख्स का आप गा रहे हैं वो थीम एफएम 107 पे 4 से 5 उस दिन चल रही हो। तो ये नए लोगों के लिए था, और पुराने लोगों के लिए तो यार पुराने लोग तो ये विंटेज लोग जो हमें सुन रहे हैं जिनकी दाढ़ी सफेद हो ही है और जिनकी नहीं भी है, लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं है? तो उनको तो पता ही है कि क्या करना है। तो ये शुद्ध जहां पर आपकी अपनी मर्जी के गाने लेकर मैं हो गया हूँ तैयार।
2: आप सुन रहे हैं रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल देसी।
1: देखो क्या है, कोशिश तो बहुत करते हैं अपन के आज मैं सोचता कि ऐसा हो कि यार किसी का बर्थडे ना हो यार है, और जो है प्ले कर दिया जाए, और अगर अभी तो नहीं चलाएंगे मतलब नाम ही नहीं लेंगे, और का नाम दाएंगे और फिर उसको किसी का गाना प्ले करेंगे। लेकिन आज शख्स का बर्थडे है, वो शख्स भाई साहब हल नहीं है, मतलब बहुत ही गाढ़े गाढ़े उन्होंने गाने दिए हैं, बहुत जरूरी हैं, और उनका जन्मदिन उनके अगर हम सेलिब्रेट ना करें तो अच्छा नहीं है। फिर ये कि आपने ये कह सकते हैं कि आपने धोखा किया उसके साथ, इतने अच्छे अच्छे गाने दिए, इतने अच्छे अच्छे गाने दिए हैं, बावजूद उसके फिर हम उनका बर्थडे नहीं कर रहे हैं और उनका गाने नहीं चला रहे हैं। ठीक है, आज जिसका बर्थडे है वो बहुत लंबे समय से है, ऑल्दो उनको सुबह उठना बहुत ज़्यादा पसंद है, अलग आवाज़ों से नहीं पसंद है, जिनको पता है उनको पता है, और जो गाना उन्होंने गाया है वो ऐसा गाना है कि आप उन गानों से बच नहीं सकने वाले 10 साल में भी, जैसे कल हो ना हो सोनियों मैं अगर कहूँ साथिया पल हर पल पीयू बोले दिल डूबा ऑल इज वेल जूबी डूबी चिगी, ये सारे गाने इन्होंने ही गाए, और इवन एल्बम में भी बहुत ज्यादा दिखाई दिए है। इसका दर प्यारे है बिजुरिया दीवाना तेरा गाना गाया है,

0: है सोनू निगम ने और आज है जन्मदिन 30 जुलाई को सोनू का। गाने सोनू निगम के मर्जी आपकी, शुरू करेंगे और ये जो बेहतरीन गाने हैं, उम्मीद है कि एक से बढ़कर एक गाने आप रिक्वेस्ट करेंगे सोनू निगम के और बर्थडे सेट के साथ।
1: आप सुन रहे हैं द रिच शो मेरे यानी फजल के साथ, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
0: तो भाई जाला हो गया है, अब मकड़ी पर दे मांगे और जो आपकी मर्जी के गाने हैं वो यहाँ पर अपन प्ले करेंगे। और आज थर्सडे का दिन है, कोशिश करिए थोड़ा डिक चिक सुनेंगे अपन, ठीक है? अच्छे हाई बीट वाले वर्जन गाने जो सोनू निगम ने गाए, बहुत ज्यादा पुराना कोई गाना है तो मैं नहीं करूंगा, अगर आपने रिक्वेस्ट कर भी लिया तो भी ठीक है। तो क्योंकि देखा दिन है, वाइब बनाओ वाइब, ठीक है? और शुरू करते हैं की तरफ से आया है और 355 पे ही आ गया किसी का, फजल भाई फास्ट म्यूजिक का थीम प्लीज। अरे बिल्कुल क्यों, देखो मेरी बात, मेरे दिल पास सुन ली यार। अम्मा दशाक अलग ही लेवल का आदमी था वो, जी के दिल की बात समझ जा रहा है मियां, क्या बात है। तो इन्होंने कह भी दिया है, मैंने भी अभी अभी कहा है कि यार देखो रोतड़ू गाने ला ला ला ला ला नहीं चलेंगे। तो अशफाक की बातों को सुनते हुए ठीक है, और सच है हिशाम साहब का सलाम, वालेकुम अस्सलाम हिशाम भाई, बहुत ज्यादा छोटा मैसेज कर दिया। तौफीक भाई का मैसेज, वालेकुम वालेकुम सलाम मोहम्मद तौफीक, अस्सलाम वालेकुम भाई, आज दो भोजपुरी गाना बजा दो भाई। ये दिन यार भोजपुरी, यार देखिए क्या है कि ये स्पेसिफिक रीजन का नाम मुझे कह रहे हैं, एक स्टेट है बिहारी जो लोग सुनते हैं भोजपुरी जो गाने सुन कर प्ले कर, तो फिर ऐसा स्थानीय जो भाई लोग हैं बांग्लादेशी है वो समझ नहीं पाएंगे, वो तक कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपके कुल कभी ना कभी एक ऐसा करेंगे कि एक गाना किसी में प्ले कर दे, लेकिन रिक्वेस्ट शो में थोड़ा सा मर्यादा। बाकी भोजपुरी सॉन्ग तो आपको पता है, जब लगाए लो कलीम सिद्दी साहब की रिक्वेस्ट पे हम इसे स्किप कर, लेकिन जिस दिन होगा उस हम प्ले करेंगे भी ऐसे भोजपुरी के गाने जो नेशनली फेमस हो। सुबह का मैसेज, सूरज हुआ मतलब, यार सूरज हुआ मतलब कुछ दिन पहले, हम दो दिन पहले या कल, आई गेस कल तो नहीं लेकिन दो दिन पहले सुन चुके। महफूज रॉबिन कहते हैं हैप्पी बर्थडे नज़र, सुनू भाई को पहुंच गया है सलाम, वालेकुम सलाम। फिर उसके बाद हुसैन भाई सुनने का है, भाई बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तो फिर लगा दो बिजुरिया या फिर या ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल और कर दो शो का आगाज। तो हुसैन भाई रिक्वेस्ट पे आगाज किया जाएगा, लेकिन बाकी मैसेज सलाम नहीं चाहिए सुनने का प्लीज है नहीं, क्या मतलब जैदी साहब क्यों नहीं चाहिए? कोई गाना खराब फ्लॉप कर दिया कोई गाना है? मतलब ऐसा लग रहा है गुस्से में कि मतलब आप रिश्ता लेकर गए थे कि कैंसिल कर दिया गुस्से में क्यों? Why? खादिम भाई का मैसेज है, सलाम वालेकुम अस्सलाम गुड इवनिंग, चांद सिफारिश ये गाना प्ले होना चाहिए, अच्छा गाना है, सलाम वालेकुम। चांद सिफारिश ये गाना है शेखर फान साहब ने, ओके इरफान साहब इस पर मैसेज कर, सूरज हुआ मदम एक दो दिन पहले हम प्ले कर चुके हैं, माजरत आज भाई प्लीज प्ले साथिया टाइटल ट्रैक, ठीक है ये साथिया हम प्ले करने की कोशिश करेंगे। भाई कहते हैं सूरज हुआ मदम फिल्म, ये मेरे को पता है सूरज हुआ मदम आज प्ले नहीं, ठीक है भाई क्योंकि दो दिन पहले हो चुका है तो रिपीट नहीं करते, कुछ नया गाना सुन। इमरान खान कहते हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम भाई प्ले सॉन्ग 1 2 का 4 उन्होंने गाया है, ठीक है अभी अपन इस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन तीन सॉन्ग पर आते सबसे पहला जो मैं प्ले करना चाहता हूँ वो गाना प्ले करूँ, हुसैन भाई की रिक्वेस्ट पे है आज तार चलेगी नहीं दौड़ेगी, अरे नहीं हल्लू हाथ रख हल्लू पैर रखना एक्सेलरेशन पे, तो फिर लगा दो बिजुरिया बिजुरिया गाना, चांद सिफारिश तो ढूंढ लूंगा मैं, यूं मिल जाएगा बिजुरिया में टाइम लगेगा। सोनू निगम है कि नहीं इसमें, बिजुरिया गाना तो है, सोनू निगम नहीं दिख रहे मुझे, अलका सिद्धा सुखविंदर असीस किस मुझे गाया यार ये बिजुरिया, भागते रहो शादी पहले ये बिजुरिया वर्जन शादी से पहले सुखर गाया यार ये बिजुरिया, मिल रिया बिजुरिया ना मिल रिया हुसैन भाई ढूंढा जाएगा। लेकिन चलो चांद सिफारिश देख लेते हैं, नाम से भी यहाँ पर सेफ रहता है ना, चांद सिफारिश यार शान का है ये, शान और कैलाश खेर का है।

एक और गाना स्किप करना पड़ेगा माजरत के साथ, सोनगम के बारे में बात हो रही है, सोनगम प्ले करवाओ मेरा भाई। फिर उसके बाद साथिया टाइटल ट्रैक, ठीक है ये देख लेते हैं, ये भी कहीं शान का ना हो। कई बार लोग शान को और सोनगम की समझ लेते हैं, साथिया देखना पड़ेगा। सुनो भाई सुनो भाई सुनो, आर्टिस्ट के नाम से साथिया 2002 मूवी का ट्रैक है, सुनने के बाद इस गाने को अपन पे करेंगे बेंडल बीएस में एफएम 107 पे। शुरू करते हैं साथिया, हो हो साथिया, मधम मधम तेरी गीली, क्या लाजवाब चॉइस है मेरा भाई, अब्दुल दिल खुश कर दिया भाई। FM 107 पे और बाकी रिक्वेस्ट सोनू निगम की आवाज में गाया हुआ गाना 666-22107 भेज दो। हैप्पी वीकेंड।

सुनिए और बेनी दयाल की आवाज में साथ ही ये ट्रैक सुना आपने एफएम 107 पे। फिलहाल 4:16 और बाकी के गाने भी हैं तैयार वीकेंड को लवा बनाने के लिए। हाँ जी हबीबी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, क्या है हाल चाल। और बाकी जो गाना है अपने को मिल चुका है, सबसे पहला जो गाना है सोनेगम असीस की आवाज में गाना है बिजरिया, मिल गया। थोड़ा सा छानबीन करनी पड़ी है इसका। देखो मैं कह रहा था स्पेल वाई डाल रहा था बिजरिया में, और आर आई ए है यहाँ पे। देखो गेम कितना होता यार स्पेलिंग में, बी इमला लिखना हो जाता है भाई। सही में मेरे लिए यहाँ पर तो है जैसे टीचर इमला बोल ले, अपन इधर लिख रहे ले, जिसमें मराए अलग अलग हो जा रही है, अंग्रेजी वाला इमला हो रहा है। तो सुनने का मसीस को आज में बिजुरिया गाना जो है मैंने लगा दिया है, यूसुफ भाई की रिक्वेस्ट है इसमें, और रिक्वेस्ट है हसैन भाई, अब पता नहीं यही वाला बिजुरिया कह रहा है कौन सा वाला कह रहा है। और उसके बाद ये एक और मैसेज है किसका, ओके आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। क्या बात है, चेंज कर लिया शेख इरफान साहब ने अपनी रिक्वेस्ट को, ये भी प्ले होगा। और फिर है अब मुझे रादिन आना है बिजुरिया के बाद, मुझे रादिन बाई सोने गम, इसे अबू सिदरा ने कहा है। फिर प्यार की कहानी जिस भाई ने कही है वो हम प्ले करेंगे, आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी और मुझे रादिन हरकत कल होना हो, ये कहा है किस भाई ने, हनीफ शकदर इन्होंने गाना प्ले कर रखो। तो तीन गाने तो फिलहाल सुनिए, फिर शकदर भाई के रिक्वेस्ट पे फोन आएंगे। सोने गम की आवाज में पहला गाना बिजुरिया, सही इमला लिखा है मैंने तब जाके मेरा मिला है। सुनेगा मसीस कर वॉल्यूम थोड़ा तेज कर लो भाई।

0: सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में ट्रैक सुना आपने। प्यार की एक कहानी कितना फेमस हुआ था और लोगों ने तो मतलब ऐसा सुना था कि जिससे भी वो बिछड़ना यही सुना दिया करते थे वो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, क्या है हाल चाल। बाकी गाने भी करने, फिलहाल 4:29, इतनी तेजी से ये वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं यार। बाकी 3 गाने भी अपन तैयार करके बैठे ले और एक गाने सुनने के लिए आपको दबाना होगा 107।
1: सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: तो समय यह है कि अब और रिक्वेस्ट नहीं ली जा पाएगी क्योंकि 4:30 हो गए, 3 गाने यहाँ पर मौजूद है। अगर ये गाने मैंने प्ले किए और फिर आपकी रिक्वेस्ट ली पर बहुत ज्यादा हो जाएगा और फिर अपने को आज खेलना है पहचान कौन गेम भी। गाने हैं तो वो बताऊँ, सबसे आखिर में आएगा शोएब भाई का गाना मोहब्बत कभी मैंने की तो ना थी, ये सोनू निगम का गाया हुआ गाना है और सबसे आखिर में। फिर उसके बाद एक और ये रिक्वेस्ट है और गाना है कल हो ना हो, जो ऑब्वियसली मैंने प्ले ये तो वाला प्ले कर दिया है, नहीं प्यार की ये वाला नहीं किया, सॉरी

0: मेरी गलती मेरी गलती, कल होना हो अभी बाकी है। मैं कंफ्यूज हो रहा यार, प्ले किया कि नहीं किया, कहीं सुन तो नहीं तुमने?
1: कल हो ना हो,
0: नहीं अभी नहीं प्ले किया। हाँ मैं डर रहा था यार। तो अनीव भाई की रिक्वेस्ट पे कल होना हो सबसे पहले नंबर पे, सबसे आखिर में है मोहब्बत कभी मैंने की ना थी। फिर एक और गाना था वो जिस भाई ने रिक्वेस्ट की थी, उनका ये गाना है सोनू निगम की आवाज में, एंड दिस वन इज सुना कहां सुन जरा भाई, भाई सुन जरा वाले भाई, किधर है किधर है किधर है। हाँ ये लकी मूवी से सुनना चाहते हैं, फयाज अहमद का नाम है, तो फयाज अहमद का ना दूसरे नंबर पे। तो ये तीन गाने बैक टू बैक लोगों का मैसेज ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, फजलकुम अस्सलाम, दिनों बाद आपको सुनना, लिसनिंग टू यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। एहसान उबैद कुरैशी, अरे एहसान है आपका यार, कहाँ थे इतने दिन से, बहुत लंबे वक्त के लिए गायब हो गए थे, क्या ऐसा फ्रिक्वेंसी से दूर है यार हमारा वाला। तो सलाम भाई, क्या हाल, मैं बहुत अच्छा हूँ, हस्त पुष्ट तंदुरुस्त। आसिफ भाई आप सुनाएं कैसे हैं, उम्मीद है कि आप भी बहुत अच्छे होंगे और आज का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, क्योंकि आज आज का दिन वीकेंड, वीकेंड आप देखो अलग से चेहरे पे मुस्कान आती है भाई वीकेंड पे, मतलब इंसान को पता है दो दिन कोई काम धंधा नहीं है ना, फिर उसको पता कि यार बोरियत ही होगी घर पे बैठ के, लेकिन वो खुश रहता है कि ऑफिस के केओस से अच्छा है घर में बोरियत है। तो उम्मीद है कि ये अच्छा दिन गुजरा होगा। फिर और ये मैसेज है, सलाम, नॉट इंटरेस्टेड इन टुडेज सिंगर। ओए होए होए उस्मान साहब एकदम नाराजगी में बैठे हुए हैं, क्यों उस्मान भाई? मैं रीजन समझ भी सकता हूं और मैं तो कहना भी चाहता हूं, देखो निगम भाई, सोनू भाई अगर आप सुन रहे हैं तो सुबह 3:30 बजे कोई मसला नहीं होगा, अपने फैन भी बरकरार रहेंगे, समझ रहे हो? तो जल्दी सो जाओ, तुम्हें मसला है तो, तुम्हारे मसले बहुत हैं यार सोनू भाई, और फिर दुबई में जाके बसे हुए एक और देखो दुबई में लंबे लंबे वक्त तक रह रहे हैं ये। अब जिनको पीछे की कहानी पता है उनको पता, जिनको नहीं तो कोई बात नहीं, पोगो एक अच्छा चैनल है, पोगो आप हाँ इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कार्टून्स तो पोगो। मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, ये मैसेज किस भाई का है, प्यारी समझ गई भाई कहते हैं सही है सही। उसके अलावा नाइट शिफ्ट में था भाई अभी कुछ टाइम के लिए, डे शिफ्ट आया हूँ, बहुत ही उम्दा, अभी डे शिफ्ट में आप अपनी मर्जी के गाने प्ले कर, एहसान भाई जितना आपने मिस किया सब ऐसा हाथ में पकड़ लो भाई। बाकी मैसेज हल्के हाथ से एक भाई का मैसेज है और वो ऑडियो में था, मैंने सुन लिया है, पहले उन्होंने कहा कि यार एक गाना है वो प्ले कर दो, अच्छा बहुत ही एकदम रैंडम बोल दिया उन्होंने, उन्होंने रेंडा भाई सोनू निगम का नया गाना है वो वाला गाना मुझे याद नहीं आ रहा, वो वाला गाना अगर प्ले हो जाता तो मजा आ जाता, कहना है शाह आलम का, और भाई मेरा तो हो गया, अरे रोहित भाई यहाँ पैसे रोहित भाई डायरेक्ट यहाँ आए ले वड़ा नहीं मिलता रोहित भाई, अरे आप तो फिटनेस में ध्यान दे रहे थे। फिर मैंने इनका दोबारा सुना, उन्होंने कहा कि वो याद आ गया गाना परदेस है, वो परदे 2000 की मूवी का एक गाना है परदेसी कुछ करके, उसमें लाइनिंग 2000 का गाना वो, लेकिन तब तक यहाँ पर लिस्ट जो है वो बाकी तैयार हो गई थी तो अपन कह सकते थे। तो मैंने भी इनको कहा यार अगर ऐसे मेरे से बात करोगे तो मैं कैसे समझूंगा कि वो वाला गाना है नया आया है वो वाला अगर प्ले हो जाता तो मजा आ जाता, इसमें क्या इंफॉर्मेशन मूवी ने कुछ ना नहीं। मैंने भी इनको कहा भाई वो वाली सड़क आ रहे, उस वाली सड़क में बहुत गड्ढा होता है, थोड़ा दूर रोक चला करो, वो वाली सड़क पर जाना, भाई को फिर गाना ही याद आ गया। जॉक्स जॉक्स अपार्ट, बाकी मेरा भाई माजरत, अगर आप किसी और दिन रिक्वेस्ट करेंगे तो पक्का प्ले किया जाएगा आपका गाना, फिलहाल ये तीन गाने एंजॉय करें आप। सबसे पहले कल हो ना हो सोनू निगम की आवाज में, देन सुन जरा अगेंस्ट आवाज में, और फिर मोहब्बत कभी मैंने नहीं, दिल से देसी।

नहीं आए, लेकिन सुनो भाई ने वो गाना लाजवाब गाया, जैसे कि ये मोहब्बत कभी मैंने की तो नहीं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहु एफएम 107 पे इस्तकबाल सभी का। वक्त आ गया है कि अभी अपन पहचान कौन ले, पहचान कौन गेम खेलने के लिए नए लोगों को बता दें, लिरिक बीच से एक ही जाती है और आपको गेस करना होता है गाने का नाम। तो कहीं भी अपन वो कट लेते हैं बीच से, ऐसी जगह से जहां आपने बहुत ज्यादा ध्यान ना दिया हो। लेकिन अगर आप असली फैन हैं सोनू निगम के तो आप इन गानों को पहचान गए। तो इनके तीन गाने हमने तैयार रखे हैं, वो तीनों गाने निगम ने गाए जरूर हैं। लिरिक जब प्ले करेंगे आधी अधूरी तो आप पहचानेंगे कि प्रॉपर गाने का नाम क्या है। और अगर आप पहचान जाएं तो हमें मैसेज करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 पे और आज बताइए कि आप सो के फैन कितने बड़े हैं। शुरू करते हैं, सबसे पहला जो गाना आ रहा है सोनू निगम की आवाज का वो है ये।

बताइए गाने का नाम क्या है और ये वाला थोड़ा आसान तो है आई गेस। लेट्स सी, वो तो अभी चल जाएगा। एक भाई ने कहा वीर जारा भाई अब तो बहुत लेट हो गया, माजरत। गुल सही जाया, कैसर भाई ने, यूसुफ भाई टाइप कर रहे हैं और यूसुफ भाई ने भी सही बताया है, दानिश आजाद ने सही बताया है, बहुत ही उम्दा। रमेश बताते हैं कि वो कितने बड़े फैन है सोने गम के और बिल्कुल सही जवाब बताया है। हुसैन ने भी बता दिया है और टिक लगा दिया है कि सोने गम के फैन तो अपन भी हैं। वाह वाह हुसैन भाई, बहुत ही

भी टिक लगाते हुए कह दिया है कि obviously I'm the fan as well. फिर इमेज है मोहम्मद फैयाज, इन्होंने भी सही जवाब आया है, हाय का मैसेज आया है नाज का, और नाज भी टाइपिंग कर रहे हैं. फिर ये मैसेज, नाम नहीं है, एहसान भाई ने, नहीं एहसान भाई, ये वो गाना नहीं है जो आप समझे. और प्ले

पहले तो नाज मैसेज किया है कि किस मूवी का है ये गाना, और फिर सही जवाब दिया है. ओके वेल, एहसान ने जो जवाब दिया मैं कहना चाहूंगा वो भी एक तरह से सही है, लेकिन एग्जैक्ट नाम का और भी गाना जो है वो प्लेलिस्ट में है, अपने पास रखा हुआ है, वो नहीं मान सकते. एहसान भाई थोड़ा और क्लियर और साथ आए. और फिलहाल एक और मैसेज जो शुएब भाई का, कहते हैं बिल्कुल सही है. और एक और बात लिखी है भाई, इफ आई गेट ट्रैफिक फाइन यू आर द रिस्पॉन्सिबल सॉन्ग लव यू भाई. अरे लव यू टू मेरा भाई, लेकिन ये कैसी मोहब्बत है यार कि मैं जिम्मेदार गाना अच्छा प्ले कर रहा हूँ, इतना ज्यादा मूड में आया कि लाल कलर नहीं समझ में, हरा हरा समझ में आ रहा, ये कैसे? ए भाई इतना भी पॉजिटिव नहीं होना है कि लाल भी हरा समझने, रेड को रेडिम जो हल्लू हल्लू ठीक है, और गाड़ी 80 के ऊपर नहीं 85, बस 80-85 इतने में रखो, ऊपर नहीं जाने का. और 85 भी वहां पर जहां 100 का है, और 85 उस लाइन पे, एक तो लेफ्ट लाइन पे चलना भी नहीं, राइट वाले पे थोड़ा और राइट, हाँ तीसरी लाइन ठीक है, हाईवे पे हो ना, हाँ तब ठीक है तीसरी लाइन, बाकी मेन में दूसरी ठीक है. और जितने बाइक वाले हैं हाथ जोड़ के भाई आप लोगों से विनम्र निवेदन हैगा, ये भाई ये तो कार वाले नहीं चल रहे एकदम लेफ्ट पे, बाइक वाले लेफ्ट पे एकदम घुर्राते हुए भाग रहे हैं. इनके गाड़ी की आवाज देखिए भाई, हमारे केबिन के अंदर तक आती है यार इनकी गाड़ी. 10 पे सुपर होती इतनी तेज चिल्लाती जैसे लगता है अभी का फट जाएगा भाई, हाँ 80 पे चुपचाप चल रही होती इनकी. अरे भाई प्लीज लेफ्ट लेन में तो मत चलो, प्लीज राइट की मोड़ लो मेरा भाई, तुम लोग से बहुत डर लगता है यार. एकदम से ब्रेक भी मार देते हैं, ये सोचते हैं कि देखें पीछे वाले का ब्रेक काम कर रहा है कि नहीं. भाई ये जो डिलीवरी वाले बाइक वाले हैं ना, मेरे को बहुत डर लगने लगा है. खैर मैसेज पे आ जाते हैं, और ये मैसेज एहसान उबैद ने बिल्कुल सही कर दिया है. इन द आंसर इज कह दो ना यू आर माय सोनिया, मेरा तो फेवरेट ये गाना है, टॉप 20 में ये गाना जरूर आएगा. अभी एक और गाना सुनाता हूँ, ये गाना आई वंडर कि काहे ये गाना लोग ने रिक्वेस्ट नहीं किया रे बाबा. ये बहुत ही खूबसूरत था, ये कह सकते हैं थोड़ा स्लो ज्यादा था, इस मैंने शुरुआत में कहा था कि बहुत स्लो गाना अपन नहीं प्ले, लेकिन ये वो स्लो गाना है कि कहते तो यार मेरा ईमान डोल जाता है.

क्या बात है, नाज ने बहुत ही नाज से जवाब दे दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। यूसुफ भाई ने भी सही जवाब दिया है, फिर उसके बाद कैसर साहब ने एक्सेप्ट किया है इस चैलेंज को और अलका याग्निक सोनरगम के इस गाने को बिल्कुल करेक्ट पहचान लिया है। उसके बाद दानिश कहते हैं कभी सुना नहीं, अभी जब आप इसका हुक सुनेंगे तो आप ये कहेंगे इस गाने को कभी भुला ही नहीं पाएंगे यार।

यार ये 2000 का बहुत ही ज्यादा फेमस सॉन्ग है। जब ये गाना आया 5 साल तक तो लोगों ने अपने गले से लगा के रखा था। वेल उम्मीद के दोबारा सुनने के बाद लोग इसका जवाब देंगे। बट हमारे पास मोहम्मद फैयाज का मैसेज आ गया है, बिल्कुल सही बताया है। फिर इसके बाद एक और ये मैसेज है फलक का, दिल में जो बात नहीं, फलक ये गलत जवाब है। मूवी सॉन्ग टाइटल सॉन्ग, इसे मैं पढ़ाई करते हुए वॉकमैन में सुना करती थी हाई स्कूल में। अरे वॉकमैन क्या याद दिला दी, मैं उस

उस वक्त ना मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, 160 रुपए का कहीं तो चाइनीज मिल रहा था बहुत इकट्ठा करा के 160 रुपए आया तो, और फिर ना उसको पीछे जिब में लगा के हीरो के माफी कान में एयरफोन, और एकदम ऐसा भौगाल मेंटेन होता था हमारे छोटे शहर में कि दिल खुश हो जाता था। लेकिन दानिश भाई ये गाने को सुनो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये पस सुना है। ये गाना बिल्कुल सही लोगों ने जवाब दिया, इस गाने का नाम है

मतलब इस गाने को सुनकर तो बच्चे बड़े फिलहाल ये थोड़ा सा ट्रैक अलका याग्निक उन्होंने कम ने गाया है, तीसरा सॉन्ग आ रहा है, इस गाने को पहचानिए एंड आई एम श्योर 95% लोग इस गाने को सही पहचाने।

बताइए ये गाने का नाम क्या है, इस गाने का नाम बताइए. FM 107 व्हाट्सएप नंबर 6622107 6622107. वेल यार ये वाला तो आसान होगा, नहीं मुझे तो लगती ये वाला आई एम श्योर आसान होगा और अच्छा खासा वाला आसान होगा. बाकी अब ये 6622107 के ऊपर पता चल जाएगा. कैसर साहब ने बिल्कुल सही बताया है और दानिश आजाद ने बिल्कुल सही बताया, बहुत ही उम्दा सही है दानिश भाई. ठीक है फॉर्म में आ रहे हो, फॉर्म चला गया दानिश का लेकिन धीरे धीरे आ रहा है मैं मान रहा हूँ. ठीक है फिर उसके बाद ये एक और मैसेज है यूसुफ भाई का, बहुत सही जवाब. नाज ने तीनों गाने पहचान कर बता दिया है कि द रिक्वेस्ट शो में यूसुफ भाई दानिश कैसर हिशाम के बाद उनका भी नंबर है, वो टॉप पर रह सकती है. फयाज ने थोड़ा फिर से सुना तो लिखा है ओके.

बताइए नाम। हुसैन ने बिल्कुल सही बताया है, बहुत ही उम्दा। फिर उसके बाद एक और हैं, एहसान उबैद ने भी बिल्कुल सही बताया है। नसीम कहते हैं मियां फज्जू आज बहुत खुश हो लगता है, आज बेलन नहीं पड़ा। अरे यार फज्जू क्यों नहीं खुश होंगे, आज बेलन पड़ जाए जब भी। आज थर्सडे है यार, थर्सडे का बेलन भी यार खुशी देता है, है? चेहरे में तो आपके भी खुशी लगती है। सही जवाब फयाज ने दिया है, उम्दा। दोबारा सुनने के बाद फजील, आज बहुत दिनों बाद मैंने तीनों सॉन्ग सही पहचाने हैं। अरे यूसुफ भाई, आज मैं कहता हूँ घर में मीठा जो भी रखा खा लो तरी से। फिर उसके बाद लिखा है बीवी से पड़ता है बेलन या किससे? अरे बीवी के अलावा और कौन ही है, किस्मत है। अब्बा बेलन नहीं मारते, अब्बा तो बेल चलाते। हल्लू से आगे बढ़ेगा। उसके बाद यूसुफ भाई को कांग्रेट्स लिखा है दानिश आजाद ने। थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में फज्जू भाई, ना रात को नींद आती है ना दिन को, लेकिन इंशाल्लाह फॉर्म वापस आएगी। भाई जो रात और दिन को नींद ना आए तो हो सकता है आपको हो गया हो, मतलब कोई बीमारी तो नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि देखो एक दवा आती है पैरासिटामोल, तो उससे कुछ देखो काम बन जाएगा। मैं भी यू नेवर नो यार, ठीक है हो सकता। मुदस्सिर रेहान ने मैसेज किया है, मैं भी फला में काम करता हूँ और राइडर हूँ, मुझे खुद अपने बाइक राइडर साथियों से डर लगने लगा है। अरे अपने लिए नहीं बल्कि होंगे, क्योंकि अगर गलती किसी की भी हो चोट होंगी। हाँ भाई, हल्की सी मोहब्बत, आप बाइक की टेल लाइट में और कार की हेडलाइट में हल्की सी भी मोहब्बत हुई तो ये भरी पड़ जाएगी। प्लीज तो ऐसी मोहब्बत से दूर रहना है ना। ओ बाइक राइडर भाई, धूम मचले, थोड़ा राइड में होते हुए धूम मचाओ भाई। तुम्हारी गाड़ी रफ्तार जो है आपको लगता है तेज है, नहीं है, ठीक है। बाकी इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक संडे को सुबह नहीं दोपहर को, मेरे लिए तो सुबह ही है, मैं थोड़ा देर से उठ, दोपहर के एग्जैक्ट 1 बजे FM 107 पे समर स्पोर्ट्स के प्रोग्राम के साथ, और फिर शाम को 4 बजे आपके अपने मर्जी के गाने।

0: FM107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉपी 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qm.ua
1: FM107 टाइम चेक
2: हमें नहीं है टाइम हमने बता रहे हम तो हैप्पी वीकेंड बोलेंगे हैप्पी वीकेंड पब्लिक मैं अपने शो में आके हाँ जी तो 5:02 और हाजिर मई

तीन मिनट का शिक्रिका डा। हाँ जी, क्या चला है? बढ़िया भाई साहब, मुबारक हो, छुट्टी आ गई दो दिन की। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज मेरा दिन थोड़ा सा अलग ही रहता है क्योंकि दो मरतबा ऑफिस आता हूँ। और आज मैं एक और गलती करता हूँ। क्या गलती करी आज? मैं आदत नहीं है तो दुबने की। आज मुझे आना था अमीन भाई का शुक्रिया स्पोर्ट्स साउंड बजे, तो भाई साहब आपका 12 बजे इन्हें कर लिया साइन इन कर लिया। वो होता ना वो, अरे जहाँ अंगूठा लगाती हैं वो साइन इन करने वाली मशीन करे, उसमें मैंने साइन कर लिया भाई। मैं शाम में आया, मुझे याद नहीं रहा, मैंने दोबारा साइन इन कर लिया। फिर मैंने साइन आउट कर लिया, साइन इन कर लिया। कंपनी वाले यूज़ने वाले हैं, ये हमारा एक लौता एम्प्लॉई है। अजीब है ये। एक और चीज़ आपको फैक्ट बताऊं अपने बारे में, मजाक से हट के एक फैक्ट बताता हूं। मेरे जो अंगूठे का इंप्रेशन है वो आता ही नहीं है मशीन पे, आता ही नहीं। मैं आगे के पास गया, मैंने कहा भाई ये हो नहीं रहा है, तो बोले दूसरी उंगली ट्राई करो, तीसरी। मैंने 10 की 10 उंगलियां ट्राई करी है मशीन पे। तब जाके जो है अब मेरे जो है साइन इन साइन आउट हो पाता है। अलग ही बनाया क्या? अलहमदुल्ला अलग ही सब किताब आपके भाई का। कुछ मैसेज पढ़ दूं मैं जो बड़े जरूरी है। मुमताज भाई वालेकुम सलाम, धमाकेदार एंट्री, पूरा गर्दा उड़ा दिया भाई। भाई यही तो करना है भाई, इसी बात के पैसे हैं। जाहिद भाई वालेकुम सलाम, एक मैसेज भाई ने, वालेकुम सलाम मेरा भाई, बहुत सारा प्यार भाई को। क्या और एक मैसेज किया है भाई, 10 ढोल बजा अभी बजाते हैं, बजाते हैं, उतना ही बजेगा। एक मैसेज यूसुफ भाई कह रहे हैं कि आप ये बैंड भंगड़ा वाला हर वीकेंड प्ले होता है जो कि आपकी फैंस को पसंद है। जी जो खुद पसंद है। निगर कबीर भाई सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम मेरे जान, क्या हाल है आपके? गुलाम साहब ने मैसेज किया है, और फिर मैसेज किया है कबीर अंकल, हाउ आर यू स्वीटहार्ट, क्या कब से चला है स्कूल, क्या कब खुल रहे हैं, मुझे बताओ, अपडेटेड नहीं हूं थोड़ा सा, क्या चला लेना, एंड हाउ आर यू डूइंग दीज डेज। और खादिन वालेकुम अस्सलाम, और डी वी भाई वालेकुम अस्सलाम, ये मैसेज हैं। एक और मैसेज भाई, दस दिन के लिए ये ढोल जो है, अगर ढोल बज रहा है कामरान भाई के नाम पे, कामरान भाई के बजाओ बजाओ बजाओ, कोई रुकना नहीं चाहिए।

0: Mıran E. कैमरन ऐसा लग रहा है अभी आप हो चुका क्या लेट तो नहीं बजा रहा हूँ कहीं दस भाई जो एक बारा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम भाई 5 रियाल 10 रियाल दोनों का ढोल बजाया मैंने अभी ये आपके नाम भी उनके नाम भी बजा दिए ये समझ लीजिए खादिम साहब वालेकुम अस्सलाम लिखते मोहम्मद एहसान फ्रॉम केरला सलाम बोल रहे हैं वालेकुम अस्सलाम और उन्हें हिंदी आती है माशाल्लाह बहुत बढ़िया जुमेराती वालेकुम अस्सलाम हैवी वीकेंड कबीर भाई एक बार फिर से बजाया मैंने ढोल भाई जुमेराती रन साहब जावेद सलाम सलाम ये मोहम्मद मुशीर आलम साहब की तरफ से वालेकुम अस्सलाम एंड देन वेलकम वालेकुम अस्सलाम All right. अच्छा मैं अच्छा इकरम भाई आपका भी बहुत शुक्रिया गुड आफ्टरनून आफ्टरनून नहीं हो 5 बजे अब तो 4 आफ्टरनून चलता है तो मैं ये कह रहा था आज की कहानी भाई साहब आज की कहानी हॉरर है पहली बात तो ये टॉपिक बता दूं मैं आपको एंड आज की कहानी इज अ वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड केस बस मैं बताता हूँ दो कहानियाँ थी ठीक है मैं कन्फ्यूज़ हो गया मैंने कहा यार ये दो कहानियाँ मुझे अच्छी लग रही हैं मैं दोनों सुनाना भी चाहता हूँ पर मुझे एक चूज़ करनी पड़ेगी बड़ा मुश्किल था भाई बड़ा मुश्किल था आज तो सर मारना पड़ गया मुझे एंड बहुत बहुत बहुत सोच विचार के बाद मैंने आज एक कहानी चूज़ करी हालांकि दो कहानियाँ तैयार थी मैं चलता ना भाई मेरा बच मैं आज दोनों की दोनों आपको सुना देता सही बता रहा हूँ दोनों की दोनों सुना देता मैं पर क्या करते हैं एक आज मैं सुना रहा हूं आपको एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम इरफान भाई हमारी तरफ से ये भी और एक और मैसेज कह रहा है 3 रियाल का बजा दो 3 रियाल का हो गया 3 रियाल कितने ही बजे करीम साहब वालेकुम अस्सलाम और हीरो भाई और अलीना ने मैसेज किया 1 मंथ ऑफ हॉलीडेज टू गो क्या चल रहा है मतलब क्योंकि अभी स्कूल खुलने टाइम है एक महीने का और हॉलीडे बाकी है क्या चल रहा है व्हाट इज योर प्लान ऑफ एक्शन घर मिल रहा है क्या सीन है क्या चल रहा है एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम भाई क्या गुड इवनिंग कल वाली स्ट्राइक जबरदस्ती और उसका लिटिल होना क्या है छोटी से पहले कुछ मीठा हो जाए ना कल की कहानी तो एक बार तो लड़की गई है वालाम साहब और मैसेज क्या है मेरी डीबी 9 महीने हो गए अब मेरा एक जोक मेरे दिमाग में आ रहा है मैं बोलना नहीं चाह रहा मलिक वकासम वालेकुम अस्सलाम क्या कह रहे हैं कबीर भाई आज आपको नींद नहीं आ रही है भाई मुझे मैं एक बार आँख खुल गई तो खुल गई फिर एक मैसेज है आ गया भाई आ गया भाई मैंने आपका नाम लिया आपका नाम सलमान खान आपका नाम है तो सलमान खान ने मुझे मैसेज किया खुद और एक मैसेज है कैसे हैं बढ़िया भाई एंड किसी मैसेज सुनी होगी मुझसे हॉरर कहानी के गए खैर आज सुनाओ नेक्स्ट थर्सडे हॉरर कहानी नहीं आज जो है वो भी हॉरर सुना मेरे पास दो कहानियाँ थी इकट्ठी हो गई थी तो एंड आई वाज कंफ्यूज एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु कबीर ब्रो हैप्पी वीकेंड कैफ अल हाल और मैं बढ़िया मोहम्मद फयाज भाई एकदम अल्हम्दुलिल्लाह शानदार और ये क्या पिकअप व्हाट पिकअप द फोन भाजी मैं फोन उठा नहीं सकता क्योंकि 11 मिनट का ब्रेक आएगा अभी कह रहा भाई मेरी DP 2 ईयर से एक ही है हमारा कुछ नहीं हो सकता कह रहे हैं वही है? बोला ना मैं हुई कतर में हूँ और वाइफ स्पेन बहुत सैड भाई स्पेन में कतर में है कामरान भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या कैसे दूँ इस पर 11 मिनट तक मैं सोचता हूँ 11 मिनट और 2 सेकंड बाद मिलते शाम के अधिकार के बाद क्योंकि इन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है मिलते हैं
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर الله لا إله إلا هو حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

0: वाली फीलिंग आ जाती है कि मुझे मेडिसिन खानी पड़ती है, क्यों मुझे ना संतना कुछ वो सब चल रहा होता।
1: बैक टू रियलिटी मेरे भाई, बैक टू रियलिटी। कब तक कब बकरी खैर मनाएगी? 3 हफ्ते की बात है, उसके बाद वो तो मैं छुपा भी नहीं सकता, क्या करूं। वैसे आसपास दोस्त भी जल रहे होंगे, तो ऐसा तो नहीं, मैं अकेला तो नहीं हो सकता।
0: चलने वाले चले, हम बढ़ते रहे आगे।
1: 3 हफ्ते देखूंगा सारी चौड़ निकलेगी। ठीक है, अरे मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा कॉल जान के। तो मैं ऐसे तो नहीं कहा भाई,
0: मैं अपना रोता चेहरा नहीं दिखाऊं, मैं अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाऊंगा, फिर मेरे पे कोट लगा। इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे क्या,
1: गौर से देख, मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक दर्द छुपा है।
0: तो अल्ताफ राजा वाला गाना प्ले होगा मेरे लिए, पहले तो कभी
1: एक आध हमारा मन को भी लगता है, नहीं है सेट हो जाएगी लाइफ। ये मैं पक्का करूंगा, 3 हफ्ते बाद ना पक्का ये गाना चलाऊंगा, मैं ढूंढ लूंगा तब तक जगह नहीं, डन हो गया। कोई बात नहीं, मैं चलाऊंगा तो जरूर, रिक्स में उठाने को तैयार हूँ। बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, किसने कह दिया कि इतने अच्छे नहीं।
0: लोग जयलू का नाम दिया तो मुझे तुम्हें पता है एक बात।
1: हाँ, तो क्या हो गया, जमाना बदल गया है।
0: ऑफिस में भाई 2-3 बंदे जानते हैं, गायब तौर पे स्टॉक कर रहे हैं वो।
1: अच्छा, ऐसा है क्या?
0: आज उन्होंने आगे पेशाब किया कि भाई आप तो भाई
1: क्या मैं क्या मैं हाँ तुम बस
0: यार वो सुनते हम तो ना वो आप ही लगते हो, मैं लगता हूँ मैं निकला रहा यही है बेवकूफ बना रहा है, इतना बताया ना कभी से दोस्ती है
1: तो ये अच्छी बात ना, ये तो अच्छी बात। कौन कभी, किसने बोला ये, किसकी हिम्मत हुई है?
0: मैं भाई मेरे ओन के दिल छोड़ दिया भाई, मैं अच्छा, नहीं कर रहा भाई।
1: आपने लबरी आपने बोला
0: हाँ,
1: ये कौन, 3 हफ्ते बाद बात करूंगा, ये कौन अल्ताफ राजा ना चला मेरा नाम नहीं, आधे लोग यकीन करते हैं, आधे साथ यकीन करते हैं, जान यकीन जानो ये फैक्ट है
0: भाई। मैं कह रहा हूँ लोगों को इस यकीन पे जिंदा हो,
1: है ना,
0: मिल चुका हूँ।
1: हाँ,
0: सोचो मेरे पे क्या गुजरी,
1: ये बात तो है।
0: मैं जिंदा कभी है तुम लोगों ने
1: नहीं देखा, मैंने देखा है। ये तो हो गया ना वो एक्सटिंक्ट पॉपुलेशन किसी चीज की होती है, वो दिन है जैसे मैंने देखे हैं डायनासोर। पर बहुत शुक्रिया तारा भाई, आपकी खुशियां 3 हफ्ते बात तो करते रहेंगे, उसके बाद पता नहीं अब क्या होगा। माशाल्लाह
0: तक मेरी कॉल की रोजी खाता रहेगा।
1: ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट आपके लिए, बहुत सारे मैसेज है सबको, ऑल द बेस्ट सबकी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, ओके ओके अल्लाह हाफिज। और तलाब के बाद एक और कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
2: सलाम, क्या हाल है कैप्टन साहब?
1: बढ़िया भाई साहब, आप सुनाइए क्या लगा
2: भाई? लग रहा भाई
1: फोन पे लग रहे थे हम, वो हमारे तलाब भाई के साथ वो हैं, बढ़िया छुट रहे हैं, वो भाभी गई हुई हैं।

0: माइके में, तो मौज कर रहे हैं 3 हफ्ते की।
1: भाई मौज न्यू कराना, आप लेके आओ उसको मेरे धोरी आज।
0: भाई उसने
1: वीकेंड भी है भाई,
0: उसने कड़े नहीं आना भाई।
1: ना ना ना भाई, यू तो न्यू आप करे, वो तो जरूर आएगा, मैंने तो नहीं लगा भाई।
0: पता नहीं भाई, पूछना पड़ेगा।
1: वो कौन भाई, मैं नहीं पता वो कौन ही नाटक।
0: आप बताएंगे भाई, हर किसी का नाम देंगे। और काबा जी क्या चलाना वीकेंड का?
1: छुट्टी का कबीर भाई हमारा होता है शनिवार को।
0: शनिवार को होता है? अच्छा, ओहो
1: जी। मेरी फ्राइडे को ड्यूटी होती है, हमारा शनिवार को होता है, शनिवार शाम और संडे को।
0: ओके ओके, ठीक है ठीक है
1: जी।
0: तो छुट्टियां अमूमन कैसे बीतती है? सो के निकाल देते हैं, घूम फिर के निकालते हैं, क्या रहता है?
1: नहीं सो के तो नहीं, तकरीबन शाम को निकलते हैं कहीं घूमने के लिए। कोई कोई जगह साइड की होती है, सेक्ट की होती है, वहीं पे जाते हैं।
0: अच्छा, ढूंढते हैं आप भी? अच्छा, हिडन जैम
1: यार कबीर भाई, कॉन्फिडेंस देखो यार इन बंदों का यार, हर रेस्टोरेंट को हिडन जैम। जो बंदा गवर्नमेंट की साइट पे रजिस्टर्ड है यार, जिसने सीआर नंबर लिया हुआ है यार, सारा कुछ उसके पास, इतने वर्कर कर रहे हैं यार, और इन मार्केट के अंदर वो बना हुआ है, फिर भी यार आप लोग उसको हिडन जैम बोल रहे हो यार।
0: ये तो खास बात, हर रेस्टोरेंट हो जाते हैं वो हिडन जैम है भाई, और ऐसे बीचा जाना उसको के बस यही मिल, तो कहीं नहीं मिल रहा, यही मिल रहा।
1: हिडन जैम वो होता है, आप किसी जगह पे जाके बंदे को उसी के में बताओ, अपनी नॉलेज के हिसाब से बंदे को बताओ भी इसी में ये चीज एक्स्ट्रा है, ये घूमने फिरने के लिए यहाँ पे आओ, ये चीज एक्सपीरियंस करो। जो चीज पहले ही वहीं पे मौजूद है यार, आप उसको बता रहे हो हिडन जैम यार। उसको भी शर्म आने लगी होगी आप हिडन जैम वर्ड को।
0: ये भाई मैं भी सोच रहा हूँ अपनी मंसूरा की गली को बोल दूं ये हिडन जैम है, यहाँ कोई नहीं।
1: सही करने की बात है यार कबीर भाई। कबीर भाई दूसरी बात ये है,
0: हाँ बोलो ना
1: यार। कबीर भाई जब आपके प्रोमो के बाद में आपकी एंट्री होती ना
0: जी भाई,
1: तो आप यकीन मानिए, आपने धूम 3 मूवी देखी है आमिर खान की?
0: हाँ भाई देखी है भाई।
1: तो उसमें स्टार्ट, जब मूवी स्टार्ट होती है ना, आपने देखा होगा एक बैकर बैठा होता है नीचे, ऊपर से नोटों की बारिश हो रही है, और उसके बाद में आमिर खान की एक्टिंग भाई। वो है तो ये इफेक्ट्स हैं, मगर भाई वो आमिर खान की एंट्री हो बैंक को तहस नहस करने के बाद में, और इधर से आपकी एंट्री भाई शो में,
0: क्या बात है, क्या बात है। गावा जी दिल जीत लिया, गावा जी को भाई चाय वाय मिलाओ, गावा जी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरा भाई सेट कर दिया मूड पूरे भाई ने, थैंक यू भाई, बहुत प्यार बहुत प्यार।
1: सच में कबीर भाई यार, वो एंट्री आप दोबारा देखना अगर टाइम लगे तो।
0: नहीं इंशाल्लाह,
1: मैं
0: वो एंट्री याद है मुझे, एंट्री याद है। और प्लान करते हैं इस वीक के बाद, जो नेक्स्ट वीक आने वाला है उसमें मिलते हैं, 2-3 लोग मिलते हैं इंशाल्लाह साथ में, और आपके साथ ही बैठा जाएगा, ठीक है? प्लान हम इंशाल्लाह आपको अपडेट कर दूंगा मैं, ठीक है?
1: ठीक है ठीक है, जरूर बता देना।
0: डन नगा जी, डन हो गया, ठीक है।
1: और भाई पूछो, कुछ पूछना हो कबीर भाई?
0: बस भाई कुछ पूछना नहीं, कहानी का टाइम हो लिया, मैं अब कहानी शुरू करने वाला हूं, कहानी थोड़ी सी लंबी है।
1: ठीक है ठीक है वीर भाई, थैंक यू यार, हैप्पी वीकेंड
0: टू यू टू मेरा भाई, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड। ओके भाई, तो एक हमारे भाई हैं बहुत देर से जरा कॉल करे जा रहे हैं, और व्हाट्सएप पे कर रहे थे, कल भी करी थी उन्होंने, मैं नहीं कर पाया था, पहले मैं उन्हें कर लूं। अरे एक सेकंड, नियाज भाई मैं कॉल कर रहा हूं आपको, एक सेकंड रुक जाओ बस, ये मैंने कॉल लगा दी है। अरे यार मैं खुद ही कॉल लगा के खुद ही काट देता हूं, ये क्या चक्कर है, एक सेकंड, ये मैंने कॉल लगा दी है, बस ये उठा ले मैं नियाज भाई एक दौर में। अस्सलाम वालेकुम, हेलो
2: हेलो
0: भाई साहब, व्हाट्सएप पे तुमने धनिया बो दिया भाई, थमने तो भी।
2: भाई कितने कॉल करूं, मुझे लगा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तुमने मुझे।
0: अरे ब्लैक लिस्ट में क्यों डालूंगा भाई,
2: मिलने मिलने का प्रोग्राम हो रहा है।
0: हाँ बिल्कुल
2: करेगा,
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई, मिलते हैं।
2: सला भाई ने कहा ना कि जय वीरू, तेरा भाई को बोलिएगा जय वीरू से आरी मानो कम हो गए पता नहीं चला।
0: ये अच्छा था गुरु, अच्छा था, 10:30-9:30 मिलेंगे पूरे नंबर। और हमारी एक बहन है आसरा बहन, वो लिखती है कि कौन सी खुफिया मीटिंग हो रही है 2-3 लोगों की। बहन 2-3 तो इकट्ठे करें, उससे ज्यादा कर लेंगे इंशाल्लाह, शक कर रही है मम्मी। तो ये चल रहा, और बताओ
2: भाई, बहुत अच्छा आपकी सुनी, आज का लाइव नहीं सुना हूँ, माफी चाहता हूँ,
0: कोई गल नहीं,
2: थोड़ा काम है सब क्या,
0: कोई गल नहीं।
2: कल की स्टोरी देखिए, स्टोरी में मजा आया, मगर आज की स्टोरी बहुत छोटी होती जा रही है।
0: नहीं भाई कल की पूरी 27 मिनट की रात हो गई, मैं क्या एक बिलांग लड़ा दूं, 27 मिनट की थी भाई।
2: या तो फिर उसके अंदर जो आपका बोलने का तरीका सस्पेंड होता वो कम हो गया, या तो मुझे ऐसा लग रहा है
0: कल वाली में था।

0: कल वाली में सस्पेंस ज्यादा था नहीं, क्योंकि वो आउट एंड आउट स्ट्रेट स्टोरी थी, वो तो आखिर में थोड़ा सा था उसके, मगर जिनमें होता है उनमें पूरा पूरा भाई 27 मिनट की कहानी।
1: हाँ अच्छी स्टोरी थी।
0: थैंक यू सो मच।
1: पकड़ा नहीं गया, सबसे बड़ी बात ये है
0: मौज कर रहा भाई वो डायमंड्स के साथ। हाँ बिल्कुल,
1: अपनी जिंदगी के मजे वही ले रहा है,
0: वही जी रहा है भाई।
1: कैसा चल रहा है सब कुछ?
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई कुछ शानदार, सब कुछ शानदार।
1: आज का कोई सवाल भी पूछा था आपने?
0: नहीं भाई सवाल पूछ ही पाया, मैं सवाल पूछ ही नहीं पाया उससे पहले, कोई इतनी सारी माशाल्लाह। तो अभी मैं सीधा स्टोरी की तरफ ही जंप करूंगा सीधा, यही प्लान है अब।
1: चलिए ठीक है, ख्याल रखिएगा,
0: ठीक है मेरा भाई, डन है भाई। बिल्कुल अब्दुल्ला साथ में, साथ में क्या?
1: नहीं मैं कह रहा अब्दुल्ला की शादी।
0: अच्छा
1: भूल गया,
0: बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? नहीं कोई बेगानी शादी नहीं हो रही है भाई, आ जाना कोई दिक्कत नहीं।
1: अब्दुल्ला बन के आ जाएंगे फिर भी हम।
0: डन है भाई, डन है। थैंक यू सो मच भाई।
1: चलिए
0: ओके भाई, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। और एक और भाई कॉल कर रहे हैं लेकिन मैं अभी कॉल उठा नहीं पाऊंगा मेरी जान। शेफ भाई एक और मैसेज है, याया भाई लिखते हैं, भाई थैंक्स फॉर शेयरिंग द लास्ट टू स्टोरीज एज यूजुअल अमेजिंग नरेशन, कांट वेट फेस विल ट्राई टू लिसन लाइव। भाई तुम नहीं लगा सकते अल्ताफ राजा का सॉन्ग, आवाम बहुत नाराज होगी भाई। लगाने पर नाराज होगी, नहीं लगने पर भाई, आपकी स्टोरी सुन के टावर में डर लगना स्टार्ट हो गया जब कोई भी नहीं होता आसपास, बाकी स्टोरी आ जाते हैं। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया, ये तो आपकी मोहब्बत है, डर लग रहा है तो अच्छी बात है। और नाजिया बहन ने मैसेज किया, वो लिखती हैं क्या थी ये स्टोरी, जीनियस बोले हैं, खतरनाक बंदा, डेडली एकदम बहन। और एक मैसेज किया है अरबाज भाई, लिखते हैं एक अच्छा सा सॉन्ग लगा दीजिएगा अपने, क्या है सूर्यवस में एक सॉन्ग तो लगा दी भाई, 5 बजे से 6 बजे अलाउड नहीं है इसलिए मैं नहीं लगा पाता हूँ। राशिद साहब वालेकुम अस्सलाम, जजाकल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। एंड एक और भाई ने लिखा है कल की स्टोरी अच्छी थी। थैंक यू सो मच अनिल भाई, आपका प्रेम मेरे भाई, बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज की स्टोरी में शुरू करने जा रहा हूँ तो उसे मैं बस इतना बताना था कि आज की स्टोरी इज अ हॉरर फ्लिक, हॉरर स्टोरी है, काफ़ी वेरी काफ़ी डॉक्यूमेंटेड स्टोरी है एंड इस पर डॉक्यूमेंट्री भी मौजूद है एंड इट बिकेम वेरी फेमस। अमूमन मैं स्टोरीज वो चुनता नहीं हूँ जिन पर मुझे 5% यकीन ना हो, तो ये वो स्टोरी जिस पर मैं यकीन करना चाहता हूँ बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एयरी स्टोरीज एवर। तो आप इसको कैसे देखते हैं, खुले माइंड से सुनिएगा ठीक है, विद एन ओपन माइंड। आई नो बहुत सारे लोग स्केप्टिक भी होंगे, अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, मगर इट्स अप टू यू। सो बस एक छोटा सा प्रोमो बीच में आएगा एंड देन विल बिगिन विद दिस स्टोरी, तो बस तैयार हो जाइए एंड स्टे ट्यून्ड। जाना नहीं है कहाँ गया भाई, छोटा सा प्रोमो आइए, चलो ये सुन लो उसके बाद मिल रहे।
2: दोस्तों साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरत जरूरी है। अननोन सोर्सेस से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है। मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेस पर ही यकीन कीजिए। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर न करें। स्ट्रॉन्ग और यू पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें। याद रखें आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है। साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार रहना है।
0: अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे। तो अब मैं आज का किस्सा शुरू कर रहा हूँ, इट्स अ वीकेंड स्पेशल स्टोरी, आई होप आप सारे के सारे तैयार हैं, सो लेट्स बिगिन। तो जो आज का किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा, सुनाने से पहले मुझे पूरे का पूरा पूरी जो जगह है जहाँ का ये किस्सा है वो आपके सामने पेंट करनी पड़ेगी, तो मैं बोलूँगा और आप इमेजिनेशन का बटन अपना ऑन कर दीजिएगा। तो मैं आपको ज़रा ले चलता हूँ केंटकी, अमेरिका। आई नो हम में से बहुत सारे लोग वहाँ पे नहीं गए हैं, बट लेट मी ट्राई एंड पेंट द पिक्चर। ये वो जगह थी जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड स्टोरीज निकल के आई हैं। यहाँ पे कई सारे माउंटेन हैं, केव सिस्टम्स हैं, इनफैक्ट दुनिया का सबसे लंबा केव सिस्टम यहाँ पर है। बड़ी कहावत है तो उस जगह के बारे में कही जाती है कि यहाँ की पहाड़ियों के बारे में अगर बात की जाए तो वो इनमें दफन

हड्डियों से भी ज्यादा पुरानी है. तो जस्ट इमेजिन कि कित वास्ट केव सिस्टम होगा, उसमें कैवर्न्स हैं, उसमें सारी इंटरनल गुफाएं हैं, इंटरनल लेक्स हैं, और मोस्टली जगहें कभी भी एक्सप्लोर नहीं की गई हैं. बहुत सारी टेल्स, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे लेजेंड्स और कई सारे बैटल्स इस जगह पर लड़े जा चुके हैं. और इसी एक हिस्सा है वेस्टर्न केंटकी. हमारा किस्सा शुरू होता है 1998 से. एक फैमिली थी, फॉस्टर फैमिली. इसमें थी जेन, डेल, उनका एक बच्चा था जोसेफ, जोसेफ जोश, और उनकी एक बेटी थी पैमेला 16 साल की, और फिर उनका एक बेटा हुआ 5 साल का कोडी फॉस्टर. जेन जो थी और डेल, ये दोनों मियां बीवी यहां पर हुए थे. उन्हें एक ऐसी जगह पे घर लिया था जो थोड़ी सी दुनिया से अलग थलग थी, पर उसके पीछे एक वजह थी. नंबर वन वजह ये थी कि घर उन्हें अपने बजट में आया था. दूसरी वजह ये थी कि यहां पर आसपास बच्चों खेलने के लिए उनके हिसाब से गार्डन्स थे, एरियाज थे, और उनके हिसाब से ये जगह

ट्राइड द लेवल बेस्ट, बहुत सारे राउंड ऑफ इंटरव्यूज लेके उन्होंने अपने घर पे नैनी रखी। शुरुआत में इट वॉज ऑल वेरी नॉर्मल। ये जो नैनी थी जो उनके घर पे थी, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक बच्चे की जिम्मेदारी से सर पे थी, वो था 5 साल का कोड़ी, क्योंकि वही थोड़ा सा चुप वाला था, वो थोड़ा खेलता था कूदता जरूर था लेकिन थोड़ा शांत था बाकी बच्चों के मुकाबले, बाकी उससे बड़े भी थे। तो नैनी का जो फोकस था वो कोड़ा, बाकी बच्चों के दोस्त थे वो खेल लेते थे उनके साथ, लेकिन कोड़ी का ज्यादा कोई दोस्त बना नहीं, इतना करीब ही नहीं कि वो जाके खेल। नैनी उसे बाहर ले जाती थी, इधर उधर घुमाती थी। नैनी ने कुछ नोट किया कि जहां वो खेलने के लिए जाता है और जानबूझ के जाना चाहता है, वो जगह बड़ी अजीब है, बिकॉज इट वॉज अ वियर्ड प्लेस। जमीन पे खुदाई हुई थी और ऐसा ही रहता जहां पे लोग आते जाते नहीं है, तो नैनी उसे वहां से दूर रहने के लिए कहती थी कि बेटा वहां मत जाओ, बट यूज टू गो देयर। एंड धीरे धीरे चीजें बड़ी अजीब होने लगी, इतनी कि एक जेन जब घर वापस लौटी तो उनकी जो नैनी थी उन्होंने बोला, मैम आपसे कुछ बात करनी है। जैनी ने बोला, हाँ बोलो क्या हुआ। तो नैनी ने बोला, मैम जरा प्राइवेट में बात करनी थी, आप आएंगे क्या। तो दोनों की दोनों, जेन और नैनी, वो एक प्राइवेट हॉल भी उनके घर का वहां पे खड़ी हुई थी। और फिर नैनी जो थी वो समझ नहीं पा रही थी वो कैसे बताए, उन्होंने बताया, बोली कि मैम कोडी जो है ना वो बहुत बुरी जुबान में बात करने लगा है, थोड़ा सा बदतमीज हो गया, अजीब बातें कर रहा है, आप समझ रही हैं, प्लीज बुरा मत मानिएगा, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। एंड जेन ये सुन के बहुत शॉक्ड थी, वो जानती है कि जेन खुद और उसके हस्बैंड ने कभी घर में किसी किस्म की गलत भाषा गलत जुबान का इस्तेमाल ही नहीं किया है। एंड शी वॉज नॉट श्योर कि उनके बच्चे ने आखिर ये सीखी कहां से, क्योंकि वो सिर्फ उसकी जुबान खराब की शिकायत नहीं आ रही थी। नैनी ने यह बताया कि आप चाहे कोडी वो बहुत ज्यादा रूड हो गया और गुस्से में रहने लगा है। और फिर नैनी ने एक लंबा पॉज लेके बोला, मैम एक और बात है, आप अगर बुरा ना माने। और जैनी इस टाइम सोच रही थी सारी चीजें, उसने बोला, हाँ क्या हुआ। बोली मैम वो अकेले में बात करने लगा है और बहुत ज्यादा बात करने लगा है, मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। और जैनी एज द मदर टू कोडी उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, थैंक यू तुमने मुझे बताया, मैं देखती हूँ, और डोंट वरी अपनी नैनी को बोला कि तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हें सॉरी बोलेगा अगर मैं कुछ बोला, ठीक है, यू डोंट वरी। कुछ घंटों के बाद जब नैनी जा चुकी थी तो सबके सोने का टाइम हो चुका था। कोडी और सबको, जेन ने सबको बुलाया, फिर उसने सोचा कि कोडी पे चिल्लाने की जरूरत, लेट्स टॉक नाइसली। बोला कोडी बेटा क्या हुआ है, हाँ आप उसे तो मैंने सुना है, कोई परेशानी है। और कोडी जो था वो अपनी माँ से बात के लिए खड़ा तो जरूर था, लेकिन वो अपने राइट हैंड साइड में कॉर्नर में देखे जा रहा था। और माँ ने टॉपिक चेंज किया और बोली, तुम्हारा कोई दोस्त है कोडी, नैनी ने बताया तुम किसी से बात करते हो, कौन है वो। और फिर कोडी इस दफा उसकी नजरें अपनी माँ की तरफ मुड़ी और उसने बोला, हाँ है, मेरा दोस्त है। माँ ने बोला, क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का। और उसने बोला, उसका है मैन। माँ मुस्कुरा, बोली मैन ये नाम है उसका, तुम्हारे दोस्त का कोई नाम मैन नाम है, ये बहुत बिजार है उसे। लेकिन वो यही मान रही थी कि बच्चे का एक्ट इमेजिनेशन है और शी रब्ड इट ऑफ, उसने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं। और वो सोचती रही कि ये कैसे डेवलप हुआ था, क्योंकि अभी तक तो था नहीं, और ये 5 साल का बच्चा है तो इस कदर इतना रूट इतने सफाई से तो नहीं बोलेगा, पर ठीक है, मे बी एक्टिव जनरेशन होगा। जब रात को सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए तो बीच रात में, और इस कॉन्वर्सेशन के तकरीबन 2 घंटे के बाद अचानक से आंख जेन की और उसे आवाज आ रही थी अक्रॉस द हॉल कमरे के बिल्कुल से, बहुत जोरों से उसका बेटा कोडी 5 साल का हंस रहा था और बहुत जोरों से हंस रहा था। वो कहा वो पहली, फिर उसने

0: अपने दिमाग में ये रैशनलाइज सोच रखी कि कुछ होगा, और उसने बोला चिल्लाते हुए उसको,
1: कोडी बहुत खेल चुके तुम, वापस जाओ कमरे में।
0: वो बोल तो रही थी और अपने आप को बता रही थी कि इट इज ऑल नॉर्मल, लेकिन उसे ये बोलते हुए नॉर्मल लग नहीं रहा था। एंड वो जो हार रही थी वो एकदम से बंद हो गई उसके चिल्लाने के बाद, भी दूसरी आवाज नहीं आई कोडी की। लेकिन आधे घंटे के बाद ही 16 साल की बच्ची इनकी बेटी पैमेला वो एकदम से उठी। एंड पैमेला ने जो अपनी मां को बताया वो बहुत ही ऑड था। माइंड यू पैमेला को अभी तक था कि उसका भाई किसी से बात भी या कुछ कर रहा है, क्योंकि बच्चे मिलकर प्लान बना लेते हैं ना, बट देयर वाज नो कॉन्शन पैमेला को नहीं पता। पर पैमेला अपनी माँ के पास भागती हुई आई और उसने बताया कि उसको अजीब सी आवाज आ रही थी बैठ के आसपास से, जैसे कोई नोनों से स्क्रैच कर लगातार स्क्रैच करे जा रहा है। उसने भी बताया कि माँ मैंने हिम्मत करके बैठ के नीचे देखा, लेकिन आवाज फिर जमीन में से आने लगी, फिर वो आवाज की उधर से आने लगी, फिर ऊपर से आने लगी, फिर मेरे कवर्ड में से आने लगी। एंड वो स्क्रैचिंग आवाज जो थी वो लगातार मूव कर रही थी, देयर टू देयर टू देयर, एंड इट टर्न आउट टू बी सो फ्रीकिंग कि वो वहां से भागी एंड वो रोने लगी बुरी तरह से। ऑस्कर रोना जेन्युइन लग रहा था, शी नॉट एक्ट, 16 साल की बच्ची इतनी भी वो नहीं हो सकती कि रोना चालू कर दे, और एक्टिंग कहीं से लग नहीं रही थी। जेन बहुत शॉक में थी, एंड जब उसकी बेटी कमरे में आई तो जेन को ऐसा लगा जैसे फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हर रूम कोई हो, बट वो बच्ची को डराना नहीं चाहती, और उसने पैमेला को अपनी बेटी को अपने साथ ही सुला लिया। ये रात काफी ज्यादा अजीब गई इस फैमिली के लिए। अगली सुबह जेन तैयार हो रही थी काम पे जाने के लिए, एंड फिर उसने देखा कि जो वॉशरूम है उसका, वहां से उसको बहुत दबी हुई हंसी की आवाज आ रही है, एंड शी कुड नॉट एक्सप्लेन कि ये आवाज आखिर क्यों आ रही है, किधर से आ रही है। उसने कान लगा के सुनने की कोशिश करी दरवाजे पे, फिर कुछ गिरने की आवाज आई। उसने दरवाजा एकदम से एक झटके में खोला, ऐसा देखा कि बाथरूम में सारी चीजें गिरी हुई थी, सोप गिरा हुआ था, बोटल्स गिरी हुई थी, सब कुछ गिरा हुआ था। बट ही थॉट ठीक है बच्चों ने शैतानी की होगी, सोचने लगी कि मैं खामखा ज्यादा सोच रही हूं, एंड शी कंटिन्यूड। मगर फिर उसकी नजर एक जगह पे पड़ी, उसने देखा कि नन्हे कदम निशान थे फ्लोर पे। फिर उसे ऐसा लगा जैसे उसने आउटलाइन देखी, वो जो शावर का जो कर्टन होता है वहां पे, जैसे बहुत लंबा कोई शख्स खड़ा हो, बट इट वॉज फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हर आई, तो वो बता नहीं सकते कि उसने देखा कि नहीं देखा। शी थॉट शी सॉ समथिंग, और वो जो कदमों के निशान थे वो बिल्कुल उसके बेटी बेटे कोडी से मिलते जुलते थे, मगर इसमें मिट्टी लगी हुई थी। ये मिट्टी कहां से आई? उसने भाग के चलने की कोशिश करी, कोडी के पास गई, कोडी उस वक्त सो रहा था, कोडी के जो जूते थे वो, मगर उनमें कहीं से कहीं तक मिट्टी नहीं लगी हुई थी। फिर उसने कोडी को जगाया, बोले कोडी कोडी ओके यू गेट रेडी ओके मैं आती हूं नीचे से नाश्ता तैयार करके। एंड शी वेंट डाउन, और कोडी जो था मीठा नाश्ता वाश्ता तैयार करके वो वापस उसके कमरे में गई। उसने देखा तो कोडी इस वक्त अपने एक खिलौने से खेल रहा था, ये खिलौना एक फायर ट्रक था, और बिल्कुल कोने में घुस के खेल रहा था। ऐसा नहीं कि कमरे के बीचों बीच खेल रहा हो, वो कमरे में बिल्कुल कोने में जाके खेल रहा था। उसके पास में एक चेयर रखी हुई थी, जिस चेयर की तरफ देख के वो बात कर रहा था। और उसकी मां ने जब ये देखा तो वो थोड़ा सा शॉक थी उसने, लेकिन फिर भी अपना ध्यान हटाने के लिए बोला उससे, कोडी से, कोडी इधर आओ बेटा। एनो बिना अपनी मां की तरफ देख बोला, मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना।

फिर जैन ने बोला, तुम बात किससे कर, बात किससे कर रहे हो तुम घोड़ी? एंड सेड मैन, खेलने लगा। और मां समझ नहीं पा रही थी कि इस पे क्या रिएक्शन, तो उसने बोला, कोड़ी अपने बॉस से बोल जा रहे हो के, कम हियर। पर ये सुनने के बाद कोड़ी मुड़ा और बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाने लगा, एक स्क्रीचिंग साउंड, एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग बुरी तरह से। उसकी आंखों में एक ब्लैक सा एक समझ, जैसे अगर आप लगाते हैं काजल वगैरह तो फैल जाता ना आंखों के बाहर, उसके अंदर से नजर आ रहा था। शी वाज रियली रियली स्केर्ड अपने ही 5 साल के बच्चे से। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ टू टैकल दिस, ये क्या है, और पूछ रही थी, कोड़ी कोड़ी व्हाट इज रॉन्ग विद यू, क्या हो गया, बता नहीं पा रहा। उसने बोला, गेट रेडी नाउ। उसके उसे डॉक्टर पास ले गए दिखाने के लिए। डॉक्टर ने कहा कि कोड़ी तुमने कुछ आंख में मारा है? कोड़ी ने बोला, नहीं। आर यू श्योर? यस। उन्हें आई ड्रॉप्स दिए एंड ही कुडंट फिगर आउट कि अचानक से क्या हो गया, हो सकता है इसने कोई इंक गिरा लिए, सम माइट हैव हैपेंड, मगर फिर एक कॉमन सी आई ड्रॉप उसे घर भेज दिया। फिर ये बच्चा जो पहले कभी सुकून से रहता, ही वॉज कोल्ड, ही वॉज एंग्री, ही वॉज वायलेंट, और वो किसी की कमांड, किसी के और सुनबाजी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अपने इस दोस्त से बात करता रहता था जिसे वो मैन कहता था। 2 दिन बाद दोपहर के वक्त माँ बाप जो थे वो कोड़ी के साथ टाइम बिताने के लिए बैठे थे, लिविंग रूम में थे और कोड़ी उनके सामने खेला था। और पूछा जेन ने बेटे से खुल के बात करे और उसकी किसी भी बात को नजरअंदाज ना करे, तो उसने सवाल पूछना शुरू किए। उसने बोला, अच्छा कोड़ी बेटा आपका दोस्त है ना, अब कितने साल का है तुम्हारा दोस्त? और ये 5 साल का बच्चा बोला, मुझे नहीं पता। अचानक से अगले सेंटेंस में बोला, 6 साल का। और फिर माँ ने बोला, कैसा दिखता है? उसने बोला, ब्राउन हेयर और ब्राउनिश आईज है मॉम, एंड ग्रे ग्रे स्किन है। दोनों के दोनों कपल एक दूसरे को, मतलब दोनों मैं भी एक दूसरे घूर रहे थे कि ये क्या कह रहा है। और फिर अगला सवाल पूछा, कहां से आया तुम्हारा दोस्त? और उसने बोला कि मॉम ये जो पार्क है ना पीछे, उसके पीछे एक लेक है, वहां के डीप डाउन अंदर से आया, केव से आया ये। दोनों के दोनों बहुत सहम थे, बहुत डरे हुए थे। यानी बताने के बाद कोड़ी रोने लगा, बुरी तरह से रोने लगा और एक अजीब सलूक अपनी मां को दे रहा था। एंड कुड नॉट फिगर आउट कि क्यों ऐसी बातें कर रहा है, क्यों ऐसा कह रहा है। ठीक तो है, सब कुछ नॉर्मल है, मगर ये चीज इसकी नॉर्मल कैसे नहीं है, सुक्राइड। और फिर उसने पूछा, इज ही डेड, तुम्हारा दोस्त जिंदा है? एंड उसने बोला, यस ही इज। एंड वो जैसे कांपने लगी, लिटरली शी कुड नॉट बिलीव कि क्या कह रहा है। वो अपने हस्बैंड को कन्विंस करना चाह रही थी कि मुझे नहीं पता क्या करना है, मगर मुझे लग रहा है मदद की जरूरत है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये एक्टिव इमेजिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जेन इस पर रिसर्च करनी शुरू करी और उसने जहां तक वो रिसर्च कर सकती थी वहां तक रिसर्च करी। वो लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स को छाना, बहुत सारी केसेस, बहुत सारी चीजें उसने छानी, विविडली सर्च किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वो 50 साल तक के सारे रिकॉर्ड्स छान चुकी थी, लेकिन शी कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, नो एविडेंस। आने वाले महीनों में से बहुत भारी हो रहा था। शी इवन ट्राइड कि उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाए जहां पर उसकी काउंसलिंग हो सके। उसने वो चीज करी जो शायद एक पढ़ा लिखा इंसान करेगा, बट कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उन्होंने भी कहा कि ये कोई एक्टिव इमेजिनेशन का हिस्सा है, काउंसलिंग ही इसका इलाज है, और ये लो दवाइयां जो बस उसे सुला पाती थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं।

आने वाले दिनों में कोडी ने अपने खिलौने से खेल भी छोड़ दिया, बस कमरे में रहता था और वो मैन जो उसका दोस्त है उससे बात करता रहता था पूरे पूरे दिन, फुल ब्लोन बातचीत, और उसके अंदर गुस्सा, एंगर, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। एक शाम को एक नेटिव अमेरिकन मेडिसिन मैन का कॉल गया और सोचा जब डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं तो औरों की मदद ली जाए। एक दिन वो आए एंड वो भी बड़े स्केप्टिकल थे और बाप तो मानने को तैयार भी नहीं था, दे वॉन्टेड सपोर्ट। और जेन ने सब कुछ एक्सप्लेन किया तो कंक्लूजन पे उन्होंने कहा कि वी डोंट नो फॉर श्योर क्या हो, बट ऑल आई कैन से इज प्रे। दोनों खुदा को मानने वाले लोग नहीं थे, लेकिन इस किस्से ने एटलीस्ट जेन को बदलना शुरू किया। उसे कहा गया कि तुम कोने कोने में अगरबत्ती जलाओ, ऑलिव ऑयल छिड़को, ऊपर वाले से दुआ मांगो। वो हर टोटका करने को तैयार थी, वक्त हर चीज ट्राई करने को तैयार थी। शी वॉज प्रेइंग इंस्टेंटली। अगली सुबह उसने पूरा का पूरा रिचुअल किया एंड वो डर रही थी, ट्राइंग टू रिमेन स्ट्रांग, और वो पहली मरतबा ऐसा लग रहा था जैसे खुद को पुकार रही, उसे नहीं पता वो किसको पुकार रही, बस पुकार रही थी। और वो कह रही थी मैं नहीं जानती कि आई एम वर्दी और नॉट, बट प्लीज हेल्प मी गॉड, प्लीज प्लीज हेल्प मी, मुझे पता नहीं मैं इस लायक भी हूं कि मैं मदद मांग सकूं, बट प्लीज हेल्प मी। एंड शी वॉज क्राइंग ऑल ओवर अगेन। एंड उसकी जो सारी प्रेयर्स थी वो 3 महीने के लिए काम भी कर चुकी थी, पूरी तरह नहीं लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव हो चुका था, थोड़ा खुश नजर आ रहा था एंड अपने इमेजिनरी दोस्त का नाम ले रहा था। पर कंफ्यूजन नहीं थी कि वो छुपा रहा है, जानबूझ के नहीं ले रहा है या ठीक है। और इसका आंसर 3 महीने के बाद, क्योंकि 3 महीने के बाद एक बहर को सब कुछ फिर से जैसे वापस लौट गया। वो बात करने लगा एंड वॉइस एकदम चुप हो गया। बात कर रहा था और जेन उस कमरे में पहुंची, उसने देखा उसके हाथ में कुछ है। इस वक्त जेन के सामने उसके बेटे कोडी की पीठ थी और कोडी दीवार की तरफ उस चेहरे की तरफ देख रहा था और बीच बीच हंसता चुप हो जाता, रोता चुप हो जाता, हंसता चुप हो जाता। शी वॉज रियली स्केयर्ड, वेरी वेरी स्केयर्ड। ये 5 साल का बच्चा जो जेन को डरा रहा, वो जिंदगी में ऐसा किसी चीज से नहीं डरी थी। फिर वो भाग के गई, उसने हिम्मत करी क्योंकि बेटा तो उसी का ही है। उसने देखा कि उसके हाथ में एक फोटो है, एक पोल, और सबसे बड़ा एविडेंस ये है जो कि किसी की समझ में नहीं आया, उसके हाथ में जो पोलवर था। ने पूछा ये तुम्हारे पास कहां से आई फोटो? कोडी आंसर में ये कहां से आए तुम? और वो जोर चिल्लाया, बहुत जोर से। जेन ने उस फोटो को देखा, उस फोटो में एक औरत थी जो 50s या 60s में रही होगी, कई साल पहले, और ये बूढ़ी औरत थी और समझता था। उसने पूछा कोडी ये कौन है फोटो में? और बोला मैन। वो जैसे ठंडी पड़ गई ये सुनने के बाद, और वो पूछी जा रही थी कहां से मिली फोटो, और वो रोए जा रही थी, पर उसे आंसर चाहिए था, तुम्हें ये फोटो किसने दी, कहां से आई? बट नो आंसर। वो चिल्लाए जा रहा था बुरी तरह से एंड शी नाउ वंडर्ड मैं करूं तो मैं क्या करूं, आई ट्राइड एवरीथिंग। एंड शी वॉज ट्राइंग नॉर्मल। अगले दिन वो काम से घर आई और उसने देखा कि क्या तबाही घर में, क्योंकि उसके बेटे कुडी ने नैनी के सामने सारा का सारा खाना फेंक दिया। इनफैक्ट नैनी के गाल पर उसने कैंची से वार भी किया पूरी तरह से, और इतने फोर्स से मारा कि 5 साल का बच्चा ये काम नहीं कर सकता। एंड शी वॉज शॉक्ड, अटरली शॉक्ड। और नैनी थी वो लिटरली ऐसा लग रहा था कि 5 साल के बच्चे भागना चाहती है, जैसे वो खुद कैद हो गई है इसके साथ। एंड शी गॉट अप एंड सेड कि मैं काम नहीं कर सकती, मैं नहीं काम सकती आपके घर में। और वो वहां से चली गई, और उसके जाने के बाद दे वर रियली कंफ्यूज्ड कि अब हम करें तो क्या करें। उसने सब भुला कि मेरे शांत रहने से कुछ काम बने, नॉर्मल डिनर टेबल पे सब लगा, ट्राइड टू टॉक, मगर

नो आंसर्स. ऐसा लग रहा था कि ये उसका है ही नहीं. Things were getting more sinister day by day. नैनी के जाने के बाद मुश्किल थी कि अब कोडी को कैसे संभाला जाए, क्योंकि दोनों को काम पे जाना है. एंड शी डिड, यू नो व्हाट, हो सकता है कि कोडी का एनवायरनमेंट बदले, मैं उसको अपने कजन के घर छोड़ के आती हूँ. और वही किया उसने. जेन जो थी वो अगले दिन जब काम पे निकली तो उन्होंने अपने कजन को कॉल करी और बोला कि आई एम ड्रॉपिंग माई किड. ओके, कजन के घर छोड़ के आ गई. जब वो काम पे थी, इन द मिडल ऑफ हर वर्क, कजन ने इंफॉर्मेशन पहुंचाई जो ऑफिस वालों ने फिर पहुंचाई जी को और कहा कि तुरंत अपने घर पहुंची, इमरजेंसी, मतलब अपने कजन के घर पहुंचे. एंड जब उसने कॉल करी अपने कजन को जाने से पहले, उसकी कजन बेताशा लग बिलक के रो रही थी और बस बोले जल्दी आओ, अभी अभी अभी, अभी और ले जाओ अपने इस बेटे को, अभी अभी आओ. एंड शी रैन, शी वेंट होम और कजन के घर गई. कजन ने पुलिस भी बुला रखी थी. एंड दिस वाज क्वाइट कंफ्यूज्ड कि वो समझ नहीं पा रही थी ये क्या हो रहा है. जब वो अंदर आई तो उसने देखा कि कोडी का हाथ पकड़ी हुई थी उसकी बहन, उसकी जो कजन थी, एंड उसकी जो बेटी थी उसके साथ खेल रही थी. उसने बताया कि ये दोनों बच्चे खेल रहे थे. फिर एक तीसरी आवाज आने लगी, काफी डीप आवाज, और उस आवाज की वजह से मेरी बेटी चिल्लाने लगी और मेरे पास आके कहने लगी कि कोई और भी है. एंड जब मैं गई तो उसकी कजन ने बताया कि खिलौनों को बीच पूरी तरह से खोल दिया गया था कैंची. उन्हें रोते हुए बोला कि जेन, आई एम रियली सॉरी बट मुझे बहुत डर लग रहा है, तो अपने बेटे को यहाँ से ले जाओ और प्लीज़ वापस मत आना. प्लीज़, आई एम रियली सॉरी. और सॉरी कह के उसने जेन को, उसकी अपनी कन को निकाल दिया. पुलिस ने बहुत सारे सवाल किए लेकिन जेन किसी का जवाब नहीं दे पा रही थी. पुलिस ने जो विटनेस किया उन्होंने भी, उनके लिए भी यकीन करना मुश्किल था कि ये आखिर कैसे हुआ. बिकॉज जब वो निकल रहा था घर से तो इट वॉज नॉर्मल. जेन के पास कोई रास्ता नहीं था. उसने अपने आंसुओं के साथ सब कुछ सामान उठाया और फिर अपने घर की तरफ गई, क्योंकि अभी इमरजेंसी थी, अभी उसे चाइल्ड केयर में कॉन्टेक्ट करना था. कुछ कहीं से फाइनली कोई तो जवाब मिला. फाइनली एक डे केयर ने जवाब दिया और उसने अपने बेटे को बिठा के बात करने का फैसला किया. उसने बोला, सुनो कोडी, तुम इस मैन को, अपने दोस्त को कहीं नहीं ले जाओगे. ओके, कहीं नहीं ले जाओगे. तुम्हें एक एक जगह भेजूंगी यहां और वहां पर ये नहीं जाना चाहिए. Do you understand? And surprisingly, Cody, okay. पूरे हफ्ते डे में गया, कुछ नहीं हुआ. हर रात वो जगह रहता था और दिन में नींद भी नहीं आती थी. एक शाम को डेल, जो जेन के हस्बैंड थे, उन्हें कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी. सर, उनका बेटा हंसे जा रहा है, रुक नहीं रहा है. एक बच्चा लगातार हंस रहा है, कैसे हंस रहा है. एंड ही वाज कंफ्यूज्ड और अभी तक वो कुछ नहीं को तैयार नहीं थे. मगर जब वो अपने बेटे के कमरे में गए, उन्होंने देखा जितने भी स्टफ्ड एनिमल्स थे, जितने भी टॉयज थे, सारे के सारे बीच में से उधेड़े हुए थे. अपने बच्चे पे ब्लेम नहीं कर सकते थे ना किसी और चीज पे, मगर बस प्यार से पूछा. और कोडी ने बोला, मैं करूंगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे. कोई मुझे बोला है, मैंने, मुझे किसी की नहीं सुननी है और कोई मुझे कुछ नहीं बताएगा. एंड वो चिल्लाता रहा. मीनवाइल दूसरी तरफ जो इन घर की बेटी थी पैमेला, 16 साल की, उसने एक खबर भरी कि कोडी ने कुछ देर पहले, इनके घर में एक बिल्ली थी और उसके ऊपर बहुत सारा भार रखे, उसे दबाने की कोशिश करी थी और उस बिल्ली को आजाद किया फिर उसकी बेटी ने. एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स हैपनिंग, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, मगर जब कोडी घर पे है तो सब कुछ हो रहा था. जब जेन भाग के गई कमरे में, शी सॉ इट, तो बहुत ही वियर्ड से एक स्माइल दे रहा था कुड़ी. किसी बात की उसे कोई शर्म, कोई गिल्ट, कोई डर नहीं था. एंड इट वॉज गेटिंग आउट ऑफ हैंड. ये दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि इस सिचुएशन में किसके पास जाएं. फिर एक दिन कुछ बहुत बहुत वियर्ड हुआ और इसकी चीजें हाथ से निकल गई. इट वॉज द मंथ ऑफ दिसंबर In the late 1999, कमरे में जैसे लगा कोई भाग के आ रहा है. एंड

इस वक्त सोने की कोशिश कर रही थी, और इतने में जब उठती तो उन्होंने देखा कि कमरे उनका जो गेट था एकदम खुला, बहुत बुरी तरह से ऐसे बेड़ का खोला किसी ने, और अंदर उनका बेटा खड़ा हुआ था कोडी, एंड शी वाज रिली स्केयर्ड क्योंकि अभी तक वो उससे डरती भी आ रही थी। एंड जब वो अंदर आया तो बहुत अजीब तरीके से बात कर रहा था, उसके हाथ पीछे की तरफ थे, एंड उसने बोला मॉम आई नीड टू टॉक टू यू। और जेन जो थी वो अपने बेटे के करीब नहीं गई, उन्होंने दूर से पूछा कोडी क्या हुआ है, व्हाट इज रॉन्ग। सेड मॉम मेरा बेड जो है वो शेक हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। एंड अपने अंदर की ममता को वो कैसे छुपाती, शी स्टूड अप एंड उन्होंने अपने बेटे को गले से लगाया, और उसके हाथ में पीछे एक नाइफ था, किचन नाइफ, जिससे उसने अटैक किया, एक कट भी लगा उसको, जेन को। एंड शी शाउटेड, देन उनका बेटा भागा घर में, जैसे तैसे पकड़ के उन्होंने एक तरफ बिठाया, और फिर वो खुद उसके कमरे में गई। एंड शी सॉ नथिंग, मगर एक अजीब हैवीनेस थी, बहुत अजीब सी। एंड शी कुड नॉट अंडरस्टैंड कि करूं तो मैं भी क्या करूं। कॉर्नर में इसके कमरे में चादर पूरी फटी हुई थी, एक तरफ कैंची थी, एक तरफ चाकू रखा हुआ था, सारा खाना फैला हुआ था। एंड शी डज रिमेम्बर सम पार्ट ऑफ इट, उसे जैसे लगा कि उसने कुछ देख से डीप ब्लड रेड आंखें देखी, दांत देखे जैसे किसी के जो बिल्कुल सड़ रहे हो, एक मफल्ड हंसी उसके कमरे में। एंड शी बिगेन बैगिंग लिटरली, वो बस खुदा से, ऐसा लग रहा था कि अब तो भीख ही मांग रही है कि बस अब नहीं हो पाएगा। एंड वो घर चेंज नहीं करते थे क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि कोई फायदा नहीं है, ये इससे अटैच हो चुका है, या कोई एक साइकोलॉजिकल इशू है जो डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे हैं। एंड उसने फिर से सारे रिचुअल किए, फिर से बात करने की कोशिश करी, और फिर से कई दुआएं मांगी। उसे कहा गया था कि तुम दुआ मांगो, तुम दुआओं पर जरा यकीन रखना, ऐसा नहीं कि तुम एक डर से दुआ मांगो, तुम्हें यकीन होना चाहिए कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी। एंड अल्टीमेटली विद इन अ मंथ चीजें थोड़ी सी कम होने लगी, धीरे धीरे धीरे धीरे चीजें कम होने लगी, पर इसका बहुत गहरा असर डील पे पड़ा जो इन चीजों के लिए तैयार नहीं थे। एंड उनको काफी हार्ट प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, बाकी बच्चे बहुत डरे हुए थे, उनकी बड़ी बेटी जो थी 16 साल की वो तो भागने को तैयार थी घर से, एक दफा भाग भी गई थी, एंड थिंग्स वर गेटिंग आउट ऑफ हैंड। लेकिन इस बार 1.5-2 महीने बाद चीजें थोड़ी सी ठंडी पड़ने लगी, एंड अपने आप ही ऐसा लगा कि अब बस दरवाजे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, मगर अभी उनका बेटा जो है वो किसी से बात नहीं कर रहा। एंड कोडी को एक बहुत लंबे वक्त के लिए टाइफॉइड हुआ, एंड जब उसके बाद उसने रिकवर किया तो ऐसा लगा जैसे उनका बेटा उन्हें वापस मिल गया हो। दो चीजें हैं जो इस कहानी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो फोटोग्राफ जो उसके पास था, वो जो पोलरॉइड था, उसे बार बार और हर रोज उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हें फोटो कहाँ से मिला, बट उसने कुछ नहीं बताया कि फोटो कहाँ से आया, ना उसकी नैनी को पता था ये फोटो कहाँ से आया, पर वो फोटो बहुत पुराना फोटो था। उसका ये भी माना है, जो जेन मानना है, कि जहाँ पे वो खेल नहीं जाता था वो एक सेमेटरी थी, वो एक कब्रिस्तान का एक एरिया था जहाँ पे उनका बेटा हर रोज खेलता था, शाम तक खेलता था, पर क्योंकि वहाँ के टूमस्टोन्स हटा दिए गए थे तो किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि यहाँ पे सेमेटरी रही है। 2021 में जाके जेन का काल हुआ, उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, इनफैक्ट जो जॉर्ज था उनका एक बेटा, उसकी शादी भी हो चुकी है। एंड देयर इज दिस होल डॉक्यूमेंट्री मेड ऑन दिस इंसिडेंट, डीमन चाइल्ड करके, डीमन चाइल्ड उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है, एंड उसमें खुद कोडी का इंटरव्यू है। शुरुआत में फैमिली ने अपने के सारे नाम छुपाए थे, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में सारे के सारे नाम रिवील किए हैं। एंड दे डिडंट मेक एनी मनी ऑफ इट, उन्होंने कहा नहीं हमें इससे पैसे नहीं कमाने, बट दिस इज द स्टोरी। इसके बहुत सारे आप कहेंगे कि एंडिंग क्या है, एंड है, लेट मी गिव एन एंडिंग। एंडिंग सिर्फ इतनी है कि अभी भी उसी घर में है, अभी भी कुछ चीज़ें महसूस होती हैं, लेकिन अभी ऐसा है कि सच से सामना होने के बाद आदत सी पड़ गई है, काइंड ऑफ।

मगर से इट्स अ वेरी एविडेंशियल स्टोरी जिसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं, और ऐसा भी नहीं इस फैमिली ने सिर्फ सहारा लिया बाकी बाबाओं का, दे लिटरली ट्राइड डॉक्टर्स एंड एवरीथिंग, लेकिन किसी के पास कोई जॉब नहीं मिला. एंड फ्यू थिंग्स आर बियॉन्ड क्रेजी, जिसकी आंख में, आंख के अंदर स्मज होना वियर्ड, दैट फोटोग्राफ वाज वियर्ड. और कई मतलब का जो जो गले का आपका जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनमें एक अजीब सी सूजन होती थी और की आवाज़ बड़ी अजीब सी निकलती थी. एंड दे ट्राइड ऑल द मेडिकेशंस, ऑल द डॉक्टर्स, बट कुडंट आइडेंटिफाई कैसा क्यों होता है. ऐसा लगता था कि वो दो दो आवाजें एक साथ निकाल रहा है. फाइनली ही इज फाइन एज इफ नाउ, ही इज लिविंग इन द सेम वेस्टर्न कैंट एरिया. एंड डीमन चाइल्ड इज द नेम ऑफ द स्टोरी. ये स्टोरी अब आपके हवाले. 666-2107 इज द नंबर, 666-2107.

0: FM 107 पर बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qm.qa
1: FM 107 time check 6:14 और सिद्दीकी साहब थैंक्स फॉर लिक्विड हेड ऑफ हर टू मदर हर क्या पेशी ट्राइड लेवल बेस्ट जी मेरा भाई तो इसलिए सुनाई बट गुड स्टोरी लिखा आपने उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है कबीर कैन यू प्लीज शेयर द डिमन चल सॉरी आई कुडंट हियर द फर्स्ट आई विश इन शेयर कुछ देर में फिलहाल एक कॉल आ रही है उठ लेते हैं अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम क्या हाल चाल है भाई के
1: अल्हम्दुलिल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह कैसे
2: भाई पानी वानी पिए कि नहीं पिए
1: पी लिया भाई
2: सही था भाई काफी लंबी स्टोरी हो गई यार बहुत मजा आया सुन के
1: थैंक यू भाई बहुत बहुत शुक्रिया जी
2: अच्छा वो मेरा मेरा डाउट है वो जो जैसे उसकी माँ उससे सवाल पूछती है क्वेश्चन करती है कि कौन है कहाँ से आया तो वो उसको बताता है कि मैं लेक में से नीचे से आया हूँ सही है तो उसमें उन्होंने ढूंढने की कोशिश नहीं की वो बचा है कि नहीं
1: भाई
2: है,
1: वो जो जिस वो... लेक के पीछे की बात कर रहा हूँ वहाँ पे बहुत जैसे मैंने शुरुआत में बताया ना वहाँ पे बहुत लंबी लंबी केव्स हैं केंटकी में अभी भी इनफैक्ट एक मूवी बनी है डिसेंट आप डिसेंट मूवी देखेंगे समझ जाएंगे उन केव्स के अंदर बहुत सारे कैवर्न्स हैं और बहुत अनक गहरा कोई नॉर्मल चाहे भी तो वहाँ पे एक्सप्लोरेशन नहीं निकल सकता मतलब वो ऐसी नॉर्मल केव नहीं है वहाँ पे
2: हाँ क्योंकि हो सकता है मुझे मतलब मुझे लगा कि लास्ट में वही एंडिंग हो सकता है उसकी बॉडी वहाँ हो किसी ने किडनैप करके या कुछ क्योंकि वो एक मतलब औरत के साथ उसकी बॉडी
1: तो पता नहीं भाई आई डोंट नो बट ये जो मेरे पास था वही मैंने बता दिया आपको दैट इज हाउ इट इज
2: काफी लेकिन और ये अभी तक है यार
1: हाँ ये अभी तक है मतलब दे आर स्टिल लिविंग देयर और तो दुनिया से कांटेक्ट उनका खत्म हो गया था मगर लेटेस्ट ये कि 2021 क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री भी है पूरी की पूरी और जाती डॉक्यूमेंट वाली
2: बंदे के आसपास अभी लोग रहते कैसे यार वो तो कभी भी भूत बन जाता है कभी इंसान बन जाता है
1: अभी बंदा ठीक है भाई अभी बंदा ठीक है उसके उसका हाल भी आप डॉक्यूमेंट्री में देख सकते हैं बहुत मेरे ख्याल में 50 मिनट की डॉक्यूमेंट्री अच्छी खासी है पूरी पूरी जो मैंने कहानी सुनाई है वो

0: अब आपको वहां भी मिल जाएगी, एज इट इज मिलेगी।
1: डॉक्यूमेंट्री भी तुम्हें जरूर देना चाहूंगा।
0: जरूर जरूर जरूर मेरे भाई,
1: बहुत अच्छी लगी मुझे तो यार, वीकेंड का मजा आ गया भाई साहब यार। हॉरर लाते हो पता नहीं कहाँ से लाते हो, खुद राइटर हो क्या हो?
0: नहीं भैया
1: आप हो क्या?
0: खुद राइटर नहीं भाई, ढूंढने में बहुत मुश्किल आती ये वाली कहानी।
1: नहीं आप दुनिया को क्या बताना चाहते हो?
0: कुछ नहीं भाई, मैं कुछ नहीं बताना चाहता, बस काम है मेरा एंड आई लव इट। बस
1: यार अप्रिशिएट सैल्यूट है भाई को यार, इतना मतलब हद मत पूछने यार। और हॉरर तो
0: अच्छा कुछ मैसेज आए मेरे पास, क्या कह रहे हैं यूसुफ भाई, कह रहे हैं कि कभी जबरदस्त स्टोरी हॉरर वन ऑफ माय फेवरेट जॉनर, कहानी सुनते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे इस पे हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवी फिल्म बनी है। नॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है इस घर में तो घर खाली कर नहीं गए। हाँ उन्होंने लगा कि अटैचमेंट बच्चे से तो देर इज नो पॉइंट, क्योंकि कभी खर्चा उन्हें उस पर भी करना, दे वर नॉट रियली वेल्दी। बहरहाल मजा आया, वीकेंड बना दिया आपने फिर दोबारा से यही की स्टोरी जबरदस्त है, आपका नरेशन सोने पर सुहागा। थैंक यू सो मच यूसुफ भाई, दैट इज सच अप्रिसिएशन मैसेज मेरे भाई। तब समय लिखती है रियली स्केयरिंग मूवी कबीर भाई, मफल्ड वॉइस मिस्टीरियस स्माइल, जितना भी आपने डिटेल दी ऐसा लग रहा था जैसे मूवी देख रहे हैं। मुझे नहीं देखी मिट्री लिखते हैं, वैसे नेटवर्क इशू था लेकिन मैं जितना भी सुना बहुत गूज़बम्स, इज ही लिविंग इन द सेम हाउस। वैसे है फिल्म, मैं फिल्म नहीं है इस पर, एक डॉक्यूमेंट्री में नाम लिख के देता हूँ आपको, डीमन चाइल्ड, रुको आई एम जस्ट टाइपिंग। हाँ तो ये है ना, यू कैन वॉच इट अगर आप चाहें तो, पूरा का पूरा हुआ है इसमें। और एक मैसेज है चाचू के हाल है, बढ़िया भाई भतीजे सब बढ़िया। और एक मैसेज अरबाज भाई कहते हैं माशा सर कहानी बहुत अच्छी थी, लेकिन एक बात ने खास तौर पर मेरी तवज्जो हासिल की कि वो ये था कि कोड़ी की वालदा बहुत जहीन थी, जिस अंदाज से वो अपने बेटे से सवाल करी उससे साफ होता है कि वो हालत अच्छी तरह समझ रही थी और हिकमत के साथ बात कर रही थी। हाँ ये अप्रिशिएट करने की बात है भाई, अरबाज भाई बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है माशाल्लाह, उनके किरदार वाकई बहुत मुतासर हुआ हूँ। थैंक यू सो मच एंड आई ऑल्सो सेम, एक मैसेज है डॉक्यूमेंट्री विल वॉच सम, थैंक यू सो मच, जरूर देखिएगा भाई यू विल लव इट। और एक मैसेज है मंथ लास्ट स्टोरी मंथ, अच्छा हाँ जी मंथ स्टोरी, हाय कबीर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गुड इवनिंग कृष्ण भाई क्या हाल है भाई के। और एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, थैंक यू सो मच और ज़बरदस्त स्टोरी कबीर भाई, थैंक यू। ये भी मैसेज किया है फलक भाई ने, फलक भाई जज़ाकअल्लाह। और एक मैसेज आया माशाल्लाह, ये भूसात सा मैसेज है क्या, मुझे तो बच्चन अमिताभ बच्चन की वो भूत वाली फिल्म याद आई जिसमें एक बच्ची के साथ दोस्त होते थे, उतनी फ्रेंडली स्टोरी नहीं थी मोहम्मद भाई ये बच्चन साहब याद आ गया आपको, एंडिंग मिस हो गई बहन, मैं भेजूंगा डोंट वरी, मैं आपको बिना कहीं भेजूंगा, फिक्र है आप बहन कहा है आपको ऐसे थोड़ी। वैसे आज की स्टोरी का फुल नेम रुको मैं लिख के देता हूँ, डीमन चाइल्ड, ये अवेलेबल है, मूवी नहीं है मगर डॉक्यूमेंट्रीज की अवेलेबल है। और तौफीक साहब वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ये कुछ मैसेजेस आए हैं, अच्छा आपको भी लगता है कहानी में कुछ बोल देना चाहिए तो प्लीज़ बोलिएगा। एंड होता है देखो कई कई बार जेन्युइनली हाइपर एक्टिव इमेजिनेशन बच्चों का होता है, होता है, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। तो अगर आप देखते हैं, इनफैक्ट मैंने इसके बाद जो एक साइकोलॉजी के केसेस देखे थे जो इस केस से जुड़े हुए हैं, तो कई मरतबा बच्चे एक्चुअली में उनका इमेजिनेशन जागता है और लोग बात करते हैं, और कई मरतबा केसेस आर टोटली डिफरेंट जैसे कि ये वाला था। तो दोनों ही चीजें आपके सामने, ओपन माइंड से सुनिएगा, ओपन माइंड से देखिएगा, इज अप टू यू। ठीक है जी, मैं तो जी वजह वाला गाना मूड चेंज करने वाला डांडा भाई अभी ऑन किया, ऑन किया, अच्छा कोई गाल नहीं।

0: तो नमक भी जख्मों की दवा होती है। याद रखिए, अच्छा दोस्त आपका हर वक्त काम आता है जब आपको उसकी जरूरत होती है, मगर सच्चा दोस्त का हाथ उस वक्त मजबूती से पकड़ लेता है जब आप कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो। असल में दोस्ती का रिश्ता एक परिंदे की मानिंद है, सख्ती से पकड़ेंगे तो मर जाएगा, नरमी से पकड़ेंगे तो उड़ जाएगा, और अगर मोहब्बत से पकड़ेंगे तो सारी जिंदगी आपके साथ रहेगा।
1: पैगाम ऑन FM 107।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी मीडिया कॉर्पोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं इवनिंग 974 विद दो हला कबीर, ओनली ऑन FM 107 से दे।

काफी बढ़िया लाइनअप है भाई, काफी डायनेमिक लाइनअप है ऑफ इंडोर वर्कशॉप, फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटीज, यूथ इनिशिएटिव्स, कल्चरल सेलिब्रेशंस और साथ में बहुत सारी चीजें। पूरे क्रिएटिव जॉनर को अच्छे से एक्सप्लोर किया इन्होंने और सामने लग दिया। सो थ्रू आउट द मंथ बहुत कुछ चीजें होने वाली हैं। और प्रोग्राम के जो हाइलाइट्स हैं उसमें हैं तस्वीर अवार्ड्स, जो कि एक पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन होगा, बेसिकली वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है तो उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। और मंथ लॉन्ग समर स्पोर्ट एंड फैक्ट्री चली जाएगी 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम में। इसके साथ साथ वाइड रेंज एक्टिविटीज होने वाली हैं जो हर एज ग्रुप के लिए, सिर्फ ऐसे नहीं लिए मगर हर एज ग्रुप के लिए। इसके अलावा म्यूजियम ऑफ कतर होस्ट करने जा रहा है म्यूजियम मेमोरी गेम, और ये मेमोरी गेम होगा अगस्त की 10 तारीख को और 17 तारीख को। और ये जो गेम है ये है और इंग्लिश में दोनों में। एंड इसके अलावा कई सारे क्यूरेटेड सिलेक्शन म्यूजियम्स हैं के हिस्से हैं, ऑब्जेक्ट हैं जो यहाँ पर शोकेस किए जाएंगे। इसके अलावा इंटरेक्टिव गेम्स हैं, चैलेंजेस हैं और पार्टिसिपेंट्स इस मेमोरी गेम में अपनी अकल का इस्तेमाल करना है, ऑब्जर्वेशन, टीम वर्क, सब कुछ यहाँ पे लगा के सॉल्व करना है। और ये कुछ इसके जो क्या कहते हैं उसको मेमोरी वाले गेम्स हैं वो प्रोग्राम ये 10 साल से 16 साल के बच्चों के लिए, और काफ़ी फन एक्टिविटीज़ हैं, काफ़ी एंगेजमेंट रही। तो इस बार अगर आप किसी म्यूजियम जाएंगे तो कनेक्टिविटी आपको मिलेंगी, स्पेशली नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर और 3-2-1 ओलंपिक म्यूजियम। सो एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, देखते हैं, आई हर्ड लॉट अबाउट योर स्टोरीज दैट दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू सेंड मी द स्टोरी। आपने किसी और से मेरी कहानी के बारे में बताया मेरे से? जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, थैंक यू सो मच, और आई एम लेट बाय स्कूल बहन, आप कतई लेट आज, टीचर की टीचर को हम क्लास से बाहर रखेंगे। मैम प्लीज हाथ खड़े करके बाहर खड़े होइए प्लीज। क्या मौका मिला है हम स्टूडेंट्स को, टीचर को इज्जत दे दी। वाह वाह, हैंड्स अप प्लीज। समर ब्रेक है तो क्या होगा, कोई बात हो क्लास में लेट आ रही है। अच्छा एक और मैं चीज बता दूं आपको, जो वॉल्यूम है रियल स्टेट ट्रेडिंग की और सेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स की एट द डिपार्टमेंट ऑफ रियल स्टेट रजिस्ट्रेशन एट द मिनिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड रहा है जुलाई की 12 से 23 तारीख तक का। ये पहुंच पाया भाई, कितना नंबर है 1,100,000 बाप रे 74 करोड़ मिल जा रहा है, नंबर जिंदगी में नहीं दिखना इसलिए। तो टोटल सेल्स की जो जो आंकड़ा है वो बहुत आगे तक पहुंच चुका है। इसके अलावा दिन जो मैंने आपसे कहा था होने वाली है नहीं, बस कह दिया था पार्टली क्लाउडी, क्लाउडी किधर भी कोई बाल नहीं है, नाम और निशान नहीं, मोस्टली क्लियर वेदर है। 37 डिग्रीज फॉर नाउ, 33 मिनिमम जाएगा और मैक्सिमम 47 तक जा सकता है। आज जो है ह्यूमिडिटी लेवल कल के मुकाबले पूरा 11 कम है, तो आप पता नहीं आराम को क्या कहूँगा तो तब भी है 44% कल थी 56% टाइम पे, और का रुख भी कल से थोड़ा अलग ही जा रहा है, हफ्तार खेल के मुकाबले इक्वल ही है। कल भी 9 के हिसाब से थी, आज भी उतनी नहीं है, तो ऐसा कुछ खास फर्क नहीं है। वो दो दिन का बस वो शोशा था कि वो हो सकती है बारिश, कुछ नहीं हुई। और सुमुल बहन लिख रही है कि मैं जैन जी टीचर हूँ, कुछ नहीं होता, आप ठीक जैसे आप सजा देती है बच्चों को वैसी आपको मिलेगी, या मना थोड़ी कर सकती हैं। मिलेश भाई ने टेस्ट लगा दिया, भाई साहब विमो भाई क्या हाल है भाई के, भाई तो आप बड़े लोग हैं भाई, बड़े लोग हैं, विमलेश सर बोलना पड़े, विमलेश सर कब चाय पिला दो विमलेश भाई, इन आपसे दोस्ती का क्या फ़ायदा है, 8 साल से आप मुझे जानते हैं, क्या फ़ायदा है इस दोस्ती का, मैं सर आई एम टीचर। यूसुफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ मैसेज मेरे पास हैं, बाकी जिन्होंने कहानी सुनी उन्होंने अच्छे से रिस्पॉन्स दे दिया, कहानी इंशाल्लाह शो के बाद आपको मिल जाएगी, तो उसके लिए जरा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। बाकी जी 666-221-07 नंबर हो लिया, आप भी मैसेज करते रहा करो। मैं जरा कहाँ गया भाई, गाना भी लगा हुआ था मेरे सामने सट गया तेरे को। हाँ पुरानी यादों को थोड़ा ताज़ा कर लेते हैं क्योंकि इसका दूसरा वर्ड जल्दी आने वाला है, तो मैंने सोचा कि किधर गया। हाँ इसका एक नया वर्जन अभी आने वाला है 2.0, तो इससे पहले आए एक बार तो चलाना बनता है, मैसेज करो क्या 6:36।

ओए होए यार, इस गाने का क्या करें। भाई साहब मजे आए नहीं आए ये बताओ। 666-22-107 नंबर है। ऐसे ही आपको जो है गाने सुनाते रहेंगे। ऐसे मतलब आज वीकेंड है, आज थोड़ा हल्का हाथ रखा जाएगा। बाकी 666-22-107 नंबर है, आ जाओ।

0: ऐसे जोक मार रही है, दर्द होता है, दुख होता है यार। सुना आपने जोक, समझा? गाना तेरा तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, बहन कह रही क्यों यकीन नहीं करते फिर गाना गाते हैं, तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं। सवाल में करो भाई, अब दर्द भी नहीं हो पाएगा हमारा। चल हम चलते हैं, हमारा होलिया इस गोले पे। कमाल कर दिया भाई, कमाल बिल्कुल। और आज के दिन जो है कुछ दिन सेलिब्रेट की, सेलिब्रेट तो क्या किए जाते, क्या बोल रहा हूँ, तो इतना खतरनाक जोक समूल मैंने सुना दिया। मैं कुछ बताऊँ आज के इंटरनेशनली मार्क दिन कौन कौन से हैं। तो आज है इंटर्न डे, अगर जिंदगी में कभी इंटर्नशिप करी है, ओह सॉरी मार्क माई वर्ड्स, इंटर्नशिप नहीं, आपने कभी कतई मजदूर करी है, दूसरा नाम है इंटर्नशिप का, तो आप इस दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। मुझे तो वही याद आता है, आज है चिली हॉट डॉग डे। हॉट डॉग खाते हैं आप, बढ़िया चीज है, अच्छी दुकान भी मिली चाहिए। आज है विसिल ब्लोअर और साथ पेपर बैक बुक डे। हैं पेपर बैक बुक डे, पता को नहीं भाई हमें क्या होता है ये। इसके बाद शेयर अ हग डे, फिर है वर्ल्ड डे अगेंस्ट, क्या समझ में नहीं आया भाई, कुछ चाइनीज वर्ड डे, और है अर्थ ओवरशूट डे, और फिर है फादर इन लॉ डे। आज सास ससुर का नहीं, ससुर का दिन है आज, सास का नहीं है, आज ससुर जी का दिन है, समझ रहे हैं आप, ससुर जी का दिन, ये भी दिन आता था। ये मुझे नहीं पता भाई, आज फादर इन लॉ उनका दिन है। आज इंटरनेशनल टाइगर डे भी है, थैंक यू बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। आज है इंटरनेशनल टाइगर डे, क्या बात कर रहे हो, मेरे पास तो कोई शेर बना हुआ नहीं आ रहा इधर, मैं तो पिक्चर में देखा, यहाँ तो हमारे यहाँ कोई शेर बना हुआ नहीं आया। बहन पक्का शोर है आप, आज ये यार हमें नहीं पता शेर का दिन है, हाँ वो हमारे दिन है, हमें पता नहीं था। क्यों, मैंने भी एक पीजे मार दिया, आपने मारा तो क्या हो गया, संभाला नहीं जा रहा। हुसैन भाई कह रहे हैं भाई मेरे को बोलो स्कूल वालों को मेल करें ओपन करने के लिए। एक बजे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, रिक्वेस्ट करता हूँ शुभ का एक गाना लगाओ प्लीज, शुभ था गाना, ओके जी प्ले करता हूँ। एक में से रैप सुन के मजा आ गया माशाल्लाह, कमाल के आर्टिस्ट कबीर भाई, बाय बस, थैंक यू भाई, शर्मा जाऊंगा सलमान भाई ऐसे वीकेंड में तारीफ मेरे सर। और सर बेबी का, अरे बेबी नहीं है भैया। लोगों ने भी धनिया बो दिया है, तो 107 नंबर है। और आपने क्या करना है, आपने करना है जी मैसेज, मैं चलाऊँ बढ़िया वाला गाना जी, एक सेकंड रुको मैं ढूंढ रहा हूँ, चलो यही चला देते हैं, फील फुल फुल फील आएगी, फुल फील, गाड़ी में हो रेडी हो वीकेंड के लिए, वाइब खत्म नहीं होने देंगे।
1: शुभ स्टिल रोलिंग

क्या सब कह रहे सरदार गाना चलाएगा भाई शो खत्म होने पे आ गया रिक्वेस्ट करिए सुम्बुल बहन के नहीं सॉन्ग प्ले कर दें भाई बात कह रहे अवारापन अवारापन चलाया मैंने अभी भी शो खत्म हो गया आप लोगों को रिक्वेस्ट आ जाइए बताइए वैसे रिक्वेस्ट करने का जो आर है वो चार से पाँच में आपकी आदत नहीं बिगाड़ना चाहता तो पता चला मुझे लपेट ले इस बारे में एक मैसेज आदिर अब्दुल आदिर का कह रहे हैं आप तो रॉकिंग कर रहे हैं वीकेंड का धमाल एंट्री थैंक यू सो मच एंट्री नहीं जी एग्जिट मार रहे हैं हम आदिर भाई आप बहुत लेट आए हैं सुम्बुल बहन का दिल तोड़ते हुए मैंने बता दिया कि गाना तो मैं प्ले नहीं कर पाऊंगा और बाकी जो सीन है अभी रिक्वेस्ट करने का वो ओवर हो चुका है आई एम रियली रियली रियली रियली सॉरी बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर FM107 कतर इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं सो प्लीज गेट इन टच विद अस बिकॉज हर जगह हमारे बंदे फैले हुए हैं और अगर आपको मैं अभी बोल रहा हूँ मुझे पता है कि लोग अभी तो आएंगे नहीं बिल्कुल बिल्कुल जब मामला नोक पे आ जाएगा तब बोलेंगे अरे दिखाओ पेज कहाँ पर है दिखाओ दिखाओ दिखाओ अभी भी कह रहा हूँ सोशल मीडिया पे जुड़ जाओ मुझसे फायदे का सौदा है बहुत ज़्यादा अंडररेटेड कहानियाँ वहाँ आने वाली हैं भाई साहब आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ आपके हाँ यही कह रहा हूँ मान आपकी मर्जी है देख लो दोहा वाला कबीर ठीक है कबीर की स्पेलिंग रहेगी KABIR ठीक है इसी नाम से टिकटॉक और इंस्टा पे फटाफट आ जाओ मैं आपकी बात कर रहा हूँ फायदा होगा आपको तो मैं चाहता हूँ कि आप जुड़े रहें उससे फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पर बहुत जल्दी आपको सरप्राइज मिलेगा हफ्ते में तकरीबन समझ लो 3 बार कहानी आएगी हर दिन की उम्मीद मत करना हर दिन शूट करना एडिट करना बहुत मुश्किल है भाई 3 दिन आपको ज़रूर मिलेगी देखो आज भाई पूछ रहे हैं तारीख अगस्त मेरे बर्थडे का महीना है इसलिए मैंने सोच रखा अगस्त में लॉन्च कर दूंगा तो आज 30 हो रही है ना 5 के आसपास से लॉन्च करते हैं 3 तारीख को लॉन्च नहीं 5 ठीक है तो रेडी हो जाइए बट यू हैव टू बी देयर वहाँ पे नहीं हुए तो फिर सॉरी मिस कर देंगे यार क्योंकि बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जो मैं वीडियो के तौर पर बनाना चाहता हूँ आपको कुछ चीज़ उसमें दिखा के बताना चाहता हूँ और मैं खुद बैठ सामने कई टाइम बाद ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है और आप साथ ही बोलना चाहता हूँ पर तो सर आप पोस्ट नहीं कर अरे सीधा कहानियाँ पोस्ट करने का ना मेरी जान कहानी पोस्ट नहीं व्हाट अ हिंदलिश लैंग्वेज कबीर भाई मेरा बर्थडे 31 जून को था ना था लगाइए आगे था लगाइए एक मैसेज है जी भाई यही है बिल्कुल सही भेजे इमरान खान साहब बहुत बढ़िया अर्थडे पार्टी कहाँ होगी सुम्बुल बहन अचानक से नेटवर्क ऐसा खराब हो गया व्हाट्सएप के बारे में कौन सी पार्टी कोई पार्टी वर्ड नहीं है 30 क्रॉस कर गया मैं 30 के बाद आपको उम्मीद है पार्टी देगा भाई हम लड़कों के लिए 25 की बात 25 भी बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ 25 के बाद कोई बर्थडे विशेज कोई पार्टी नहीं रखती तो वो तो आएगा 30 अगस्त आके चला जाएगा बहन कौन सी पार्टी और क्या कह रहे हैं सुम्बुल बहन हाँ नहीं तो बच्चा है जी हाँ यही कह के लोगों ने पार्टी ले ली हम दिल से बच्चा है जी पूरी सेलिब्रेट अगस्त में ही पैदे हुए हाँ जी बिल्कुल पूरा अगस्त सेलिब्रेट करेंगे भाई अरे भाई मैं बचपन में ही आपको इंस्टा पे फॉलो कर रखा है हुसैन भाई बहुत सारा प्यार सुम्बुल बहन कह रही कंजूस हैं आप बहन मुझे तुम ट्रिगर कर पाओगी मैं ट्रिगर नहीं होने वाला इन बातों से कि तुम दो कंजूस हो मैं और जोश में आके पार्टी दे दूँ आपको ऐसा नहीं होगा ट्रिगर करना बहुत मुश्किल है और कह रही है केक मैं ले आऊंगी यार अब लालच आया हमारी तरफ बताइए सोच विचार करने दीजिए हमारी जो घर की पार्लियामेंट है उसमें ये बिल हम पास करते हैं और आपको संडे को बताते हैं अब आप केक तक पहुंचे हैं तो एक मैसेज है और दोस्तों इस तरह से सेल्स पिच करते हैं अब सामने वाला खुद केक लेने मजबूर हो गया ऐसे चढ़ा दो सामने वाले को नहीं भाई चला जरूर अब आप केक तक बात ले आई है तो फिर मामले को आगे बढ़ाना पड़ेगा बट अभी आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया बहुत मस्ती मजाक कर लिया बहुत मजा आया

सोशल मीडिया हैंडल 1070 ये हमारा ऑफिशियल पेज है, और अगर आप जाएंगे जैसे मैं कहा इस बर्थडे के महीने में, आई वांट टू लॉन्च द चैनल ताकि आपको कहानी मिलती रहे। सो फॉर नाउ दिस इज दोहा कबीर साइनिंग ऑफ, मिलते हैं जी संडे को इंशाल्लाह शाम 5 बजे। बहुत सहानी सेट है कहानी संडे के लिए, आपको मजा आ जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, याद करते रहिएगा। दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। यही कह चाहूँगा आपसे कि भाई साहब आप जो है ना, आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मा सलामा।

0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम बैक टू इको विद सफा ऑन FM 107, जहां हम बात करते हैं उन एवरीडे लाइफस्टाइल चॉइसेस की जो एनवायरनमेंट डायरेक्ट असर डालती हैं। भाई आज का टॉपिक है रिड्यूसिंग मीट कंजम्पशन, यानी के अपनी डाइट में मीट की क्वांटिटी को कम करना। ये सिर्फ डाइट पर नहीं है साथियों, बल्कि पावरफुल एनवायरमेंटल स्टेप भी है। साथियों बात यह है कि हम जो खाते हैं उसका इम्पैक्ट सिर्फ हेल्थ पर नहीं होता, बल्कि पानी के यूजेज पर, लैंड यूज और ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर भी होता है। इको स्विच हमें याद दिलाता है कि कभी कभी प्लेट का छोटा सा डिसीजन प्लैनेट का बड़ा फ्यूचर डिसाइड करता है। चलिए एक रिलेटेबल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सोचिए वीकेंड का बारबेक्यू का प्लान है, ठीक है? आपने क्या किया कि भाई नॉर्मली ग्रिल चिकन, कबाब्स, बर्गर्स और पता नहीं क्या कुछ सब एंजॉय करते हैं, है कि नहीं? मैं भी, आप भी, हम हाँ भी करते हैं हम एंजॉय। लेकिन उस एक मील के पीछे जो रिसोर्सेज यूजेज होती हैं वो काफी लार्ज होती है। अगर अब हम कंपेयर करें कि भाई अगर एक हाउस होल्ड हर दिन गोश्त की, मीट की हैवी मील्स की जगह दो या तीन वेजिटेरियन मील्स इंक्लूड करें, तो मंथली बेसिस पर रिसोर्स कंजम्पशन ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाता है। इको स्विच पर्सपेक्टिव से देखें तो भाई लेस मीट का मतलब होता है लेस एनवायरमेंटल प्रेशर। अच्छा, मीट कंजम्पशन का ग्लोबल फुटप्रिंट भी मैं आपको बता देती हूँ, फैक्ट्स बता देती हूँ, तो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। देखिए लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री ग्लोबल ग्रीन गैस इमिशन का लगभग 14.5% रिस्पॉन्सिबल है, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से भी ज्यादा है। अच्छा आपको ये बात पता है कि एक बीफ प्रोड्यूस करने के लिए लगभग 15,000 लीटर पानी यूज होता है। चन और लैम्प कंपेरेटिवली कम फुटप्रिंट रखते हैं, लेकिन फिर भी प्लांट बेस्ड फूड्स के मुकाबले में ज्यादा रिसोर्सेज यूज होते हैं। अच्छा और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ग्लोबल पॉपुलेशन सिर्फ 1 day per week अगर मीट अवॉइड करे ना, तो बिलियंस ऑफ लीटर वाटर और मासिव कार्बन इमिशन सेव हो सकती है एनुअली। अच्छा यहाँ पर अगर देखा जाए तो इको स्विच कॉन्सेप्ट इको स्विच का बिल्कुल सिंपल सा है, यानी कि डाइट को बैलेंस करना। जब हम मीट कंजम्पशन रिड्यूस करते हैं ना साथियों, हम इनडायरेक्टली वाटर यूज, लैंड डिग्रेडेशन और मीथेन इमिशंस रिड्यूस करते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर एक शख्स वीकली 2 मीट फ्री डेज अडॉप्ट करे ना, तो वो अपना एनुअल कार्बन फुटप्रिंट नोटिसेबल लेवल पर रिड्यूस कर सकता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हर वेजिटेरियन मील एक एनवायरमेंटल रीसेट बटन प्रेस करता है। देखिए यहाँ पर अगर सोचा जाए, एक रिलेटेबल एग्जांपल आपको दूं, तो सोचिए सुपरमार्केट में आपका ग्रोसरी कार्ट है,

0: ठीक है, आपने वो जो होती है हमारी ट्रॉली होती है, एक साइड पर मीट प्रोडक्ट्स हैं, दूसरी साइड पर देख मीट सेक्शन ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है और पैकिंग और रिफ्रिजरेशन डिमांड भी ज्यादा होती है। अगर आप कार्ट का 30% भी प्लांट बेस्ड आइटम से रिप्लेस करें ना, तो ना सिर्फ हेल्थ इम्प्रूव होती है बल्कि एनवायरमेंटल बर्डन भी कम हो जाता है। इको स्विच कहता है भाई कि हर कार्ट एक एनवायरमेंटल चॉइस है आपकी। अच्छा, यहाँ पर चलते चलते मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी फॉलो करने को दे देती हूँ, जो मुझे लगता है हर कोई बहुत बहुत इजीली फॉलो कर सकता है। पहली ये कि मीटलेस मंडे या वीकली प्लांट बेस्ड डेज अडॉप्ट करें। दूसरा ये कि वेजिटेबल्स, लैंटेन्स और बीन्स का पोर्शन इंक्रीज करें। तीसरा ये कि मीट को डिश के बजाय साइड इंग्रेडिएंट के तौर पर यूज करें ना। चौथा ये कि प्रोसेस्ड मीट की जगह फ्रेश प्लांट बेस्ड प्रोटीन चूज करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यू वेजिटेरियन रेसिपीज ट्राई करें और अपनी डाइट को इंटरेस्टिंग रखें। साथियों देखिए, इको स्विच का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि मीट कंजम्पशन को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बैलेंस क्रिएट करना इम्पोर्टेंट है ना। देखिए, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जो लोग प्लांट रिच डाइट्स अडॉप्ट करते हैं ना, उनका ओवरऑल फूड वेस्ट भी कम होता है और ग्रोसरी प्लानिंग ज्यादा एफिशिएंट होती है। आपसे ये कहना चाहूंगी कि इको स्विच का सिंपल सा मैसेज ये है कि हर मील सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता बल्कि इम्पैक्ट के लिए भी होता है। हर वेजिन चॉइस एक छोटा सा स्टेप है क्लीनर एयर, लेस वाटर यूजेज और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ। तो भाई, अगली बार जब आप अपना मील चूज करें ना, तो एक छोटा इको स्विच जरूर ऑन कर लीजिएगा। Can I make this meal a little bit more plant-based today? Can I? I think so, yes. तो भाई, इसी के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107, जहाँ हर बाइट सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक फ्यूचर का डिसीजन होता है। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: दोस्तों, अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है। मैत्राश 2 ऐप के जरिए आप रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के। इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमाल एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मैत्राश ऐप रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी बेच रही है, मैत्राश 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त और पेपर वर्क को कम से कम करना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइजिंग के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर, ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: क्रिकेट हो,
5: and he's hooked that away. That's four runs.
2: फुटबॉल हो,
6: Goal!
2: या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंत में।
7: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
2: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंडअप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM।
7: यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।
8: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, this is Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से दीजिए।
2: वेलकम टू आवर सेगमेंट कॉल्ड वन स्टेप टू 2030। मैं हूँ आपकी होस्ट नासिया। आज हम इस सेगमेंट में एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारी जिंदगी के लिए हवा के बाद दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो बेहद जरूरी है, पानी, वाटर। हम हर रोज सोते हैं, पानी पीते हैं, नहाने के लिए पानी चाहिए, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए और डेली लाइफ के हर काम में पानी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर एक दिन साफ पानी कम हो जाए, मतलब साफ पीता पानी कम हो, क्या होगा? इसी सवाल का जवाब आज हम इस फिलर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। पूरी दुनिया जो है वो आज वाटर सस्टेनेबिलिटी पर फोकस कर रही है। इसका मतलब है कि पानी को आज इस तरह इस्तेमाल करना कि आने वाली जनरेशन भी, उनके लिए भी हम छोड़ सकें या उनके लिए पानी मौजूद रहे। वैसे मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताने की जरूरत है कि पानी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इंसान खाने के बगैर कई दिन रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स हैं, घर हैं, सब पानी पर डिपेंड करते हैं। इस वक्त दुनिया की एक आबादी, बड़ी आबादी जो है वो लगातार बढ़ रही है और पानी पर बोझ बढ़ रहा है। जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा पानी की डिमांड होगी। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फ्यूचर में पानी सोने से भी ज्यादा कीमती सोर्स बन जाएगा। दुनिया को चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे बड़ी और अहम वजह है क्लाइमेट चेंज। कुछ कंट्रीज में सूखा बढ़ रहा है, कुछ जगहों पर बारिश का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं बहुत कम हो रही है और इसी वजह से फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर प्रेशर पड़ रहा है। एक और बड़ी वजह है पॉपुलेशन। हर साल दुनिया की आबादी जो है वो तेजी से कई गुना बढ़ जाती है और हर शख्स को साफ पीने का पानी चाहिए, खाने के लिए पानी चाहिए, सैनिटेशन के लिए पानी चाहिए, नहीं तो हर वक्त ही चाहिए। और एक और चीज जो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली ऐड करनी चाहिए वो है पानी का जाया किया जाना, यानी वाटर वेस्ट। ये भी एक बड़ी वजह है। बहुत सी जगह पर लोग पानी की कदर नहीं करते। आपने देखा होगा कि टैप्स जो है वो खुले छोड़ देते हैं, पाइप्स जो है वो लीक कर रहे होते हैं, अननेसेसरी लोग जो है वो कई तरह पानी यूं ही जाया कर देते हैं। लेकिन हमें कुछ ना कुछ सोचना है। अच्छी बात ये है कि आज की दुनिया सिर्फ प्रॉब्लम पे बात नहीं कर रही, प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन साइंटिस्ट हो, इंजीनियर्स हो,

गवर्नमेंट्स हैं वो इनिशिएटिव्स और सॉल्यूशंस भी डेवलप कर रहे हैं, जैसे डीसेलिनेशन टेक्नोलॉजी. गल्फ कंट्रीज की तरह कई कंट्री हैं वो समंदर के पानी को ट्रीट करके ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर रही हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं डीसेलिनेशन. पहले ये प्रोसेस बड़ा महंगा हुआ करता था, लेकिन नई टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशंस के चलते आज थोड़ा सा इफिशियंट हो गया है. 2030 यानी 2030 तक डीसेलिनेशन और एडवांस्ड हो सकता है और भी ज्यादा लोगों को क्लीन वाटर प्रोवाइड कर सकता है. अब समझना है कि स्मार्ट वाटर सिस्टम, आजकल स्मार्ट सिटीज हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, और ये सेंसर कहीं ना कहीं डिटेक्ट करते हैं कि पानी कहाँ लीक हो रहा है. इस तरह से पानी जाया होने से पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जाती है. इमेजिन कीजिए कि एक शहर जहाँ हर पाइपलाइन इंटेलिजेंट सिस्टम से कनेक्ट हो, जहाँ लीक का पता सेकेंड्स में चल जाए, ये है स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट का फ्यूचर. और एक और चीज वो है वाटर रिसाइकलिंग. क्या आप जानते हैं कि कुछ कंट्रीज यूज वाटर को रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल कर रही हैं? जी हाँ, ट्रीटेड वाटर वेस्ट को गार्डन्स, एग्रीकल्चर, यू नो, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है. इससे फ्रेश रिसोर्सेज पर जो प्रेशर है, जो बिल्ड हो रहा है, बढ़ रहा है, वो थोड़ा कम हो जाता है. फ्यूचर में वाटर साइकिलिंग यानी वाटर रिसाइकलिंग हर मॉडर्न सिटी का एक इम्पॉर्टेंट नाम. स्मार्ट एग्रीकल्चर की भी तो बात करनी चाहिए. दुनिया का सबसे ज्यादा पानी जो है वो एग्रीकल्चर में यूज होता है. जी हाँ, ट्रेडिशनल फार्मिंग में बहुत पानी जाया होता है, लेकिन अब फार्मर्स जो है वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का यूज कर रहे हैं. इस मेथड में पानी सीधा प्लांट्स के रूट्स तक पहुंचता है, कम पानी इस्तेमाल होता है और ज्यादा क्रॉप्स हासिल होती हैं. और ये भी फ्यूचर फूड सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है. वहीं पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम कैसे भूल सकते हैं, एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया. और इस प्रोसेस में बारिश का पानी कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है और सेव किया जाता है. बाद में यही पानी गार्डनिंग, क्लीन और कई प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है. आजकल तो आपने दिखा है कि स्कूल्स हो, ऑफिसेज हो या फिर रेजिडेंशियल कम्युनिटीज भी इस सॉल्यूशन को अडॉप्ट कर रही हैं. तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर नॉलेज ही ने काफी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें दिया है. AI रोबोट्स और कंप्यूटर्स तक महदूद नहीं है, अब AI पानी बचाने में भी मदद कर रहे हैं. या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिडिक्ट कर सकती है कितना पानी फ्यूचर में चाहिए होगा, कहाँ पर सूखे का खतरा है, कहाँ लीकेज हो है, किस एरिया में ज्यादा कंजर्वेशन की जरूरत है. यानी टेक्नोलॉजी फ्यूचर वाटर सिक्योरिटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गई है. वाटर सस्टेनेबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपकी और हमारी भी है. यंग पीपल भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल कर सकते हैं. आज स्टूडेंट्स फ्यूचर के लीडर्स हैं. अगर वो आज से वाटर कंजर्वेशन की हैबिट सीख लें, बल्कि दुनिया ज्यादा सिक्योर होगी. छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं, जैसे ब्रश करते वक्त टैप बंद रखें, लीकिंग टैप्स की फौरन रिपोर्ट कीजिए, पानी सिर्फ जरूरत के मुताबिक यूज कीजिए, गार्डन्स में इफिशियंट वाटरिंग मेथड का इस्तेमाल कीजिए, दूसरों को भी पानी की अहमियत समझाएं. 2030 तक दुनिया का गोल सिर्फ ज्यादा पानी हासिल करना नहीं होगा, असल गोल ये होगा कि हर ड्रॉप को स्मार्ट वे में यूज किया जाए. फ्यूचर सिटीज स्मार्ट वाटर यूज कर सकती हैं, बिल्डिंग्स अपने रेन वाटर कलेक्ट कर सकती हैं, होम वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कम पानी में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती है. ये सब मिलकर एक सस्टेनेबल फ्यूचर बना

0: रिसोर्सेज के साथ हमें अपनी लाइफ को गुजारना होगा. हम तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे भाई. तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है. हर ड्रॉप कीमती है, हर ड्रॉप की अपनी कहानी है. अगर आज हम इसे सेव करते हैं तो कल की जनरेशन भी क्लीन, सेफ और सस्टेनेबल वाटर का फायदा उठा सकती है. पहले इसी बात के साथ अब वक्त आज़द का. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी. One step to turning.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उनकी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है, जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी

FM7 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हम कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se busy.
1: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain 60 seconds ka FM 107 par. Main hoon aapki RJ Mavish Khan. Aur aaj hum baat karenge inkisari yani hindi ke bare mein. Inkisari ek aisi sift hai jo insaan ko andar se khoobsurat banati hai. जब इंसान अपने आप को बड़ा समझने के बजाय नरमी और सादगी इख्तियार करे तो लोगों के दिलों में जगह बना लेता है तकब्बुर या एरोगेंस इंसान को दूसरों से दूर करती है जबकि इंकिसारी लोगों को करीब लाती है इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अपनी कामयाबी पर फख्र ना करें बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करें एक हम्बल शख्स हर इंसान के साथ बराबरी इज्जत का रवैया रखता है ये उसकी

0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतर स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कतर के उभरते हुए बास्केटबॉल स्टार मुस्तफा निदाओ। जहां दोस्तों मुस्तफा निदाओ को बास्केटबॉल सितारों में शुमार किए जाते हैं अली क्लब के लिए। वो सेंटर पोजीशन पर खेलते हैं और अपनी यंग एज के बावजूद हिम्मत, एनर्जी और मेहनत की वजह से जल्द ही मकबूल हुए हैं। कोर्ट पर रिबाउंड्स हासिल करना, पेंट एरिया में दिफा करना और टीम को फिजिकल प्रेजेंस देना उनकी अहम खसूसियत हैं। निदाओ ने कतर की नेशनल टीम के लिए भी मुकाबलों में शिरकत की है और फीबा एशिया सतह पर अपनी सलाहियतों का

0: मुजाहरा किया है उनकी फिल्म डिसिप्लिन और मुसलसल परफॉर्मेंस को एनहेंस करने की जो आदत है वो कोशिश को काफ़ी मुतासिर करती है। दोस्तों अली क्लब में वो मुस्तकबिल के बुनियादी खिलाड़ियों में गिने जाते हैं और हर सीजन के साथ उनका तजुर्बा बता जा रहा है। बास्केटबॉल एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि अगर वो इसी रफ्तार से तरक्की करते रहे तो कतर के लिए बहुत अहम एसेट साबित हो सकते हैं। कम उम्र के बावजूद उनका कॉन्फिडेंस और टवर्क की सोच उन्हें दूसरे प्लेयर से बनाती है और फैंस उनसे मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियों की उम्मीद रखते हैं। उम्मीद आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साहब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: FM 107 पर हर गाना हिट, दूसरा गाना सुपर हिट।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM107 कतर। दिल से देसी,
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार था है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स एक ही जगह।

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 पी टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रब करें हमारी कतर बिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488880 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
0: दोस्तों, टनल से गुजरने के दौरान महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि ट्रैफिक कानून की सख्ती से पाबंदी की जाए. अंदर दाखिल होने से पहले चाहे दिन का वक्त ही क्यों ना हो, अपनी हेडलाइट्स जरूर ऑन और तमाम ट्रैफिक साइंस पर खास तवज्जो दें. एंट्रेंस के करीब पहुंचते ही अपनी रफ्तार कम करें और मुकर्रा हद की पाबंदी करें. सुरंग या टनल के अंदर अपनी लेन में रहें, राइट साइड पर ओवरटेक करने से गुरेज करें और अपने से आगे चलने वाली गाड़ी से हमेशा मुनासिब फासला बरकरार रखें. वजारत दाखिला का कहना है कि टनल्स या सुरंगों के अंदर ट्रैफिक कानून की पाबंदी न सिर्फ आपकी बल्कि सड़क पर मौजूद हर शख्स की हिफाजत को यकीनी बनाती है. FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.
2: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए.
3: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद. और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं. इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो.
4: द रिक्वेस्ट शो
3: हर शाम 4 से 5
4: फजील के साथ
3: संडे से थर्सडे ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
4: दिल से देसी
5: मैक्सिमम म्यूजिक मैक्सिमम फन
6: ऑन एफएम 107 दिल से देसी.

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो एक्सरसाइज है वो हर एज में कितनी अहम है, क्यों ज़रूरी है, और आज हम बात करेंगे और कि बढ़ती उम्र के साथ वर्जिश की जो अहमियत है वो क्या है। बहुत से अफराद समझते हैं कि जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती है तो उसके साथ एक्सरसाइज की ज़रूरत भी कम होती चली जाती है, लेकिन हकीकत इसकी बिल्कुल बक्स है। उनके अफराद के लिए मुनासिब एक्सरसाइज सेहतमंद और फ़ाल ज़िंदगी गुजारने में अहम किरदार अदा करती है। उम्र ज़्यादा होने के साथ साथ मसल्स की ताकत और हड्डियों की मजबूती कम होने लगती है। बाकायदा एक्सरसाइज इन तब्दीलियों की रफ्तार को कम कर सकती है और जिस्मानी तवाज़ुन बेहतर बना सकती है। बुजुर्ग अफराद के लिए हल्की फुल्की वॉक, स्ट्रेचिंग, स्विमिंग और ये कि बैलेंस को बेहतर बनाने वाली एक्सरसाइजेज मुफीद समझी जाती हैं। ये एक्टिविटीज गिरने के खतरे को कम करती हैं और रोज़मर्रा का जो काम कर रहे होते हैं उन्हें बेहतर अंदाज में करने की सलाहियत को बरकरार रखने में मदद देती हैं। एक्सरसाइज दिल की सेहत बताती है, ब्लड प्रेशर को काबू में रखने में मदद देती है और इसी तरह जो डायबिटीज की जो मैनेजमेंट है उसमें भी मुआवन साबित होती है एक्सरसाइज करना। इसके अलावा जो हमारी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी याददाश्त, ज़हनी जो चुस्तगी है और समाजी रवाबत को भी बेहतर बनाती है। जो बुजुर्ग अफराद बाकायदगी से एक्सरसाइज करते हैं इनमें खुद मुख्तारी और ज़िंदगी के माया बेहतरी देखी जाती है। अलबत्ता एक्सरसाइज का इंतखाब उम्र, सेहत और जिस्मानी हालत के मुताबिक होना चाहिए। किसी भी नई एक्सरसाइज के आगाज से पहले अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से आप जरूर कंसल्ट कीजिए, तो बहुत ही मुफीद हो सकता है। लिसनर्स,

0: एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं है बल्कि जिंदगी के हर मरहले में जरूरी है। चाहे आप बच्ची हों, नौजवान हों, बालिग हों, बुजुर्ग हों, जो जिसमें एक्टिविटी है यानी एक्सरसाइज है वो सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी की कुंजी है।
1: FM 107 पर हर गाना हिट, हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: can be a media person, you can be any professional that you want to be. Of course, you all need to aspire. You all need some seed capital. When I say seed capital, it's the initial capital that's required. In order to get there, my simple advice is always have this financial discipline with you as well as to your children. Educate them, bring that awareness to them. Let them always kind of understand what's coming in and what's going out, inflow and outflow. So time value of money for any transaction is the cost of finance. Make sure that you always pay attention to that and never end up out of pocket always. Make sure that you start saving from day one if you can. And then savings are not just about deposits in the bank, but you have multiple ways of creating assets or creating, securities, mutual funds, bonds, you name it, very, very carefully. And that is the financial discipline. If you're disciplined enough, I think you're very close to, you will definitely succeed in your life always.
1: Beautiful advice.
2: Thank you very much.
1: Lovely message. Thank you so much for taking out this time and sharing some amazing insights. Thank you once again.
0: Thank you very much, Nas. Have a good evening. And then it was a wonderful experience that I had for the first time in this media center. All the best for you.
1: Thank you so much, sir. Thank you. दोस्तों इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का. इंशाल्लाह नए एपिसोड में नए गेस्ट नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए 107 दिल से देसी.
3: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है ही रेडियो. FM 107 दिल से देसी, दिल से देसी.
4: Absolute cinema.
5: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं. बट डोंट वरी, मैं हूं ना. भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा.
6: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदायक कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है. इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे.
5: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ, एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 से सिर्फ FM 107 पर. से देसी.
7: दोस्तों, सड़कों पर मुकर्रर की गई या डेजिग्नेटेड लेन्स में चलना, खास तौर पर चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रैफिक की रवानी में मदद फराहम करता है और सड़क हादसात को कम करता है. जब हर शख्स अपनी डेजिग्नेटेड लेन मिलने का एहतमाम करता है तो ना सिर्फ सफर ज्यादा आसान हो जाता है बल्कि सबको अपने रास्ते में चलने की सहूलत मिलती है. इससे ना सिर्फ वक्त की बचत होती है बल्कि हादसे और रुकावटों का खतरा भी कम हो जाता है. जब हर शख्स लेन का ख्याल रखता है तो ना सिर्फ सफर में बेहतरी आती है बल्कि सबके लिए सेफ एनवायरनमेंट भी बन जाता है. चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल पर लेन में चलना रोड रेज को भी कम करता है और सबको अपनी मंजिल तक जल्दी और अहम वक्त में पहुंचने में मदद मिलती है. अगर हम सब अपनी अपनी लेन में चलें, तो हम ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरे लोगों की भी जान को महफूज रख सकते हैं. रोड सेफ्टी को अपनाकर हम अपने सफर को बेहतर और सिक्योर बना सकते हैं. ट्रैफिक रूल्स का एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी है जो सबके अमन और सेफ्टी के लिए जरूरी है. FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है.
8: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें mang@qmc.qa.
9: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दे.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ DM & CM, बड़े नियम खिलाड़ी एंड CM, द पार्टी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामने कराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस हलके में आपका खैर मकदम है। तलहा अशरफुज़्ज़मान की जानिब से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। आज हम इंसानी शख्सियत के एक नहायत अहम पहलू पर गुफ्तगू करेंगे और इस गुफ्तगू का सिलसिला तकरीबन पिछले हलके से जारी है। मौजू है तकदीर ज़ात, यानी इंसान का अपने मकाम, अपनी कदर और अपनी अखलाकी हैसियत को पहचानना। समझने का, जब इंसान अपने आप को सही मानों में पहचान लेता है, जब उसे मालूम होता है कि उसकी इज्जत किसी दूसरे की तारीफ के मोहताज नहीं, हर तलख जुमला उसे तोड़ नहीं देता, हर तनकीद उसे हिला नहीं देती और हर बदतमीजी उसे बदतमीजी पर मजबूर नहीं करती। मजबूत शख्सियत का मतलब ये नहीं कि इंसान हर बात का सख्त जवाब दे, बल्कि मजबूत शख्सियत तो ये है कि इंसान को मालूम हो किसी बात का जवाब देना है और किसी बात को नज़रअंदाज करना है और किस सतह की गुफ्तगू से खुद को बुलंद रखना है। बाज़ लोगों का मसला यह है कि उनकी अपनी कदर का एहसास दूसरों के हाथ में होता है। कोई तारीफ करे बहुत खुश, कोई तनकीद करे तो पूरा दिन ख़राब, कोई मामूली जुमला कह दे तो रात भर सोचते रहते हैं, उसने मेरे बारे में ये कैसे कह दिया, उसकी जुरत कैसे हुई, मैंने उसी वक्त जवाब क्यों न दिया। लेकिन जिस इंसान के अंदर तकदीर ज़ात हो, वो जानता है कि हर शख्स का जुमला मेरे मकाम का फ़ैसला नहीं करता। किसी ने एक दाना शख्स को बुरा भला कहा, उसने उस शख्स की तरफ देखा और खामोशी से आग बढ़ गया। लोगों ने पूछा, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? उसने एक सख्त मिसाल देते हुए कहा कि अगर कोई बेअकल जानवर तुम्हें काट ले तो क्या तुम भी पलट कर उसे काटोगे? यानी दूसरों की पस्ती तुम्हें अपनी सतह से नीचे उतरने पर मजबूर न करे। सामने कराम, ये भी हकीकत है कि बाज़ लोग बदज़मानी में भी बहुत तजुर्बा रखते हैं। वसत लहजे, घटिया अल्फाज और तोहीन आमेज़ अंदाज के आदि होते हैं। यकीनन आप ऐसे नहीं।

ये सोच रहे होते हैं कि मैं क्यों झुकूं, लेकिन सुलह के लिए पहल करना ये जिल्लत नहीं। आप किसी इंसान के सामने नहीं, बल्कि इस वक्त आप अपने रब के हुक्म के सामने झुकते हैं। कभी पहले सलाम करना अपने नफ्स की शिकस्त और अपने ईमान की कामयाबी होता है। अब ये तसव्वुर दुरुस्त नहीं कि नेक और अच्छे लोगों के दरमियान कभी इख्तलाफ नहीं होता। इंसान इंसान है, मिजाज मुख्तलिफ होते हैं, तवक्कात मुख्तलिफ है, बात समझने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, थकन, दबाव, गलत फहमी और जज्बात भी अपना असर डाल। बड़े लोगों की अजमत ये नहीं कि उनमें कभी इख्तलाफ पैदा नहीं होता, अजमत ये है कि इख्तलाफ के बाद वो किस तरह वापस आते हैं। क्या वो ताल्लुक तोड़ देते हैं? क्या एक दूसरे की राजदाराना बातें लोगों में फैलाते हैं? क्या पुरानी गलतियों की फहरिस्त खोल देते हैं? एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से उठे और जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी आपके पीछे पीछे चल पड़ी। वापसी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे एक साया देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज हुए तो वो भी तेज हुआ। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचे तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पहले ही बिस्तर पर मौजूद थी, मगर सांस तेज रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या वो साया तुम थीं? उन्होंने अर्ज किया, जी हाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें अंदेशा हुआ था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करेंगे? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि जबील अलैहि सलाम तशरीफ़ लाए थे और आपको अहले बकी के लिए दुआ करने का हुक्म दिया था। समय करम, इस वाक़े में गौर करने की बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामले को चीखो पुकार, तहकीर या इंतकाम में तब्दील नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, सूरत हाल वाज़ेह की और एक जज्बाती लम्हे को तालीम और तरबियत का मौका बना दिया। कुछ लोग हर बात पर मुश्ताइल होकर उसे गैरत का नाम देते हैं, हालांकि हकीकी गैरत तो इंसान को हक पर कायम रखती है, जुल्म नहीं करवाती। हकीकी वक़ार इंसान को अपने उसूलों का पाबंद बनाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो लोग ज़माना जाहिलियत में बेहतरीन थे वो इस्लाम में भी बेहतरीन हैं जब दीन की समझ हासिल कर लें। इस हदीस का मफहूम ये है कि जिस इंसान के अंदर पहले से मुरूवत, हिल्म, सखावत, बहादुरी, वफादारी और आला किरदार की सलाहियत मौजूद हो, फिर उसे सही ईमान और दीन की समझ मिल जाए तो उसकी शख्सियत मजीद निखर जाती है। समीने किराम, इस्लाम अच्छी फितरी सिफात को ख़त्म नहीं करता, उन्हें पाक और दुरुस्त सिमत अदा करता है। बहादुरी थी, अब हक की हिफाजत में इस्तेमाल होती है। सखावत थी, अब अल्लाह की रजा के लिए खर्च होती है। कुव्वत थी, अब कमज़ोरों पर जुल्म के बजाय उनकी हिफाजत करती है। तो खुलासा यही है कि बुलंद नफ्स रखने वाला इंसान हर बात पर जवाब नहीं देता, हर इख्तिलाफ में अपनी फतह नहीं चाहता। अब सवाल यह कि हम अमली ज़िंदगी में इसको कैसे नाफिज करें? जब कोई शख्स तलख जुमला कहे तो फौरन जवाब न दें, चंद लम्हे तवक्कुफ करें, अपने आप से पूछें कि क्या ये वाकई जवाब के मुस्तहिक है? क्या जवाब से मसला हल होगा या बढ़ेगा? क्या मैं हक वाज़ेह कर रहा हूँ या सिर्फ अपनी अना को तस्कीन दे रहा हूँ? अगर इख्तिलाफ अपने अजीज से हो तो मकसद रिश्ता बचाना हो, बहस जीतना नहीं। और अगर कोई शख्स मुसलसल बदतमीज़ी करता हो तो खामोशी के साथ मुनासिब हदबंदी कायम करें। दरगुजर का मतलब ये भी नहीं कि जुल्म को हमेशा बर्दाश्त किया जाए, बाज़ हालात में साफ, महज़ब और मजबूत अंदाज में कहना ज़रूरी है। यानी इस तरह कहा जाए कि मैं इस लहजे में गुफ्तगू कबूल नहीं करता, हम एहतराम से बात करेंगे तो गुफ्तगू जारी रहेगी। ये भी एक मजबूत शख्सियत है। समझ करम, अपनी कदर पहचानने का मतलब खुद को दूसरों से बरतर समझना नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है मैं अल्लाह का मखलूक हूँ, मेरी इज्जत मेरे अखलाक, ईमान और उसूलों में है, मैं किसी की बदतमीज़ी के सबब अपना किरदार ख़राब नहीं करूँगा, मैं किसी की तारीफ से आसमान पर नहीं जाऊँगा और किसी की तनकीद से ज़मीन में नहीं धंसूँगा, मैं अपनी गलती तस्लीम कर सकता हूँ क्योंकि गलती मानने से मेरी शख्सियत ख़त्म नहीं होती, मैं सलाम में पहल कर सकता हूँ क्योंकि अल्लाह के नज़दीक बेहतर होना लोगों के सामने बड़ा दिखाई देने से ज़्यादा अहम है। समझने कराम, इंसान की बुनियादी कदर इसलिए है कि वह इंसान है, अल्लाह का मखलूक है और अल्लाह का बंदा है। उसके अंदर खैर की सलाहियत मौजूद है, उसे अकल, शऊर, इरादा और जिम्मेदारी दी गई है। आपकी असल कदर इस बात से नहीं कि आपके पास कितनी दौलत है, बल्कि यह है कि आपके दिल में कितना ईमान, किरदार, सच्चाई और इंसानियत है। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और हैबत के बायस वो कांपने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तसल्ली देते हुए फरमाया, अपने आप को पुरसकून करो, मैं कोई बादशाह नहीं हूँ,

0: क्या होगा, कीमत कितनी होगी, वक्त कितना लगेगा, मेयार क्या होगा, ये सब इब्तदा ही में वाज़ेह होना चाहिए। बाद में एतमाद, मोहब्बत और दोस्ती पैदा हो जाए तो ये इजाफी खैर है, मगर कारोबार को इब्तदाई से गैर वाज़ेह दोस्ती पर कायम करना तनाज़ो का सबब बनता है। इसलिए कहा जा सकता है कि दोस्ती कारोबार में बदल जाए तो कभी दोस्ती खराब हो जाती है, लेकिन वाज़ेह कारोबारी ताल्लुक वक्त के साथ अच्छी दोस्ती में बदल सकता है। अब जरा इन तीन बुनियादी को दोबारा जोड़कर देखिए। अल्लाह के साथ ताल्लुक उबूदियत पर कायम हो, इंसान मखलूक की गुलामी से आज़ाद होता है। अपनी ज़ात के साथ ताल्लुक तज़किया पर कायम हो तो इंसान अपने नियों को देकर खुद को बेहतर बनाता है, और लोगों के साथ ताल्लुक अदल व फजल पर कायम हो तो न जुल्म करता है न हर हक को जंग बना देता है। यही मुतवाज़न शख्सियत है जो अल्लाह के सामने झुकती है, अपने नफ्स के सामने बेदार रहती है और लोगों के साथ इंसाफ और एहसान से पेश आती है। अल्लाह ताला हमें अपनी कामिल बंदगी, नफ्स का सच्चा तज़किया, लोगों के साथ अदल व एहसान, इखलास नीयत और तवाज़ुन समाजी शख्सियत अतमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। प्रोग्राम तफ़हीम अल-क़ुरान के आज के इस हलके से साउंड डिज़ाइनर शकीब अहमद और मुझे तहा अशरफ उज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मा सलामा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM7 Qatar। दिल से देसी। हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत फिर दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: दोस्तों, अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है। मैतराश 2 ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के। इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मैतराश ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है, मैतराश 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती है, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक

हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन M107 दिल से देसी
1: अलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कतर के उभरते हुए बास्केटबॉल स्टार मुस्तफा निदाव। जी हां दोस्तों, मुस्तफा निदाव को बास्केटबॉल सितारों में शुमार किए जाते हैं और वो अल अहली क्लब के लिए खेलते हैं। वो सेंटर पोजीशन पर खेल रहे हैं और अपनी यंग एज के बावजूद हिम्मत, एनर्जी और मेहनत की वजह से जल्द ही मकबूल हुए हैं। कोर्ट पर रिबाउंड्स हासिल करना, पेंट एरिया में दिफा करना और टीम को फिजिकल प्रेजेंस देना उनकी अहम खसूसियत हैं। निदाव ने कतर की नेशनल टीम के लिए भी मुकाबलों में शिरकत की है और फीबा एशिया सतह पर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है। उनकी ट्रेनिंग डिसिप्लिन और मुसलसल परफॉर्मेंस को एनहेंस

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुनते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: बस बहुत हो गया रूटीन. Need an escape. एक mind blowing adventure चाहिए. तो lock हो जाओ FM 7 के साथ. क्योंकि आ गया है escape room. Escape room. The ultimate mind workout. As pure fun. यहाँ traffic नहीं, tricky wordplay है. Boring meetings नहीं, brain teasing riddles है. जहाँ contestants navigate करेंगे audio challenges around the clock. ये है आपका weekly escape into a world of puzzles and excitement.
3: Unlock your mind. Tune into Radio का unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday दोपहर 1:30 बजे से. Only on FM 107. दिल से देसी. दिल से देसी.
4: दोस्तों लिफ्ट में फंस

0: जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिविंग एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें। जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: हेल्थ चेक।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, इस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो एक्सरसाइज है वो हर एज में कितनी अहम है, क्यों ज़रूरी है, और आज हम बात करेंगे और कि बढ़ती उम्र के साथ वर्जिश की जो अहमियत है वो क्या है। बहुत से अफराद समझते हैं कि जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती है तो उसके साथ एक्सरसाइज की ज़रूरत भी कम होती चली जाती है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। बुज़ुर्ग अफराद के लिए मुनासिब एक्सरसाइज सेहतमंद और फ़ाल ज़िंदगी गुजारने में अहम किरदार अदा करती है। उम्र ज़्यादा होने के साथ साथ मसल्स की ताकत और हड्डियों की मजबूती कम होने लगती है। बाकायदा एक्सरसाइज इन तब्दीलियों की रफ्तार को कम कर सकती है और जिस्मानी तवाज़ुन बेहतर बना सकती है। बुजुर्ग अफराद के लिए हल्की फुल्की वॉक, स्ट्रेचिंग, स्विमिंग और ये कि बैलेंस को बेहतर बनाने वाली एक्सरसाइजेज मुफीद समझी जाती हैं। ये एक्टिविटीज़ गिरने के खतरे को कम करती हैं और रोज़मर्रा का जो काम कर रहे होते हैं उन्हें बेहतर अंदाज में करने की सलाहियत को बरकरार रखने में मदद देती हैं। एक्सरसाइज दिल की सेहत बेहतर बनाती है, ब्लड प्रेशर को काबू में रखने में मदद देती है और इसी तरह जो डायबिटीज़ की जो मैनेजमेंट है उसमें भी मुआवन साबित होती है एक्सरसाइज करना। इसके अलावा जो हमारी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी याददाश्त, ज़हनी जो चुस्तगी है और समाजी रवाबत को भी बेहतर बनाती है। जो बुज़ुर्ग अफराद बाकायदगी से एक्सरसाइज करते हैं इनमें खुद मुख्तारी और ज़िंदगी के मायार में बेहतरी देखी जाती है। अलबत्ता एक्सरसाइज का इंतखाब उम्र, सेहत और जिस्मानी हालत के मुताबिक होना चाहिए। किसी भी नई एक्सरसाइज के आगाज से पहले अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए तो वो बहुत ही मुफीद हो सकता है। लिसनर्स, एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं है बल्कि ज़िंदगी के हर मरहले में ज़रूरी है। चाहे आप बच्चे हों, नौजवान हों, बालिग हों या बुज़ुर्ग हों, जो जिस्मानी एक्टिविटी है यानी एक्सरसाइज है वो सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी की कुंजी है।
2: Maximum music, maximum fun.
3: On FM 107, Dil Se Desi.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम बैक टू इको स्विच विद सफा ऑन FM 107, जहां हम बात करते हैं उन एवरीडे लाइफस्टाइल चॉइसेस की जो एनवायरनमेंट पर डायरेक्ट असर डालती हैं। भाई आज का टॉपिक यूजिंग मीट कंजम्पशन, यानी के अपनी डाइट में मीट की क्वांटिटी को कम करना। ये सिर्फ डाइट ट्रेंड नहीं है साथियों, बल्कि एक पावरफुल एनवायरमेंटल स्टेप भी है। साथियों बात यह है कि हम जो खाते हैं उसका इम्पैक्ट सिर्फ हेल्थ पर नहीं होता, बल्कि पानी के यूजेज पर, लैंड यूज और ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर भी होता है। इको स्विच हमें याद दिलाता है कि कभी कभी क्ले का छोटा सा डिसीजन प्लैनेट का बड़ा फ्यूचर डिसाइड करता है। चलिए एक रिलेटेबल एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सोचिए वीकेंड का बारबेक्यू का प्लान है, ठीक है? आपने क्या किया कि भाई नॉर्मली ग्रिल चिकन, कबाब्स, बर्गर्स और पता नहीं क्या कुछ सब एंजॉय करते हैं, है कि नहीं? मैं भी, आप भी, हम, हाँ भी करते हैं हम एंजॉय। लेकिन उस एक मील के पीछे जो रिसोर्सेज यूजेज होती हैं वो काफी लार्ज होती हैं साथियों। अगर अब हम कंपेयर करें कि भाई अगर एक हाउस होल्ड हर दिन गोश्त की, मीट की हैवी मील्स की जगह दो या तीन वेजिटेरियन मील्स इंक्लूड करे, तो मंथली इस पर रिसोर्स कंजम्पशन ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाता है। इको स्विच पर्सपेक्टिव से देखें तो भाई लेस मीट का मतलब होता है लेस एनवायरमेंटल प्रेशर। अच्छा, मीट कंजम्पशन का ग्लोबल फुटप्रिंट भी मैं आपको बता देती हूँ, कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। देखिए, लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन का लगभग 14.5% रिस्पॉन्सिबल है, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से भी ज्यादा है। अच्छा, आपको ये बात पता है कि 1 kg बीफ प्रोड्यूस करने के लिए लगभग 15,000 लीटर पानी यूज होता है। चिकन और लैम्प कंपेरेटिवली कम फुटप्रिंट रखते हैं, लेकिन फिर भी प्लांट बेस्ड फूड्स के मुकाबले में ज्यादा रिसोर्सेज यूज होते हैं। अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ग्लोबल पॉपुलेशन सिर्फ 1 day per week अगर मीट अवॉइड करे ना, तो बिलियंस ऑफ लीटर वाटर और मासिव कार्बन इमिशन सेव हो सके एनुअली। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इको स्विच, यहाँ कॉन्सेप्ट इको स्विच का बिल्कुल सिंपल सा है, यानी कि डाइट को बैलेंस करना। जब हम मीट कंजम्पशन रिड्यूस करते हैं ना साथियों, तो हम इनडायरेक्टली वाटर यूज, लैंड डिग्रेडेशन और मीथेन इमिशंस रिड्यूस करते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर एक शख्स वीकली 2 meat-free days अडॉप्ट करे ना, तो वो अपना एनुअल कार्बन फुटप्रिंट नोटिसेबल लेवल पर रिड्यूस कर सकता है। तो ऐसा है जैसे हर वेजिटेरियन मील एक एनवायरमेंटल रीसेट बटन प्रेस करता है। देखें, यहाँ पर अगर सोचा जाए, एक रिलेटेबल एग्जांपल आपको दूं, तो सोचिए सुपरमार्केट में आपका ग्रोसरी कार्ट है, ठीक है? आपने वो जो होती है हमारी ट्रॉली होती है, एक साइड पर मीट प्रोडक्ट्स हैं, दूसरी साइड पर वेजिटेबल्स और ग्रेन्स हैं। देखिए, मीट सेक्शन ना ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है और पैकेजिंग और रिफ्रिजरेशन डिमांड भी ज्यादा होती है। अगर आप कार्ट का 30% भी प्लांट बेस्ड आइटम से रिप्लेस करें ना, तो ना सिर्फ हेल्थ इंप्रूव होती है बल्कि एनवायरमेंटल बर्डन भी कम हो जाता है। इको स्विच कहता है भाई कि हर कार्ट एक एनवायरमेंटल चॉइस आपकी। अच्छा, यहाँ पर चलते चलते मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी फॉलो करने को दे देती हूँ, जो मुझे लगता है हर कोई बहुत बहुत इजीली फॉलो कर सकता है। पहली ये कि मीटलेस मंडे या वीकली प्लांट बेस्ड डेज अडॉप्ट करें। दूसरा ये कि मील्स में वेजिटेबल्स, लैंटन्स और बीन का पोर्शन इंक्रीज करें। तीसरा ये कि मीट को डिश के बजाय साइड इंग्रेडिएंट के तौर पर यूज करें ना। चौथा ये कि प्रोसेस्ड मीट की जगह फ्रेश प्लांट बेस्ड प्रोटीन चूज करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यू वेजिटेरियन रेसिपीज ट्राई करें और अपनी डाइट को इंटरेस्टिंग रखें। साथियों देखिए, इको स्विच का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि मीट कंजम्पशन को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं, बल्कि बैलेंस क्रिएट करना इम्पोर्टेंट है ना। देखिए, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जो लोग प्लांट रिच डाइट्स अडॉप्ट करते हैं ना, उनका ओवरऑल फूड वेस्ट भी कम होता है, ग्रोसरी प्लानिंग ज्यादा एफिशिएंट होती है। आखिर में आपसे ये कहना चाहूंगी कि इको स्विच का सिंपल सा मैसेज ये है कि हर मील सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता, बल्कि इम्पैक्ट के लिए भी होता है। हर वेजिटेरियन चॉइस एक छोटा सा स्टेप है, क्लीनर एयर, लेस वाटर यूजेज।

0: और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ। तो भाई अगली बार जब आप अपना मील चूज करें ना, तो एक छोटा सा इको स्विच जरूर ऑन कर लीजिएगा। कैन आई मेक दिस मील अ लिटिल बिट मोर प्लांट बेस्ड टुडे? कैन आई? आई थिंक सो, यस। तो भाई इसी के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन एफ एम 107, जहाँ हर बाइट सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक फ्यूचर का डिसीजन होता है। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज हम बात करेंगे इनकसारी यानी ह्यूमिलिटी के बारे में। इनकसारी एक ऐसी सिफत है जो इंसान को अंदर से खूबसूरत बनाती है। जब इंसान अपने आप को बड़ा समझने के बजाय नरमी और सादगी अख्तियार करता है तो वो लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। तकब्बुर यानी एरोगेंस इंसान को दूसरों से दूर करती है जबकि इनकसारी लोगों को करीब लाती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अपनी कामयाबी पर फख्र ना करें बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करें। एक हम्बल शख्स हर इंसान के साथ बराबरी और इज्जत का रवैया रखता है, ये उसकी पर्सनालिटी को मजबूत और तवाज़ुन बनाता है। आज का अमल ये है कि अपने रवैये का जायजा लें और किसी के साथ नरमी और इनकसारी से बात करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश, फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया। One step to 2030.

आज हम इस सेगमेंट में एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारी जिंदगी के लिए हवा के बाद दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट, जो बेहद जरूरी है।

इसी सवाल का जवाब आज हम इस फिलर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। पूरी दुनिया जो है वो आज वाटर सस्टेनेबिलिटी पर फोकस कर रही है। इसका मतलब है कि पानी को आज इस तरह इस्तेमाल करना कि आने वाली जनरेशन भी उनके लिए भी हम छोड़ सकें या उनके लिए पानी मौजूद रहे। वैसे मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताने की जरूरत है कि पानी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इंसान खाने के बगैर कई दिन रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, घर हैं, सब पानी पर डिपेंड करते हैं। इस वक्त दुनिया की एक आबादी, बड़ी आबादी जो है वो लगातार बढ़ रही है और पानी पर बोझ बढ़ रहा है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा पानी की डिमांड भी होगी। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फ्यूचर में पानी सोने से भी ज्यादा कीमती सोर्स बन जाएगा। दुनिया को वाटर चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, पर उसकी बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे बड़ी और अहम वजह है क्लाइमेट चेंज। कुछ कंट्रीज में सूखा बढ़ रहा है, कुछ जगहों पर बारिश का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं बहुत कम हो रही है, और इसी वजह से फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ रहा है। एक और बड़ी वजह है पॉपुलेशन। हर साल दुनिया की आबादी जो है वो तेजी से कई गुना बढ़ जाती है, और हर शख्स को साफ पीने का पानी चाहिए, खाने के लिए पानी चाहिए, सैनिटेशन के लिए पानी चाहिए। पानी तो हर वक्त ही चाहिए। और एक और चीज जो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली ऐड करनी चाहिए वो है पानी का जाया किया जाना, यानी वाटर वेस्ट। ये भी एक बड़ी वजह है। बहुत सी जगहों पर लोग पानी की कदर नहीं करते। आपने देखा होगा कि टैप्स जो हैं वो खुले छोड़ देते हैं, पाइप्स जो हैं वो लीक कर रहे होते हैं, अननेसेसरी लोग जो हैं वो कई लीटर पानी यूं ही जाया कर देते हैं। लेकिन हमें कुछ ना कुछ सोचना है। अच्छी बात ये है कि आज की दुनिया सिर्फ प्रॉब्लम पे बात नहीं कर रही है। प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन साइंटिस्ट हों, इंजीनियर्स हों, गवर्नमेंट्स हैं, वो इनिशिएटिव्स और सॉल्यूशंस भी डेवलप कर रहे हैं, जैसे डीसेलिनेशन टेक्नोलॉजी। गल्फ कंट्रीज की तरह कई कंट्रीज जो है वो समंदर के पानी को ट्रीट करके ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर रही हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं डीसेलिनेशन। पहले ये प्रोसेस बड़ा महंगा हुआ करता था, लेकिन नई टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशंस के चलते आज थोड़ा सा इफिशियंट हो गया है। 2030 यानी 2030 तक डोनेशन और एडवांस्ड हो सकता है, और भी ज्यादा लोगों को क्लीन वाटर प्रोवाइड कर सकता है। अब समझना है कि स्मार्ट वाटर सिस्टम क्या है। आजकल स्मार्ट सिटीज हैं, सेंसर्स हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, और ये सेंसर कहीं ना कहीं डिटेक्ट करते हैं कि पानी कहाँ लीक हो रहा है। इस तरह से पानी जाया होने से पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जाती है। इमेजिन कीजिए कि एक शहर जहाँ हर पाइपलाइन इंटेलिजेंट सिस्टम से कनेक्टेड हो, जहाँ लीक का पता सेकेंड्स में चल जाए। ये है स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट का फ्यूचर। और एक और चीज वो है वाटर रिसाइकलिंग। क्या आप जानते हैं कि कुछ कंट्रीज यूज वाटर को रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल कर रही हैं? जी हाँ, ट्रीटेड वाटर वेस्ट को गार्डन्स, एग्रीकल्चर, यू नो, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इससे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर जो प्रेशर है, जो बिल्ट हो रहा है, बढ़ रहा है, वो थोड़ा कम हो जाता है। फ्यूचर में वाटर साइकिलिंग यानी वाटर रिसाइकिलिंग हर मॉडर्न सिटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाएगा। नहीं, पर स्मार्ट एग्रीकल्चर की भी तो बात करनी चाहिए। दुनिया का सबसे ज्यादा पानी जो है वो एग्रीकल्चर में यूज होता है। जी हाँ, ट्रेडिशनल फार्मिंग में बहुत पानी जाया होता है, लेकिन अब फार्मर्स जो है वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का यूज कर रहे हैं। इस मेथड में पानी सीधा प्लांट्स के रूट्स तक पहुंचता है, कम पानी इस्तेमाल होता है और ज्यादा क्रॉप्स हासिल होती हैं। और ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर फूड सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। वहीं पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम कैसे भूल सकते हैं, एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया। और इस प्रोसेस में बारिश का पानी कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है और सेव किया जाता है। बाद में यही पानी गार्डनिंग, क्लीनिंग और कई प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। आजकल तो आपने देखा है कि स्कूल्स हों, ऑफिसेज हों या फिर रेजिडेंशियल कम्युनिटीज भी इस सॉल्यूशन को अडॉप्ट कर रही हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी ने काफी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें दिया है।

0: AI सिर्फ रोबोट्स और कंप्यूटर्स तक महदूद नहीं है अब AI पानी बचाने में भी मदद कर रहे हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिडिक्ट कर सकती है कि पानी फ्यूचर में चाहिए होगा कहां सूखे का खतरा है कहां लीकेज हो सकता है किस एरिया में ज्यादा कंजर्वेशन की जरूरत है यानी टेक्नोलॉजी फ्यूचर वाटर सिक्योरिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया वाटर सस्टेनेबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये आपकी और हमारी भी है यंग पीपल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आज के स्टूडेंट्स फ्यूचर के लीडर्स हैं अगर वो आज से वाटर कंजर्वेशन की हैबिट सीख लें तो कल की दुनिया ज्यादा सिक्योर होगी छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं जैसे ब्रश करते वक्त टैप बंद रखें लीकिंग टैप्स की फौरन रिपोर्ट कीजिए पानी सिर्फ जरूरत के मुताबिक यूज कीजिए गार्डन्स में इफिशियंट वाटरिंग मेथड का इस्तेमाल कीजिए दूसरों को भी पानी की अहमियत समझाएं 2030 तक दुनिया का गोल सिर्फ ज्यादा पानी हासिल करना नहीं होगा असल गोल ये होगा कि हर ड्रॉप को स्मार्ट वे में यूज किया जाए फ्यूचर सिटीज स्मार्ट वाटर ग्रिड यूज कर सकती हैं बिल्डिंग्स अपने रेन वाटर कलेक्ट कर सकती हैं होम वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर कम पानी में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती है ये सब मिलकर एक सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं एक थॉट जो हम सब के लिए है अगर आज दुनिया का हर इंसान रोज सिर्फ एक लीटर पानी बचाए तो एक साल में कितना पानी सेव हो सकता है कभी सोचा है आपने डियर वाटर सस्टेनेबिलिटी जिस पर आज हमने बात की सिर्फ एनवायरमेंट का इशू नहीं है ये हेल्थ का भी इशू है इकोनॉमी का भी इशू है फूड सिक्योरिटी का भी इशू है और सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारे फ्यूचर का इशू है 2030 की फ्यूचर जब हम सोचते हैं कैसा होगा तो हमें याद रखना है कि कुछ रिसोर्सेज खत्म होंगे और कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमें अपनी लाइफ को गुजारना होगा हम तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे भाई तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है हर ड्रॉप कीमती है हर ड्रॉप की अपनी कहानी है अगर आज हम इसे सेव करते हैं तो कल की जनरेशन भी क्लीन सेफ और सस्टेनेबल वाटर का फायदा उठा सकती है इसी बात के साथ अब वक्त आपसे इजाजत का अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी One step to 2030
1: FM 107 पर हर गाना हिट हर गाना हिट हर दूसरा गाना सुपर हिट
2: माशाल्लाह माशाल्लाह Start the beat

0: उत्तर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। यार दुनिया में एक अलग तरह का स्कैम भी एंट्री ले चुका है, इसे कहते हैं डबल स्कैम। ये डबल स्कैम क्या है? वेल, इस्तकबाल है आप सभी का दोस्तों इस शो में जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस, और हम आज बात करेंगे, इस हफ्ते बात करेंगे डबल स्कैम के बारे में। ये डबल स्कैम काम कैसे करता है? वेल, ये डबल स्कैम काम ऐसे करता है कि ऐसा समझिए कि आपके सामने कोई शॉपिंग की वेबसाइट आई है, या आप किसी ऑथेंटिक वेबसाइट पे हैं या एप्लीकेशन पे हैं, और आपके सामने वो ऐड आता है कि आपको सस्ते में क्वालिटी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा। आपको लगता है क्यों नहीं खरीद लिया जाए, और ऐसे में आप उस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, वो वेबसाइट आपको बाकायदा असली कुछ फोटोज दिखाता है, और फिर वो फोटोज आप क्लिक करते हैं, या कहें उस ड्रेस के लिए क्लिक करते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, या कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदने के लिए क्लिक करते हैं, वो आपको एक थर्ड पार्टी ऐप पर ले जाता है जहां पर आपको पेमेंट करनी होती है। लेकिन यहीं पर छुपा है डबल स्कैम। जब आप पेमेंट की डिटेल डालते हैं, मिसाल के तौर पर आप अपना एक बैंक का ATM कार्ड डालते हैं, सारी डिटेल डालने के बाद, CVV नंबर डालने के बाद, जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो उस पर लिख के आता है कार्ड डिक्लाइंड। आपको लगता है हो सकता है कार्ड में कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप दूसरे कार्ड की तरफ बढ़ते हैं, या हो सकता है आप दोबारा से उस कार्ड को सारी डिटेल डालें। उस कार्ड की डिटेल डालने के बाद वो थर्ड पार्टी ऐप फिर से कहता है कार्ड डिक्लाइन। आपको लगता है कार्ड में ही प्रॉब्लम है, आप फिर दूसरे कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, फिर वही चीज होती है कार्ड डिक्लाइन, और सारा पासवर्ड डालते हैं, पेमेंट के लिए आप OTP भी डाल रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। लेकिन फिर आपके पास लगातार मैसेज आना शुरू होता है, जितनी बार आपने OTP डाला, जितनी बार आपने पेमेंट के लिए ऑप्शन चूज किए हैं, और जहां पर आपने मिसाल के तौर पे 50.00 चेक किया है, तो वो 50.00 ना होकर 5000 कतरी रियाल हो जाता है, और जो कार्ड डिक्लाइन था वो एक्चुअली कार्ड डिक्लाइन नहीं हो रहा था, वो थर्ड पार्टी ऐप का सेटिंग था। उस सेटिंग के जरिए आपको लग रहा था कि आपका कार्ड डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन ये एक मालवेयर प्रैक्टिस है, या कह सकते हैं फोनी साइट्स हैं जो एप्स का इस्तेमाल करके एक पॉपअप ऐड दिया करती हैं, या एक मालवेयर आपके मोबाइल पे डाला जाता है जहां पर थर्ड पार्टी ऐप आपको डिक्लाइन तो दिखाता है कि आपका डिक्लाइन हो गया है कार्ड, ATM कार्ड, लेकिन वो डिक्लाइन नहीं होता है, वो एक्चुअली आपका पेमेंट काट रहा होता है। तो ऐसे में बार बार OTP कभी ना डालें। सबसे पहले बचने का क्या तरीका है, इस पर बात कर लेते हैं। बचने का सबसे आसान तरीका कि ऑनलाइन जितना हो सके कम किया जाए शॉपिंग इस दौर में, या तो ऐसे ऑथेंटिक, ऐसे रजिस्टर्ड जगहों से ऑनलाइन शॉपिंग करें जो कि प्योरली रजिस्टर्ड हैं। आप किसी भी सोशल मीडिया के चैनल से, या जो ऑथेंटिक नहीं है, या जो वो रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है, वहां से पेमेंट ना करें। अगर करते भी हैं तो कैश ऑन डिलीवरी करें, या फिर उनको लोकेशन पे जाके पेमेंट करें किसी भी प्रोडक्ट के लिए। अपने कार्ड की डिटेल्स एवं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे ना डालें, थर्ड पार्टी वेबसाइट पर भी ना डालें जहां पर आपसे डिटेल मांगी जाती है। और अगर खुदा ना खास्ता अगर आपने डाला है और डिक्लाइन हुआ भी है अगर आपका एक बार वो ATM कार्ड, तो दोबारा किसी दूसरे ATM का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपके दो अलग अलग तरह से डबल स्कैम हो सकते हैं, डबल ATM चार्ज किए जा सकते हैं OTP डालने के बाद। तो होशियार रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे में, और इसीलिए FM 107 लगातार आपको नए जमाने के स्कैम के बारे में बताता रहता है। ये जो नया तरीका लोगों ने अपना लिया है स्कैम करने का, फ्रॉड करने का, इसके लिए आपको FM 107 हमेशा आगाह करता आया है। सुनते रहे FM 107, मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक इसी तरह के एक नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट।

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। दोस्तों बाबा का दियंग अल रायान क्लब के नुमाया बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और कतर की नेशनल टीम की भी हिस्सा रह चुके हैं। फॉरवर्ड के तौर पर वो अपनी ताकतवर जिस्मानी सलाहियत, एथलेटिक मूवमेंट और स्कोरिंग की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। कोर्ट के दोनों एंड पर उनकी परफॉर्मेंस टीम के लिए बहुत मुफीद साबित होती है, क्योंकि वो ऑफेंस के साथ साथ डिफेंस में भी अहम किरदार अदा करते हैं। रायान जैसे मकबूल क्लब के लिए खेलते हुए उन्होंने मुख्तलिफ डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन में अपनी टीम की मदद की और अपनी कंसिस्टेंसी से कोचेस का एतमाद हासिल किया। कतर की कौमी टीम के लिए भी उनकी मौजूदगी फ्रंट कोर्ट को मजबूत बनाती है और वो मुख्तलिफ एशियन कॉम्पिटिशन में नजर आ चुके हैं। उनका खेल टीम वर्क, हसल और रिबाउंड पर मबनी होता है, जिसकी वजह से वो हर मैच में असरअंदाज होने की सलाहियत रखते हैं। बाबा का डीएन की मेहनत और प्रोफेशनल रवैया उन्हें कतरी फुटबॉल के अहम नामों में शामिल करता है और रायान के सपोर्टर्स उनसे हर सीजन बेहतरीन खेल की तवक्को रखते हैं। आपको चाहिए एपिसोड पसंद आया, अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है। मैतराज 2 ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के। इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मैतराज ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है, मैतराज 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो

ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे उन एक्सरसाइजेस के बारे में जो हमारे दिल को मजबूत बनाने, ब्लड प्रेशर को काबू में रखने और मजमूई सेहत को बेहतर बनाने में मदद देती हैं। दिल हमारे जिस्म का सबसे अहम ऑर्गन है। ये हर लम्हे खून को पूरे जिस्म तक पहुंचाता है। अगर हम अपने दिल की अच्छी देखभाल करें तो दिल की बीमारियों, फालिज, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसे मसाइल के खतरे को कम किया जा सकता है। कार्डियो या एरोबिक्स वो एक्सरसाइजेस हैं जिनसे दिल की धड़कन और सांस लेने की रफ्तार कुछ देर के लिए बढ़ जाती है। ये एक्सरसाइजेस दिल और लंग्स को मजबूत बनाती हैं। दिल के लिए जो बेहतरीन एक्सरसाइज हैं उनमें सबसे पहले वॉक है कि रोज़ाना 30 मिनट तेज रफ्तार में चलना दिल की सेहत के लिए बेहतरीन और आसान एक्सरसाइज है। साइकिलिंग करना जोड़ों पर कम दबाव डालता है और दिल को मजबूत बनाता है। स्विमिंग पूरे जिस्म की एक्सरसाइज है और दिल और फेफड़ों की कारकर्दगी को बेहतर करती है। जॉगिंग सेहतमंद अफराद के लिए मुफीद है, लेकिन आगाज आहिस्ता आहिस्ता कीजिए। एरोबिक्स अगर आपको पसंद है तो ये भी दिल की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। माहिरीन के मुताबिक

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं इको स्विच विद सफा ऑन FM 107, जहां हम बात करते हैं उन डेली हैबिट्स की जो एन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं। तो भाई साथियों, आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन कम्यूटिंग हैबिट्स, यानी सफर करने के एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके। देखें, कतर जैसे मॉडर्न और फास्ट मूविंग कंट्री में कम्यूटिंग डेली लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी कि ऑफिस जाना, स्कूल ड्रॉप, मॉल विजिट या वीकेंड आउटिंग हो गई भाई, वो हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। लेकिन हर ट्रिप के साथ फ्यूल कंजम्पशन, ट्रैफिक इमिशंस और कार्बन फुटप्रिंट भी जुड़े हुए होते हैं ना। देखिए, इको स्विच हमें याद दिलाता है कि सफर वही रहता है, बस तरीका चेंज करने से इम्पैक्ट चेंज हो जाता है। अच्छा भाई साथियों, एक रिलेटेबल एग्जांपल आपको देती हूँ। सोचिए, सुबह का टाइम है, दोहा का बिजी रोड है, ट्रैफिक चल रहा है, यानी कि हर कार में यूजली एक से दो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हर गाड़ी अपना फ्यूल और एमिशन जनरेट कर रही होती है अलग से। अब अगर वही कम्यूट कार पूल, मेट्रो या बस से हो जाए तो एक ही रूट पर मल्टीपल लोग एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं। अच्छा, कतर रेल मेट्रो सिस्टम के लॉन्च के बाद से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज काफी इम्प्रूव हुआ है, स्पेशली दोहा मेट्रो जो एफिशिएंट और इको फ्रेंडली ट्रैवल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। इको स्विच पर्सपेक्टिव से देखें तो भाई सेम डेस्टिनेशन, स्मार्टर राइड, यही रियल सॉल्यूशन लगता है मुझे तो। अक्सर औकात तो मुझे जब मॉल ऑफ कतर जाना होता है तो भाई मैं तो मेट्रो पकड़ लेती हूँ, फन का फन, ट्रैवल का ट्रैवल। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं आपको कुछ ट्रांसपोर्ट के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बता दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये चीज आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर मैं क्या बात कर रही हूँ। लेकिन ट्रांसपोर्ट सेक्टर ग्लोबली आप कह लें कि CO2 इमिशंस का लगभग 20-24% कंट्रीब्यूट करता है। एक एवरेज पैसेंजर कार हर किलोमीटर पर अराउंड 120-150 ग्राम्स CO2 इमिट करती है। साथियों, कार पूलिंग सिर्फ वन एक्स्ट्रा पैसेंजर के साथ इमिशंस पर पर्सन को ऑलमोस्ट हाफ कर सकती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने पर पर्सन कार्बन फुटप्रिंट प्राइवेट कार के मुकाबले में 50-70% तक कम हो सकता है। साथियों, कतर में लास्ट फ्यू इयर्स में अगर देखा जाए तो ग्रीन कम्यूटिंग ऑप्शन रैपिडली इंप्रूव कर रहे हैं। मेट्रो एक मेजर एग्जांपल है जो क्लीन एनर्जी और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। साथ ही डेडिकेटेड साइकिलिंग ट्रैक्स और पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली ज़ोन्स भी डेवलप हो रहे हैं, स्पेशली लूसेल, कॉर्निश, ये वाले जो एरिया है इनमें तो है ही है। अच्छा, इको स्विच यहाँ हमें ये बात बताता है कि कतर ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, यानी कि अब हैबिट चेंज करना यूजर्स के हाथ में है। कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल हो चुका है जो कि अच्छा खासा है, मैं भी यूज करती हूँ तो मैं भी उसी को प्रमोट करती हूँ भाई कि इट इज ऑसम। यानी कि साथियों, इको स्विच का कॉन्सेप्ट यहाँ सिंपल है, हर ट्रिप को कॉन्शियस बनाना। जब हम ग्रीन कम्यूटिंग एडॉप्ट करते हैं तो हम डायरेक्टली फ्यूल कंजम्पशन और एयर पोल्यूशन रिड्यूस करते हैं। देखिए भाई, एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर एक बंदा वीकली 2-3 कार ट्रिप्स रिप्लेस करे, या आप कह लें कि मेट्रो में चला जाए या कार पूलिंग से ट्रांसपोर्ट कर ले, तो वो एनुअल बेसिस पर सिग्निफिकेंटली कार्बन रिडक्शन कंट्रीब्यूट कर सकते।

0: ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हर शेयर्ड राइड एक छोटा सा एनवायरमेंटल रिलीफ बन जाता है। अच्छा जरा सोचिए, अगर आपको एक सिनेरियो दूं कि एक फैमिली है जहां हर मेंबर अलग अलग टाइम पर अलग अलग ट्रिप्स करता है, स्कूल, ऑफिस, ग्रोसरी, जिम, हर ट्रिप पर सेपरेट कार यूज करता है। अब अगर सेम ट्रिप्स कंबाइन कर लिए जाएं या प्लान्ड कारपूल हो जाए तो भाई फ्यूल कंजम्पशन और ट्रैफिक दोनों कम हो जाते हैं ना। देखिए इको स्विच अप्रोच ये कहती है कि प्लानिंग स्मार्ट हो तो कम्यूटिंग हाफ इम्पैक्ट में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा इसी के साथ मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे देती हूँ जो कि आप लोग बहुत आसानी से कतर में रहते हुए फॉलो कर सकते हैं। पहली चीज तो ये कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वॉकिंग या साइकिलिंग प्रेफर करें, स्पेशली सेफ एरियाज में। अच्छा दूसरी बात ये कि हमारे जो दोहा मेट्रो और पब्लिक बसेस का ज्यादा यूज करें फॉर डेली कम्यूट। तीसरी बात ये कि कार पूल सिस्टम अडॉप्ट करें कोलीग्स या फ्रेंड्स के साथ। चौथी बात ये कि ट्रिप्स को कंबाइन करें ताकि अननेसेसरी मल्टीपल जर्नीज अवॉइड हो सके। पांचवा ये कि एसी आइडलिंग और इंजन अननेसेसरी रनिंग अवॉइड करें ट्रैफिक में। साथियों इको स्विच का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि कम्यूटिंग सिर्फ ट्रैवल के लिए नहीं बल्कि चॉइस है। जब हम सोलो ड्राइविंग से स्मार्ट शेयरिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं ना, तो हम सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं बचाते बल्कि कॉस्ट और स्ट्रेस भी रिड्यूस करते हैं। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेगुलरली यूज करते हैं उनका डेली स्ट्रेस लेवल भी रिलेटिवली लोअर होता है ड्यू टू लेस ड्राइविंग प्रेशर। अच्छा भाई आखिर में इको स्विच का सिंपल मैसेज ये है कि हर जर्नी सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने का तरीका नहीं बल्कि एनवायरनमेंट पर भी असर डालने का जरिया होती है। कतर जैसे मॉडर्न सिटी में ग्रीन कम्यूटिंग ऑलरेडी अवेलेबल है साथियों। अब चॉइस हमारे हाथ में है कि हम क्या करते हैं। तो भाई अगली बार जब आप अपना सफर प्लान करें ना तो एक छोटा सा इको स्विच जरूर ऑन कर लीजिएगा। कैन आई मेक दिस ट्रिप ग्रीनर टुडे? एंड यस यू कैन। इसी के साथ मैं थी सफा आपके साथ इको स्विच में ऑन FM 107 जहां पर हर राइड सिर्फ ट्रेवल नहीं बल्कि एक सस्टेनेबल स्टेप होता है। सुनते रहिए FM 107 दिल से देश से।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देश से।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है तकब्बुर से बचना। तकब्बुर यानी घमंड एक ऐसी बुराई है जो इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। जब कोई शख्स अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है तो वो धीरे धीरे लोगों के दिलों से दूर होने लगा है। इस्लाम सिखाता है कि हम अपनी औकात को पहचाने और हर चीज पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो कुछ भी हमारे पास है वो अल्लाह का दिया हुआ है, इसलिए फखर के बजाय शुक्र का रवैया होना चाहिए। तकब्बुर इंसान को हक से भी दूर कर देता है, जबकि नरमी और तवाज़ो उसे सच के करीब लेकर आती है। आज का मल ये है कि अपनी किसी भी कामयाबी पर फखर करने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करें और दूसरों को भी इज्जत दें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: Qatar's most

0: नगर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: गुरु जब तो निकले, ये तो निकले, बोहिमिया।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारे फ्यूचर को शेप करेगी। आज से कुछ साल पहले तक जब एनर्जी की बात होती थी तो ज्यादातर लोग ना ऑयल है, गैस है या कोल के बारे में सोचते थे, लेकिन अब दुनिया तेजी से बदल रही है। आज हम एक ऐसे रेवोल्यूशन के दौर में हैं जो हमारे घरों, शहरों और मुस्तकबिल को बदल रही है, और इसे कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रेवोल्यूशन। जी हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी है जो नेचर से मिलती है और ये खत्म नहीं होती, जैसे सूरज की रोशनी, हवा या पानी। दुनिया भर की कंट्रीज इस तरफ जा रहे हैं क्योंकि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल भी। सोचिए, अगर आपके घर की बिजली, सोचना क्या है, ऐसा है, आपके घर की बिजली सूरज की रोशनी से आए तो ना फ्यूल की टेंशन ना पोल्यूशन। इसीलिए आप देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली टेक्नोलॉजीज में से एक बन गई है। आज कई कंट्रीज में घरों की छतों पर सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। दिन भर सूरज की रोशनी इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील होती है और लोग उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी इतनी मिल जाती है कि वो नेशनल ग्रिड को भी वापस भेज देते हैं। देखिए, सोलर एनर्जी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि सूरज हर रोज निकलेगा। हाँ, कभी कभी बारिश भी होगी। खासतर अगर हम बात करें गल्फ रीजन की तो यहाँ सूरज ज्यादा वक्त तक चमकता है, और ऐसी जगहों पे सोलर एनर्जी की बेपनाह अपॉर्चुनिटीज भी हैं। और अब बात करती हूँ एक और एनर्जी की, जो है विंड, विंड एनर्जी। देखिए दोस्तों, जब हम हवा को महसूस करते हैं तो शायद हमें लगता है कि ये सिर्फ एक नेचुरल चीज है, लेकिन इंजीनियर्स ने इसी हवा को एनर्जी के सोर्स में तब्दील कर दिया है। आपने शायद बड़े बड़े विंड टर्बाइंस देखे होंगे जो दूर से जाइंट फैंस की तरह नजर आते हैं। देखे हैं कि नहीं, पहले बीच में मुझे बताइए हाँ या ना। देखो, मैंने तो देखे हैं किताबों में। जब हवा चलती है तो बेसिकली जो टर्बाइंस है ना वो मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ये मैंने पढ़ा है। वैसे कई यूरोपियन कंट्रीज अपनी बिजली का बड़ा हिस्सा विंड एनर्जी से ही हासिल कर रहे हैं। आने वाले सालों में ऑफशोर विंड फार्म्स यानी समंदर के अंदर लगाए गए टर्बाइंस और भी ज्यादा कॉमन हो जाएंगे। जी हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ एनवायरमेंट के लिए नहीं है बल्कि इकोनॉमी के लिए भी फायदेमंद है। नई टेक्नोलॉजीज की मदद से नई जॉब्स मार्केट में आ रही हैं। इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, टेक्निकल स्टाफ है, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स हैं, सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट्स हैं और रिसर्चर्स, सब के लिए नए अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही हैं। 2030 तक दुनिया भर में लाखों लोग क्लीन एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे होंगे, लेकिन सवाल यह है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ क्यों कर रहे हैं, ये जहन में आता होगा ना। देखो, सबसे बड़ी वजह जो है वो है क्लाइमेट चेंज। कार्बन इमर्शंस की वजह ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, आइस कैप्स पिघल रही हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ रहे हैं। सोलर और विंड एनर्जी कार्बन इमर्शंस को कम करने में मदद करती हैं क्योंकि इनमें फ्यूल जलना या जलाना नहीं पड़ता। इसके साथ साथ बैटरी टेक्नोलॉजी भी रैपिडली इम्प्रूव हो रही है। पहले चैलेंज ये था कि सूरज हर वक्त नहीं चमकता और हवा हर वक्त नहीं चलती। अब एडवांस बैटरीज एनर्जी स्टोर कर सकती हैं और जरूरत के वक्त उसे यूज कर सकती हैं। फ्यूचर में ऐसे स्मार्ट होम्स होंगे जो खुद एनर्जी जनरेट भी करेंगे और स्टोर भी करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी इस रिवॉल्यूशन का एक अहम हिस्सा है, इस पर आज बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल तो मैं आपको दूंगी। कल तक पेट्रोल स्टेशंस बड़े कॉमन थे, आज चार्जिंग स्टेशंस बढ़ रहे हैं। कल शायद अक्सर व्हीकल्स इलेक्ट्रॉनिक ही ज्यादातर हो जाएं। इससे होगा ये कि फ्यूल कंजम्पशन और पोल्यूशन दोनों कम होंगे। वहीं 2030 का जो शहर है वो कैसा

0: होगा कि रूफटॉप्स पर इमेजिन कीजिए सोलर पैनल्स हैं, रोड्स पर इलेक्ट्रिक बसेस हैं, स्मार्ट बिल्डिंग्स हैं, स्मार्ट होम्स हैं जो एनर्जी को ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि क्लीन एनर्जी पर चलता है और पार्क जो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी से मेंटेन किए जाते हैं. ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये सब आज की प्लानिंग और इनोवेशन से कल के लिए मुमकिन होगा. लेकिन इस रेवोल्यूशन की सक्सेस सिर्फ गवर्नमेंट पर तो डिपेंड नहीं करती, हर फर्द अपना रोल अदा कर सकता है. बिजली बचा के, एनर्जी इफिशिएंट अप्लायंसेस इस्तेमाल करके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करके और एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैबिट्स अडॉप्ट करके. ये इंसानी सोच की कहानी है, ये इस बात की मिसाल है कि जब दुनिया किसी चैलेंज का सामना करती है तो इनोवेशन डिटर्मिनेशन के जरिए उसका हल भी ढूंढ लेती है. हो सकता है 2030 में हम अपने आज की दुनिया को भूल जाएं, ना समझ पाए, लेकिन जो दुनिया होगी वो एक अलग ही दुनिया होगी. और दोस्तों, ये वो वक्त है जब इंसानियत ने क्लीन, ग्रीन और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ हम सबसे कहा है कि अपना पहला और बड़ा अहम कदम बढ़ाएं. फिलहाल आज के लिए दोस्तों बस इतना ही. मुझे यानी नाजिया को और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी. One step to 2030.
1: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी.

छुट्टी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।

उनके आगे चांदी के बर्तन और शीशे के प्याले गर्दिश कराए जा रहे होंगे, शीशे भी वो जो चांदी की किस्म के होंगे, और उनको मुंतजमीन जन्नत ने ठीक अंदाजे के मुताबिक भरा होगा। उनको वहां ऐसी शराब के जाम पिलाए जाएंगे जिसमें सौंठ की आमेजिश होगी। ये जन्नत का एक चश्मा होगा जिसे सिलसबील कहा जाता है। उनके खिदमत के लिए ऐसे लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे जो हमेशा लड़के ही रहेंगे। तुम उन्हें देखो तो समझो कि मोती हैं जो बखेर दिए गए हैं। वहां जिधर भी तुम निगाह डालोगे नेमतें ही नेमतें और एक बड़ी सल्तनत का सरोसामान तुम्हें नजर आएगा। उनके ऊपर बारीक रेशम के सब्ज लिबास और अतलस और दीबा के कपड़े होंगे। उनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका रब उनको निहायत पाकीजा शराब पिलाएगा। ये है तुम्हारी जजा और तुम्हारी